0: और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहां होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संगसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह न पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन अस्हाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और ना उनके मुताल्लक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो एफ़एम 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फज्र की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो है ये पल्स ऑफ कुरान। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। आज पल्स ऑफ कुरान में मैं आपके लिए जो आयत लेकर आई हूं ये है सूरह अल हशर की आयत नंबर 18 और इसका तर्जुमा कुछ यूं है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, उसका तकवा इख्तियार करो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या आगे भेजा है और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है जो तुम करते हो। यह आयत कुरान की उन अजीम आयात में से है जो इंसान को बेदार करती है। सूरह अल हशर में पहले बनी नज़ीर के वाक़े, दुनिया की बेसबाती, मुनाफिकीन के अंजाम और अल्लाह की कुदरत के बयान के बाद अहले ईमान को एक निहायत गहरा पैगाम दिया गया, अपने अंजाम को ना भूलो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि जिंदगी का पूरा निसाब है। इस आयत में तीन बड़े मजामीन जमा हो गए हैं, तक्वा इख्तियार करो, अपना मुहासबा करो, आखिरत के लिए

0: अच्छे को बेहतर बनाता है। वक्त कहाँ जा रहा है ये भी मुहासबा है। दिन किसमें गुजरा, फायदा फजूलियात आखिरत की तैयारी, वक्त का हिसाब बड़ा अहम है। जिंदगी वक्त ही तो है। मुहासबा तब होता है जब इंसान खुद से सच्चा हो, बहाने ना बनाए, अपनी गलती माने। नफ्स उजर तराशता है, मुहासबा पर्दा हटाता है। नफ्स अक्सर धोखा देता है, कहता है सब ठीक है, तुम अच्छे हो, फिक्र ना करो। मुहासबा इस फरेब को तोड़ता है। मुहासबा आईना है, चेहरा खराब हो तो आईना दिखाता है, रूह में दाग हो तो मुहासबा दिखाता है। आईना दुश्मन नहीं, मददगार है। एक बहुत ही अहम बात कि मुहासबा खुद का होता है। हम अक्सर दूसरों की निगरानी करते हैं। कुरान खुद को देखने का कहता है, ये इस्लाह का रास्ता है। इखलास बगैर मुहासबे के कमजोर हो जाता है, क्योंकि नफ्स आहिस्ता आहिस्ता दिखावा मिला देता है। मुहासबा नियत साफ रखता है। बहुत लोग शोर में रहते हैं, खुद से कभी मिलते नहीं। मुहासबा तन्हाई मांगता है, खामोशी, सोच, दिल से बात, ये रूहानी जरूरत है। रोज रात खुद से पूछें, आज अल्लाह के लिए क्या किया, आज किस गलती पर निदामत है, आज किस नेमत पर शुक्र है, कल क्या बेहतर करना है। ये मुख्तसर मुहासबा है, मगर बहुत ताकतवर।
1: आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
0: बाज़ लोग समझते हैं कि खुद को परेशान करना है, नहीं, ये रहमत है, क्योंकि ये आखिरत के बड़े हिसाब से पहले इस्लाह का मौका देता है। कामयाब कौन है? जो अपनी गलतियों को देखता है, जो सीखता है, जो बदलता है, जो लौट कर आता है, यही कामयाबी है। गफलत इंसान को दबा करती है, मुहासबा जगाता है। गफलत बहाव में ले जाती है, मुहासबा सिम देता है। कल के लिए क्या भेजा, ये सवाल मुहासबे का मरकज है। मैंने आज आखिरत के लिए क्या भेजा? नमाज, सदका, अच्छा अखलाक, इल्म, सबर, ये सिर्फ दुनिया जमा की? ये सवाल रूह हिला देता है। खुद से सवाल कीजिए, अगर आज जिंदगी खत्म हो जाए, मैं क्या साथ लेके जा रहा हूं? ये सवाल मुहासबे को गहरा करता है। जो रोज खुद को देखता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बदल जाता है। गलतियां कम होती हैं, दिल नरम होता है, तकवा बढ़ता है, ये तरबियत है। मुहासबा मायूसी नहीं, उम्मीद है, क्योंकि जब तक देखने और बदलने की सलाहियत है, तब तक रास्ता खुला है। अकलमंद वो नहीं जो सिर्फ दुनिया संभाले, अकलमंद वो है जो अपने नफ्स का ख्याल रखे, हिसाब रखे, यही आयत सिखाती है। आज अगर मुझे अपने अमाल की फहरस्त देखनी पड़े, तो क्या मैं मुतमईन हूँ या परेशान? ये सवाल मुहासबे की इब्तिदा है। आयत का अगला हिस्सा है जो उसने कल के लिए आगे भेजा है। यहाँ कल से मुराद सिर्फ अगला दिन नहीं, बल्कि आखिरत है। यहाँ अल्लाह ताला कुरान का एक निहायत गहरा अंदाज बयान फरमा रहे हैं। आखिरत को कल कह के उसको करीब और यकीनी बना दिया गया है। कल क्यों कहा गया? इंसान के लिए सबसे करीबी चीज कल होती है। कल यानी आने वाला दिन, जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। कुरान ने आखिरत को कल कहकर ये समझाया, जिस तरह कल आना यकीनी है, इसी तरह आखिरत भी यकीनी है। बस फर्क ये है कि लोग कल को मानते हैं, लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। इंसान की बड़ी गलत फहमी यह है कि इंसान समझता है

जिंदगी अभी है, वक्त बहुत है, बाद में देख लेंगे, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि हकीकत यह है, कल कभी भी अचानक बन जाता है और आखिरत भी इसी तरह अचानक सामने आती है। आगे भेजना क्या है? आयत में लफ्ज आया है यानी आगे भेज दिया। ये बहुत खूबसूरत ताबीर है। कोई इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहा है वो असल में आगे भेज रहा है। हर अमल एक पार्सल है जो आखिरत में पहुंचेगा। नेकी भेज रहे हो, गुनाह भेज रहे हो, वक्त भेज रहे हो, नियत भेज रहे हो, कुछ भी वापस नहीं रहता। जिंदगी एक सफर है, ये दुनिया मंजिल नहीं, ये एक सफर है और आखिरत असल मंजिल है। सफर में इंसान सामान जमा करता है, मंजिल पर काम आता है। यही मिसाल कुरान दे रहा है। कौन सा सामान जा रहा है? हर इंसान हर दिन कुछ ना कुछ भेज रहा है। सवाल यह है कि क्या भेज रहा है? अच्छे अमाल, इबादत, सदका, इल्म या सिर्फ गफलत या गुनाह? यही असल सवाल है। इंसान छोटे अमल को मामूली समझता है, लेकिन आयत बताती है हर छोटा अमल भेजा जा रहा है। एक मुस्कुराहट भी, एक लफ्ज भी, एक नियत भी, सब महफूज हो रहा है। लोग समझते हैं कि आखिरत बहुत दूर है, लेकिन कुरान उसे कल कहकर करीब कर देता है। जैसे कोई शख्स कहे कल मुलाकात होती है तो इंसान तैयार हो जाता है, लेकिन आखिरत के लिए तैयारी नहीं करता। ये अजीब गफलत है। असल दानिशमंदी क्या है? दुनिया में लोग कहते हैं स्मार्ट वो है जो पैसा कमाए या आगे बढ़ जाए, लेकिन कुरान के मुताबिक स्मार्ट वो है जो अपने कल के लिए तैयारी करे, यानी आखिरत के लिए। यही असल अकल है। जिंदगी का असल सरमाया इंसान के पास वक्त है और वक्त के साथ अमाल। हर दिन गुजर रहा है और साथ कुछ लिखा जा रहा है, यही रिकॉर्ड कल खुलेगा। नेक अमल इन्वेस्टमेंट है। हर नेकी एक सरमायाकारी है। नमाज, कुरान, सदका, सबर, अच्छा अखलाक, ये सब आखिरत के बैंक में जमा हो रहे हैं और वहाँ असल फायदा मिलेगा। जो शख्स सिर्फ दुनिया के लिए जीता है वो भेज तो रहा है लेकिन खाली हाथ भेज रहा है, जैसे कोई सफर पर जाए और सामान ना ले। आखिरत में यही खसारा है। ये आयत डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। हर दिन आखिरी हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं जानता कल आएगी कि नहीं। इसलिए हर दिन को आखिरत की तैयारी में बिताना चाहिए। यही समझ कल का असल मतलब है। सिर्फ अमल नहीं, नियत भी भेजी जाती है। अगर नियत साफ है तो अमल भी कीमती है, अगर नियत खराब है तो जाहिरी अमल भी कमजोर हो जाता है। दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जो बोगे वही काटोगे, यही सीधा उसूल है। हर दिन ये सवाल होना चाहिए, आज मैंने आखिरत के लिए क्या किया? एक नेकी, एक गुनाह से बचाओ, किसी का हक अदा किया? ये छोटे सवाल जिंदगी बदल देते हैं। वक्त जाया करना सिर्फ कुछ ना करना नहीं, बल्कि ऐसे काम करना जो आखिरत के लिए कुछ ना दे, यही असल नुकसान है। इंसान कल का इंतजार करता है, लेकिन कभी कभी कल नहीं आती। यह हकीकत इंसान को संजीदा बनाती है। हर दिन कीमती है। एक नेक अमल भेजना काफी नहीं, मुसलसल भेजना जरूरी है, क्योंकि सफर लंबा है। सिर्फ हाथों के अमाल नहीं, दिल की हालत भी कल के लिए जा रही है। हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर, नियत, ये सब भी साथ जाता है। बेहतरीन तैयारी क्या है? सबसे बेहतरीन तैयारी अल्लाह की याद में जीना है।

अंदर तब्दीली आ रही होती है, तकवा इस धोखे को तोड़ता है। बिदारी क्या है? बिदारी यह है कि मैं क्या कर रहा हूं ये जानना, क्यों कर रहा हूं समझना, क्या इसका अंजाम अच्छा है सोचना, यही शऊर तकवा है। हर लम्हा निगरानी, यानी वतकुल्ला का मतलब है कि हर लम्हा अल्लाह की निगरानी को महसूस किया जाए। एहसास इंसान को गलती से रोकता है। वक्त गफलत का सबसे बड़ा शिकार है। जो वक्त को नहीं संभालता वो अपनी जिंदगी को खो देता है। गफलत दिल को जंग लगा देती है और फिर सच्चाई महसूस नहीं होती। यही सबसे खतरनाक हालत है। गफलत से बचने के लिए रोज कुरान पढ़ना, दुआ करना, खामोशी से सोचना, अपने अमाल देखना, ये दिल को जिंदा रखते हैं। फिर तीसरा हुक्म गोया आखिरी जोर है। मत भूलो, मत गाफिल हो, अल्लाह को याद रखो। ये जिंदगी की सिमत तय करता है। क्या मैं गाफिल तो नहीं हो रहा? क्या मैं अपने मकसद को भूल रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ दुनिया में खो गया हूँ? ये सवाल इंसान को जगाते हैं। तकवा एक लम्हे का नहीं, मुसलसल कैफियत है। हर दिन, हर फैसला, हर सोच में असल कामयाबी ये है कि इंसान गफलत से बचे और अल्लाह को याद रखे, यही निजात है। आयत में बार बार तकवा के बाद एक बहुत गहरा पैगाम छुपा हुआ है। जब इंसान अपने अमाल देखता है और जान लेता है कि कुछ गलतियां हो चुकी हैं, तो उसके लिए दरवाजा बंद नहीं होता बल्कि रास्ता खुलता है इसलाह और वापसी का। तकवा सिर्फ ये नहीं कि इंसान गुनाह ना करे, बल्कि ये भी है कि अगर गुनाह हो जाए तो फौरन संभल जाए। इंसान कमजोर है, गलती हो सकती है। असल फर्क ये है कि इंसान गलती पे अड़ जाता है और या फिर इंसान गलती से वापस आ जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि नेक इंसान वो है जो गलती कभी ना करे। ये सोच मुकम्मल नहीं। असल नेकी ये है कि गलती के बाद नदामत हो, एहसास हो और फिर इसलाह हो, यही वापसी असल कामयाबी है। तौबा का मतलब है गलती पे शर्मिंदगी, अल्लाह की तरफ रुजू, दोबारा ना करने का अजम। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल की तब्दीली है। इंसान क्यों गिरता है? क्योंकि इंसान फरिश्ता नहीं। इसमें ख्वाहिशात हैं, कमजोरियां हैं, जज्बात हैं, इसीलिए गलती मुमकिन है। मगर अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया। अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। सिर्फ अल्लाह हिसाब लेने वाला नहीं बल्कि वापस बुलाने वाला भी है। जब इंसान होश में आता है तो रास्ता मौजूद होता है। इसलाह सिर्फ ये नहीं कि गुनाह छोड़ दिया, इसलाह ये भी है सोच बदल दी, आदत बदल ली, माहौल बदला, नियत दुरुस्त करना, ये मुकम्मल तब्दीली है। कभी एक छोटा फैसला जिंदगी बदल देता है, जैसे गुनाह छोड़ना, एक अच्छी आदत को अपनाना, एक गलत दोस्ती से दूर हो जाना। ये छोटे कदम बड़े रास्ते बदल देते हैं। जब इंसान गलती पर शर्मिंदा होता है तो दिल नरम होता है। ये नरमी ही इस्लाह की बुनियाद है। सख्त दिल कभी नहीं बदलते। सबसे खतरनाक चीज गुनाह नहीं बल्कि गुनाह के बाद की बेफिक्री है। तकवा ये सिखाता है कि गलती फौरन पहचानो और रुक जाओ। इंसान बाज़ औक़ात अपने आप से भी मायूस हो जाता है, लेकिन दीन ये सिखाता है मायूसी नहीं इस्लाह करो, क्योंकि दरवाजा बंद नहीं हुआ। इंसान कभी एक बार में मुकम्मल नहीं बदलता, एक सफर है। गिरता है, सीखता है, उठता है, फिर बेहतर होता है, यही असल तरक्की है। शैतान इंसान को दो चीजों से रोकता है, या गुनाह पर लगा देता है या मायूस कर देता है। दोनों गलत है। सही रास्ता दरमियान में है, इस्लाह, तौबा

0: 7 पर वेक अप।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 Time check.
1: ये भाई साहब मुझे लग रहा है जिस हिसाब से धूप का हिसाब किताब है इतनी बढ़ रही है कहीं मैं गलती से आफ्टरनून ना बोल दूं। अस्सलामुअलैकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे और 107 ये फ्रीक्वेंसी आप पकड़े रहिएगा अगले 3 घंटों तक। भाई साहब मौज करा देंगे, ये शो जो है जमा देसी है और भाई साहब जहज बना देंगे शो को, मौज आ जाएगी आपको, ठीक है, मौसम बदल देंगे। फिलहाल मौसम भी ऐसे हो रहा है, काफ़ी हवाएं वाएँ चल रही हैं। अब इसे बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने बढ़िया भी कहा है भाई, बहुत बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। ज़रा अपनी आँखें और अपने नाक का ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, बाकी सुबह सुबह वार्निंग वार्निंग कुछ नहीं दूंगा, चिल कीजिए आराम से, चिल कीजिए। एक और नया दिन इंशाल्लाह, ये दिन भी निकल जाएगा, बढ़िया जाएगा, कोई टेंशन नहीं आ रही भाई। 12 मई की तारीख हो रही है, मैं कबीर आपसे इतना कहना चाहता हूँ आज भी, अरे क्या कहानी है भाई आज की, सबसे पहले तो ये सुनो, ओहो क्या बढ़िया कहानी है, क्या तो बढ़िया कहानी है। मैंने आपसे कहा था ना धीरे धीरे कहानी की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी, तो अभी कहानी की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस हफ्ते के आखिर में आपको 40 मिनट की भी कहानी मिलेगी जो हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बट आज की कहानी बहुत बढ़िया है, उम्मीद कर रहा हूँ, मतलब अब मेरा काम तो सामान बेचने का है भाई, मैं अपने सामान को बुरा कैसे कहूँ, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। और साथ में सवाल भी आ रहा है गुजर में, मैं दोहा वाला कबीर आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज 666-22107 पे मैसेज कीजिएगा, 666-22107 पे, एंड सुबह के अधिकार इंशाल्लाह उसके बाद मुलाकात 10 मिनट 33 सेकंड। मैं कबीर आपसे कहता हूँ जी, जाना कहाँ है सही जगह पे तो है, हाँ स्टे ट्यून्ड।
2: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है, इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك

0: इसरा मोहम्मद जी का मैसेज है. करेक्ट, मैं पता, मैं एग्री करता हूँ. मैं पहले मैं पार्शली एग्री करता था इस बात से. मुझे लगता था नहीं यार, अपने लोग होने चाहिए आसपास, यहाँ पे मिल जाए, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी हो, मजे करेंगे सारे मिल के. लेकिन फिर मैं, मुझे भाई मतलब नेचुरली ही मिल गया डाइवर्सिफिकेशन. एक कॉल आ रही है, पहले कॉल अटेंड कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू.
0: अरे भाई साहब, सुबह सुबह आपकी जो आवाज आए, ऐसा लगता है कि अभी आप रेखा जी को बुला लेंगे. रेखा जी भाई बताइए. जेबी साहब, क्या खा, क्या हाल है?
1: अल्लाह का बड़ा एहसान है. आप सुनाइए, सब ठीक है? सब खैरियत है?
0: बस जी बढ़िया एकदम. जया जी ने मुझे परेशान कर रखा है, बाकी सब अच्छा है.
1: माशाल्लाह, आपको आपको आवाज में बेस लाने की हम तो कोशिश करते हैं, आपकी तो ऑटोमेटिकली माशाल्लाह चल रहा है.
0: नहीं नहीं नहीं सर, आपकी है. बताइए जी भाई, क्या क्या कैसा नेबरहुड आप प्रिफर करते हैं वैसे इंटरनली कुछ?
1: मेरे जान, सबसे पहले तो मैं मतलब काम की वजह से कभी मतलब मैं नहीं फोन कर पाता, और मुझे बड़ा फील होता है कि समथिंग इज मिसिंग. इसके लिए माजरत. नंबर वन.
0: ओके.
1: नंबर टू, फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि मैं यहाँ पर दोहा में, तो नेबरहुड के अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो इंसान इंटरनल खुद अच्छा हो तो सारी अच्छे दिखते हैं. नंबर वन. ठीक है, आपका जो उनके साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. लेकिन जहाँ पर कॉकटेल हो, आई लाइक टू बी कॉकटेल,
0: डिफरेंट नेशनैलिटीज,
1: उसमें एक जिंदगी का, हाँ हाँ, उसमें क्योंकि अपने एशियन लोग तो माशाल्लाह यार, सुबह खाना कोई सुनता नहीं रहना, सुबह शाम देखते रहते हैं उनको.
0: साहब सुनो भाई, हाँ बताइए, थोड़ा
1: डिफरेंट.
0: मैं बड़ा,
1: बहरहाल मैं जहाँ पर रहता हूँ इस वक्त, हर तरह की नेशनैलिटी वहाँ पर. मैंने कहा ना कि वो मतलब लोग भी कॉकटेल हैं और नेबर भी जो ना सारे कॉकटेल ही
0: हैं. अच्छा, तो आप मतलब फेस्टिविटी में कुछ जाना पहचाना उनके बारे में, कुछ नया पता लगा आपको? जैसे बहुत सारी चीजें हम डिस्कवर करते रहते हैं, वी फिगर आउट किया, ये तो लोग बड़े यार अलग, बड़ा ही अलग सिस्टम है इनका तो. और कभी कभार जानने में बड़ा मजा आता है ना, समटाइम्स यू गेट अ कल्चरल शॉक. ऐसा कुछ हुआ आपको कभी, लगा कल्चरल शॉक?
1: बिल्कुल बिल्कुल. मतलब जिस तरह के देखे ना, मैं जिस तरह आउट ऑफ वक्रा में, उम गुलना में और बिन महमूद में भी रह के आया, जिंदगी गुजार के आया, लेकिन जो जिंदगी में ये पर्वत सिटी में देख रहा हूँ, यहाँ पर जिस तरह जिस लफ्ज को मैंने इस्तेमाल किया ना, कॉकटेल, यहाँ पर आपको बड़ी वैरायटी मिलती है यार, बड़ी वैरायटी मिलती है. आपको फील भी होता है कि यू आर इन पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, वट एवर इट इज, यहाँ पर भी है. आपको ये भी लगता है कि आप इजिप्ट में हैं, आपको ये भी लगता है आप यूके में हैं, आपको ये भी लगता है आप फ्रांस में हैं. ऐसे ऐसे मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना, उनका कल्चर जब देखते हैं. अब मेरे घर में फ्रेंच फैमिली आई थी,
0: अच्छा,
1: मुझे उन्होंने इनवाइट किया फैमिली के साथ, यानी कि एक एक्सपीरियंस था हमारा का यार,
0: क्या बात,
1: मेरा नेबर ही है वो.
0: क्या बात है?
1: तो,
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओके.
1: और बड़े हमसे भी मुतासिर होते हैं कि यार, हाँ, आप लोग मोस्टली वो लोग मुतासिर क्यों होते हैं कि यार, आप लोगों का जो उठना बैठना खाना पीना रख रखाव, हाँ, इसमें बड़ी मोहब्बत है, और वो इकरार करते हैं इस चीज का.
0: हाँ,
1: यार हम ये सीख रहे हैं आपसे कि वी लर्न फ्रॉम यू, यार इस तरह होना चाहिए.
0: बेशक बेशक.
1: अगर खाने पे बैठे हैं तो आप लोग वेट कर रहे हैं, वी डोंट वेट, हम खा लेते हैं, वी डोंट केयर.
0: आपका सिस्टम ये है कि आपको मतलब ऐसा है कि थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए देसी एनवायरनमेंट में. ऐसा लगता है ना कि आपकी तो सब नेचुरली है, घर जैसा फील हो रहा है, मुझे घर जैसा फील नहीं करना है, थोड़ा सा बाहर का दिखाओ, ये रहता है कभी कभी.
1: बिल्कुल एग्जैक्टली, मेरा भी ऐसा ही है. मतलब मैं पसंद करूँ इस चीज को कि जो जो डिफरेंस है ना, उसमें आपको कल्चर वाइज बहुत सी चीजें मिलती हैं, आपको देखने को मिलता है, आपको सीखने को मिलता है. हमारे और उनके कंपैरिजन आप करते हैं बहुत सी चीजें, क्योंकि हमारा जो कल्चर है नॉर्मल, मतलब जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो एज इट इज ही गुजार रहे हैं, वही चीजें, वही हलचल, वही हर चीजें.
0: ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं. ठीक है ठीक है, जबी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स का, जजाकल्ला, बहुत आर्टिकुलेट में आपने बता दिया. थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको.
1: आप भी अपना ख्याल करें. लव यू, लव यू मेरे भाई,
0: लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई, बहुत सारा प्यार. तो जेबी भाई ने बोला कि भाई उनको चाहिए डाइवर्सिफिकेशन. भाई मुझे पहले देसी लोग चाहिए थे आसपास, मुझे लगता है भाई देसी लोग चाहिए आसपास, अपने लोगों ने चाहिए ऐसा होना कि मतलब बढ़िया पूरी बिल्डिंग हो, उसमें इंडियन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और नेपाली भरे हुए, बढ़िया आपस में जो है चल रहा है एक्सचेंज, खाने पीने वाले लोग एक साथ. पर वेर एवर इट कम्स टू ये, मैं कभी, देखो मैं भाई ऑनेस्टली क्यों झूठ बोलूँ, एक ही मरतबा एक ब्रिटिशर के घर गया था मैं. मुझे ऐसा लगा मुझे यहाँ पे पढ़ के आना चाहिए था. अरे इतनी भारी भारी बातें मेरे घर, बाप रे ये क्या कर रहा है. वी ही स्टार्टेड टॉकिंग, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक. मैं कहा भाई मैं तो, मैं ये सुनता जी, मैं दलजीत नु सुनता हूँ.

like to listen to some Indian music, or you would like to listen to some hip hop. I heard you write rap. I go, yeah, rah, rah, rah. सच में ऐसा लग रहा था मैं अंडर प्रेशर आ गया हूँ, यहाँ तो पढ़ाई करके आना चाहिए. बट आई लव्ड इट. वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है. करंटली जैसे मैंने कहा कि मेरे जो पड़ोसी है वो इजिप्शियंस हैं, एंड वेरी वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस पीपल, वेरी हम्बल. एंड उनको बेचारों को मैंने उनकी ज़िंदगी में गोल गप्पा लेके आया. मैं पहले तो उन्होंने कहा ये तो बहुत स्पाइसी है, ये क्या आदमी है. बाद में फिर उन्होंने खुद चल के मुझसे बोला, ये बताओ वो जो गोल गोल सा था पानी में डुबो डुबो खाने वाला, वो क्या था. तो मैंने उनको बताया, मैं कहा इसको जो है यहाँ पानीपुरी कहते हैं, हमारी तरफ गोलगप्पे कहते हैं, पुचका भी बोलते हैं इसको. तो ना वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये एक और बार ट्राई करना है. फिर मैंने बिना स्पाइस के उन्हें खिलाया, एंड दे लव इट. तो आपका भाई जो है कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त करता. एक मैसेज है सिद्धर भाई ने लिखा है, इट वॉज अच्छा, ये अलीना ने मैसेज किया है. अलीना स्वीटहार्ट, उनका एग्जाम था अलीना का, वो लिखती है, इट वॉज ईजी बट वी हैड टू राइट अ लॉट, टुडे इज माई मैथ एग्जाम. बेटे अलीना मुझे बहुत डर लगता है बच्चे मैथ से, बहुत डर लगता है मुझे. आई नो कि आपको डर नहीं लगता है, आप माशाल्लाह बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. भाई अलीना के लिए सबके साथ दुआ करें, उसका एग्जाम बढ़िया जाना चाहिए, मैथ्स का एग्जाम है. अलीना स्वीटहार्ट, ऑल द बेस्ट टू यू, एंड इसका रिजल्ट बेटे कल जरूर बताना मेरे को कैसा गया. ओके फैसल भाई ने मैसेज किया है, भाई तला भाई जैसा पड़ोसी होना चाहिए. तला भाई को याद किया जा रहा है, तला भाई किधर हो, तला भाई जैसा पड़ोसी होना चाहिए, वैसे मिक्स पड़ोसी होना चाहिए. ओके खादिर अब्दुल्ला भाई लिखते हैं, सुनील दत्त और महमूद याद आ गए, कबीर भाई आपका नया टॉपिक छेड़ा है क्या. पढ़ो नहीं नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी पड़ोसन वाला नहीं है. अरे खादिर भाई आप तो रोमांटिक बना रहे हो उसे. वालेकुम सलाम तौफीक साहब, फोटो भेजिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही है फोटो. अब मैं सवाल एक बार दोहरा देता हूँ, सवाल बड़ा सिंपल है कि आपको किस तरीके का आस पड़ोस चाहिए. कुछ लोग ना, अब हमारे हाथ में नहीं होता, कतर में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपने पड़ोसियों को चुने, यू नो, या तो कंपनी आपको घर दे देती है या मजबूरन आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपको पता नहीं है कि आसपास क्या लोग रहते हैं. तो आप कैसा नेबरहुड चाहते हैं, कैसा आस पड़ोस चाहते हैं, एकदम देसी आस पड़ोस कि मुझे भाई पूरी बिल्डिंग में या पूरे इलाके में मेरे ही लोग चाहिए. या फिर आपको लगता है कि आपको मिक्स लोग चाहिए कि इसमें जॉर्डेनियंस, इजिप्शियंस, अफ्रीकन्स, अमेरिकन, ये सारे के सारे हों. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पहले ये था कि मुझे सारे के सारे देसी आसपास चाहिए थे, बिकॉज लगता है कि हम घर पे रह रहे हैं, इट बिकम्स ईजी. बिकॉज इट डजेंट मैटर कि मेरे मोहल्ले में मैं इंडियन हूँ तो पाकिस्तानी रहेगा तो मुझे अलग लगेगा ना, वो सेम ही लगता है, हम सब सेम ही है और हमारे गप्पे मारने का तरीका भी सेम ही है, सब कुछ सेम है. तो इट इज़ ईजियर इन अ वे. बट देन फिर ऑप्शन ऐसा हो गया कि ऑप्शन रहा ही नहीं, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन आ गई और नेबरहुड में अलग अलग तरीके के लोग हो गए. तो मैं कहा ये भी अच्छा है यार, आइडिया बुरा नहीं है, आइडिया बुरा नहीं है. मैं एक दफ़ा किसी घर में गया था और ये घर जो था पर्ल में था, सो यू कैन इमेजिन कि पर्ल में कैसा नेबरहुड होता होगा भाई, आसपास एक देसी आदमी नहीं. टेंशन में आ गया मैं, और क्योंकि उनका लाइफस्टाइल हमसे कुछ ज़्यादा ही अलग है, मतलब मेरे को थोड़ा सा अलग होना है, लाइक लिटिल बिट, कि तुम थोड़ा दो कदम चलो, दो कदम हम चल लें, भाई वो 10 कदम चल रहे हैं. हम चल ही नहीं पा रहे, तो वो भी एक अजीब सा है. तो मैं डाइवर्सिफिकेशन की भी मेरी लिमिट है, लाइक ये डाइवर्सिफिकेशन जो मंजूरा मिल जाता है मुझे वो ठीक है, बट सीधा कोई बोले कि जाओ पल्ड में जाके रहने लग जाओ तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी. तो ये भी है. पर आपको कैसा नेबरहुड पसंद है, क्या आपको देसी नेबरहुड पसंद है जहाँ पे सारे आपके ही अपने लोग हों, आपकी भाषा बोलने वाले हों, या आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, अलग अलग कंट्री के लोग मेरे इलाके में रहते हों, तब मुझे मज़ा आता है. सो एक भाई ने मैसेज किया है, एक भाई कहते हैं कि भाई मैं वो करके ऐसे इलाके में रहता हूँ जहाँ पर मोस्टली कतर रेसिडेंट्स रहते हैं और मुझे इतना अच्छा फील होता है. मैंने शुरुआती 2 साल तो किसी से कोई दोस्ती की नहीं, लेकिन पार्किंग के बहाने फिर दोस्ती होना शुरू हुई. एंड नाउ हाल ये है कि हमें वो इन्वाइट करते हैं, हम उन्हें इन्वाइट नहीं करते, सो यू नो वाई, बिकॉज हमें शर्म आती है. अरे भाई आती होगी, बट यू नो मैंने देखा है जो लोकल कतरीज हैं स्पेशली टूवर्ड्स, वो कहते हैं वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एंड हम्बल पीपल. भाई जो है ना, मतलब एक बात मैंने देखी है कतरी रेसिडेंट्स में स्पेशली लोकल्स इन वो केयर, वो नहीं सोचते मदद करने से पहले, उनको दिख गया ना सामने वाले को मदद की ज़रूरत है फिर तो वो खड़े हैं फिर आपके लिए. एंड इफ़ यू हैव अ नेबरहुड वेयर कतरी रेसिडेंट्स आर देयर, आई नो शुरुआत में लगता है कि मैं कैसे बात करूं इनसे, क्या बात करूं, कैसे बात करूं, बट देन एक बार बात हो जाती है तो इनके साथ दोस्ती भी बड़ी कमाल की होती है. एंड आई हैव ओनली 2 पीपल हु आई नो एंड दे आर कतर लोकल्स एंड बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह. तो 666-22107 पर बताइएगा कि आपको कैसा नेबर

0: हुड पसंद है एकदम जमा देसी, जहाँ पे सारे देसी हैं, अपनी बात हो रही है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं, नेपालीज है, या फिर आपको चाहिए डाइवर्सिफिकेशन कि मुझे तो भाई जॉर्डेनियन भी चाहिए, मुझे मेरे इलाके में इजिप्ट वाले भी चाहिए हैं, अमेरिकन्स भी चाहिए हैं, ब्रिटिशर्स भी चाहिए हैं, मतलब मैं धनिया वो देना चाहता हूँ अलग अलग किस्म का, तो आप किस तरफ हैं ये ज़रूर बताएं। एक बहन इन्होंने मैसेज किया है, इनका नाम आपने पहले बोला था मैसेज किया है, इनका नाम श्वेता है, श्वेता लिखती है कि कबीर भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बहन कैसी हैं आप, वो बता रही है कि कबीर आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि मुझे देसी पब्लिक में रहना है और मेरा बहुत बड़ा ग्रुप भी है, आई हैव लाइक 20-23 वुमेन इन माई ग्रुप, 23 औरतें एक बाप रे, कह रहे हैं वी डू किटी पार्टीज ऑन अ फ्राइडे यूजली एवरी 2 वीक्स, ओके तो हर 2 हफ्ते में आपकी किटी पार्टी होती है, 23 औरतें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये तो आपको पार्लियामेंट घोषित कर देना चाहिए इसको, ये किटी पार्टी कहाँ है, तो इसमें तो बहुत सारे घरेलू फैसले लिए जाते होंगे नहीं। और आगे कह रही हैं कि इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया है और अब हमारे 23 देसी वुमनिया के ग्रुप में 5 और मुल्क से भी हैं, देर आर 2 फिलिपिनोज एंड 3 फ्रॉम अदर कंट्रीज नेमली जॉर्डन एंड सीरिया एंड 1 इज़ फ्रॉम अफ्रीका सोमालिया, और अभी ऐसा लगता है कि हमने पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हम्बल पीपल, क्या बात है यार क्या बात है, तो अभी आपके ग्रुप में मतलब 26 लोग हो चुके, 28 औरतें हो चुकी हैं एक साथ, भाई साहब 28 उफ, तो ये किटी पार्टी को कोई टॉपिक में ऑफ नहीं जाना चाहता लेकिन 28 औरतें कैसे, मतलब ये कैसे कौन मैनेज करता सबको बुलाना बिठाना, बड़ा मुश्किल काम होता होगा ये, बताएंगे सो मच श्वेता जी कि आपने मेरी आंखें खोल दी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी अच्छी बात है, डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। ये तला मैंने मैसेज किया स्पेशल 26 स्पेशल 26 भाई 28 लोग हैं, आपकी भी मैथ्स ख़राब है यार, आपकी भी मैथ्स ख़राब है मेरी तरह, ये तला भाई को मेरे पड़ोस में रखो ये बहुत ज़रूरी है बट अमेजिंग श्वेता जी ऑल द बेस्ट टू यू। तो क्या मतलब कल्चरल एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता होगा उन्हें अकेला तो नहीं फील होता, मतलब मैं उनके लिए बोल नहीं सकता, मुझे पता नहीं है हाउ डू दे फील, मैं तो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो बाकी 5 औरतें हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, आप 23 औरतें हैं सारी की सारी देसी, तो उनको थोड़ा लोनली फील होता लाइक है, मैं आपको विलन नहीं बना रहा हूँ, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ कि कैसा मतलब कभी उन्होंने जाहिर किया है इस बात को। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आई एम हबीब, रिसेंटली आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर प्रोग्राम्स एंड आई रियली एंजॉय देम वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड इंस्पायरिंग कॉन्टेंट, जजाकल्ला हबीब भाई, इट रियली मीन्स अ लॉट, जो साइलेंट लिसनर्स या पहली मरतबा मैसेज करते हैं और ऐसा मैसेज करते हैं, इट्स ऑल लव, भर भर के प्यार, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे तो डाइवर्सिफिकेशन पसंद है पर पसंद होने के बावजूद मेरे नेबरहुड में मोस्टली पीपल आर फ्रॉम बांग्लादेश और उनके बीच में रह के मुझे बहुत बढ़िया खाना मिल जाता है और मच्छी खाना मैंने शुरू कर दी है भाई और भी चीज़ अच्छी बनाते हैं बांग्लादेश में, आप अब मटन ट्राई किया लोगों का, अरे क्या भाई सॉलिड एकदम। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर अंकल, आयशा हियर, आयशा स्वीटहार्ट हाउ आर यू, यस्टरडे वाज माय हिंदी एग्जाम वाज सो इजी एंड टुडे आई हैव इंग्लिश एग्जाम, बच्चे आपके लिए ईजी जा रहा है हिंदी एग्जाम, बहुत बढ़िया है, मैंने तो हिंदी एग्जाम दिया ही नहीं है तो मैं कह ही नहीं सकता, मगर वेरी नाइस वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट इंग्लिश एग्जाम के लिए, एकदम आयशा तोड़ फोड़ मचा के आना ठीक है, एंड विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, लेट्स सी सवाल क्या है पूछ रहे हैं तला भाई, सवाल ये है कि आप किस नेबरहुड में रहना पसंद करेंगे, एकदम देसी नेबरहुड जहाँ पर पूरी बिल्डिंग में पूरे इलाके में आप ही के मोहल्ले के लोग हैं, एक सेकेंड एक कॉल आ रही है फिर समझाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, जी नदीम भाई कैसे भाई, कल भाई मैं एक पहले मैं आप इससे पहले बोले बता दूं, मैं कल एक जगह पीसी देखने के लिए गया था इत्तफाकन, तो मुझे बड़ी याद आई नदीम भाई की, मैंने कहा नदीम भाई को इस हफ्ते पकड़ना ही पड़ेगा अब बताइए नदीम भाई क्या कह रहे थे,
1: मैं बोल रहा था ये सवाल यार मेरे लायक का तो है नहीं वैसे,
0: अच्छा अच्छा क्यों,
1: तो क्योंकि मेरे को मैं जिस सिविलियन में रहता हूँ 5-6 साल हो गए, मेरे को पता भी नहीं है मेरे नेबर्स कौन है भाई, कोई डोर भी नहीं खुलता है किसी का यार, और अपना थोड़ा सेपरेशन है मतलब विलेज से थोड़ा आउट हाउस टाइप होता है ना वैसा, ओके और मैंने उसको भी पार्टीशन मार दिया है, तो मेरा विले में आना जाना कुछ है ही नहीं, मैं शटर से आता हूँ, शटर से बाहर चला जाता
0: हूँ। तो बैटमैन बैटमैन है क्या, वो बैट के में वापस चला गया दुनिया बचा के। आपने तो गौतम शहर बना दिया है इसको।
1: तो वो एक्चुअली वो पूरा गेट से आने के लिए पूरा गाड़ी पार्क करके घूम के गाड़ी पार्क की शटर के पास, शटर हाँ। उठाया सीधा अंदर।
0: अरे यार फिर भी नदी में अगर अगर प्रेफरेंस होती, लाइक इफ यू हैड एन ऑप्शन।
1: देखो प्रेफरेंस होती तो अपनी देसी लोगों की होती मोस्टली।
0: अच्छा मोस्टली देसी लोग। हाँ।
1: अपना ये है कि जल्दी घुलते मिलते नहीं है लोगों से, अपने देसी लोगों में क्या है बात करना थोड़ा इजी हो जाता है,
0: आसानी
1: करना इजी हो जाता है, वो लोग आपको मतलब आप नहीं भी करो तो देसी लोग पहले पहल कर लेते हैं, थोड़ा दूसरी कंट्री वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं।
0: हाँ हाँ ये तो है, ये आसानी रहती है, खुद ही बात कर लेंगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ
1: और वो क्या है मतलब आते जाते सलाम दुआ हो जाती है।
0: हाँ
1: अदरवाइज अब मैं तो विले के अंदर से मेन गेट से एंट्री भी नहीं लेता, तो मेरी तो किसी से सलाम दुआ, बस वो एक बंदा है जो अपना इंडियन ही है, वो उसके साथ जो है वाईफाई शेयरिंग है तो उसका पता है कि हाँ वो एक इंडियन रहता है वहां पे।
0: भाई ये कौन सा खुफिया काम चल रहा है, तो गई यार। अच्छा उससे बातचीत है कि नहीं है, उससे भी नहीं है
1: मतलब वही है सलाम दुआ है, अगर जब दिख जाए पार्किंग मतलब गाड़ी में ही बाहर अगर पार्किंग वार्किंग करते हुए दिख जाए तो सलाम दुआ है, वरना विले के अंदर तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो आता ही नहीं हूँ मेन गेट से, शटर उठा के अंदर चले जाता हूँ, शटर उठा के बाहर आके गाड़ी में बैठ जाता हूँ।
0: वाह वाह वाह, आज फाइनली मेरी बात बैटमैन से हो रही है। ब्रूस वेन साहब थैंक यू सो मच, आपने आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात है रदीम भाई, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है आपको आपको मेरी तरह ही अलग थलग रहना पसंद है, पर ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। अच्छा
1: बिल्कुल प्राइवेसी,
0: बिल्कुल प्राइवेसी, ठीक है, एक घड़ी प्राइवेसी हो गई भाई। ठीक है रदीम भाई, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं भाई, थैंक यू सो मच, बहुत प्यार भाई को। तो मैं यही सवाल पूछ रहा था कि आपको कैसा नेबरहुड पसंद है, लाइक यू वांट देसी नेबरहुड, या आपको लगता है कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मेरे इर्द गिर्द मेरे आस पड़ोस मेरी बिल्डिंग में थोड़ा सा अलग अलग किस्म के लोग रहते हूँ, हैं तो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, खिचड़ी चाहिए आपको, या फिर आपको लगता है नहीं मेरे वाले लोग पकड़ा दो, मैं इंडियन हूँ लेकिन मेरे को पाकिस्तानी बांग्लादेशी नेपाली पकड़ा दो, इन सबसे बात करता रहूंगा, पूरे दिन बैठ के एक चौक चवारे बात करेंगे। तो आपको किस तरीके का नेबरहुड पसंद है? देखो अभी नदीमा ने बोला उनको देसी प्रेफरेबल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने लोग होते हैं तो बात करना थोड़ा आसानी हो जाती है, लड़ाई झगड़े में क्या होता है थोड़ा आसानी रहती है, समझ में आता है और और समझाने में भी आसानी रहती है। एक मैसेज है, वालेकुम अस्सलाम फराज भाई, फराज भाई कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, सब फ्लेवर्स आने चाहिए, साफ सीधी बात। कमाल भाई वालेकुम अस्सलाम, इरफान भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर, होप वेल, थैंक्स ए लवली डे, आई लव टू स्टे विद मिक्स्ड नेशनलिटीज़, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान करंटली, ऑन माई लेफ्ट फैमिली फ्रॉम इंडिया हैदराबाद, नेक्स्ट केरला, अपोजिट नेपाल एंड बांग्लादेश फैमिली बट मिसिंग अरब्स। तो आप बेसिकली रहे तो देसी लोगों में ही रहे हैं करंटली, पर आपको चाहिए मिक्स्ड नेशनलिटी, ओके तो बातचीत है इरफान भाई सबसे आपकी, या फिर थोड़ा सा कट्टुस चल रहा है। अवेश भाई ने मैसेज किया है, सलाम जून में बर्थडे का गिफ्ट देना चाह रहे हैं आप? भाई मुझे ही गिफ्ट मिल जाता है, हाँ जून की पहली तारीख से इवनिंग शो हो जाएगा, पर उसका नाम क्या है मैं नहीं बताऊंगा। एहतशाम भाई ने मैसेज किया है, भाई ये जो स्पेशल 28 के हस्बैंड्स का पता लगाना चाहिए, हाउ आर दे सर्वाइविंग? एहतशाम भाई, भाई जो अभी श्वेता ने मैसेज किया ना वो बतानी थी, 28 औरतें किटी पार्टी करती हैं हर दो वीक में, मेरा सलाम है ये कैसे सारी की सारी औरतें इकट्ठा हो रही हैं छत के नीचे हर दो हफ्ते में, इज क्रेजी फॉर मी, बियॉन्ड क्रेजी, क्योंकि अगर हम देखेंगे सारे मर्द हजरात को हर दो हफ्ते में एक बार बुला लिया जाए बस उसके बाद बुला के दिखाओ। तो सवाल ये नहीं है, इस पे मत जाना, ये कभी और डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको गॉसिप ही चाहिए तो ये देखो हैं गॉसिप करनी है और कोई काम नहीं है, लग गए किटी पार्टी के बारे में। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये है कि आपको नेबरहुड कैसा चाहिए, लाइक यू नीड अ नेबरहुड जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो, जहाँ पर भर भर के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं, या आपको देसी लोग ही चाहिए? एक मैसेज है, भाई साहब नेबरहुड कोई भी हो बस तमीज़ वाले हों, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले बहुत डाइवर्सिफाइड हैं बट हम में से कोई किसी को नहीं जानता। चेहरे याद हैं बस। ये आपका तो वाला सीन है, इंडिया में वो मस्जिद बनान होते ना, एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल है, नीले रंग की बुशर्ट पहनी हुई है, जिन साहब का हो जामा मस्जिद बटला हाउस से ले जाए। इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, ये लड़का नाम नहीं बता पा रहा है, एक मैसेज सलाम गुड मॉर्निंग देसी माहौल में, देसी माहौल में रहना चाहते हैं. अभी तो तीन लोगों ने बोला देसी माहौल में, बाकी सबको अलग अलग माहौल में रहना है. तब उसमें लिखते हैं लड़ाई झगड़ा समझने में आसानी रहती है, ये मज़े की बात है. कुछ वक्त पहले पड़ोस के युगांडन कपल से लड़ाई हो रही थी आधी रात को. मैं वो मीम वाले बिल्ली की तरह देख रही थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन देखने में मज़ा आ रहा था. क्या बात है क्या बात है. मैं बोलता नहीं हूँ बिकॉज यू नो पीपल माइट गेट ऑफेंडेड, बट मैं सबके एक्सेंट आ गए, मुझे सबके एक्सेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे रह रहे के. और क्योंकि करंटली मेरी बिल्डिंग इतनी डाइवर्सिफाइड है जिसकी कोई हद नहीं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं भाई मेरी बिल्डिंग में. एक देसी है, बाकी सब अलग अलग जगहों के. एक तो भाई अपना खुद को फैंटम समझता है, वो आते हैं गाड़ी अपनी ट्रक लेके और सीधा दे के मारता है वो दीवार में जब तक दीवार को गाड़ी छू ना जाए, और आड़ी ही खड़ी करता है. उस बंदे को सामने लाइन दिख रही है लेकिन वो लाइन के बीच में नहीं लगाया गाड़ी, ना मैं तो जी आड़ी टेढ़ी लगाऊंगा, मेरी मर्जी. तो ऐसे भी लोग हैं. तो मेरी बिल्डिंग में सारे, मुझे मिला के सारे फैंटम हैं और सारे अलग अलग कंट्रीज के हैं. बट वी हैव गुड पीपल अराउंड एंड इट्स रियली फन. लाइक पहले मुझे लगता था कि देसी लोग होंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी, बट मेरा नहीं मौका, एक ही मरता मिला था मौका. अभी करंटली डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है मेरी बिल्डिंग में, फिलीपींस से भी हैं, बहुत प्यारी फैमिली है, द वेरी वेरी वेरी नाइस पीपल. एंड उनके कल्चर को जब जितना मैं जानता हूँ लगता है भाई ये तो यार ज़्यादा ही ऐश करते हैं गुड ज़्यादा ही ऐश कर रहे हैं. एक मैसेज है, ये मैसेज क्या है मुझे शेब भाई ने. शेब भाई कहते हैं कि मेरे फ्लोर पे 5 फ्लैट्स हैं, फिलिपिनोज, अरब्स और इंडियन केरला से. 2 साल हो गए, सिर्फ 1 या 2 बार देखा दिखे हैं वो लोग. ये कैसे लोग हैं भाई ज़्यादा ही गायब नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मेरी बिल्डिंग में भी बहुत सारे फिलीपींस से हैं एंड वी हैव फ्रेंड्स विद देम. इट्स नाइस टू सी देम बिकॉज उनका कल्चर हमसे बहुत ज़्यादा अलग है. बहुत ज़्यादा अलग है भाई, बहुत ज़्यादा अलग है. वो ऐसे मज़े करते हैं ना, उनसे पूछो कि कहाँ गए थे, वी वेंट फॉर बॉलिंग, वी वेंट फॉर दिस, वेंट फॉर दैट. उनका भाई ये तो इतना एक्टिव, ये कौन सा इंजन ऑयल है भाई ये कौन सा इंजन ऑयल है. एक और मैसेज है इरफान भाई का, कह रहे हैं पहले के मैं एक कॉल उठा लेता हूँ. अस्सलामुअलैकुम, हेलो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है भाई? वालेकुम असलम, आवाज नहीं आ रही ठीक से
2: भाई. अब आ रही है?
0: अब आ रही है भाई.
2: भाईजान क्या हाल है आपके?
0: भाईजान मैं एकदम बढ़िया चल रहा हूँ. तला भाई आप सुनाए क्या हाल है?
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल. क्या चल रहा है सुबह?
0: भाई आस पड़ोस पे जरा सा घूम रहे थे तो मैंने कहा बात कर लेते हैं. तला भाई कैसा पड़ोस चाहिए आपको, आस पड़ोस कैसा चाहिए?
2: यार ये फूफो का लड़का नहीं सुधरेगा मेरा.
0: मैं तो ये बिल्कुल नहीं सुधरूंगा जब तक है जा,
2: घर में
0: जाने जा मैं नाचूंगी तला मैं नाचूंगी.
2: भाई मेरे देखो बात सुनो मेरी ना, ये जो देसी देसी गा रहे हैं ना, इनसे एक सवाल है मेरा. ये भाई मेरे जो छोड़ के आए हो तुम इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी दुआओं के बाद, तपस्याओं के बाद, ये अल्लाह ताला यहाँ से निकाल ले, आइंदा कुछ नहीं करूंगा फिर यहाँ पे आके वही मांग रहे हो तुम,
0: है ना?
2: देसी माहौल चाहिए, देसी माहौल.
0: नहीं मैंने नहीं मांगा देसी माहौल, मैं कह रहा हूँ मैं था कभी देसी माहौल में, मांगा नहीं मैंने.
2: भाई अपन को नहीं चाहिए भाई देसी माहौल भाई, जिस जंजालपुरे से निकले वही घुस जाए वापस, यहाँ पे वही मांग रहे कसम खुद आ गई.
0: तो आपका कैसा माहौल है
2: भाई? ढिंचैक पूजा वाला.
0: अच्छा ढिंचैक पूजा वाला, क्या मतलब? अच्छा अच्छा
2: तो आखिर आखिर बुलाऊंगा नहीं तुम्हें अपनी तरफ.
0: क्या कह रहे हो, फ्लैट खाली है?
2: तुम्हें बिल्कुल बोल तो रहा बुलाऊंगा नहीं कभी तुम्हें.
0: अच्छा फ्लैट खाली है तला भाई, बहुत बढ़िया यार.
2: फुल भाभी फुल इनसिक्योर है तुम्हारी.
0: अच्छा ऐसा तो, पर अलग अलग कंट्रीज के कहाँ कहाँ के लोग रहते हैं?
2: ऐसा भाई वर्सेटाइल
0: है.
2: हाँ डाइवर्सिटी है भाई बेहतरीन वाली.
0: अच्छा
2: अरब भी है, एक दो यूरोप साइड के भी हैं, ये फिलिपीनी साइड के भी हैं.
0: ओहो अच्छा कौन सा इलाका है तला, मतलब बताना
2: चाहिए
0: इलाका भी, इलाका अगर बता पाए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी. मतलब
2: आप पहुंच जाओगे
0: थोड़ा सा. पहला वर्ड, पहला वर्ड
2: पहुंच जाओगे.
0: अच्छा हिंदी इंग्लिश पहला वर्ड
2: ए
0: ए. अच्छा ये क्या बात है? एक और बड़ा बताओ, कितने कितने कितने वर्ड है, कितने वर्ड का है? कितने वर्ड का है, कितने वर्ड है उस पे?
2: बता दूं
0: मैं तुम्हें, अरे बता दो ऐसा मत करो प्लीज,
2: तुम्हारा दोस्त तुम्हें सब सब जानता हूँ, शातिर आदमी थप्पो के लड़के तुम तुम मेरे घर जाने से ऑफिस से मैं घर जाने से पहले तुम बाहर खड़ता ला भाई कैसे हैं
0: सलाम अलैकुम तला भाई कैसे हो आप भाई अच्छे हैं पर मुझे बताओ प्लीज बताओ जगह का नाम बताओ प्लीज जल्दी से
2: ये वो स्कूल कॉलेज में होता था इसकी ये काली वाली मेरी पीली वाली मेरी तूने पहले ही बोल दिया भाई ये दो लाल तो मेरी है बाकी अपनी बात करो
0: पहले बताओ कौन सा इलाका इलाका बताओ इलाका जल्दी से
2: भाई मैं मशाफ में रहता हूँ नए ये जो इंसान का नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उधर
0: अच्छा
2: वहाँ पे अभी ना रश कम है और लोकेले की बड़ी जबरदस्त आई हुई है
0: अच्छा ऐसा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो शिफ्टिंग का कोई सीन नहीं है आपका क्या बात है मतलब तला भाई को क्या मिला है कि भाई कोई कोई आपको बोले भी कि जाओ तला भाई पर्ल में शिफ्ट हो जाओ तला भाई कह रहे नहीं मेरा खजाना छुपा है इस जमीन के नीचे मेरा खजाना है मैं ये घर नहीं छोड़ पाऊंगा
2: मेरी बात में छोड़ जाएगी खुशियों से बहुत खुश है ये अगर ये खुशियां जाएंगी साथ तो मैं चले जाऊंगा
0: अच्छा वैसा है
2: मैं नहीं जा रहा
0: ये जो हजारों साल बाद एक्सकेविशन होगा उसमें आप ही निकलेंगे उस जगह से
2: बस पोर्शन निकलेगा अपना मां बाप कुछ नहीं एक हुआ करता था
0: एक हुआ
2: से पहले
0: क्या बात है तला भाई वेल डन वेल डन
2: मैं जो ना अगर एक्सकेविशन की जाएगी ना डायनासोर के ऊपर बैठा हुआ ना सवारी करता हुआ मिलूंगा ये क्या वो
0: कह रहे ये रहे अर्ली मैन आपके लिए एक मैसेज आया भाई तुम्हें एहतशाम भाई कह रहे हैं कि ये भी वहीं रहते हैं ब्लॉक फाइव में
2: है?
0: हाँ
2: ये कहाँ से मिल गया नए नए भाई एहतशाम भाई अबे क्या कर रहे हो एहतशाम भाई
0: एहतशाम भाई थैंक यू फॉर द एड्रेस आपने सिर्फ इलाका बताया उन्होंने एड्रेस दे दिया
2: नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ब्लॉक ब्लॉक नहीं होता हमारा
0: अच्छा
2: बिल्डिंग होती है बिल्डिंग
0: बिल्डिंग होती है क्या ऐसा ठीक है नहीं मैंने कल मैंने जो कल है आपकी कॉल सुनी थी महफिज बहन से जब आप बात कर रहे थे मुझे पता लगा कि मतलब ये कराची कराची वाली बात कर रहे हैं अच्छा लगा मुझे भाई नाइस
2: वो अलग ही दोन है अलग भाई आपके भाई ने ना वो अपना अपना केस डिफेंड किया है वहाँ पे सरवर भाई के शो में भी
0: पहले मुझे बताओ ये तला भाई के बारे में किसने पीठ पीछे बात करी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं तला भाई कैसे बात हुई मतलब क्या सीन हो गया ऐसा जो पीछे पड़ गए आपके
2: मैंने भाई मैंने करा भाई मैंने कहा वो परसों तरसों बात हुई थी एक टॉपिक पे महवेश शो में
0: हाँ हाँ।
2: तो भाई लोगों ने तो भाई ऑफेंसिव फील करना शुरू कर दिया मैंने ये कौन सा तरीके का रहा है महवेश ने कहा कोई मसला नहीं है भाई की बहन निंदा है अभी कराची वाली
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: फुल पटक पटक के दिया
0: लाइट रहने का लाइट रहने का पब्लिक लाइट रहने का
2: मेरी बहन सीने में गोली आएगी भाई के लिए
0: क्या बात है
2: ये कब हुआ तभी नहीं हुआ
0: नहीं दुनिया थोड़ी सी सॉफ्टी हो चुकी है तला भाई तो इसलिए तैयार नहीं है समझ रहे हैं
2: मिंखों का दौर है मेरी यार मिंखों का दौर
0: क्या करे क्या करे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं हम हैं अभी जिंदा है
2: बस तुम्हारा हाथ सीधा रहना चाहिए तुम्हारा हाथ मुड़ा हुआ मिला ना मुझे किसी दिन में
0: नहीं नहीं वो तो नहीं होगा तला भाई जब तक है जा मैं नाचगी तला मैं नाचगी मॉर्निंग शो और द इवनिंग शो डोंट वरी
2: बस बस बस जो चेहरे पर दाढ़ी रखी है ना उसी की इज्जत रखनी है और
0: कसम चार सफेद वाल की दाढ़ी कसम उसकी जाने नहीं
2: देंगे पुराने पुराने आदमी चार
0: प्राचीन
2: तो समझो कलर होने से रुक गए होंगे
0: प्राचीन युग से है हम प्राचीन युग से इतना
2: अभी तो बाबू चोना चुन के आया हूँ मैं
0: और क्या अभी तो बालक हूँ मैं बालक
2: बिल्कुल
0: आपके लिए और मैसेज कह रहे हैं तला भाई को बोले कि सबको ऐसा माहौल सबको ऐसा ही माहौल चाहिए ये फराज भाई कह रहे हैं और ये
2: जान रियाल खर्च चुके हैं रियाल बेबी तुमसे ना हो पाएगा
0: फराज भाई मैं कॉन्टेक्ट करवाता हूँ
2: देना पड़ता है इन सबके लिए
0: कुर्बानियाँ
2: अरे बहुत कुछ मेरी जान कुर्बानी तो छोटा लफ्ज है
0: अच्छा छोटा लफ्ज है एक और मैसेज आया आपके लिए बहरीन से मैसेज आया बाय द वे ये नाजिज बहन ने मैसेज किया वो कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग तला भाई इज राइट वर्सेटाइल होना चाहिए नेबरहुड ये आपके लिए मैसेज
2: है नाजिज बहन आपके लिए ना बस
0: दुआएं
2: कभी भी जान ले लूंगा मैं
0: क्या बात है ये भी सही है कुर्बानी देनी पड़ेगी ना तुम्हें तैयार हो कोई दिक्कत नहीं
2: कुर्बानी हर एक कुर्बानी मांगती है
0: वैसे भी आने वाला है दिन तो ठीक है कुर्बानी।
2: अरे वाह
0: वाह वाह, क्या देखा है, कनेक्शन देखा, देखा क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। रेज्यूमे में लिखूंगा मैं जाके, पर ठीक है तला भाई, थैंक यू सो मच। कौन सी आवाज निकल, कैसी वाली आवाज निकलता है आपकी, कैसी आवाज है बकरे की, प्लीज एक नहीं हुआ
2: है,
0: वॉइस नोट भेजने मुझे,
2: वो वाला हूँ वो सेंसर बोर्ड में चला जाएगा।
0: अच्छा, तो मुझे वॉइस नोट, मुझे वॉइस नोट भेज देना, ठीक है,
2: वो वाला
0: ठीक है, डन डन, मुझे भेज दो वॉइस नोट, भेज देना, मैं सुन लूंगा, ठीक है मेरा
2: भाई, तू से गालियां देंगे, बहुत लंबी बात है, घरेलू।
0: अरे नहीं नहीं कोई मसला नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई,
2: चलो
0: भाई, चलो ओके भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई। तो तला भाई के बाद जो है मैसेज आया था श्याम भाई का, तो श्याम भाई कह रहे हैं भाई तला भाई कराची गुलशन इकबाल से लग रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता है। बाकी एक मैसेज आया है तबस्सुम बहन का, लिखते हैं देसी लोग होंगे तो बढ़िया है, यहाँ पे 5 फैमिलीज हैं, किसी को कुछ बोलना हो या शिकायत हो तो पेपर पे लिख के गेट में चिपका देते हैं। अरे यार, somebody wrote this post, wrote this and posted, I know who stole my white shirt and towel, please return it, keep it back where you picked it. ये actually में लिखा गया था बस, मैं लिखते हैं आगे लिखा था, after some days somebody else wrote, we know who feeds stray cats in the compound and makes it dirty, the clothes are fallen behind the next wall. मैं और मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं ऐसी कहानियां पढ़ते हैं। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त पास पड़ोस है आपका, वेरी इंटरेस्टिंग। आई गेस इट वॉज युगांडन एंड साउथ इंडियन गाइज डिस्कसिंग, क्या बात है। दो बहुत ही अलग किस्म की फोर्सेस को, बैटमैन का एक डायलॉग था ना, वैन एन अनमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स, इन दोनों को जो भिड़ाया जा रहा है, लिख लिख के बात हो रही है। क्या बात है, गुलशन इकबाल 6, क्या बात है, सही पहचाना, तो ऐसा शाम भाई आपने सही पहचाना इनको। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सलाम भाई, कैसे, पर तबस्सुम मैन प्लीज़ लेट मी नो, हाँ ये बहुत बढ़िया नेबरहुड है आपका, तो ये तो इंटरेस्टिंग लड़ाई है। नदीम भाई कहते हैं खालिद, अच्छा, इनके बाद नाजिया बहन वालेकुम अस्सलाम, आया मैसेज कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो देसी अच्छे लगते हैं, मेरे विला में सारे देसी हैं, और सबसे अच्छी दुआ सलाम है, वेरी गुड, अगर देसी है दुआ सलाम होना ज़रूरी है, ये मैसेज किया है वसीम खान साहब ने। और इनके बाद क्या मैसेज है, इनके बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम तला भाई फ्रॉम अलखोर, ये लिखते हैं भाई डिफरेंट नेशनलिटीज़ होनी चाहिए, भाई कतरी अगर हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बाकी सब अच्छा है, बाकी सब चंगा सी। तो आप बताइए भाई कि आपके हिसाब से कैसा नेबरहुड आपको चाहिए, मतलब आस पड़ोस कैसा होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए कि अलग अलग मुल्कों से लोग आए हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं वो वाले थोड़े से देसी होने चाहिए अपने वाले। फराज भाई ने एक और मैसेज किया है, मुझे भी कुछ साल गुलशन इकबाल 2 में हुए हैं, क्या बात है फराज भाई, ये सारे कराची वाले वहीं पे रहते हैं क्या? एक और उसी सेम एरिया से आए, कराची गुलशन इकबाल 13C, बाप रे कराची का पूरा मोहल्ला उठ के ही आ गए कि ये गुलशन इकबाल है क्या, मुझे देखना पड़ेगा, क्या ज्यादा बड़ा एरिया है क्या, सारे के सारे वहीं के मैसेज कर रहे हैं मुझे आज, कराची वालों अस्सलाम वालेकुम, आई गेस सारे ही कराची के सुन रहे हैं, क्या बात है। तो ये जो मेरा सवाल है आई होप आप तक पहुंच गया होगा, तो मुझे बताइएगा 666-22-107 पे। एंड एक छोटा जहा ब्रेक में लेता सी, उसके बाद हम बात को जो है आगे बढ़ाएंगे, स्टे ट्यून्ड।
3: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो,
3: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम,
6: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे।
3: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
6: ऑन पिच परफेक्ट,
3: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
6: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
3: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, only on FM 107, दिल से देसी।
6: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए, जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, वेलोसिटी को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ, जहां सोच बदलती है, आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी। कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 PM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन FM 107। Stay tuned and stay inspired.
3: आप सुन रहे हैं Wake Up with Doha Wala Kabir, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम, मैं Doha Wala Kabir। वैसे तो अभी जो है खातून ने बताई दिया है, पर मैं ब्रेक लेता नहीं हूँ यूजुअली। अगर मेरी आवाज थोड़ी सी नीजल वाली हो रही तो समझ जाइएगा थोड़ा सा साइनस का सर है। इट विल बी फाइन, 10 मिनट के अंदर वापस आवाज नॉर्मल हो जाएगी। अभी मुझे हिमेश रेशमिया मान की आशिक बनाया आपने, सुन लीजिए। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपको नेबरहुड कैसा चाहिए, देसी नेबरहुड चाहिए जहाँ पे सारे के सारे देसी ही रहते हैं आसपास, या फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन पसंद है? नहीं जी, अलग अलग मुल्कों के लोग तो होने चाहिए। तो अभी वोटिंग ऐसी चल रही है कि लोग जो है देसी की तरफ भी बहुत ज़्यादा हैं। एक भाई ने और मैसेज किया है, और ये मैसेज आया मुझे नौमी भाई का। नौमी भाई कह रहे हैं कि देसी छोड़ के पाकिस्तान से इधर आया हूँ, अब देसी चाहिए, ये क्या बात हुई? अच्छा भाई, गुस्सा नहीं, ऐसा लग रहा है भाई को शिफ्ट कर दिया हो। गुस्सा नहीं। आदिल भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, नेबरहुड कोई भी हो, बस दिमाग का दही करने वाले ना हो। आदिल भाई वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक सवाल पे ध्यान दीजिए ना। सवाल क्या है उसके हिसाब से बताइए एक बार ही ज़रा। ताहिर भाई ने मैसेज किया, ताहिर भाई लिखते हैं, वी लिव इन अ कंपाउंड प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, सो ऑल फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, परफेक्ट सेफ प्लेस फॉर किड्स टू ग्रो एंड एन्जॉय, सेम वाइब एज वी यूजर हैव इन आर मोहल्ला इन चाइल्डहुड, विजिटिंग ईच अदर हाउसेज, लंच हेयर देयर। नहीं वो तो ठीक है ताहिर भाई, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नेबरहुड आपको देसी ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर डाइवर्सिफाइड, ये पूछ रहा हूँ मैं। शिव भाई ने मैसेज किया, सलाम कबीर भाई, जस्ट ट्यून इन, व्हाट्स द टॉपिक, आई जस्ट हर्ड यू टॉकिंग अबाउट गुलशन इकबाल। ये कराची का एक सेंट्रल एरिया है, 1.2 मिलियन पॉपुलेशन है, मोस्टली मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड, दस दे डोमिनेट द जॉब मार्केट। ओके, नाउ आई नो, थैंक यू सो मच शिव भाई, मीन्स अ लॉट, ये आपने बता दिया मुझे। एक मैसेज है, सलाम कबीर भाई, पड़ोसी डाइवर्सिफाइड हो तो भी सही है, लेकिन दो तीन देसी फैमिलीज हो आसपास तो ज़्यादा अच्छा है, सिमिलर कल्चर वाले लोग ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ये सादिक भाई कह रहे हैं। तो अभी देसी वोटिंग ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है, तबस्सुम बहन लिखती हैं, वो हमेशा ही इन दो लोगों में रहता है। तबस्सुम बहन, आपको तो एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, आपके तो मोहल्ले में OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है। इरफान भाई कह रहे हैं, जैसे हैदराबाद की चार मीनार वैसा ही कराची का। अच्छा, ओके, गुलशन इकबाल, दैट मेक सेंस नाउ। एक मैसेज है, मुल्क से बाहर रहते हुए फील भी होना चाहिए कि अपने मुल्क जाने को दिल ना करे, देसी के सास बहू के मसले ही डिस्कस, डाइवर्सिफाइड विदाउट मैनी देसी, ओनली 2 पाकिस्तानीज एंड 4-5 इंडियन फैमिलीज, रेस्ट मोस्टली यूरोपियन एंड अरब। पर्ल, आप पर्ल में रहते हैं इमरान भाई? इमरान भाई विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड? नहीं मैं शुरुआत में जब आया था तो मेरे दिल में था कि पहाड़ में रहने के लिए कितना मजा आता होगा। फिर मैं एक दो बार लोगों के घर गया वहां पे और मैं डर गया, मैंने कहा नहीं बाबू आप ज्यादा देसी है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। मैंने अपने आप को इस सिरे से खारिज कर दिया भाई। खादिर भाई कहते हैं कबीर भाई आई प्रिफर डाइवर्सिफाइड नेबरहुड्स। ओके मिक्स नेबर्स, ये आतिफ भाई ने लिखा है एंड देन इनका मैसेज आया है कि अस्सलाम वालेकुम भाई देसी ही बढ़िया है, मन लगा रहता है इनके साथ। ये मुशीर आलम भाई कह रहे हैं, तो अभी देसी पब्लिक कह रही है देसी नेबरहुड चाहिए, बहुत अभी उनके मुकाबले कम लोग हैं जो कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड नेबरहुड चाहिए। तो सवाल यही है, आपको क्या देसी पब्लिक चाहिए अपने मोहल्ले में यहाँ पे कतर में रहते हुए, या आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि भाषा समझ में ना आए पर वाइब मैच होनी चाहिए।

0: FM 107, टाइम चेक।
1: आपको तो पता ही मैं क्या कहने वाला हूँ। 7:02 घड़ी में हो रहे हैं और आप भी मेरा 7:02। ये क्लीशे और ये घिसा पिटे डायलॉग मैं तब तक मारता रहूंगा जब तक मैं मॉर्निंग में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल आ गई है आधे के साथ ही। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीरा मेरे भाई,
1: कैसे हो? भाई मैं तो बड़े भाई।
2: अब तो बस यही डायलॉग बोलना पड़ेगा कि मेरे पास तो माँ है।
1: अच्छा तो विवेक भाई कैसा, मतलब आपको लगता है नेबरहुड जमता है आपको?
2: देखो मैं एकदम प्रैक्टिकल एकदम एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो छोटी मतलब ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो जब मैं कतर में पहली बार आया था तो मेरी सोसाइटी में मुझे देसी लोग मिले, मतलब अपने लोग, इंडिया पाकिस्तान के लोग तो मुझे अपने ही सब अपने गांव घर के लोग समझ आते थे, ठीक है। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, और कुछ मेरे जहां से मैं हूँ पर्टिकुलर इंडिया से वहां के भी लोग मिले, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ओए होए अब तो मजा ही आ गया, अपना गाँव बचा लेंगे। बट वो सबसे बड़ी गलती है, और ये आप अगर फैमिली के साथ रहते हो ना तो ये जो मैं सजेशन दे रहा हूँ तब ज्यादा जो है वो आपको अफेक्ट करती है। तो अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो डाइवर्स सोसाइटी में अगर आप रहोगे दैट इज फार बेटर देन कि आप जो है देशियों के साथ।
1: ये जो साइंस है मुझे किसी और ने बोली थी, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या आपका आप क्या लॉजिक इस तरफ क्यों है?
2: मैं एकदम क्लियर प्रैक्टिकल और मतलब झेला हुआ लॉजिक है। मैं जब देशी लोगों के साथ रहा था तो पहले 15-20 दिन एक महीना बहुत मजा दे, उसके यहाँ का खाना मेरे यहाँ का खाना, फिर जब वाइफ वाइफ सब मिलती है खूब दोस्ती हो जाती है, ठीक है। और एक महीने के बाद जो है ना वो दोस्ती बवंडर में बदल जाती है।
1: ओहो, ओहो।
2: क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है जजमेंट वाला कल्चर।
1: वो तो है।
2: जज बन जाते हैं सबके सब। अरे आप गुड मॉर्निंग भी करेंगे तो सामने वाले बोल देगी या बोल देगा कि मतलब ये है कि देखो इसको पता है, इसको तो सलाम करने भी नहीं आता है, जाहिल गवार फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। और आप भी बोलते हो, आप जज नहीं हो, मतलब हमारे यहाँ का सबसे सॉलिड प्रोफेशन जज है, कोई जज बन जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद उस वॉर में फंसता है घर का मर्द,
1: okay.
2: उसकी दोस्ती अब देसी लोगों से हो रखी होगी। लेकिन यही जब देसी लोग मिक्स कल्चर और डाइवर्स कल्चर में रहते हैं, जहाँ मान लो यूरोपियन है, अमेरिकन है, इंडोनेशियन है, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, हम उनसे सीखते हैं, है ना, कि गुड मॉर्निंग करना है, स्माइल करना है, रहना कैसे है, एक दूसरे को ग्रीट कैसे करना है, घर पे बुलाना। तो ये जो हम सीखते हैं ना वो मैंने सीखा, और मेरे साथ जो लोग थे दूसरी सोसाइटी में गए उन्होंने भी सीखा, हमारे अंदर बहुत बदलाव आया।
1: हाँ नहीं, ये मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, तो जो आप बोल रहे हैं मैं अग्री करता हूँ उस बात से। आई थिंक ये बहुत
2: ये
1: और ये वो वाली बात भी है ना विलेज भाई, जो हम मानने को तैयार नहीं है एक्चुअली में ना, बहुत सारे लोग हमारे मानने को तैयार नहीं है।
2: एक वर्ड आजकल बहुत फेमस हो रहा है ना, सिविक सेंस वाला बात हो रहा है। मैं लॉन्ग ड्राइव में नहीं जा रहा, बट

0: हमें ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सिलेक्शन को नहीं आता, हमें थोड़ी कमी है, किसी और में फलाने में थोड़ी सी कमी है, लेकिन दोनों कमी जब जान जाते हैं तो उससे एक बढ़िया सोसाइटी बनती है, उसी को डाइवर्स सोसाइटी बोलते हैं, और ऐसा रहना चाहिए,
1: ऐसा रहना चाहिए
0: सोसाइटी में। लेकिन जो बैचलर आपको बोल रहे हैं ना देसी वाले सुन रहे हो आपके लिस्ट पर, वो सही बोल रहे हैं, वो उसी सोसाइटी में रहे तो बेहतर है, उनका मजा है, क्योंकि शाम में जाके वो सिर्फ गुड मॉर्निंग और स्माइल से जिंदा नहीं रह सकते।
1: तो बेसिकली बैचलर्स अगर है अभी सुन रहे तो उनको देसी नेबरहुड मिलना चाहिए, और जो फैमिली के साथ रह रहे हैं उनको थोड़ा डाइवर्सिफाइड मिलना चाहिए, ज्यादा बेहतर है, कलेश कम होगा।
0: बिल्कुल एकदम सत्य वचन और एकदम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल बात बताए।
1: ओके, ये बड़ा अच्छा आपने पुट किया, बहुत बढ़िया विलेज भाई, क्या बात है, दिन ब दिन बड़ी गाड़ी माशाल्लाह, बड़ा फोन, इतनी बड़ी बड़ी बातें, विलेज भाई क्या चल रहा है? पीनट पीनट बटर पीनट बटर, हाउ कैन आई फॉरगेट पीनट बटर यार।
0: तुमने तुम्हारे शो के वजह से आज एक गड़बड़ हुई है, तो वो भी मैं अपनी बेइज्जती करवा ही लेता, अच्छा लगता है कभी बार बेइज्जती करना।
1: क्या हुआ?
0: गाड़ी में बैठा और ऑन करते 107 FM फोन रहता है, और मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाता किस टॉपिक पे बात हो रही है। मैं खाने का पूरा बैग भूल गया, मैं आज जो पीनट बटर था वो भी गया, अब कॉफी में मैं सिर्फ कॉफी पी रहा, और किसी के रूम में जाके कह रहा हूँ भाई चीज मिलेंगी क्या,
1: मालिक चिप्स खिला दो। नहीं भाई, बहुत मोहब्बत है विलेज भाई,
0: थैंक यू
1: भाई, ओके मेरा भाई, ख्याल रखो अपना, ओके अल्लाह हाफिज। तो विमलेश भाई के बाद कुछ और मैसेजेस हैं इसी बात पे, एक मैसेज आया है तौकीर अहमद भट्ट साहब को, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, कबीर जानी आपने अपने को तो नेबरहुड में कॉकटेल मांगता है भाई, पाओ तो अपने कंट्री में भी मिल जाता है। भाई ये तो आप मुंबई वालों के साथ रह रहे हैं आजकल, ऐसा लगा कि लिटरली कोई मुंबई वाला कोई बात कर रहा है। एक मैसेज है योगेश भाई का, कह रहे हैं कि कॉल सी, ओके सॉरी गुस्से में कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉल कर रहा हूँ ऐसे नहीं बोलो, मजाक कर रहा हूँ, लेट मी कॉल यू अच्छा, अरे मैं जानता हूँ मैं मजाक कर रहा था, आई नो यू ड्राइविंग, आई वाज जस्ट जोकिंगली सेइंग दिस योगेश भाई। गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग कबीर भाई, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड योगेश भाई, आप बताओ कैसे हो मेरा भाई?
2: नो, आई जस्ट ट्यून्ड टू योर एफएम, चेंज टू म्यूजिक टू मोबाइल
1: जी,
2: बट मैंने सुना वो डाइवर्सिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और आपके पहले भाई ने जो डिस्कस करा
1: भाई, सुबह सुबह आने का ही आपको, ये छह से नौ ये ऑक्स केबल को निकाल के फेंक दो भाई, अब बात करो योगेश भाई।
2: गाड़ी में तो मोबाइल में मैप रखना है, ट्रैफिक देखना है,
1: हाँ तो देखते देखते मुझे बैकग्राउंड में सुनो, यू समझो मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे ही समझ लीजिए,
2: फ्यूचर में शायद ये के साथ वो भी हो जाएगा।
1: बिल्कुल मेरा भाई। तो योगेश भाई कैसा नेबरहुड पसंद है भाई को, डाइवर्सिफाइड पसंद है क्या, इधर देसी पब्लिक चाहिए थोड़ी सी?
2: नहीं, पर्सनल लेवल पे मैं बताता हूँ कि कॉर्पोरेट लेवल पे भी डाइवर्सिटी ये बड़ा टॉपिक है, एंड आई एग्री व्हाट प्रीवियस कलीग हमारे जो उनका नाम मैं भूल गया,
1: विमलेश भाई हाँ मतलब ऐसा क्या है ना कि एज अ होल इन जनरल क्या होता है ना कि आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है ना, वो वैसे पूछ रहा हूँ।
2: करेक्ट है, मैं भी ऐसे कम्युनिटी में रहता हूँ दोहा में, जो मतलब बेसिकली ये कंपाउंड ही है।
1: अच्छा,
2: आई डोंट वांट टू टेक द नेम इन डिटेल।
1: हाँ हाँ प्लीज।
2: बेसिकली क्या है कि बहुत पुराना कंपाउंड है, और वहाँ पे बहुत से इंडियंस 80% 90% है, तो जो आपका विनेश भाई बोल रहे थे वो बात सही है, बट वो आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ कितना क्लोज रखना है, क्योंकि मान लो आपके नेबर है वो बोल नहीं सकता कि वो आपके जगह से या फिर मतलब दूसरा स्टेट से है, जैसे मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ, तो आई एम बॉर्न आउट ऑफ मुंबई है, तो हमको हमारा कल्चर अलग है, आप मुंबई में देखा है डाइवर्सिटी।
1: बिल्कुल भाई, आप लोग तो एकदम
2: जैसे हाँ, जैसे मेरे ऑफिस लेवल पे भी मेरे कलीग पाकिस्तान से है, कुछ कराची से, वो लोग भी डाइवर्सिटी है इसमें है, और बेसिकली जैसा हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका नेबर कोई भी रहे, आपको आपको प्यार मोहब्बत से रहना है, और दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा जिसके क्लोज जाओगे तो डेफिनेटली ये सब चीजें होंगी।
1: पर एक एक यहाँ पे एक जो मेन बात है ना, वो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका पर्सनल प्रेफरेंस कुछ है क्या इसमें, कि आप कुछ मतलब इसमें प्रेफरेंस रखते हैं क्या, प्रेफरेबल क्या रहेगा?
2: नहीं, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, तो हालांकि मुझे कम्युनिटी कंपाउंड में मुझे तो अभी 10-12 साल हुए हैं।
1: हाँ।
2: और उसके बाद कतर में भी अभी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के आसपास हुए, तो मैं बैचलर रहता था, तो डेफिनेटली हम लोग ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे डाइवर्सिटी और कम्युनिटी लेवल भी अच्छा है।
1: अच्छा।
2: बट आई प्रेफर कि अगर बैचलर हो तो आप कम्युनिटी में रहो, और अगर फैमिली के साथ हो डाइवर्सिटी और ऑप्शन मिलता है तो ले लो। हाँ। अदरवाइज फॉर मी आई डोंट हैव, मतलब मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि हम लोग का कैसा है कि किसी के नेबर या कोई भी उससे क्लोज नहीं रहे, हम लोग इतने क्लोज भी नहीं है कि ठीक है, मतलब खाना खाना हुआ है, जो डिश बनाई यहाँ से वहाँ गई है, वहाँ से आ गई है।
1: हाँ।
2: या फिर बट डेफिनेटली जो कि होता है कि आप मतलब
1: बर्बाद कर दूंगी। ये कुछ वैसा सीन है।
2: ये चीज है कि मैं आपको बताता हूँ, एक कहा होते मराठी में, आप जैसे हिंदी में मुहावरे बोलते हैं या फिर उर्दू में औलादवार बोलते हैं, तो उसमें ऐसा है कि दुरून डोंगर साज है, मतलब दूर से आपके जो पर्वत है आपको ठीक है, मतलब आप दूर से रहो, ज्यादा क्लोज मत रहो। ये चीज आप कहीं पे भी जाओगे, आपके रिलेटिव के साथ रहेंगे, आप किससे भी, आप जितना है उतना ही रखो, मतलब ज्यादा क्लोज जाओगे। आपके भाई बहन और वो अलग चीज है, उनमें भी होते कुछ कुछ, लेकिन मेरा तो अलग मामला है, मेरे बचपन से मेरे भाई और बहन बहुत क्लोज है, तो किसी के बीच में ये भी हो गया तो भी हम लोग इतना ये नहीं है, हम लोग बहुत क्लोज रहते हैं। लेकिन कम्युनिटी लेवल पे वही है कि आपको जितना हो सके आप काम से काम रखिए और ज्यादा क्लोज मत रहिए, वो भी एक बात है, उससे भी प्रॉब्लम है।
1: ठीक है डन डन डन योगेश भाई, समझ गया मैं आपकी बात, थैंक यू सो मच।
2: और आपको आपका बहुत दिन के बाद सुना, इसके लिए मैंने आपको मैसेज किया,
1: आपको बहुत प्यार मुंबई वालों दिल्ली वालों की तरफ से हमेशा। बहुत थैंक यू सो मच योगेश भाई, थैंक यू। ओके तो योगेश भाई के बाद अगली कॉल जो आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे क्या बात है, बात बच्चे इतने सालों की बात, माशाल्लाह
3: माशाल्लाह।
1: जी बच्चे इतने से थे आप, याद है आपको घर में ऐसे खेल कूद किया करते थे,
3: बिल्कुल वो पानी में छप छप,
1: पानी में ऐसे छाई छप छाई छपाक छाई
3: छैया कर रहे थे हम लोग।
1: अभी ये छैया छह रही, दिस इज वेरी वेंट, what do you mean train mein chal ke raaste the। So Fawad bhai, what is your preferable neighborhood?
3: Sir, is call se pehle wale bhai sahab kaun the?
1: Ye Yogesh bhai the,
3: isse pehle wale
1: Vimlesh bhai the।
3: Bilkul agree karta hu bhai se।
1: Acha,
3: itni 100% agree karta hu ki personal experience hai।
1: Theek
3: hai,
1: ha
3: desiyon ke sath reh ke aur bhi cheeze masle hote hain aapke, theek hai, acche desi milne bhi mushkil hote hain aapke, ठीक है।
1: हाँ, हाँ।
3: जो आपके टाइप की मिल जाए, पहली चीज तो ये।
1: ओह माय गॉड, फवाद भाई के लिए चाय लेके आओ।
3: ये होता है कि आप, हाँ। आपको पता है, मैं तो डाउन टू अर्थ बंदा हूँ भाई, मैं जो बंदा अच्छे तरीके से मिले, सौ बिस्मिल्लाह, चाहे जमीन पे खिलाए, चाहे चारपाई पे खिलाए, चाहे शेरेटन में खिलाए, ठीक है।
1: ये तो देखो, मैं भी डाउन टू अर्थ हूँ, अभी तोंद ऐसी हो गई, मैं आई कैन नॉट इवन जंप, सो आई एम रियली रियली डाउन टू अर्थ, आई नो बैड जोक, बट बताइए आगे। चार भाई खाने मजा आता
3: है। होना चाहिए कि भाई कि आप के साथ जो फैमिली आपके साथ अच्छी है, आपके माहौल के साथ सही सेट होती है, आप लोग उनके साथ एडजस्ट होते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे वो बात आ गई ना घमसान वाली, ठीक है, के बीच में एक दूसरे पे शक शुरू हो गया बगैर वजह के, उसने गुड मॉर्निंग किया, किसी और ने जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है, ये सिर्फ हमारे देशियों में होता है।
1: हाँ, ये तो मैं नोटिस
3: अच्छा,
1: किया।
3: उसने गाड़ी चेंज कर ली, बताया भी नहीं यार, ठीक है यार, तो कर ली तो उसने कर ली, क्या हो गया यार, खुश हो जाओ किसी की खुशी में, अगर उसकी तरक्की होगी खुश हो जाओ।
1: पर मुझे ऐसा लगता है कि फवाद भाई, जहां तक हमारी बात हुई है, आपको तो थोड़ा गॉसिप चाहिए ना, तो आपको थोड़ा मसाला नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं आपको शांति पसंद है, ऐसा है क्या?
3: सर मुझे गॉसिप पसंद है।
1: आप निकला ना असली आदमी बार। सर देखिए, मुझे जो है, मुझे चाहिए,
3: लेकिन किसी को नाराज करके गॉसिप मुझे पसंद नहीं आता।
1: हाँ, वैसा वाला गॉसिप नहीं पसंद है, पर वैसा पसंद है जहाँ पे इन्वॉल्व ना हो खुद, वैसा वाला पसंद है ना।
3: बिल्कुल।
1: और कहते
3: हैं, चाहता ये हो कि भाई, चाहे आप अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, आप उनके खिलाफ गॉसिप भी करो ना, वो बाद में बोलते हैं अरे कमीना होगा, किसने किया होगा गॉसिप, कोई बात नहीं, हमें क्या है, वो भी ऐसा ही है।
1: हाँ ये भी है, ये भी है, नहीं सही है। टोटल मिला के अभी आपका जो नेबरहुड है जो मैंने देखा है उसमें तो काफी डाइवर्सिफिकेशन है आई थिंक, आस पास तो देसी
3: बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन है। एक साइड पे हमारे इंडोनेशियन आ गए हैं, एक साइड पे अरेबिक हैं, और उसी मोहल्ले में मैं तकरीबन 11 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। तो तकरीबन मौलाना साहब से लेके बच्चे जो अब मेरे कद तक आ गए हैं सारे जानते हैं, तो इसलिए मैं डाइवर्सिफाई पे एग्री करता हूँ।
1: ओके, और रिटायरमेंट के बाद पहाड़ी पे जाने का प्लान है कि क्या करने का प्लान है?
3: रिटायरमेंट के बाद पहाड़ी पे जाने का बिल्कुल प्रोग्राम है, जगह भी ले रखी है,
1: जगह भी ले रखी है। तो एक एक एक और कॉटेज बनाने में आपको मतलब कुछ जाएगा, या आप पूछ नहीं सकते मेरे से कि कबीर भाई चलोगे थोड़ा अर्ली?
3: कोई बात नहीं सर, हम दो बुड्ढे बुड्ढी होंगे, आप एक साथ आ जाएंगे।
1: वेरी नाइस, यही तो कंपेनियनशिप एंड ऑफ द डे रहना देसियों के साथ ही है, यही चेक कर रहा था मैं।
3: सर देखिए वो एंड है,
1: ओके हाँ,
3: अभी तो बच्चों के साथ एंजॉय करना है, बीच जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। अगर आपको ऐसे कोई लेजी देसी ग्रुप मिल गया जो सो के ही ना उठ सके, ठीक है, और वो सिर्फ यही सोचते रहे आखिरी वक्त तक क्या करना है। अब मैं तो तीन बच्चों के साथ अचानक प्लान नहीं बना सकता ना सर।
1: वो भी है, वो भी है। नहीं सेट, आप
3: मेरे घर में बहुत डाइवर्सिफाई उम्रें हैं।
1: नहीं माशाल्लाह यू आर सॉर्टेड एंड आई नो दिस फवाद भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खुश मिजाज रहिए आप, बहुत अच्छा लगता है आपसे करके। थैंक यू सो मच मेरे भाई,
3: थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत प्यार भाई को। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और फवाद भाई के लिए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, कितनी मीठी आवाज है कॉलर की। फवाद भाई आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया सीधा मुंबई से योगेश भाई का। अरसलान भट्ट भाई कह रहे हैं सलाम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, लिखते हैं डाइवर्सिटी माई प्रेफरेंस, हैंस चूज टू स्टे इन इज़ान होटल्स वेस्ट पे, बट इनिशियली वी कैन गेट सम कल्चरल शॉक स्पेशली व्हेन यू विजिट कॉमन स्विमिंग पूल्स। अब मैं पता इस बारे में बात करने वाला था, ये वाला कल्चरल शॉक मैंने पर्ल में देखा भाई। समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्शन देना है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं रहना चाहता हूँ शीशे वाली बिल्डिंग के पास, आ जाओ सैयद सुहेल भाई, हमारी शीशे वाली बिल्डिंग बहुत बढ़िया चल रही है, धूप ऐसी लगती है मज़ा आ जाता है। फराज भाई कह रहे हैं लिविंग विद देसी बी लाइक आँखों से देखी मक्खी निगली नहीं जाती। अरे रे रे रे, इतना भारी डायलॉग। सुदीप्तो सर ने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर, विशिंग यू अ डे फुल ऑफ डाइवर्सिटी, थैंक यू सो मच सर। लिखते हैं वेल एज अ फैमिली वी लव डाइवर्सिटी एंड वी वॉन्ट दैट वी हैव नेबर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स वी लव टू मिक्स विद अदर नेशनलिटीज, बेनिफिट इज दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजींस, डिफरेंट फेस्टिवल्स, बहुत मजा आता है। ये मैंने अब जाना है। एक मैसेज है कबीर भाई, बात सिंपल है, कतर में किसी से दिल ना लगाओ। भाई ने बात ही खत्म कर दी। भाई कह रहे दिल ही मत लगाओ, अरे चाहे नेबर्स हो या कलीग, बिकॉज पीपल कीप मूविंग सो इट डजंट मैटर टू मी, आई डोंट इंटरेक्ट अलॉट विद माई नेबर्स, लेकिन कुछ नेशनलिटीज़ के लोग दूसरे के कंफर्ट का ख्याल रखते हैं और कुछ नहीं रखते, इसलिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा उनके साथ रहना। फॉर देसी पीपल बेहतर है कि इंटरेक्शन कम से कम रखें, बिकॉज दे जज अलॉट। शेप भाई बहुत ही एहतियात बरत रहे हैं आप। एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, हैव अ नाइस डे, दिल से देसी रोमी भाई का मैसेज है। तबसुम मैन लिख रही हैं कि कबीर भाई 40 मिनट वाली स्टोरी आ जाएगा? नहीं बहन, आज नहीं है, प्रॉब्ली ऑन अ वीकेंड। नसीम भाई वालेकुम सलाम कह रहे हैं, खोजी साहब को सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याया भाई लिखते हैं भाई वाइब मैच होनी चाहिए बस, और साथ में सब अपनी ज़िंदगी पर नज़र रखें, दूसरों की ज़िंदगी पर नहीं। स्टॉप पोकिंग नोज, ये कह रहे हैं ये डाक में दम मत कर रहे हैं, बस बाकी सब ठीक है। एक मैसेज है मेरे ओमान के नेबर पार्किंग एरिया में मिला, अच्छा मैं ओमान के नेबर पर के मिला और मुझसे काफ़ी देर तक अरेबिक में बात करता रहा, मैं सिर्फ शुक्रन बोला, मुझे लगा वो मुझे गुड मॉर्निंग और हेलो कह रहा है। बाद में मेरे कज़न ने बताया कि वो ओमानी मुझसे उसकी पार्किंग से मेरी कार निकालने के लिए कह रहा था। ओफो हबीब भाई। ये तो कैसा, ये तो सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट मुझे हो गया। खादिम साहब वालेकुम अस्सलाम। देन एक मैसेज आया है, आई नीड नेबर्स विथ फैमिली प्रायोरिटी, देसी हो, मेरी बिल्डिंग में हो तो सारे डाइवर्सिफाई हैं और कोई किसी से बात ही नहीं करता, लेकिन मेरी अम्मी की बिल्डिंग में सब देसी हैं, ऐसा लगता है कि रोज़ ही ईद है, कभी खाना एक्सचेंज हो रहा है, कभी वैसे ही कोई मिलने आ जाता है, किसी भी वक्त किटी पार्टी चल रही होती है, देसी का अपना ही मज़ा है। ये उज़मा जी ने मैसेज किया है। खादर अब्दुल अज़ीज़ भाई, कबीर भाई राइमिंग, भाई आपको भाई राइमिंग ही तो करता है मेरा भाई। इकरा समीर वालेकुम सलाम गुड मॉर्निंग। नाजिया मैं लिखती है नो देसी नेबरहुड, उनको छोड़कर तो आए हैं, आई प्रीफर डाइवर्सिफिकेशन एंड लर्न फ्रॉम देयर कल्चर। फराज भाई कह रहे हैं डाइवर्सिटी भैया, क्योंकि जब आए हैं तो वही मॉल से तो आए हैं, कह रहे हैं सबको कहाँ, क्या सबको कहाँ पीना अलग अलग लाइक मोरक्को कुरकुस आई लव टू ईट दिस ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. आसिम जी का मैसेज है वॉइस नोट पे जैसे मैं सुनता अभी ठीक है. एक मैसेज है माई प्रेफरेंस टू स्टे विद ओपन कल्चर एक्सचेंज ऑफ फूड इज़ द बेस्ट स्पेशली ऑन फेस्टिवल्स एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज न्यू थिंग्स टू अडॉप्ट. दुआ करें कि हमेशा अच्छा हो जिंदगी स्वर्ग नहीं तो नर्क. इरफान भाई बहुत

भाई मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, इतना भी कल्चरल शॉक नहीं चाहिए. लाइक माई बिल्डिंग इज ओके फाइन, बढ़िया है, मगर मुझे आते के टाइम लगा था क्या खूबसूरत है पर माशाल्लाह. पर वहां पे अगर आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट नेबरहुड. ऐसा मेरा मानना है और मैं गलत हो सकता हूँ, इंसान हूँ, बट दैट इज जस्ट माई ओपिनियन. पर आपका क्या प्रेफरेंस है बता दो जी, वरना आदत तो बनी जाएगी रहते रहते एक जगह पे. कुछ लोग 11 सालों से रह रहे हैं. पीटे लो.

भाई ने बड़ा ही जीके वाला सवाल पूछा, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वीर जी, कोई बात नहीं, आप रैंडम बात करो तो डरो नहीं। वो कह रहे हैं सॉरी पूछ रहा हूँ, अरे कोई ऐसी क्या बात होगी। भाई पूछ रहे हैं कि सुबह सुबह को हरियाणवी में क्या कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। आपने गाना सुना एक हरियाणवी, पता नहीं सुना होगा नहीं सुना, क्योंकि आपने प्रधान का नाम लिया जो हरियाणवी रैपर है, तड़के मैं मिलूँ खेता में, तो तड़के जी तड़के, ठीक है जी। और तावड़े तावड़े जो आप कह रहे हैं वो जल्दी जल्दी को कहते हैं हरियाणवी में, कि तावड़े तावड़े, समझ वो। तो आप कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका ट्यूशन देगा ना, आप ऐसे टेंशन मत लिया करो। भाई घबरा गए, कह रहे सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, रैंडम भी तो बात होनी चाहिए। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, मैं ये कह रहा था कि आप कौन सी जगह पे, कौन से नेबरहुड में रहना पसंद करेंगे, देशियों के बीच में या फिर आपको सब चलेगा, सब चाहिए। प्रिंस भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। फरद भाई ने बहुत ही प्यारी सी बच्ची का जो है वीडियो भेजा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना क्यूट वीडियो यार, सेट कर दिया आपने पूरे दिन मेरा। समीर भाई ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, जब क्या लिखा, 1990s और अर्ली 2000s में जब हम लोग

वो बुद्ध के इलाके में थे, वो नेबरहुड सबसे बेस्ट था मेरी लाइफ में. सारा नेबरहुड लोअर मिडिल क्लास के थे, हम पूरे मोहल्ले से कनेक्टेड थे और आज हम लोग काफ़ी रिच और रिच नेबरहुड में रहते हैं और कोई किसी को नहीं जानता. हकीम भाई ने मैसेज किया, पैसे की सबसे बड़ी परेशानी यही है भाई. यही एक लौती परेशानी है. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर प्रा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग प्रवा किदा, ये रिफत भाई ने मैसेज किया है. और अमन जमाल साहब, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, काम की तरफ जाते हुए इन्होंने मैसेज किया. रिफत भाई वालेकुम अस्सलाम. असीम भाई ने मैसेज किया, कह रहे हैं कि देखो क्या है कि देसी फैमिली अगर है तो देसी मत रहो, मत रहो, ऐसा कह रहे हैं वो. और एक चीमा भाई कह रहे हैं कि देखो साफ सीधी बात है, भले ही चुगली करते हैं लेकिन देसी लोगों के बीच में रहना अच्छी बात है. बड़ा मिक्स रिस्पांस आया आज. एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, पड़ोसी कोई भी हो, मिक्स हो या देसी, बट परेशान करने वाले ना हो. नहीं, सवाल ये नहीं है कि कैसे हो, मैं कह रहा हूँ आपकी प्रेफरेंस क्या है, ये है सवाल. प्रिंस भाई कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अब बस बहुत हो गया, इंसानों के बीच डिफरेंट स्पीशीज और एनिमल मस्ट ट्राई. मैं भी, मेरा भाई, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा चिंपैंजीज के बीच में रहना है. वो बोलेंगे यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कह दूंगा नहीं जी मैं तो स्टडी के लिए आया था. प्रिंस भाई ने बोला डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रहने का. क्या करवा रहे हो यार प्रिंस भाई. एक मैसेज है, देसी की वजह से तो भाग के यहाँ आया हूँ. खान भाई का मैसेज है. एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर, हैव अ गुड डे एंड ब्लेस्ड डे, लव फ्रॉम हैदराबाद शेख अजहर साहब. वालेकुम अस्सलाम, लॉट्स ऑफ लव. क्या हो रहा है. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्बास शेख फ्रॉम अल अहले हॉस्पिटल, एंजॉयिंग द स्टोरीज, बहुत सारा प्यार. डॉक्टर साहब, अब्बास भाई, बाय एनी चांस आर यू मतलब मेडिकल फील्ड में डॉक्टर है क्या है बेसिकली, क्योंकि मेडिकल मिस्ट्री बहुत जल्दी सुनाऊंगा, आज नहीं बहुत सुनाऊंगा. ओमर भाई वालेकुम अस्सलाम. आप सबने इस बात को पकड़ लिया है, चिंपैंजी वाली बात. अरे वो तो ऐसे ही फ्लो फ्लो में निकल गया भाई. कह रहे हैं, एनिमल गो टू पर्ल एट 4 to 6. वहां पे क्या मिलेगा, ऐसा क्या मिलेगा वहां पे. एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, पिंक गाड़ी ढूंढ ली गई है, बहुत बढ़िया. अरे तो बिल्कुल ही बेबी पिंक है भाई. क्या खतरनाक गाड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़क पे स्ट्रॉबेरी चल रही है, क्या है ये. ये मेरी फेवरेट गाड़ी ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो आपने किया है, वाह वाह वाह वाह वाह. पर सच में यार ये कुछ ज्यादा ही पिंक है, चलाने वाला बंदा है ये, कौन है ये, अगर देख सके तो बताइएगा. साथी भाई कह रहे हैं, मेरा भी सपोर्ट डिफरेंट स्पीशीज के साथ है. अगर गर्ल है तो फिर तो ठीक है, फिर पिंक सही है, माफ है. मुझे लगा अंदर कोई देसी बैठा और गाड़ी पिंक है. एक मैसेज है, मिलजुल के रहना अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसे. मैं अपनी फैमिली को यहां बुलाया था, मेरा एक दोस्त इस बात पर नाराज हो गया कि मैंने उसको बताया नहीं. है वो इस बात पर नाराज हो गया कि आपने बताया नहीं कि आप अपनी फैमिली को लेके आए हैं. दोस्त है वो अभी भी आपका. सादिक भाई कह रहे हैं, आज से मेरा जवाब आ. चलो एक काम करते हैं, पड़ोसी वड़ोसी छोड़ो, चिंपैंजीज के बीच में जाके रहेंगे. चिंपैंजी बोलेंगे, मालिक यहाँ क्या कर रहे हो, और वो बोलते क्या, भाई आपको स्टडी करने के लिए आया था. अब कहने का वक्त, अब कहने का वक्त हो गया. ठीक है, बहुत बहुत मस्ती हो गई हाली तो. तो अब जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा कल के मुकाबले थोड़ी सी लंबी ड्यूरेशन वाली है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज अभी ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ रही है. ऐसे मैंने कहा कि आई हैव अ 40-मिनट स्टोरी एज वेल, लेकिन आज नहीं. सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप 40-मिनट की स्टोरी के लिए तैयार है भी या नहीं. कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई बस कर, तो इसलिए मैं डर रहा था. बट आई हैव प्रिपेयर्ड 40-मिनट स्टोरी एज वेल, तो वो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे सुना देंगे. बट आज की जो स्टोरी है वो कल के मुकाबले थोड़ी बड़ी है, एंड इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी. सादिक भाई कह रहे हैं, यस एक मैसेज है, यस कबीर भाई आ गया ऑफिस, बहुत बढ़िया गया भाई. एक मैसेज नवेद भाई का, अस्सलाम वालेकुम, देसी कल्चर इज द बेस्ट, जो भी सोसाइटी में रहो सब देसी बन जाओ. नवेद भाई ने कहानी खत्म कर दी. कमल भाई कह रहे दिन बना दिए, थैंक यू सो मच भाई. अरे अब सभी एक काम कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, फवाद भाई भी शुरू हो गए. मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग मानेंगे मेरी, नाजिया और सरवर भाई को कन्फ्यूज कर देना इस लैंग्वेज के साथ. ऐसे मैसेज ना, आई होप नाजिया और सरवर भाई दोनों ना सुन रहे हो, उनके शो में ये मैसेज करना, कंफ्यूज देम. मैं देखना चाहता हूं उनका रिएक्शन क्या होगा. प्लीज डू दैट, प्लीज. 11 बजे से मतलब कंफ्यूज कर देना है, सोचिए हो क्या रहा है.

और क्या कहने वाला था मैं, उ, उ, उ, आ, आ, आ। तो कहानी एक गाने के बाद आ रही है, प्रिपेयर योरसेल्फ। आज की बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है, सबके टेस्ट की नहीं है, बट यू विल लव इट इंशाल्लाह, दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, बिकॉज ये कहानी भी मेरे क्लोजेट में पड़ी हुई थी और मैं बहुत दिनों से इसको लेके बैठा हुआ था, मैंने कहा पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा, बट मैं थोड़ा सा भी डेयर डेविल बन चुका हूँ तो मुझे लगता है कि सुना देना चाहिए, तो इसलिए अभी जो है एक गाना चला देता हूँ मैं, उसके बाद सीधा मिलते हैं एंड फिर जो है आपको सुना देंगे। एक सेकेंड, डांडा भाई कहाँ गए, डांडा भाई कहाँ गए, डांडा भाई कहाँ गए, डांडा भाई ये रहे भाई साहब, इस गाने के बाद मिल रहे हैं। अगर आपको हरियाणवी ट्यूशन चाहिए ना, ये गाना सुन लो, आपको सारी की सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस गाने के उस पार सीधा कहानी है, अगर आप सुन रहे हैं लाइव तो डॉट भेज दीजिएगा 666-22107 पे। ओ जाट नहीं जाट तेरा गाड़ी ले रहा, इसमें एक लाइन है, गांव और खाट नहीं देखे, ऐसी कुछ लाइन है, कब्जे के प्लाट नहीं देखे।

भाई साहब के ढंग से भाई 734 चाट जरा गाड़ी ले रहा। सादिक भाई ने मैसेज किया, सादिक भाई कह रहे हैं हरियाणवी तो इतनी समझ में नहीं आती लेकिन दिमाग में आ चल रहा है। आजाज भाई कह रहे चिंपैंजी से पूछो कि वो क्या इंसानों के साथ रहना चाहेंगे। उधर से ईमेल आया है आजाज भाई रिजेक्शन का। बट एनीवे कंफ्यूज करना है आपको, हाँ तरोर भाई और नाजिया को, ठीक है प्लीज आप जरा कहानी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आई डोंट नो कि आपका क्या रिएक्शन होगा कहानी सुनने के बाद, बट आई हैव टू टेल यू दिस अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी बिकॉज ये है कुछ कहानी, कुछ बात है इसमें। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं और आप भी अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा क्योंकि उसमें म्यूजिक भी होता है तो थोड़ा आसान रहता है। बाकी कोई गल नहीं है, मैं आज की कहानी शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड अमेजिंगली एविडेंशियल प्रूव्ड स्टोरी जिसे कहते हैं, सब कुछ है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा ली जाए। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 से और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मुझे बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आपको आज के किस्से को शुरुआत करने के लिए आपको ले चलता हूं साल 1940 में, 1940 टू बी स्पेसिफिक 21 अगस्त 1940, जगह टोक्यो जापान, और इस जगह जन्म हुआ था इस दिन योशिकाज़ू सुजुकी का। योशिकाज़ू जो था वो शुरुआत से अर्ली लाइफ से ही थोड़ा सा ऐसा बच्चा था जो खुश मिजाज था, लेकिन लोग होते ना कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें लगता है कि कोई ज्यादा ही खुश है तो उसको भोंदू समझ बैठते हैं। तो योशिकाज़ू के साथ जिंदगी भर ये अजीब सी सिचुएशन रही है। बहरहाल उसके जो घर वाले थे वो पियानो ट्यूनर्स थे, वो म्यूजिक इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, और उसने भी डिसाइड किया एज ही ग्रू अप ही डिसाइडेड कि मैं भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनूंगा। ग्रेजुएशन भी की उसने फ्रॉम कुनिताची कॉलेज ऑफ म्यूजिक, और उसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट पियानो ट्यूनर भी बना एक बहुत बड़ी जापानीज कंपनी के लिए, और उसकी जो कंपनी थी वो थी कोगानी एरिया इन टोक्यो। पर कुछ वो अलग करना चाहता था, एक होता ना कि घर में किसी एक बंदे में एक कुछ अलग सनक सी होती है और उसके अंदर की जो सनक थी वो कहीं छुपी बैठी थी। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड करता हूं क्योंकि सनक पे आना जरूरी है, 1984, इस साल वो 44 साल का हो चुका था योशिकाज़ू, और योशिकाज़ू ने अब अपनी एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना ली थी सारे काम का छोड़ के, और उसकी कंपनी का नाम था म्यूजिक एंसेंबल। ये कंपनी बेसिकली प्रैक्टिस टेप्स बनाती थी उन लोगों के लिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या कैरियोके गाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रैक्टिस टेप्स बनाती थी कंपनी। और अगले ही साल क्योंकि म्यूजिक थोड़ा सा इसका बूम होने लगा, बिजनेस चलने लगा, तो अगले ही साल वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी करवाने लगा छोटे छोटे पब्लिक हॉल्स में, फिर बड़े बड़े पब्लिक हॉल्स में, फिर उसे एक मेजर मिला, उस जगह का नाम था हिबिया पब्लिक हॉल, और बहुत जबरदस्त कॉन्सर्ट होते थे उसके। उसके कॉन्सर्ट्स की एक बड़ी खास बात होती थी, कॉन्सर्ट्स की खास बात ये थी कि योशिकाज़ू हमेशा जैसे स्टेज है आपके सामने तो ऊपर की तरफ काफी बलून्स लटके होते थे गुब्बारे, और वो बलून्स जो थे वो एंड ऑफ द प्ले या वॉट एवर जो कॉन्सर्ट है उस टाइम नीचे गिरते थे। ये उसका सिग्नेचर मूव था अपने हर कॉन्सर्ट हर प्ले के दौरान। इसके पीछे एक वजह थी, ये ऐसे नहीं कि रैंडम थॉट था, ये ऐसा असली था क्योंकि बचपन में उसने एक मूवी देखी थी, ये फ्रेंच मूवी थी, मैं आपको इंग्लिश में नाम बता देता हूं, उस मूवी का नाम था रेड बलून, और वो रेड बलून मूवी का असर इस पे इस कदर पड़ा कि उसे बलून्स को लेकर एक अलग सी एक कहते ना नॉट जस्ट शॉक, इट वॉज मोर देन लव, एक अजीब सा दीवानापन छा गया था बलून्स को देख के, लाइक ही वांटेड बलून्स टू बी एवरीवेयर। तो वो कलरफुल बलून्स पूरे उसके कॉन्सर्ट में नजर आते ही आते थे, ये पहचान बन चुकी थी। अगर आप उस वक्त होते और कॉन्सर्ट में जाते और ऊपर बलून्स देखते तो आपको ऑटोमेटिकली पता होता था कि ये योशिकाज़ू करवा रहा है, इतना ज्यादा, और पब्लिक को ये यूनिकनेस बहुत पसंद भी आती थी। योशिकाज़ू जो था वो ये जो पैसा बना रहा था, जो येन्स में बनाया जा रहा था, उसने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हुए कंपनीज दर कंपनीज खोलना शुरू कर दी। 1986 में, 1986 में उसने
दर्जनों बिजनेसेस में पैसे डालना शुरू कर दिए, अपनी कमाई डालने लगा, बहुत कुछ। म्यूजिक सैलून खोला गिंजा डिस्ट्रिक्ट में, फिर माजोंग पार्लर खोला, एक कॉफी हाउस खोला, एक रेस्टोरेंट खोला। पर वो जो ये लगातार किए जा रहा था, इसमें एक मसला होना शुरू हो गया था। 80s में जापान की हालत फाइनेंशियली ठीक नहीं थी, पूरी कंट्री एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी और हर बिजनेस एक के बाद एक डूबता गया। योशिकाज़ु को उसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब अंदाजा होने लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। वो अचानक बहुत कर्जे में था, कर्जे से भरा कंधा जैसे उसका भारी हो चुका था। आखिरी कोशिश जो उसने की बचने की, तो उसने सोचा कि एक आखिरी अटेम्प्ट करता हूं सब कुछ बचाने के लिए, फूड स्टॉल लगा लेता हूं। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस इन हिज लाइफ। फूड स्टॉल लगाने का उसे मौका मिला एक शोकेस में से, बुक फेयर होते हैं बहुत सारे मेले लगते हैं, तो एक मेला था, बड़ा ही एग्जॉटिक शोकेस कहते हैं उसको, उसका पूरा नाम था योकोहामा एग्जॉटिक शोकेस। ये 1989 में लगा था, तो उसको यहां पे फूड स्टॉल लगाने का मौका मिला। ये एक बहुत बड़ा फन फेयर था जापान में उस वक्त, और बहुत लोग आते थे, स्टॉल्स लगाते थे अपने, इसमें पब्लिक के लिए तमाम चीजें होती थी। ऑर्गेनाइजर्स जो थे, जब मिले थे फूड स्टॉल लगाने से पहले योशिकाज़ु से, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पिच की। उन्होंने बोला, योशिकाज़ु तुम अपना स्टॉल ना हमारे यहाँ लगाओ, फिर देखो तुम, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 1,00,000 लोग तो आराम से आएंगे इस फेयर में, डेली का बता रहा हूँ, और प्रॉफिट 1,000,000 येन एक दिन का। ये सुन के योशिकाज़ु ने अपना दिमाग ज़्यादा लगाया नहीं, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया एक्साइटमेंट में। उसने जो रकम देनी थी स्टॉल लगाने की वो अदा कर दी, और वो रकम कितनी थी, 30 मिलियन रेंट, 30 मिलियन येन का रेंट दिया है उसने स्टॉल लगाने के लिए। मगर किस्मत योशिकाज़ु का साथ देने को तैयार नहीं थी। 1,00,000 के मुकाबले 30,000 लोग आ रहे थे इसके आसपास ही, और जो प्रॉफिट जितना बताया था कि इतना मिलियन पहुंच जाएगा, उसका 10% भी नहीं हो पा रहा था। चीजें और भी खराब इसलिए हो रही थी क्योंकि जो फूड स्टॉल लगा हुआ था योशिकाज़ु का, वो फूड स्टॉल की लोकेशन बड़ी खराब थी, वो बिल्कुल कोने में थी मेले के, बिल्कुल कोने में। एक पार्किंग लॉट था, जो पार्किंग लॉट होने के बावजूद बंद था, वो खुला होता तब भी फायदा होता, पर वो पार्किंग लॉट भी बंद था, इट वॉज क्लोज्ड फॉर द सीजन। तो किस्मत एक अलग ही खेल खेल रही थी उसके साथ। योशिकाज़ु का मत्था घूम गया, उसे समझ में आया कि अब कुछ करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग, मामला खराब होता जा रहा है। एंड योशिकाज़ु ने ऐसे में बहुत ही एक यूनिक आइडिया निकाला। आपने देखा ना मैस्कॉट्स होते हैं हर जगह के, ऐसे आपने देखा वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, तो उसमें मैस्कॉट था, है ना भाई, तो ऐसे ही मैस्कॉट जापान में हुआ करता था इस फन फेयर के लिए। और उसने क्या किया योशिकाज़ु ने, उसने अपने फूड स्टॉल को किया बंद, और उसने कॉस्ट्यूम मंगवाई, इनफैक्ट खुद बनाई थोड़ी बहुत, तो और उसमें अटैचमेंट्स करवाए, और मैस्कॉट जिसका नाम था ब्रूराचन, ये जैपनीज के एक मांगा कॉमिक्स के जो फादर कहे जाते हैं, उनका नाम है ओसामू तेजुका, उन्होंने बनाया था ये मैस्कॉट, तो उसकी कॉस्ट्यूम बनवाई योशिकाज़ु ने, और कॉस्ट्यूम पहनकर योशिकाज़ु लोगों को बुलाता, और लोग आने भी लगे, सेल्फीज लेते, ऑटोग्राफ्स लेते, और वो सोच रहा था कि इसके जरिए, फूड स्टॉल के जरिए तो नहीं, लेकिन इसके जरिए हो सकता है कि उसका बिजनेस जाग उठे, वापस सब कुछ ठीक कर सके। मगर ये काफी नहीं था। फिर इस मेले की एक तारीख आई 30 जुलाई, और 30 जुलाई को ये कॉस्ट्यूम पहने हुए, बाय द वे मैस्कॉट का पूरा ड्रेस ऊपर से नीचे तक पहना हुआ, ये एक हाई स्टील टावर पर चढ़ गया इसी मेले में, और टावर पर चढ़ने के बाद एक बैनर अपने हाथ में लिए खड़ा रहा। इस बैनर पर जो है बहुत कुछ लिखा था, वहां पे लिखा हुआ था कि मेरा फूड स्टॉल बहुत बढ़िया है, मेरे फूड स्टॉल में आइए, मेरा फूड स्टॉल सबसे बढ़िया खाना देता है, मैं हूं आपका मैस्कॉट, आइए मुझसे मिलिए, और बहुत कुछ कह रहा था, बोल रहा था, बैनर पे लिखा भी हुआ था। हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, एंड यहां पर क्या हुआ, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और हाथ में उसके बैनर था, तो हवा तेज चलने की वजह से जो शोकेस का ऑपरेटर था इस मेले के, जो मेन ऑपरेटिंग मैनेजर्स थे, उनकी नजर इस पे गई। जब नजर पड़ी तो उन्होंने अथॉरिटीज को कॉल करी कि भैया एक बंदा चढ़ा हुआ, उसको उतारो वहां से। 3 घंटे तक तो योशिकाज़ु को वो उतार तक नहीं पाए, मगर फिर फाइनली फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, और फिर सीढ़ी लगाई गई, योशिकाज़ु को नीचे उतार पाए वो।
मगर उतरने के बाद भी योशिकाज़ो माना नहीं. उतरने के बाद क्योंकि अब मीडिया इकट्ठा हो चुकी थी तो वो उसी कॉस्ट्यूम में फोटोज खिंचाने लगा, सेल्फीज देने लगा और बाज नहीं आया. कुछ देर तक ये तमाशा चला और खूब चला, मगर सरप्राइजिंगली इस फैनफेयर वालों ने उसका जो फूड स्टॉल था वो नहीं हटाया. ऑर्गेनाइजर्स ने थोड़ा सोच विचार किया, उन्होंने थोड़ा सोचा कि क्या किया जाए. योशिकाज़ो ने फिर उनसे कहा, देखिए साहब, आई नो आप मुझसे चिढ़ चुके हैं लेकिन मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है. और वो प्लान सुनने के बाद ये फैन जो फनफेयर वाले हैं ये मान भी गए. आइडिया जानते क्या था? आइडिया था उसकी सबसे फेवरेट चीज से जुड़ा हुआ. योशिकाज़ो ने उनसे कहा कि मुझे एक फ्लोटिंग गोंडोला चाहिए. गोंडोला देखा आपने, जो आप देखते हैं विलाजी मॉल में पानी में तैरा ना, वो गोंडोला. गोंडोला को उसने हीलियम बलून से, हीलियम से भरे गुब्बारों से बांध दिया. तो आइडिया बड़ा सिंपल था, लोग जो है गोंडोला में बैठेंगे या खड़े रहेंगे और ये गोंडोला जो है वो ऊपर 10-20 मीटर तक जाएगा और पूरा का पूरा मेला दिखेगा. बहुत ही सिंपल आइडिया, बहुत सिंपल आइडिया है ना. तो लोग इसके दीवाने हो गए. It was a big deal.

और जो फाइनल महीना था सितंबर से अक्टूबर वाला 1989 का, ये चीज बहुत पॉपुलर हुई। तकरीबन 2500 लोग आए, पैसे दिए, जमा किए, इस पे गंडोलों में सवार हुए 10-20 मीटर ऊपर जाके इस मेले को देखने के लिए। फाइनल डे जो था वो बड़ा जबरदस्त होने वाला था। फाइनल डे पे योशिकाज़ू ने अनाउंस कर दिया था फाइनल डे आने से पहले कि मैं जो है फाइनल डे पे उड़ जाऊंगा इस गंडोला में इन बलून्स के साथ। पर फिर उसने बीच में अपना दिमाग बदल दिया और ऐसा किया नहीं, पर पब्लिक को बताना भूल गया क्योंकि उसके अंदर पीआर स्किल्स नहीं थी। तो लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए कि अभी उड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं उड़ा। तो लोग जो थे थोड़े उदास हो गए, लोग चले गए। और फिर इस चीज को आगे बढ़ाने का तरीका योशिकाज़ू के पास नहीं था। रिजल्ट ये आया कि 1990 में योशिकाज़ू 500 मिलियन येन के कर्ज में डूब चुका था। 20 बड़े बड़े क्रेडिटर्स जिनसे उसने पैसे, जिनसे उन्हें येन उधार लिए थे, वो उसकी जान के पीछे पड़े थे। जापान में गिंजा जगह है, वहां पे उसका रेस्टोरेंट था, वो भी बंद होने की हालत में था। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। किस्मत उसे एक बहुत ही अलग अलग रास्ते पे ले गई। वो मैनेजर बना अर्जेंटीनियन सिंगर ग्रासियल सुजाना का 1991 में। मगर यहां पर भी बात एक साल तक ही बनी और 1992 में उसका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ भी खत्म हो गया। अब चीजें संभल नहीं रही थी, अब चीजें और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। पर एक चीज ने फिर से उसे आइडिया दिया। ये वही चीज थी जिससे योशिकाज़ू बे इंतहा मोहब्बत करता था, अपनी फैमिली के अलावा ऑफकोर्स। और वो चीज क्या थी? बलून्स, गुब्बारे। ये उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी। उसने सोचा कि अगर मैं आसमान में एक स्पेक्टिकल दूं लोगों को, जो लोगों ने इससे पहले कभी ना देखा हो बलून्स के साथ, तो फिर मीडिया वाले, स्पॉन्सर्स वाले सब पागल हो जाएंगे और मेरा बिजनेस वापस जिंदा हो जाएगा, मेरी उधारी उतर जाएगी। तो योशिकाज़ू उसी सोच के साथ काम पे लग गया। और फिर आया महीना अप्रैल का, 17th of April 1992। योशिकाज़ू पहुंचा तामा रिवर इन फूजी, टोक्यो, जापान। उसने क्या किया, एक कुर्सी, लिटरली एक कुर्सी को अटैच किया अपने आप से, बांधा और उस कुर्सी को ऊपर कनेक्ट किया 2 5 मीटर और 2 2 मीटर वाले बलून्स के साथ जिनमें हीलियम भरी हुई थी, हीलियम गैस। और साथ में उसने 15 किलो के सैंड बैग्स, है ना, जो बोरी में थोड़ा रेत वेत भर के सैंड बैग्स उसने अपने साथ रखे हुए थे। मीडिया वाले आसपास थे और पुलिस वाले आसपास इकट्ठा हो चुके थे। मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे और पुलिस वाले उसे रोकना चाहते थे। पुलिस वाले जो उनके हेड थे वो आ गए, उन्होंने बोला, अरे ये कैसा पागलपन है भाई, ये नहीं कर सकते तुम, मिस्टर योशिकाज़ू दिस इज नॉट अलाउड, गलत है ये। योशिकाज़ू कहां मानने वाला था, कहां मानने वाला था। उसका मजाक उड़ाने वाले वहां पे बहुत लोग थे कि कर क्या रहा है, कुर्सी से बांध दिया गुब्बारे और खुद उसे चिपका हुआ, कर क्या रहा है। पर योशिकाज़ू जो था वो बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी था। दुनिया बोलती रहे और उसने इंटरव्यू के दौरान एक बाकायदा एक लाइन बोली, उसने बोला कि ये लोग मेरा कर्जा तो उतारेंगे नहीं, मुझसे नफरत करें या मोहब्बत करें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। योशिकाज़ू ने एंड में डिसाइड किया कि वो पुलिस वालों को धोखा देगा। और उसने किया क्या, उसने उनसे बोला कि सर मैं ज्यादा नहीं उड़ूंगा, लाइन अटैच्ड रहेगी नीचे तक, आप टेंशन मत लें, ठीक है, और आपका डिटेक्टिव है ना उसे पकड़ा दीजिएगा डोरी, टेंशन मत लें। पर योशिकाज़ू झूठ बोल रहा था। जब वो गया और पुलिस वाला जो था वो डिटेक्टिव, वो पूरी रस्सी पकड़े हुए था, तो उसने चुपके से रस्सी को काट दिया और योशिकाज़ू उसकी नजरों के सामने उड़ी, दिस इज ऑन टेप बाय द वे, वो उड़ रहा है और डिटेक्टिव नीचे से बोल रहा है, अरे तुमने वादा किया था मुझसे, वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। पर योशिकाज़ू ने बोला, सर जाने दीजिए, सर जाने दीजिए, सॉरी सॉरी, और उड़ गया। 12:45 हवा में था, एयरबोर्न जैसे हम जहाज के लिए कहते हैं, योशिकाज़ू इस वक्त आसमान को छू रहा था। उसे कवर करने के लिए बाकायदा मीडिया वालों ने एक न्यूज हेलीकॉप्टर भी उतारा, जो हेलीकॉप्टर उसे बाकायदा फिल्म कर रहा था। इस बीच एक हादसा हुआ, 2 सैंडबैग्स जो बंधे हुए थे वो गिर गए। अब एकदम से जैसे जहाज का ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है आसमान में, वैसे ही एकदम से ऑल्टीट्यूड बढ़ गया।

अब वो इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा था, इतनी स्पीड से कि जो कैमरा उसे फॉलो कर रहा था उसे कैप्चर करने के लिए, वो तक उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा था क्योंकि फोकस में ही नहीं आ रहा था योशिकाज़ो। उसका मकसद था कि मैं 400 मीटर की उड़ान भरूंगा इन बलून्स के साथ, मगर जब ये सैंड बैग्स गिर गए तो वो 5000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, यानी कि 14 गुना ज्यादा इंटेंडेड प्लान से, और वो भी सिर्फ 35 मिनट के अंदर। हेलीकॉप्टर में जो रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो मौसम विभाग वाले थे, उन्होंने बताया कि 4200 मीटर पर टेम्परेचर -11 degrees है, माइनस, और योशिकाज़ो ऑलरेडी 5000 मीटर क्रॉस कर रहा है। उस ऑल्टीट्यूड पे कितनी ठंड होगी ये आप अंदाजा लगा लीजिए। वो हानेडा एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच रहा था, मतलब वो अभी किसी भी उड़ते जहाज से टकरा सकता है। अभी उसे समझ में आ गया था कि सिचुएशन इज नॉट फनी एनीमोर, अभी कुछ करना पड़ेगा। फिर उसे याद आया उड़ते उड़ते इस चेयर पे बैठे बैठे जब उड़ रहा है कि उसने बहुत ही सस्ता सा सुबह एक लाइटर खरीदा था सिगरेट पीने के लिए, और वो लाइटर 100 yen का उसकी जेब में पड़ा था। उसने उड़ते उड़ते वो लाइटर निकाला, खुदा ही जानता है उसने कैसे उसको जलाया, और 5 meter के बलून की जो रस्सी थी उसे जलाना शुरू कर दिया, और बहुत जल्दी जल भी गई। ये उसकी तरकीब थी कि उसे जलाना आता था, उसने जलाया। अब मसला ये था जब वो जल गई रस्सी तो अब स्पीड उसकी गिरने की बढ़ गई जो पहले ऊपर जाने की थी, और वो स्पीड दुगनी हो गई। वो बहुत फुल स्पीड से, ऐसे टूटता तारा होता है, नीचे गिर रहा था और नीचे लोग उसे देख रहे थे कि नीचे गिर रहा फुल स्पीड से। अब वो नीचे आ रहा था, एक बिजी शहर के ठीक ऊपर पहुंच चुका था, और अब वो कहीं भी क्रैश कर सकता है। दोपहर के 1:40 पर 24 kilometers का सफर तय किया उसने इन बलून्स के साथ, और अब वो एक प्राइवेट रेसिडेंशियल एरिया में एक प्राइवेट घर की रूफ पर जाकर, छत पर जाकर बुरी तरह से उसने क्रैश किया। ये जगह थी ओर्थोवॉड इन जापान। वो जो औरत उसके अंदर रह रही थी उस टाइम पे, उसके घर वाले गए हुए थे, वो बुरी तरह से डर के उठी, समझ में नहीं आया उसे यार मेरी छत पे क्या गिर गया। वो बहुत डर के उठी। इतनी बुरी तरह गिरने के बाद भी लेफ्ट हैंड पे उसके स्प्रेन आया था, बाकी सब एकदम बढ़िया था। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, इवन योशिकाज़ो स्माइल कर रहा था, उसके चेहरे पे स्माइल थी, मुस्कुराहट थी। उतरने के बाद जब सारे के सारे लोग वहां पहुंचे, अथॉरिटीज वहां पर पहुंची, तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। उसने अथॉरिटीज से, पुलिस वाले से बोला, सर आई एम रियली सॉरी, और बोल के निकल गया। उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। कमाथा पुलिस वालों ने जब उसे देखा, सामने खड़ा हुआ था, तो न्यूज वालों ने भी उसे घेर लिया। इस बीच जिस छत पे वो गिरा था, जिस औरत के घर पे वो गिरा था, उसकी रूफ टाइल्स टूट चुकी थी, क्योंकि ये टीवी एंटीना पे गिरा था तो एंटीना की भी बैंड बच चुकी थी। लेकिन इसने कभी मुड़ के सॉरी नहीं बोला उस औरत को, कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया, नथिंग रियली हैपेंड, एंड आगे बढ़ गया। इतना सब कुछ हो गया था, बच भी गया था वो। लेकिन योशिकाज़ो की नजर में जो भी कुछ हुआ, वो भले कामयाब ना रहा हो औरों की नजर में ये करने पे, लेकिन उसने मान लिया था कि मैं कामयाब हो गया हूं, अब लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा तो फेमस हूं, क्योंकि उसे मीडिया ने एक टाइटल दिया था, फूसन ओजिसन, यानी कि द बलून मैन। तो बलून मैन का खिताब अखबार के फ्रंट पेज पे पाना कोई हलवा तो नहीं है, पर ये फेम जो था ये ठीक ठाक था। किस्मत अभी भी उसके पाले में नहीं आई थी। इसके बाद उसने कई मरतबा ट्राई किया, कई मरतबा, पर वो फेल होता गया। और क्योंकि वो लगातार इस उड़ान भरने में फेल होता गया, मीडिया वाले, उसके सपोर्टर्स, पब्लिक वाले उससे दूर होते गए धीरे धीरे। पर हां, उसे एक इंटरव्यू देने का मौका मिला कि NHK रेडियो पे, वहां पे शो था, उसे बुलाया गया, और उसने वहां पे RJ को बताया कि वो पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ना चाहता है, पैसिफिक ओशन क्रॉस करके नवाडा USA में लैंड करना चाहता है। और पूजा ऐसा क्यों करना चाहते, तो बोला बस एनवायरमेंट अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं। पर अब किसी को उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं था, और इंटरेस्ट नहीं था तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा। तो जितने भी मीडिया आउटलेट पहले पैसे लगा रहे थे, जिनके जरिए वो हीलियम खरीद पा रहा था इन गुब्बारों के लिए, वो लोग अब पीछे हट चुके थे।

पर योशिकाज़ु, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये बंदा बहुत ढीठ है, ये नहीं पीछे हटने वाला था, वो तो अपने चैलेंज की तरफ, अगले चैलेंज की तरफ बढ़ चला। इस बार उसने डिसाइड किया कि यार चेयर वेयर नहीं, इस बार मैं पहले वाला तरीका अपनाऊंगा जो मैंने मेले में अप्लाई किया था। तो उसने एक स्पेशल गोंडोला बनवाया और उसको नाम भी दिया, नाम क्या दिया, मॉडल फैंटेसी। फैंटेसी इसलिए क्योंकि उसकी फैंटेसी थी कि वो आसमान में फ्रीली उड़ सके अपने फेवरेट चीज इन बलून्स के साथ। ये गोंडोला जो था ये 2x2 मीटर का था और 1 मीटर डीप था। इसे एक स्पेशल जैपनीज साइप्रस मटेरियल से बनाया गया था ताकि बॉयंसी रहे, बेसिकली फ्लोट हो सके पानी के ऊपर, इन केस वो ओशन में अगर गिरता है तो, समुद्र में, पैसिफिक ओशन में गिरता है, इन केस। इस गोंडोला से उसने अटैच किए 6 6 मीटर के बलून और 26 3 मीटर के बलून्स। इसमें उसका प्लान था कि वो पैसिफिक ओशन क्रॉस करके नवाडा तक जाएगा और एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस फैलाएगा। तो आई तारीख 23 नवंबर 1992, 23rd of November 1992। इस वक्त योशिकाज़ु 52 साल का था, 52 years old। इस वक्त वो लेक बीवा के पास तैयार हो रहा था। ये जापान की लार्जेस्ट लेक है। यहां उसे कुछ टेस्ट फ्लाइट्स लेनी थी और इसकी उसने परमिशन ले ली थी। वो एक रात पहले इस कदर तैयारी कर रहा था कि वो अपने घर के अंदर जाके सोया भी नहीं, वो बलून्स के साथ ही लेटा रहा, खुद से बांध के उसे जमीन से गाड़ के, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई बलून्स चोरी कर लेगा तैयारी में कमी हो जाएगी, तो वो रात भर बाहर रहा। कुछ बलून जो थे उनमें से हीलियम लीक हो रही थी और उस पर योशिकाज़ु ने डक्ट टेप लगा लिया था। उसने जहां पे ये टेस्ट फ्लाइट लेनी थी उस लेक के पास, वहां पे उसने अपने पुराने प्रोफेसर जो थे उनको बुलाया, अपने ही कॉलेज के साथ स्टूडेंट्स को बुलाया और अपने कुछ सपोर्टर्स, न्यूज रिपोर्टर्स, इन सबको इकट्ठा किया। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से जापान की उस वक्त उसने परमिशन ली थी, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, भाई देखो ये पैसिफिक ओशन के ऊपर जाने वाने के सपने मत देखो, तुम्हें अलाउड है सिर्फ 300 मीटर तक जाने का और वो भी जमीन से कनेक्ट रहते रहते, इससे ऊपर नहीं और क्रॉस करने का तो सोचना भी मत। मगर योशिकाज़ु के प्लान्स वर डिफरेंट। उसने अपने गंडोला में हफ्ते भर का खाना, एक सेलफोन जो बड़ा वाला सेलफोन होता था उस टाइम पे, SOS सिग्नलर जिससे SOS सिग्नल भेज सके, एक पैराशूट और कुछ नेविगेशन के टूल्स जो थे और कुछ कपड़े अपने साथ रख लिए थे। इनफैक्ट बैकग्राउंड में जो स्टोरी चल रही थी, योशिकाज़ु ने अपने खानदान वालों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया था ताकि वो मीडिया की नजरों से दूर रहें, बचे रहें, और उनको बोला कि 3 दिसंबर तक यहीं तक रहना, और साथ में अपनी फैमिली वालों को, अपनी बीवी को बोला, सुनो ये कोरा कागज इसे भर दो, तुम्हें क्या चाहिए अमेरिका से मुझे बताओ, इस पर लिख के दो मुझे। तो वो टेस्ट वेस्ट नहीं करने जा रहा था, वो तो अमेरिका जाने का प्लान कर चुका था पर पता किसी को नहीं था, और कोई उसके सपने के बीच में आए ये योशिकाज़ु को बर्दाश्त नहीं है। तो 23 नवंबर 1992 योशिकाज़ु जैसे ही 120 मीटर पे पहुंचा, टेस्ट बोल के मैं तो टेस्ट कर रहा हूं, फिर थोड़ा और ऊपर गया और 4:20 पे उसने थोड़ी देर में अनाउंस किया चिल्लाते हुए कि दोस्तों मैं चला, और फिर उसने जो रोप थी वो खोल दी। प्रोफेसर ने पूछा, अरे कहां जा रहे हो तुम, तो बोला सर अमेरिका, अमेरिका जा रहा हूं मैं, चला गया। जो रिपोर्टर्स खड़े थे नीचे, फूजी रिपोर्टर टीवी के एक रिपोर्टर ने इमीडिएटली जो सेलफोन उसके पास था उसे कॉल करी, बोला ये तुम क्या कर रहे हो। योशिकाज़ु ने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, जो करने के लिए आया था वही कर रहा हूं। रिपोर्टर ने मुस्कुराया, बोला कि योशिकाज़ु तुम नहीं मानोगे, बस अब ठीक तो है ना। योशिकाज़ु ने बोला हाँ हीलियम थोड़ा सा लीक हो रहा है बलून्स में से, मगर चलेगा। वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ चला था जापान के और उड़ रहा था। उसने रात के 10 बजे के बाद हर घंटे अपने घर वालों को अपडेट की, ये जो सेलफोन अपने साथ लेके आया था, और उन्हें बताते रहता था, अपनी बीवी को अपडेट देते रहता था, बताता था बलून्स जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे हैं, मैं उस हाइट तक तो नहीं पहुंच पाया हूं जो मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है। फिर उसने
जब वो एक ओशन के एरिया के ऊपर पहुंचा तो उसने सिगरेट जलाई और फिर सिगरेट पीते हुए कॉल करी अपनी फैमिली को, बात कर रहा था। इसके बाद कॉल्स बंद हो गई, रात कैसी बीती किसी को नहीं पता क्योंकि उसने किसी से बात नहीं करी। सुबह के 6 बजे उसने अपनी बीवी को बताया, अपडेट की, उसने बताया कि सुनो काश तुम मेरे साथ होती, इतना खूबसूरत नजारा है ना, ये सूरज उगते हुए देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा मंजर है। और सुनो तुम फिक्र मत करो, मैं उतना ही दूर जाऊंगा जितना मैं जा सकता हूं, पर तुमसे दूर कभी नहीं। ये आखिरी सेंटेंस थे योशिकाज़ो के, क्योंकि ये लास्ट कॉल थी उसकी तरफ से। इसके बाद फैमिली वालों ने कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उसने कॉल नहीं उठाया। इनफैक्ट शी ट्राइड कॉलिंग, उसकी वाइफ ने, लेकिन फिर भी कॉल नहीं उठाई। इसी दिन की शाम जब हुई, बेसिकली 24 नवंबर हो चुका था, 24 नवंबर 1992, योशिकाज़ो ने एक SOS सिग्नल भेजा, जिस वजह से जापानीज कोस्ट गार्ड जो थे उन्होंने अपना एक जहाज भेजा, जहाज फैल्कन 900, और यह जहाज जो था वो उसी पॉइंट पर पहुंचा ढूंढने के लिए योशिकाज़ो की, कि वो है कहां। उसकी लोकेशन आ रही थी 800 किलोमीटर ओवर ओशन, ईस्ट ऑफ किनकासन आइलैंड, मियागी प्रीफेक्चर, यानी जापान में ही था वो। उसे जब लोकेट करा गया और जहाज वाले उसे बचाने के लिए गए थे, बाकायदा उसे बचाने के लिए ऑपरेशन था क्योंकि उसने SOS सिग्नल भेजा था, तो वो दूर से उन्हें वेव कर रहा था योशिकाज़ो, क्या नहीं नहीं नहीं मुझे मत बचाओ, कोई जरूरत नहीं मुझे बचाने की। वो बोल नहीं रहा था लेकिन हाथ से इशारा कर रहा था, ऐसे जाने के लिए कहते हैं ना, अरे जाओ जाओ हटो हटो सामने से हटो, वैसे वाले इशारे कर रहा था। इस वक्त योशिकाज़ो हवा में था 2,500 फीट की ऊंचाई पर। पर 4,000 फीट उसे पहुंचना बहुत जरूरी था। उसने इसलिए सामान फेंकना शुरू किया अपने गंडोला से और 4,000 फीट के करीब पहुंच गया। जहाज ही जो भेजा गया था जापानीज कोस्ट गार्ड की तरफ से, ये उसकी गंडोला के अराउंड 3 घंटे तक उड़ा, 3 घंटे इर्द गिर्द, मगर वो इशारा करता रहा कि भाई भाग जाओ, मुझे नहीं चाहिए हो तुम लोग, जाओ मुझे नहीं बचाओ, मैं ठीक हूं, मुझे मत बचाओ मत बचाओ। और उसने SOS सिग्नल भी अपना बंद कर दिया। जब ऐसा हुआ तो जहाज जो है वो मजबूर हो गया एंड वो जहाज लौट गया। उन्होंने रिपोर्ट की कि बलून्स की हालत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने ये भी देखा कि वो अलग सी खुशी में है। ये खबर सुन के कि एटलीस्ट उसे लोकेट कर दिया गया, घर वाले इसी बात से बहुत खुश थे, भले ही वो बात नहीं कर पा रहे थे। पर फिर रिपोर्ट्स आना बंद हो गई, रियलिटी उसकी फैमिली वालों को समझ में आने लगी थी। और जब 12 दिसंबर तक मामला चलता चला गया और कोई खबर नहीं आई, तो फैमिली वालों ने रिक्वेस्ट किया जापानीज अथॉरिटीज से कि सर्च किया जाए। और जापानीज अथॉरिटीज ने सर्च और रेस्क्यू रिक्वेस्ट भेजी रशिया, कनाडा और US वालों को, मगर कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं मिला। कोई साइट सिंग नहीं, कोई समुद्र में रैकेज नहीं, नथिंग। जो एक्सपर्ट्स और मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने बलून्स और इन हीलियम से बहुत रिसर्च किया, काम किया है, उन्होंने बोला कि हीलियम जो है वो कितना भी हो लेकिन 10% हर दिन वो लूज कर रहा होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं था गंडोला, ये इसमें चढ़ के ये अमेरिका पहुंच जाएगा, ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ है। हीलियम हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसकी रेंज बहुत कम होती है, ताकत बहुत कम होती है, और ऊपर से वो लीक भी हो रहा था। और अगर उसे पहुंचना भी था 10,000 फीट पे उसे होना पड़ेगा, तब जाके वो पहुंचेगा, 4,000 फीट पे तो अमेरिका वो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। एक जर्नलिस्ट थे योशितो माओकी, उनकी थ्योरी के हिसाब से वो शायद किसी आइलैंड पर गिरेगा इन कामचाका पेनिनसुला रशिया, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी उसके ट्रेजेक्ट्री को समझते हुए, क्योंकि वो 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट जा रहा था, ये स्पीड बलून्स की थी, मतलब उसकी उड़ान की थी। और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 24 से 48 घंटे के अंदर ही वो हवा में रह सकता है, उसके बाद वो किसी आइलैंड पर ही गिरेगा। रशियन अथॉरिटीज से कहा गया प्लीज आप सर्च करें, रशियन अथॉरिटीज ने कह दिया हाँ जी हमने कर लिया सर्च, पर किया क्या नहीं नोबडी नोज, जवाब था नहीं। एक और शख्स थे, वो ओशियनोग्राफर थे फ्रॉम टोक्यो मरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और काफी एक्सपर्ट थे ओशन के मामले में। उन्होंने बोला कि अगर वो ओशन में गिरा है तो एक जगह बताई, यहां गिरा होगा अलूशन आइलैंड्स के पास नियर अलास्का, या तो यहां गिरा होगा तो रैकेज मिल जाएगा, या जो ओशन करंट्स हैं उसे वो जापान की तरफ वापस धकेल देंगे, और यही हो सकता है। ये सुन के भी फैमिली बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी कि हो सकता है वो वापस आ जाए। किसी का कहना था कि वो जापान वापस आ चुका है लेकिन साइलेंटली कहीं किसी कोने में रह रहा है।
पर जापान में ये बहुत आम बात थी. I'll tell you something more. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और जापान में रहते हैं. इनको evaporated people भी कहा जाता है. योशिकाज़ु लेकिन ऐसा करेगा नहीं बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग थी. अगर आप मुझसे पूछे तो वो ओशन में ही गिरा होगा बिकॉज टिल डेट वी डोंट नो. अगर क्योंकि उसके गंडोला से रेडार रिफ्लेक्टर लगे हुए थे तो रशियन कैनेडियन टेरिटरी कहीं पर भी होता तो वो रेडार में आता, उनके किसी रेडार में आया ही नहीं. वो मौसम भी ठीक था. बट एक और फैक्टर है, लोगों ने बोला कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत भारी था मगर लाइफ इंश्योरेंस का फायदा नहीं हुआ. फैमिली ने वो कर्जा धीरे धीरे ही चुकाया, बहुत मुश्किल से चुकाया. एंड 3 साल बाद जब वो गायब हो गया, कोई खबर नहीं आई, तो उनकी वाइफ को, योशिकाज़ु की वाइफ को साइलेंट कॉल्स आना शुरू हुई. कई सारी कॉल्स आती थी और उनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस जस्ट कॉल्स होती थी. लेकिन 7 साल जब बीत गए तो फिर खानदान वालों को बहुत पेन के साथ, पेनफुली, लीगली डेथ सर्टिफिकेट मांगना पड़ा और जापानीज अथॉरिटीज ने वो दिया भी. 1 फरवरी 2001 को ऑन डॉक्यूमेंट्स उनको डेड मान लिया गया. एंड एक किताब भी लिखी योशिकाज़ु की वाइफ ने और किताब का नाम लिखा बलून मैन ट्यूनिंग. उनकी वाइफ ने 2016 तक उनका इंतजार किया, फिर एक पोर्चुगीज आदमी के साथ उन्होंने शादी भी कर ली. हालांकि शादी लंबी चल नहीं पाई, 1 साल बाद उन्हें ब्लड कैंसर हुआ और वो भी चल बसी. योशिकाज़ु के जो बच्चे थे उनके दिल में आज भी उनके लिए बहुत इज्जत है एंड एक मोहब्बत है. इनफैक्ट उनके एक दामाद, उनकी बेटी ने शादी वादी कर ली तो उनके दामाद ने अपने ससुर से इंस्पायर्ड होकर बहुत कुछ किया. म्यूजिक में आए, उन्होंने भी सफ़र करने की कोशिश करी लेकिन बाकायदा हॉट एयर बलून से. बट ही इज़ रियली रियली इंस्पायर्ड कि उनके ससुर इतने ज़बरदस्त इंसान थे. सबके चेहरे पे सैडनेस है बट अगर मुझसे आप पूछें योशिकाज़ु की लाइफ के बारे में तो मैं पर्सनली क्योंकि इतने स्टोरी को पढ़ चुका हूँ, जान चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो सेल्फिश था. इज जस्ट दैट वो थोड़ा सा ज़्यादा ही सीधा था फॉर द वर्ल्ड. बट ही वॉज वेरी जेन्युइन. छत तोड़ के उसने सॉरी नहीं बोला एक औरत की छत पे गिरा, बट आई थिंक वो उसका इंटेंशन ही नहीं था. ही वुड वांट, कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मगर जिस हिसाब से वो अपने सपने के लिए लगातार लड़ता रहा, जिस हिसाब से वो लगातार टिका रहा, उसकी बहुत इज्जत करता हूं. और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये चीज है कि मैं सोचता हूं कि शायद इट्स जस्ट यू नो अजम्पशन कि योशिकाज़ु शायद किसी आइलैंड पे गिरा हो और मौज मस्ती कर रहा हो. आई जस्ट रियली वांट टू बिलीव दिस. बट बहरहाल ये थी कहानी द बलून मैन ऑफ जापान की. बाकी आपके हवाले, 666-22107 नंबर है, 666-22107. आप मुझे प्लीज़ बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी. 666-22107 पर लेट मी नो.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई देखिए मैंने आपको कहानी सुना दी है, कैसी लगी है आपको बतानी है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये आज मैंने आप ही के कहने पे थोड़ी लंबी कहानी सुनाई थी। बट इफ़ यू हैव हर्ड द स्टोरी प्लीज़ प्लीज़ लेट मी नो। इन कहानियों पे बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी पढ़ाई हो जाती है, पर आपके मैसेजेस सच में बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं, बहुत रिवॉर्डिंग होते हैं। तो ज़रूर बताइएगा इफ़ यू हैव हर्ड द स्टोरी, आई वुड लव टू नो। एक गाने के बाद मिले मैं अच्छी आवाज़ निकाल लेता हूँ उससे। Desperado।

0: नहीं, तो ख़त्म ही हो गया, मैं गाने वाला था आगे। अस्सलाम वालेकुम, 8:14 हो रहे हैं और आते के साथ एक कॉल आ गई। वाह, चलो जी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे क्या हुआ? वालेकुम सलाम।
0: हाँ बाटी, क्या हाल है?
1: ठीक है भाई, गाना खत्म होते ही तुम्हारा भाई पहले तुम्हारे को कॉल लगाया।
0: भाई एकदम आगे जा रहे हो दुनिया से। बताओ भाई।
1: अरे नहीं, दुनिया से आगे नहीं जा रहे, दुनिया मान के आगे पहुंचा रहे।
0: सही है भाई, सही है, ये होना चाहिए। लोकल ट्रेन का ये तो सफर करने का फायदा है, दुनिया समझ में आ जाती है। बताओ भाई,
1: समझ में आ जाती है भाई। अच्छा कबीर भाई, एक सवाल है
0: जी भाई।
1: मुंबई जाएंगे तुम तो, यानी दो चीज करना है तुमको।
0: क्या भाई?
1: लोकल ट्रेन या वड़ा पाव?
0: भाई वड़ा पाव भाई, लोकल ट्रेन देख के मैं डर गया था भाई।

0: ऊपर का व्यू देखा था मैंने, इतने सारे लोग जिंदगी मैंने एक साथ नहीं देखे भाई, मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है, एक बार ट्राई किया था।
1: लोकल ट्रेन में भाई सफर करो भाई, बहुत मजा आता है कसम से। वो
0: इतना
1: तकलीफ नहीं देगा,
0: इतना मजा मुझे चाहिए नहीं, समझ रहे इतना मजे के लिए मैं तैयार नहीं हूँ।
1: तुम यकीन नहीं मानेंगे, सुबह सुबह की जो ट्रेन होती है ना, बंदा जब चढ़ता ना उसके अंदर, लोकल के अंदर, उसको खाली फुकट की मसाज मिलती है भाई हम लोग के उधर।
0: हाँ वो मैं जानता हूँ ना भाई, वो मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, वही देख के तो मैं थोड़ा सा खौफजदा घूमता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता।
1: एक दिन मेरे पापा और मैं मतलब जा रहे थे कोई काम से चर्च गेट जोगेश्वरी से, हम लोग जोगेश्वरी में रहते और जा रहे थे चर्च गेट, तो हम लोग अंधेरी थे, फास्ट ट्रैक पकड़ने वाले थे, फास्ट ट्रैक पकड़ लिया हम लोग ने, और हम लोग ने गलती क्या करे, चढ़ गए डब्बे में, और मेरे पापा की ना उस दिन थोड़ी तबीयत भी नाजुक थी और उनका बॉडी भी पेन हो रही थी, मतलब पापा क्या हो गया, तो बोले बेटा बॉडी बहुत पेन हो रही है, काम करते टैक्सी पकड़ दे, मतलब पापा खत्म टेंशन नहीं लो चलो मेरे साथ में, अपने अब्बा को अंदर घुसा दिया भाई। तो मेरे पापा चढ़ गए, उतर क्या बोलते, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है पूरी बॉडी मस्त हो गई।
0: नहीं वहां पे वो सैंडविच बनने फायदा होता है। वैसे आप कहानी तो सुन नहीं पाए आसिफ भाई, आज
1: मैं बोला ना भाई तुम्हारे को मैसेज में, भाई थोड़ी सुना पूरी सुना दो।
0: कल मैंने सुना है आसिफ भाई बता रहे थे आपने जो है बोलना छोड़ दिया, कल मैं शो में सुन रहा था, आप सरवर भाई को बता रहे थे कि आपने बोलना छोड़ दिया है, अब मैं जो हूँ कोई
1: नहीं भाई,
0: क्या
1: मतलब
0: कुछ तो था
1: मतलब,
0: हाँ
1: वो क्या है मतलब भाई, मतलब थोड़ा मतलब अलग सी बात है वो।
0: आज भाई को सीरियस सुना मैंने, तो मैंने इस बारे में पूछूंगा तो सही। ठीक है,
1: थोड़ा मतलब क्या साइलेंट हो गया भाई, पहले मतलब बहुत बात करने का, सबसे आगे जाने का, सबसे आगे बढ़ के कदम रखने का।
0: चिल भाई दुनिया को सीरियसली नहीं लेने का भाई, एकदम चिल क्या,
1: दुनिया वाले भी तो अपने ना भाई।
0: अरे ये ज्यादा अपना मत करो यार, चिल करो यार आसिफ भाई, एकदम रिलैक्स।
1: नहीं बिल्कुल, मैं तो बोला ना भाई अपन तो एक ही काम करते, 107 पे आते, टाइम पास करते,
0: बढ़िया
1: भाई,
0: भाई।
1: दुआ करते, गाने सुनते,
0: और ज्यादा दिमाग को चिल करना हो तो दिल्ली चलो साथ में, एकदम चिल करा के भेजेंगे।
1: दिल्ली में लोनी में गाजियाबाद में था मैं, 7 साल था मैं।
0: आप थोड़े उस तरफ चले गए, आपको जरूरत है थोड़ा हरियाणा की तरफ जाने की, एकदम सुधर गया होगा। ठीक है, तो ये भी अलग, जैसे आपने लोकल ट्रेन का बताया, ये भी दिमाग का मसाज है, मिल जाएगा कभी दिल्ली चलना। पर शुक्रिया आसिफ भाई, भेजूं। हाँ बोलो ना
1: यार, एक गाना बजाता था भाई,
0: बजाएंगे ना भाई, बिल्कुल बजाएंगे, एक से बढ़कर एक बजाएंगे।
1: तुम्हारे पसंदीदा मतलब जो हम लोग को पसंद आवे,
0: बिल्कुल चलाएंगे। अभी देखो आपके वॉल्यूम बढ़ते,
1: टेंशन मत लो, गाना बजा दो भाई फिर।
0: अरे क्या क्या चला दो,
1: शक्ति का गाना बजा दो भाई,
0: इतना पीछे मत जाओ, चला दूंगा जरूर भेजूंगा इनके मैसेज। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, स्टोरी इज नाइस एंड आई एंजॉयड ड्यूरिंग वॉशिंग माय कार एंड खुद टाइम इज पास्ट, चलो अच्छा है, टाइम निकालने में टाइम पास हो गया। वो तमीम भाई ने मैसेज किया, देन मैसेज आया है अमन जमाल भाई का, कह रहे हैं कि कहानी सुन के मैं सुजुकी योशिकाज़ु के बारे में ही बोलूँगा कि मुझे यकीन है कि वो जिंदा तो नहीं है, मगर हाँ इस कहानी में ये है कि कुछ भी हो उसने उधारी तो अपने हाथ में होती, कितना कर्जा चढ़े कितना नहीं चढ़े, आई एग्री, मगर पता है उसकी वीडियोस में देखेंगे ना आप, हमेशा उसके चेहरे पे आपको स्माइल ही दिखेगी, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन हिज वीडियोस एज वेल, योशिकाज़ु पूरा स्टडी करके बैठा हूँ मैं, मतलब यार कितना ऑनेस्ट किस्म का आदमी है इन अ वे, कि इसे अपनी प्रॉब्लम पता है, सेल्फ अवेयर है, दुनिया की इसे पड़ी नहीं है, है थोड़ा सनकी पर ठीक है ना, ठीक है। क्या गलत है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी कमाल भाई, कैसे मेरा भाई?
2: भाई क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई एकदम शानदार,
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वो जिद्दी आदमी था भाई।
0: हाँ ना, बहुत जिद्दी आदमी था, बहुत
2: बहुत जिद्दी आदमी था। और वैसा ढीठ होना भी चाहिए, किसी काम के लिए दिल लगाने के लिए वैसे ढीठ चाहिए।
0: हाँ मुझे लगता है कि समटाइम्स ना लोग ओवर जज कर लेते हैं ऐसे लोगों को, आप पता नहीं ऐसी दुनिया में होते नहीं होते, बट ये जिद चाहिए।
2: नहीं जिद चाहिए, जैसे अपनी भी वही आदत है, अगर कोई काम शुरू किया है ना, चाहे उसको जला के मानेंगे या तो बना के मानेंगे,
0: बीच का कोई रास्ता नहीं है।
2: बीच का रास्ता ही नहीं है।
0: हाँ तो वही आई एग्री कि उसके हो सकता है उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट ना हो, बिजनेस करना नहीं आता हो, मैं मानता हूँ, पर जो उसके अंदर मोटिवेशन था वो सीखने वाली।
2: उसने हाँ उसने तो बहुत कोशिश की है ना।
0: हाँ उसने तो
2: कुछ ना कुछ बनूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, हाँ इसलिए ढीठ आदमी होना ही चाहिए। और भाई आपको क्या नाम दिया जाए भाई, बुरा नहीं मानना। हाँ मेरे को तो लगता है आपको एनिमल मैन दिया जाए।
0: हाँ बलून मैन। मैं भी कुछ अच्छा सा जापानीज़ में नाम सोच के रखूंगा, वो अभी तो एक भाई ने खोजी बोला,
2: सोच के रखिए भाई। हाँ घोड़े की आवाज़, मैं ही खोजी बताया था भाई आपको।
0: आपने बताया था खोजी। हाँ
2: आपने घोड़े की आवाज़ इतनी अच्छी निकाल ली है, उसके बाद जो है

0: कल क्या, कल क्या?
1: कल भी कुछ बेचा है आपने?
0: हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ तो डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ। पर वो जो है ना वो आवाज जो देसी आइसक्रीम वालों की आती है तो वो निकालने के लिए लोग बोलते हैं। आप क्या भी आते होंगे आइसक्रीम वाले, वो साइकिल पे आते थे, याद है आपको?
1: हाँ आते हैं ना आइसक्रीम वाले, पाव वाले आते रहते हैं,
0: वो आवाज निकालते ना आइसक्रीम, वो पूरा नहीं बोलते आइसक्रीम, मतलब आधा बोलते
1: है। और ये भाई अभी बात जो कर रहे थे ट्रेन की, वाकई में बॉम्बे के लोकल ट्रेन में चढ़ने का मकसद ये है ना भाई कि आप इतने जो है फुर्तीले, जैसे आपकी कहानी सुन के, आपकी बातें सुन के जो इंसान को जोश आता है ना, आप कितने भी सुस्त रहे लोकल ट्रेन में चढ़ जाइए सुबह के टाइम पे या तो शाम के टाइम पे, देखिए फुर्ती
0: भाई। मैंने फुर्ती है, मैंने देखा कि जो लोग वहां पे अपने बैग्स बचाते हैं वो भी एक कला है भाई लोकल ट्रेन में सामान बचाना।
1: लोकल ट्रेन में और बॉम्बे के बस के अंदर और मार्केट में अगर आपने बच के और बचा के अपना सामान निकल के, समझ लो कि आपके अंदर वो कला आ गई,
0: कला आ गई है ना। तो ये यही देख के मैं डर गया था भाई, मुंबई वालों को सलाम है भाई जो लोकल ट्रेन में जाते हैं, गजब की चीज है
1: भाई, एक कला है। हाँ। कैसे मालूम, जो चढ़ना है ना हाँ। अपने आप को ढीला छोड़ दो, पब्लिक चढ़ा देगी। उतरना है, गेट पे खड़े हो जाइए, ढीला छोड़ दीजिए, पब्लिक
0: उतार देगी।
1: हाँ
0: ऑटोमेशन भी चल रही है,
1: कोशिश करोगे नहीं उतर पाओगे।
0: हाँ ये है, ये है, मैंने देखा है, अगर कोशिश करके चढ़ना चाहोगे नहीं चढ़ पाओगे, आगे खड़े रहो, पब्लिक धक्का देके अपने आप डब्बे में आपको चढ़ा देगी, ये तो है। पर सही है कमाल भाई, वैसे कहानी आपको ओवरऑल अच्छी लगी?
1: कहानी बहुत अच्छी थी भाई,
0: थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया।
1: मेहनती इंसान की कहानी थी
0: बात तो है नहीं, अभी एक कहानी है उस पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह वो आएगी, थोड़ी लंबी कहानी है वो सुनाएंगे इंशाल्लाह वीकेंड पे जरूर। ओके मेरा भाई,
1: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए भाई। तो कमाल भाई के बाद जो है एक मैसेज आया है, मैं अभी कॉल करता हूँ अमन भाई आपको। और अहमद भाई कह रहे हैं डोरेमोन दे रहे मेरे नाम, आपका नाम डोरेमोन के वजन पे कोरेमोन। हाँ कोरेमोन, वो जैपनीज वो जो एक्सेंट है ना, ओ ऐसे करके बात करता हूँ, कोरेमोन। ये भी कर लेता हूँ मैं। एक मैसेज है अब्दुल कलाम साहब का, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। एक और मैसेज है आसिफ भाई का, आसिफ भाई हंस रहे हैं। एक मैसेज है ये क्रिस्टल ने मैसेज किया, लिखते हैं बट जेन्युइनली अबाउट द स्टोरी, इट वाज सुपर्ब। और उन्होंने बोला कि सुबह आ हो गया, अब घोड़े की आवाज़ ऐसे लग रहा है जू खुलेगा बिल्कुल, पर उन्होंने कहानी पर लिखा है सुपर्ब। आई मीन पर्सनली आई थिंक योशिकाजु सुजुकी ने बलून्स को देखा एंड सेड या I'll take me across Pacific. Idiot tha, maybe. Brave tha, definitely. Most of us just dream. This guy actually tied himself to a dream and launched it. ऐसा उन्होंने एंड में लिखा है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग ये जानबूझ के तो नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए। अच्छा तो एक मैसेज है अहमद भाई का, लिखते हैं जिंदगी में कुछ पागल प्लान भी ज़रूरी है कहानी से सीखना, ऐसा कुछ लोग होने चाहिए भाई, होने चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ। दिस कहानी मोटिवेटेड मी समवेयर इनसाइड। एक और मैसेज है, गुड मॉर्निंग फवाद भाई ने लिखा है, एज आई अंडरस्टैंड बाय दिस, नेवर लेट योर ड्रीम गो वेस्टेड, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, द बलून मैन स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग भाई। थैंक यू सो मच फवाद भाई, जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया। दर मैसेज है हरपाल सिंह जी का, क्या है, हरपाल संधू जी फ्रॉम दुखान। देन ओके मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, कोई गाल नहीं, एक सेकंड, ये जो व्हाट्सएप पे कॉल करें पाजी, व्हाट्सएप के नंबर पे कॉल मत करो, कोई नहीं उठाने वाला क्योंकि व्हाट्सएप पे नहीं, हमारा नंबर दूसरा है। एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं कॉल तो मिला लूँ। हाँ जी कॉल, जो हमारा प्लान है नाज़िया बहन और सरवर भाई को मैसेज करने का, वो याद रखिएगा, मकसद नहीं भूलना है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, कैसे हैं जी?
0: बढ़िया भाई, आप बताओ।
2: जी मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या कहना चाहेंगे आप
2: जी? मैं तो पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि किसी को भी, हम अपनी फैमिली में किसी को भी मुसीबत में नहीं डालना चाहिए, किसी को भी।
0: बेशक अग्री।
2: बाद में उन्होंने सफर किया, 7 साल बाद दुखी होके डेथ सर्टिफिकेट लिया उन्होंने।
0: हाँ।
2: मतलब कितना दुख झेला होगा उन्होंने, कि हम लोग इस दुनिया में अपनी फैमिली को सुकून देने के लिए हैं, ना कि हम अपनी फैमिली को दुख देने के लिए।
0: राइट राइट।
2: और उसकी वाइफ देखिए किससे शादी की, कहाँ गई, ऐसा सोच के ही आदमी को कदम लेना चाहिए कि इस कदम से मेरी वाइफ तो नहीं दुखी होगी, मैं वापिस आ सकता हूँ। हाँ। ये जरूर सोचना है, इतना भी पागलपन नहीं चाहिए कि खुद को खुद को खुद से भुला के अपने घर वालों को भी भुला दिया जाए कि वो दुनिया के हवाले छोड़ दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं कभी भी करना चाहिए।
0: यहाँ पे दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बोला मैं अग्री करता हूँ आपके बात से भी, जैसे ऐसी सिचुएशंस में कई मरतबा ऐसे जो सपने होते हैं ना, उसमें कई मरतबा पार्टनर्स भी साथ दे देते हैं। आई डोंट नो कैसे क्या होता है, बट

0: इस कहानी में जैसे क्या था कि जो उसकी वाइफ का पैटर्न था, लाइक शी वॉज विद हिम इन अ वे, हालांकि हाँ प्लान उसका बहुत सनकी था, पर उसमें उसकी वाइफ भी साथ दे रही थी, तो ये बड़ा अजीब सा था ऑल अराउंड. तो अब अभी अब ये भी सिचुएशन थी, तो ये भी सिचुएशन आती है कई मर्तबा, राइट?
1: जी, लेकिन खुद ऐसा कदम लेना चाहिए कि उस अपने पार्टनर और अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुंचना चाहिए.
0: ओके ओके.
1: और जैसे मैंने आपको बताया, कर्जा लेना और देना अपने हाथ में होता है, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं. सबसे पहले हमारा फर्ज है कि जो भी हमारे सिर पे कर्जा है वो उतारना है इस दुनिया से जाने से पहले. वो किसी के जिम्मे पे नहीं छोड़ना, ना भाई के, ना बाप के, ना माँ के, ना वाइफ के.
0: राइट, ओके ओके, हाँ, फेयर इनफ.
1: जी, बस बस ये मैंने सीख ली है. मैं बताना चाहता था आपने.
0: नहीं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है.
1: सुनने वालों को
0: नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑफ कोर्स. और आजकल क्या है कि रिस्क फैक्टर थोड़े से बढ़ भी गए हैं, तो आई थिंक इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. ठीक है,
1: अभी मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ, मेरे दिमाग में मैं बलून मैन बनूंगा. नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है.
0: पर आपका कोई ऐसा कुछ ऐसा क्रेजी सा प्लान है कि मतलब आपको लगता है यार ये बहुत ही ज्यादा हटके है, बट I don't know if that is even.
1: नहीं, मेरा प्लान तो मतलब देखिए, दुनिया में बच्चे लोग होते हैं अपने आसपास के, गरीब बच्चे हैं ना, उनको बस थोड़ा सा ये पढ़ाना है मेरा प्लान बस.
0: अच्छा, ये तो
1: जो
0: ये तो
1: गरीब अच्छा बच्चे हैं जिनको कपड़े नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता, एटलीस्ट उनको अपने मोहल्ले वालों को तो हम देख सकते हैं ना. गरीब बच्चे कितने होंगे, 10-12 होंगे. इतना तो हम कमा रहे हैं ना कतर में रह के कि हम 10-12 बच्चों को खाना तो दे सकते हैं ना डेली का.
0: ये तो
1: अपनी जिम्मेवारी, अपनी जिम्मेवारी.
0: ये तो अच्छा अच्छा प्लान है, इंशाल्लाह ये कबूल हो आपका, यह करना चाहिए. तो मतलब ये क्रेजी भी नहीं है, तो अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है.
1: क्रेजी कुछ नहीं है, क्रेजी आइडिया कुछ नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं जी. घर वाले खाने वाले बहुत हैं पीछे, माँ बाप हैं, बच्चे हैं और भाई के बच्चे हैं, वो भी मेरे मुझे बाप ही मानते हैं. वो बहुत प्यार करते हैं, अपने बाप से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं वो.
0: ज्यादा क्रेजी भी नहीं होना है इसलिए, ठीक है.
1: ना ना, मैं क्रेजी नहीं, मैं क्रेजी होने की हालत में हुई नहीं.
0: अच्छा, ठीक है जी, हो गया अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, धन्यवाद
1: जी. ओके, थैंक यू
0: मेरा भाई. तो अमन भाई कह रहे हैं कि देखो भाई, इतना भी क्रेजी नहीं होना है कि दिक्कत हो जाए. एक मैसेज है, ये अंकल चिल करें, ज्यादा ही सीरियस हो गए. हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है. आई कंप्लीटली एग्री. बट क्या है कि मैं इस कहानी से थोड़ा सा लाइक आई एग्री विद हिम टू एन एक्सटेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टोरी, उसका एटलीस्ट एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज ड्रीम जरूर लिया जा सकता है. जिस कदर उसके दिल में एक चीज खुली कि वो होड़क थी ना, वो भी 52 साल की उम्र तक, 52 ईयर्स. उसने तो नहीं सोचा कि मैं 52 साल का हूँ क्या, मुझे गुब्बारे कैसे उड़ाएंगे. ही स्टिल डिड इट. तो वो जो चीज़ है ना, दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज इंस्पायरिंग टू मी, वो वाला पार्ट. बिकॉज आई थिंक वैसा अगर दिमाग है आपका, तो आप भाई कुछ भी पा सकते हैं, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है. आप ऐसे ढीठ गए, सनक गए, पागल बन गए. नियाज भाई, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे कैसे भाई, जबरदस्त स्टोरी, थैंक यू भाई. वैसे कबीर भाई, गुड स्टोरी एंड अमेजिंगली डिलीवर्ड बाय यू, थैंक यू सो मच, दैट रियली रियली रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी. मोइन भाई, थैंक यू सो मच, ये मैं आपको दिल लगा के भेज रहा हूँ. एक मिनट का पूरा वो आया है मैसेज, तो मैं अभी सुनता हूँ, उनकी कोशिश को सलाम. और नसीम भाई ने बेचा एक मैसेज है, कबीर भाई कैन आई कॉल यू? अरे ऑफ कोर्स आई विल कॉल यू कासिर भाई, कोई गाल नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कॉल कर रहा हूँ. सॉरी अबाउट माय सुरेंताल, प्लीज डोंट जज मी, आई एम रैपर बाय चॉइस. उठा लो भाई, उठा लो फोन, तो चक्को पाजी, फोन तो चक्को. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं?
0: मैं जी बढ़िया, आप सुनाओ क्या हाल है?
2: शुक्र मिला आपकी दुआ, सब खैरियत.
0: जी भाई बताइए, क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई?
2: मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो स्टोरी है आज की
0: जी,
2: ये एक क्या मैसेज डिलीवर करती है हम सब लोगों के लिए?
0: नहीं, हर स्टोरी मैसेज डिलीवर करने के लिए नहीं है, ये हम रियल स्टोरी सुबह सुबह सुनाते हैं, तो हर मैसेज का कोई मोटिवेशनल एंगल नहीं है, ये असली केसेस हैं. दिस हैपेंड इन रियल लाइफ, तो इसका फैक्टर सिर्फ मैसेज डिलीवर करना नहीं है. इट्स लाइक यू वॉच अ हॉरर मूवी, पर हॉरर मूवी को आपको मैसेज नहीं दे रही होती ना, तो आप सुनते हैं या देखते हैं फॉर योर ओन डोपामिन, तो आपको अच्छा लगता है सुनना. तो ये है, कोई
2: अगर ये स्टोरी बच्चे वगैरह देखेंगे सुनेंगे तो उनके अंदर भी ये चीज डेवलप होगी कि यार हम भी कुछ जिंदगी में ऐसा करें, तो वो आप क्या समझते हैं? मतलब
0: इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है भाई बच्चे आज के, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में. बच्चों के मैसेज आते हैं, उनके माँ बाप हैं, ये टेंशन उन पर छोड़ दीजिए ना, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं मॉर्निंग में. इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो, चिल करिए, आप अपना सोचिए, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपने गुब्बारा बनाने का सोचा कि मोड़ जाऊंगा, असली खानी रिलैक्स कीजिए, इट्स ओके. देर आर मैनी अदर स्टफ जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस नहीं करने वाली चीज़ है.

0: इट्स ओके, जस्ट अ नॉर्मल स्टोरी, चिल करें,
1: चलें
0: है ना,
1: ठीक,
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ओके। तो इनके बाद अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बहुत रे बहुत बूमिंग साउंड आ रही है। हेलो
2: हेलो
0: हेलो हेलो, क्या नाम है आपका?
2: कबीर भाई, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम भाई।
2: सरदार खान
0: जी, भाई बोलिए
2: भाई। कहानी तो कोई भी हो लेकिन अगर नरेटर आप जैसा है ना तो कमाल है
0: मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को।
2: इतनी बारीकियों पे और जहाँ पॉज लेते हैं और जहाँ पे हद हो गई भाई, कहानी को छोड़ दे। मैं तो आपसे देखता हूँ आप सीन के मुताबिक आप खुद को ढाल लेते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है।
2: कमाल, मैंने नहीं अपनी जिंदगी में ऐसा नरेटर देखा। और मेरा कहानी मैंने सुनी, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा वो इतने हजार फुट पे जा रहा था और वहाँ पे माइनस इतना टेम्परेचर था, तो क्या वो कपड़े वो ठंड के लेके गया था, वो जम नहीं गया?
0: नहीं, वो एक्चुअली पूरा पैक्ड होके वो पहनते ना, ऊपर से नीचे का पूरा सूट होता है जो पैरासोल के ऊपर पहनते, जम सूट टाइप का वैसा पहना हुआ था वो। तो जब उसको लगा कि ज्यादा ही ठंड हो रही है तो उसने वो लाइटर का इस्तेमाल करके वो जलाना शुरू किया।
2: हालांकि आपने उसे देखा नहीं लेकिन आपने बता दिया जैसे आपके सामने सब कुछ कर रहा था वो।
0: थैंक यू सो मच, ये आपका बड़प्पन है कि आप इतने सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच,
2: अल्लाह आपको जिंदगी दे और इसी तरह लोगों को खुश रखे।
0: बहुत
2: और दुआओं में याद रखिए।
0: बहुत मोहब्बत आपको, जज़ाकअल्लाह, बहुत सारा थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो देखिए दोनों ही टाइप की कॉल्स आ गई हैं, एक ओवरली क्रिटिकल और एक ओवरली मोहब्बत। तो मेरा काम तो हो गया, आई नो भाई, रिलैक्स कीजिए। इन ये जो स्टोरीज हैं दीज आर मेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या क्या हुआ है। अब ये नहीं कि बच्चों को इतना इन्फ्लुएंस करें, ओ बच्चे कल ही गुब्बारा खरीद के गंडोला में बैठ के उड़ जाएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, सो चिल। एक मैसेज है, भाई आपका जापान से कोई रिश्ता है क्या, क्योंकि ये नाम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, कैसे कर लेते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं शेख इरफान भाई, मैंने बहुत सारे गेम्स खेले जिसमें ये जापानीज़ वाला जो वर्ल्ड होता है ना, एंड मुझे बड़े बड़े कल्चर बड़ा उनका डिफरेंट है, बड़ा अच्छा लगता है। तो नाम सुनने में इसलिए थोड़ी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जान लिया है। आपका नाम अपडेट टार्जन, हाँ ये सही है, ये नाम चलेगा। या सलाम, कोई बात स्टोरी सेंड कर दीजिए, ऑफकोर्स सेंड करेंगे। एक और कॉल आ रही है, ज़रा उठा ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कबीर भाई
0: जी,
3: मैं भी आज आपका स्टोरी शुरू से सुना तो मैं लोगों का अच्छा लगा, बस आपने अपने तरफ से इस स्टोरी को पेश किया तो इससे हमको सोचना है कि इसमें फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या, और हमें फैसला क्या करना है इसमें, क्या कहाँ तक बात को मतलब लेके हमको इस पे मतलब सीरियस लेना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी तरीके से मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सब्जेक्ट है इसमें। तो अपने आप को खुद हम मतलब ये करें, तैयार करें कि मतलब हाँ इसमें जो अच्छाई है उसको ले लें, बाकी जो चीज को उसको इग्नोर कर दें।
0: हाँ, obviously, obviously, obviously, तो मतलब
3: कि हर मूवी हमको पसंद आए और कभी कभी बिल्कुल नहीं पसंद आती है और फिर वो सुपर हिट हो जाती है। बहुत सी मूवी ऐसी होती है, हाँ भाई मुझे कुछ अफसोस होता, और कोई कोई इतनी अच्छी होती है उसकी ये मतलब कहानी और ये कि और उसे वो फ्लॉप हो जाता है, तो यार सोचते हैं कि यार ये कौन लोग हैं यार इस तरीके से। और ऐसे ही है
0: यार, बताओ ये जो आपने बात बोली ना एकदम सही है। मैंने अभी उनको क्या बोला जो बोल रहे बच्चे इन्फ्लुएंस, मैंने कहा देखो बच्चे जो है वो तमाम चीजों की रील्स देख रहे हैं, ठीक है।
3: तो आपने जवाब दिया कि आजकल के बच्चे इतने ये नहीं है, आजकल के बच्चे
0: आप बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे आज के, क्या समझ रहे हैं आप, ये आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे उल्टा वो। तो
3: बिल्कुल आजकल इतने मतलब हम जितनी आने वाली नस्ल है हम लोगों को सामने वाले को थोड़ा सा मतलब का मकल ही समझती है, ये पक्की बात है। ये आने वाले जितनी जनरेशन है हम अपने आप को बहुत ही मतलब काबिल समझते हैं। हर किसी के हमारे माँ बाप को हम लोग सोच रहे थे कि यार ये लोग तो बड़े पीछे, उसमें इनके कहाँ उतनी पहुँच है, लेकिन जो आने वाले हमारी जनरेशन वो हमारे बच्चे हमारे ऊपर अभी हावी
0: और
3: क्या बस दिन बच्ची है, ऐसे ही है
0: भाई। आपने बिल्कुल इतना ज्यादा सच बोल दिया है ना जिसकी आदत
3: जरूरी नहीं है कि मतलब हर चीज को भाई डायरेक्टर पेश करता है, कोशिश करता है और ये करके कि मतलब हाँ सामने वाले को अच्छा लगे, उसका ये मकसद नहीं होता कि नहीं अब वो पीछे जाके फ्लॉप हो गए और कुछ लोग मुझे बुरा भला कहे, ऐसा नहीं है।
0: नहीं, पर एक फैक्ट एक जो आपने बोली मैं आपकी बात को एंड इस बात से करना चाहूंगा, हर चीज दुनिया में वो फ्लावर्स मतलब फ्लावर ही नहीं होती ना, वो वाली चीज समझने की जरूरत है कि हर चीज आप बोलेंगे हाँ सबसे अच्छी होती है, मोटिवेशन होता है।

0: ऐसा होता है तो हर एवरीथिंग कैन नॉट बी फ्लारी एंड
1: टाइम पास. कोई जरूरी नहीं कि हर वीडियो को तो मतलब उसी तरीके से मतलब हाँ. सामने वाले देखते तो हैं
0: Correct.
1: लेकिन उस तरीके से सामने वाले को कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हर पार्टी को हर उसको हर कोई मतलब एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं
0: Correct.
1: है. हर आदमी अपने हिसाब से फैसला लेता है, बस
0: बिल्कुल
1: बात है.
0: नहीं अब ये आपने बहुत बढ़िया तरीके से बात को रखा, मतलब मैं भी इतने अच्छे से नहीं रख पाया उनके सामने जिस तरह से आपने रखा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ.
1: आप अपने तरफ से कोशिश किए मतलब बस हमें सुन के उसमें मतलब फैसला लेना, उसमें मतलब फैक्ट क्या है, किस तरीके से नेगेटिव और जरूरी है कि हमको भी वही एक्ट करना है.
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत मोहब्बत. थैंक यू सो मच
1: भाई. ओके मैं रईस बात कर रहा था.
0: रईस भाई थैंक यू सो मच, रईस भाई को बहुत सारा प्यार गया. ओके भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. तो रईस भाई के बाद कुछ मैसेज और भी पढ़ेंगे, लेकिन कतर की खबर कुछ देर में आ रही है. परफेक्ट गुरु रंधावा 8:36.

0: मैगा जी, एक बहुत जरूरी जो कॉल है वो मुझे करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ही मोहब्बत से एक भाई ने मुझे मैसेज किया, पहली मरतबा मैसेज किया, और उन्होंने एक कहानी सुनी, उसके बाद उन्होंने मैसेज किया दैट आई रियली रियली लव्ड, तो मैं कॉल लगा दी। सत्य भाई, कैसे मेरा भाई?
1: अरे बढ़िया कबीर भाई, कैसे आप?
0: आई एम रियली सॉरी भाई, उस टाइम कॉल पे था आपका वॉइस नोट, मैंने अब जस्ट अभी सुना जब गाना चल रहा था। आई एम रियली सॉरी, बताइए सत्य भाई, आपको वियना वाली स्टोरी अच्छी लगी थी?
1: अरे वियना वाली स्टोरी बहुत अच्छी थी, और इनफैक्ट मैं आया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और लिटरली मैं गया हेड ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल के ऑफिस में, मैंने उनको बताया, एंड सिंस देन दे आर वेरी एक्टिव कि हाथ धोना ही धोना भाई, बिना हाथ धोए आप किसी भी वार्ड में नहीं जा सकते।
0: अरे वाह।
1: तो और उन्होंने थैंक यू भी बोला कि वो स्टोरी अगर है तो भेजो। मैंने कहा वो स्टोरी तो हिंदी में है, वो इंग्लिश में तो नहीं है, लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा।
0: हाँ, नेट पे पक्का मिल जाएगी, वो तो मैंने हमारी देसी जनता तो मैंने वो अपने हिसाब से नरेट कर दी थी, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इट्स एन ऑनर मेरे भाई, क्या आपने इतनी तवज्जो से सुना, इतने अच्छे से सुना सत्य भाई, रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मेरे भाई।
1: नहीं सही में आपकी कहानी बहुत अच्छी, और मॉर्निंग में तो मतलब दिल बन जाता है, यू नो लाइक इट गिव्स अ मोटिवेशन कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, एंड इफ पीपल वांट्स टू डू समथिंग दे कैन डू इट, ओनली जस्ट दे नीड अ सीयर डिटरमिनेशन। मैं हूँ नोएडा से।
0: अरे आप like नोएडा वाले? अच्छा हाँ ठीक है, हम दिल्ली वाले और नोएडा वाले सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा मुझे पता चला
1: प्रॉपर है तो आपकी आपकी आवाज से पता चलता है आपकी हरियाणवी की जो बोली है वो भी एक अलग ही लेवल की है।
0: थैंक यू सो मच सत्य भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जुड़ गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे, कभी भी आपको वक्त मिले मेरे भाई तो जरूर मैसेज कीजिएगा, आई वुड लव टू। थैंक यू सो मच,
1: और प्लीज प्लीज अगर आप कहानी आज वाली मुझे
0: मैं भेजूंगा भाई, भेजूंगा, फिकर नहीं, मैं भेजूंगा आपको, डोंट वरी।
1: ठीक
0: है मेरा भाई, ख्याल रखिए सत्य, ओके मेरा भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो

इतने प्यारे मैसेजेस भी हैं, आप देखें ना, तो आदमी कैसे नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, आपको आलू का पराठे खिलाए, आई हैव टू थिंग्स टू से, इफ़ यू कैन सेंड मी स्टोरी एवरी डे सो आई कैन सेंड इट टू माई डॉटर, शी इज़ 14 एंड लिव्स इन पाकिस्तान। आप मूवीज़ का बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करो जो आवाज़ मूवीज स्टार्ट होने से पहले आती है, आज से 100 साल पहले वगैरह वगैरह। ज़्यादा ही सिनेमेटिक चाहिए आपको। अरे हैदर भाई, आपने अब ये कह दिया है कि आपकी बिटिया है पाकिस्तान में 14 साल की, उन्हें कहानी भेजनी होती है, तब मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मैं ऑफकोर्स भेजूंगा मेरे भाई, विदाउट फेल, डोंट वरी। एक मैसेज है, वेदना भाई बहुत मेहरबानी, डोंट वरी, चिल। अभी फिलहाल मैं ज़रा कतर में जो खबरें हैं वो मेन खबरें बताता हूँ, बाकी थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द स्टोरी, एंड बहुत मेहनत लगती है। और जो भाई कह रहे थे बच्चे इन्फ्लुएंसर हैं, बच्चे स्टोरी मांग रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, इनको आप टोपी नहीं बना सकते। अच्छा, अब ज़रा मैं खबरों की तरफ बढ़ता हूँ। तो पहली खबर जो है वो ओल्ड दोहा पोर्ट से जुड़ी हुई है। एक बहुत ही मेजर इवेंट जो कि ओल्ड दोहा पोर्ट फिशिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था 2026 का, ये पोस्टपोन कर दिया गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, और इसलिए पोस्टपोन करके थोड़ा आगे कर दिया गया। पहले ये इवेंट होने वाला था 13 से 16 मई को ही ओल्ड दोहा पोर्ट पे। अभी फिशिंग कंपटीशन कब होगा इसकी डेट्स इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगी। ये कतर के मेन हेरिटेज के हिस्से को, मतलब बेसिकली जो फिशिंग ट्रेडिशन है उसे सपोर्ट करता है, लोकल फिशिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए इवेंट है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन इंकरेज करता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कि वो रजिस्टर करें वोकेशनल टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल स्कूल्स में थ्रू एक ऐप जो कि आपको पता ही है, मारिफ। ये पोर्टल है पब्लिक सर्विस के लिए, एंड यहाँ पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, नॉलेज को कैसे स्किल में बदला जाए और स्किल को कैसे अचीवमेंट में बदला जाए, इन सब की इन्फॉर्मेशन है। तो मिनिस्ट्री ने अपने जो ऑनलाइन पेजेस हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी पोस्ट किया है, और जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि आज 12 तारीख हो चुकी है, 14 तक ओपन है थ्रू मारिफ प्लेटफॉर्म, और इसके बारे में पूरी लिस्ट भी है, मतलब आप जाके देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहाँ पर आपको एक ब्रीफ पूरा डेटा मिलेगा। उसमें मेजर स्कूल्स पूरी लिस्ट है, स्पेशलाइजेशंस वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो जाके जरूर जरूर देखें। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन की तरफ से आया कि उन्होंने बाकायदा कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरीके से आप इन जो हवाएं चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं, धूल मिट्टी है, इसमें कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, इससे कई सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। ऑफकोर्स जैसे कि मुझे साइनस की बीमारी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, मुझसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लोग भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिफाजत में रखे। जैसे कि एजमा पेशेंट्स हैं, उनसे कहा गया कि लिमिटेड बाहर जाएं, ज़्यादा ना घूमें, स्पेशली बीचेस और उन एरियाज़ में जहाँ पर धूल मिट्टी के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो लोग आपके घर में जो हैं जिनको रेस्पिरेटरी कंडीशन से गुजरना पड़ता है डेली में, तो उन्हें डस्ट से और इस हवा से थोड़ा सा दूर रखें, बचा के रखें, इनहेलर हमेशा अपने साथ में रखें। एंड अगर आपका काम, ऑब्वियसली कल भी मैं शूज़ में सुन रहा था, माशाल्लाह हमारे शूज़ इतने बेहतरीन हैं, तो ज़रा मास्क मुस्क लगा रखें अगर आपको सच में दिक्कत है और बाहर आपको लगता है कि भाई मेरा तो गला बैठ जाएगा, और आंखों का भी मसला ऐसे में आता है, तो अगर आंखें भी आपकी इफेक्ट हो रही हैं, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली ब्रो। इसके अलावा कतर मैक्सिको सिटी की तरफ से दोनों का बड़ा कमाल का इस टाइम कॉम्बिनेशन है, तो कतर ईयर ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, मेजर कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं मैक्सिको सिटी में भी इस पूरे समर हॉलीडेज़ में। इसमें आर्ट है, फिल्म है, फुटबॉल की हिस्ट्री है, फोटोग्राफी है, एंड क्योंकि ये जो शुरुआत है, ये ऑफिशियल लॉन्च है कतर कैनेडा एंड मैक्सिको ईयर ऑफ कल्चर का, तो मैक्सिको में इसका आगाज़ हो चुका है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द मोमेंटम क्रिएटेड थ्रू कतर्स वर्ल्ड कप जो यहाँ पे 2022 में हुआ था, एंड अमेजिंग इवेंट्स है लाइंड अप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी होने वाली हैं कतर में भी, सो तैयार हो जाइए इस कल्चरल एक्सचेंज के लिए। एंड एक मैसेज है, क्या मैसेज है, एक सेकेंड, आमीन रब्बिल आलमीन, सबकी हिफाजत करें, आमीन आमीन आमीन। तो जो आज कहानी आपने सुनी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई रिसीव्ड टन्स ऑफ लव, सो थैंक यू सो मच। एक मैसेज मैं शुएब भाई का पढ़ देता हूँ, कह रहे हैं ग्रेट वे ऑफ नरेटिंग, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल। अब जरा गाने की तरफ बढ़ेंगे बिकॉज चलाना भी तो है, एक सेकेंड रुको, किधर गया, ये चलाते हैं, आज इसका ये वाला वर्जन सुनते हैं, रुको, ये वाला नहीं, किधर गया, टाइम पे चीज़ नहीं मिलती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, मिल गया, हो गया। तो कहीं पर ट्रैफिक ट्रूफिक लगा हो तो बता देना भाई, मैं दोहा वाला कबीर आपके मैसेज के इंतजार में, एंड आई होप यू लव द स्टोरी, आपको मिल जाएगी, टेंशन फ्री हो जाओ। फाइम अब्दुल्ला एंड डीजे नोनी वाला रिमिक्स।

अभी जिन लोगों के मैसेज आए गुड मॉर्निंग कहते हुए मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे गुड मॉर्निंग अभी भी आए दूसरी शिफ्ट वाली लोग आई. बट बिफोर आई साइन ऑफ मैं बता दूं आज कौन कौन से इंटरनेशनली मार्क्ड दिन है. पता नहीं क्यों दिन मनाए जाते और मैं पता नहीं क्यों हर रोज बोलता हूं, मजबूर हो जाता हूं. दिन ही कैसे, आज है नटी फज डे. किसी को अगर वो फज वज बनाना आता है भाई, बहुत बढ़िया, मुबारक हो. इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ है, पौधों का ख्याल रखें. मैं तो इसलिए नहीं रखता भाई, पौधे अच्छी चीज़ है लेकिन उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है. मैं थोड़ा सा लेट बैक आदमी हूँ, पर जो रखते हैं आई अप्रिशिएट. गार्डनिंग का शौक मेरे दिमाग में है पर कभी वो फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा. इसके अलावा ओडोमीटर डे है.

0: आज और हॉस्पिटल डे है आज, एंड इत्तफाकन बहुत सारे लोग आज डॉक्टर्स नर्सेस इन सब ने मुझे मैसेजेस किया, एंड आई एम शॉक्ड कि आज हॉस्पिटल डे भी है, कमाल है, और आज इंटरनेशनल नर्स डे भी है। तो देयर यू गो, खूबसूरत इत्तफाक, इसे ही कहते हैं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम आपको मिल जाएंगे हर जगह। एंड यू नो कि आज हमारा प्लान किया है दोपहर के शो में, पता है ना, आई होप कि सर्वर भाई ना सुन रहे हो तो कर ले देना मैसेज उन्हें। बाकी इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात कल होगी इंशाल्लाह ताला। अभी न्यूज़ बुलेटिन आप सुनेंगे 9 बजे, बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा
1: सारे, सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा।

0: इसका चौथा एडिशन पीर को दोहा में शुरू हुआ और ये इवेंट कतर के 11 मुख्तलिफ वेन्यूज पर खेला जाएगा और इस मुकाबले में 17 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन शामिल हैं। कतर फुटबॉल एसोसिएशन के अवार्ड सेरेमनी कतर फुटबॉल एसोसिएशन अवार्ड सेरेमनी के दौरान अकरम अफीफ ने 2025-2026 सीजन का बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता। ये उनके करियर का छठा अवार्ड है। रॉजर ग्वेडस ने 2025-2026 सीजन का मंसूर मुफ्ताह टॉप स्कोरर अवार्ड हासिल किया। एफसी बार्सिलोना ने रियल मद्रिद को शिकस्त देकर ला लीगा टाइटल जीता। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में दिल्ली ने पीर को पंजाब को 3 विकेट से शिकस्त दी और आज गुजरात का सामना हैदराबाद से होगा। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे थे एफएम 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाज में आइए।
1: न्यूज हेडलाइंस With Sarwar Mirza.
2: नायब अमीर और कतर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ रेजेंट्स के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल्फानी ने कल दीवान अमीरी में तालीमी साल 2025-2026 के लिए बोर्ड ऑफ रेजेंट्स के चौथे इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को रियासत कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबर अल अहमद अल सबाह की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। बातचीत के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन और ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा काउंसिल ने कल अपने हफ्तवार इजलास के दौरान मुल्क की कौमी सेहत हिकमत अमली 2024 से 2030 का जायजा लिया, जहां अराकीन ने एहतियाती सेहत के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात बेहतर बनाने और सेहत के शोबे में डिजिटल तब्दीली के अमल को वसत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इशाक दार से टेलीफोन राब्ता किया, जिसमें खित्ते में जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ऑफिशियल बयानात के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों पर बातचीत की, जो खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा समझी जा रही हैं। और सामीन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर एफएम 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से साउंड टेक्नीशियन सारा, सोशल मीडिया से इंतखाब आलम और न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन, इस्माइल खान और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: ए बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो दुआ को हकीर समझते हो हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं खता नहीं करते अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे तमीन प्रोग्राम आज की दुआ में आज हम एक जामे और अजीम दुआ सुनाने जा रहे हैं ये दुआ हर मुसलमान के लिए उम्मीद सहारा और अल्लाह की रहमत का वसी दरवाजा है वैसे आपने ये हदीस सुनी होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहाँ उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहाँ आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहाँ कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें। राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवन्स के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी किसी फोटो में खुद को देखकर ये लगा मैं इतना झुका हुआ क्यों लग रहा हूँ, या फिर थोड़ी देर बैठने के बाद बैक ने क्वाइटली कंप्लेन किया हो कि भाई अब उड़ जाओ, अपना पोस्चर ठीक कर लो. एग्जैक्टली आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पोस्चर और स्पाइन हेल्थ की. पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम तब सोचते हैं जब दर्द ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है. उससे पहले हमारा इग्नोरेंस मोड ऑन रहता है, पर स्पाइन हमारी बॉडी का मेन सपोर्ट सिस्टम होता है. जैसे बिल्डिंग के लिए पिलर्स होते हैं, वैसे ही बॉडी के लिए स्पाइन होती है. और जब पोस्चर गलत होता है तो प्रेशर स्पाइन के गलत पार्ट्स पर पड़ता है. फोन देखते वक्त नेक झुकी होती है, लैपटॉप पे काम करते वक्त शोल्डर्स राउंडेड होते हैं, और खड़े होते वक्त वेट एक ही पैर पर पड़ता है. ये सब स्मॉल हैबिट्स जो है इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है. गलत पोस्चर सिर्फ बैक पेन नहीं देता, इससे नेक पेन, हेडेक, शोल्डर स्टिफनेस और कभी कभी फटीग भी हो सकता है. और इंटरेस्टिंग बात ये है, पोस्चर सिर्फ बॉडी को ही नहीं कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है. जब हम सीधा खड़े होते हैं ना तो हम सांस बेटर ले पाते हैं, चेस्ट ओपन होती है और बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है. गुड पोस्चर का मतलब मिलिट्री स्टाइल स्टिफनेस नहीं होता, गुड पोस्चर का मतलब होता है बॉडी को नेचुरल अलाइनमेंट में रखना, ईयर शोल्डर के ऊपर, शोल्डर हिप्स के ऊपर, और इतना याद रखना काफी होता है. और पोस्चर सुधारना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली अवेयरनेस है. हर दिन थोड़ी देर में खुद से पूछो मैं कैसे बैठा हूँ, क्या मैं स्ट्रेट बैठा हूँ. अगर आपको लगता है आप राउंडेड होके बैठे तो सीधे अपनी कमर कर लीजिए. स्मॉल रिमाइंडर्स बहुत हेल्प करते हैं. फोन में अलार्म सेट कर दीजिए कि हर 15 मिनट में वो आपको रिमाइंडर दे कि कैसे बैठे हो. स्टिकी नोट लगा लीजिए हर जगह, ये आप देखते रहेंगे और ये चीज आपकी बॉडी को सिग्नल देती रहेगी. वेल, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पोस्चर के बेस्ट फ्रेंड्स है, स्पेशली कोर और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, तो स्पाइन को नेचुरली सपोर्ट मिलता है. और हाँ, पोस्चर का कनेक्शन स्लीप से भी होता है. गलत स्लीपिंग पोस्चर दिन भर के पेन को थोड़ा और बढ़ा सकता है. स्पाइन को रिस्पेक्ट देना फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो आज थोड़ा केयर, कल कम पेन. और ये एक सिंपल सा रिमाइंडर याद रखिए कि थोड़ा सीधा हो जाइए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, नेक को फ्री कीजिए, क्योंकि जब स्पाइन हेल्दी होती है तो बॉडी ज्यादा स्मूथली मूव करती है, एनर्जी बेटर रहती है और दिन थोड़ा ज्यादा लाइट लगता है. इसलिए याद रखिए, पोस्चर सिर्फ अपीयरेंस नहीं, हेल्थ का फाउंडेशन है. एंड योर हेल्थ मैटर.
3: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति.
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक खास वाकया और एक इंसिडेंट, एक एपिसोड का जो हर कोई याद रखेगा आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में। फुटबॉल के बारे में जब हम बात करेंगे तो एवरीबॉडी विल ऑलवेज टॉक अबाउट दिस परफेक्ट मोमेंट। यह दोस्तों पिछले हफ्ते फुटबॉल हिस्ट्री के लिए एक खास दिन साबित हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर जगह इसकी आवाज फिर भी उतनी जोर से नहीं पहुंची। यह बात हो रही है मैरी लुई एटा के बारे में। मैरी लुई एटा यूनियन बर्लिन के लिए बुंडेसलीगा टच लाइन पर नजर आई। वो यूरोप की टॉप 5 लीग्स में किसी मेंस टीम को कोच करने वाली पहली खातून बन गई। या दोस्तों इस इंसिडेंट के बारे में किसी ने कभी किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में कभी किसी ने नहीं देखा, ना पढ़ा, ना सोशल मीडिया पे सुना। ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं था दोस्तों, ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था। अच्छा, दिलचस्प बात ये रही कि एटा ने खुद स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद किया। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पर रहा। इसके कुछ दिन पहले एक बोल्ड डिसीजन लिया था यूनियन बर्लिन क्लब ने, जब उन्होंने स्टीफन बॉमगार्ड को हटाकर सिर्फ 34 साल की इस कोच पर भरोसा किया। एंड दैट्स व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस न्यूज। और ये कोई आम फैसला नहीं था, क्योंकि एटा पहले भी हिस्ट्री बना चुकी थी। 2023 में वो बुंडेसलीगा की पहली खातून असिस्टेंट कोच बनी थी और फिर उन्होंने फ्रंट से टीम

ईद भी किया, लेकिन इस सफर में सिर्फ तालियां नहीं बजी, बैकलैश भी आया और कई सवालात उठाए गए। और ये सिर्फ दिखाता रहा है कि फुटबॉल को अभी बराबरी तक पहुंचने के लिए काफी रास्ता तय करना पड़ेगा। इटा इस हकीकत से वाकिफ रही, उन्होंने पहले ही पायनियर्स को क्रेडिट दिया, जैसे स्टेफनी फ्रैपर्ट, सलीमा मुकासांगा और योशुमी यामाशिता, जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि विमेन हाईएस्ट लेवल पर भी बिलोंग करती हैं। यानी फुटबॉल की मैदान, फुटबॉल की स्टोरीज के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मगर ये लम्हा और भी बड़ा था, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की कहानी नहीं थी, ये सिस्टम के बदलने की दास्तान। इसलिए दोस्तों ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट रहा, सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं बल्कि एक नॉर्मल फ्यूचर के लिए। और याद रहा कि येटा सिर्फ हिस्ट्री बनाने नहीं आई थी, वो वहाँ अपनी मेहनत, अपनी क्वालिफिकेशंस और फुटबॉल समझ की वजह से थी। और उस दिन जब विसल ब्लो हुई तो वो सिर्फ एक मैच का आगाज नहीं था, फुटबॉल हिस्ट्री में एक नए दौर की शुरुआत। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स आके साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: मोबाइल में देखते देखते आपको एकदम से आपके शहर में हो रहे मेगा इवेंट का एक पोस्टर दिखाई देता है और लिखा है बाय टिकट्स ऑनलाइन। क्लिक करते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन जब इवेंट में जाते हैं तो वो टिकट वैलिड ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम है वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, जैसे ही कोई बड़ा इवेंट कतर में अनाउंस होता है, वैसे ही कई सारी फेक वेबसाइट्स बन जाती हैं जो दावा करती हैं कि वो उस इवेंट की टिकट्स बेच रही हैं। रियल वेबसाइट की ये बिल्कुल रेप्लिका होती है। बहुत ज्यादा गौर से देख के ही फर्क महसूस कर पाएंगे, नॉर्मल नजर भी नहीं आएगा। आप अपनी टिकट्स वहां से परचेस कर लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, अपनी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां शेयर कर देते हैं। जब आप इवेंट में पहुंचते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये टिकट्स तो यहाँ वैलिड ही नहीं है। आपके साथ टिकट स्कैम हो चुका है। किसी भी बड़े इवेंट की टिकट बुक करने से पहले आप ये सोच लें कि आप सही वेबसाइट पे आए हैं। आप ऑथेंटिक वेबसाइट में जाके ही टिकट को परचेस करें, किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पे ना जाएं जो उस वेबसाइट की रेप्लिका हो। जरा गौर फरमाइएगा, टिकट लेने से पहले मेक श्योर करें कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं टिकट को परचेस करने के लिए, वरना आप टिकट तो खरीद लेंगे लेकिन जिसके टिकट आपने खरीदे हैं वो इवेंट एंजॉय नहीं कर पाएंगे और पैसे भी गवा बैठेंगे।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम मिस्टर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। शो लेकर आ गए हैं आपके लिए एक दफा फिर से पेरेंटिंग जर्नी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी ये जर्नी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी टीन ईयर्स की, तो आज भी हम बात करेंगे थोड़ा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन आज हमारी बातचीत होगी टीन कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड टॉकिंग। मतलब इस हवाले से जानेंगे कि जो कम्युनिकेशन का मामला है ये इस एज में ख़ास तौर पर कुछ मतलब ऐसा हो जाता है, कुछ सेंसिटिव मामला बन जाता है और पेरेंट्स अक्सर इसको समझ नहीं रहे होते। तो ये बहुत ही सेंसिटिव और अहम टॉपिक है और आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो टीन कम्युनिकेशन, आपने इसको सुनना है गौर से और साथ साथ समझने की कोशिश भी करनी है। और अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप वालिदैन हैं, टीचर हैं या किसी भी तरह से टीन एजर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ पेरेंट्स को परेशान करती है वो ये है कि उनके बच्चे, खास तौर पर टीनएजर्स, पहले जैसे बात नहीं करते, उनकी बात जो है वो कम हो जाती है, जवाब शॉर्ट हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी ही दुनिया में चले गए हों। कभी आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो बच्चे अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात आपसे शेयर करते थे, आप उनसे सिर्फ ठीक है, नॉर्मल था या कुछ नहीं जैसे जवाब सुनने को मिलते हैं। और फिर पेरेंट्स के दिल में नेचुरली ये सवाल आता है, आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इस एपिसोड का मकसद ये नहीं कि हम कंप्लेन करें या ब्लेम करें, इसका मकसद है हमें समझना है, क्योंकि जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करते तब तक हम बेहतर तरीके से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। टीनेज स्टेज असल में जिंदगी का वो हिस्सा होता है जहां इंसान बहुत तेजी से इमोशनली, मेंटली और सोशली ग्रो कर रहा होता है। ये वो वक्त होता है जब बच्चे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरी सोच क्या है और मैं दुनिया में कहां फिट होता। इस प्रोसेस में नेचुरली उनका बिहेवियर चेंज होता है, वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा प्राइवेट हो जाते हैं और कभी कभी उनका टोन भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने पेरेंट से दूर हो रहे हैं, बल्कि वो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, साइलेंस हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी साइलेंस ग्रोथ का हिस्सा होती है। पेरेंट्स के लिए ये फेस कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को छोटा देखते हैं तो हम उनके सब कुछ, उनको कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उनका स्केड्यूल, उनकी स्टडीज, उनके फ्रेंड्स, उनका रूटीन। लेकिन जब वही बच्चा टीन एज में एंटर करता है तो वो कंट्रोल नेचुरली चैलेंज होने लगता है और यहाँ से कम्युनिकेशन गैप शुरू होता है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि पहले तो सब बताता था, अब कुछ भी शेयर नहीं करता। हम पूछते हैं तो शॉर्ट जवाब

0: फोन पे बिजी रहता है बात नहीं करता लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी होती है दूसरी साइड ये होती है कि टीन अपने अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा होता है स्कूल का प्रेशर फ्रेंड्स का प्रेशर सोशल मीडिया का कंपैरिजन अपनी इमेज का ख्याल ये सब चीजें उसके माइंड में चल रही होती हैं और जब माइंड ओवरलोडेड होता है तो इंसान नेचुरली कम बोलता है आज के एपिसोड में हम आहिस्ता आहिस्ता ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कम्युनिकेशन चेंज होता क्यों है हम पेरेंट्स या एडल्ट्स इसको किस नजर से देख सकते हैं और हम कैसे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं विदाउट प्रेशर विदाउट फाइट्स और विदाउट अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है कम्युनिकेशन असल में समझने का प्रोसेस है और अगर हम सिर्फ अपनी बात को इम्पॉर्टेंट समझें तो फिर ये जो कनेक्शन है हमारा ये वीक होना बिल्कुल एक नेचुरल बात है अब इस एपिसोड का जो टोन है वो कंप्लेन बेस्ड नहीं है ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है एक ऐसा रिफ्लेक्शन जहां हम खुद से पूछते हैं क्या हम सच में सुन रहे हैं या सिर्फ जवाब दे रहे हैं आज के टाइम में जब हर चीज फास्ट हो गई है फास्ट फूड फास्ट इंटरनेट फास्ट लाइफस्टाइल तो रिलेशनशिप्स भी कभी कभी फास्ट एक्सपेक्टेशन का शिकार हो जाते हैं हम चाहते हैं कि बच्चे हर वक्त ओपन हो हर बात शेयर करें और हर चीज एक्सप्लेन करें लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं करती ट्रस्ट और कम्युनिकेशन दोनों टाइम लेते हैं ये इंस्टेंट नहीं होते इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक हेल्दी टीन पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होती है हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे बल्कि सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी डिस्कस करेंगे हम सिंपल सा एक मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए शुरू में प्रोग्राम के कि समझना सुनने से पहले शुरू होता है और अगर हम समझने की नियत रखें तो बातचीत खुद बेहतर हो जाती है लेकिन अगर हम सिर्फ रिएक्ट करने के मूड में हो तो फिर साइलेंस और दूरी बढ़ जाती है तो आइए हम एक नए पर्सपेक्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं जहां हम ब्लेम नहीं करते बल्कि कनेक्ट करते हैं जहां हम कंट्रोल नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं और जहां हम सुनने की कोशिश करते हैं सिर्फ बोलने की नहीं तो अब हम देखते हैं कि टीन एज जो इयर्स हैं असल में होते क्या हैं और इस फेज में इमोशंस और बिहेवियर कैसे चेंज होता है
1: आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग जर्नी ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
0: टीनेज कम्युनिकेशन चेंज क्यों लगती है और कैसे अक्सर पेरेंट्स को ये फील होता है कि बच्चे दूर हो रहे हैं आज हम थोड़ा डीपर जाके समझते हैं कि असल में टीन एज इयर्स होते क्या हैं और इस फेज में इंसान के अंदर क्या चेंज हो रहा होता है सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टीन एज इयर्स कोई प्रॉब्लम स्टेज नहीं होती ये एक डेवलपमेंट स्टेज होती है यानी ये एक वो वक्त होता है जब इंसान बचपन से निकलकर एडल्टहुड की तरफ ग्रो कर रहा होता है और इस ट्रांजिशन में बहुत सी चीजें एक साथ चेंज होती हैं बॉडी माइंड इमोशंस थिंकिंग स्टाइल और सोशल बिहेवियर अगर हम इस फेज को समझना चाहते हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि टीन एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता वो एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है और वर्क इन प्रोग्रेस चीजें कभी स्टेबल नहीं होती कभी कंफ्यूज होती हैं कभी बिल्कुल उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस एज में

सबसे बड़ा चेंज इमोशनल होता है. एक टीन कभी बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और अगले ही पल वो इनसिक्योर हो सकता है. कभी उसे लगता है कि वो सब कुछ समझ गया है और कभी लगता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा. ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल नॉर्मल है. इसका रीजन ये होता है कि ब्रेन का इमोशनल हिस्सा बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल वाला हिस्सा अभी भी फुली मैच्योर नहीं होता. इसलिए रिएक्शंस कभी कभी इंटेंस हो जाते हैं. छोटी बात पर ओवर रिएक्शन या कभी साइलेंट विड्रॉल पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता है. वो सोचते हैं कि पहले तो भाई ऐसा नहीं होता था, लेकिन असल में पहले बच्चे का वर्ल्ड छोटा होता है, घर, स्कूल, रूटीन. अब उसका वर्ल्ड बड़ा हो रहा होता है, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, आइडेंटिटी, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस. जब वर्ल्ड एक्सपेंड होता है तो प्रेशर भी एक्सपेंड होता है. टीनेजर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, आइडेंटिटी बिल्डिंग. वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो असल में कौन हैं और उनकी चॉइसेस, उनकी सोच, उनका स्टाइल, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स, सब चीजें एक प्रोसेस से गुजर रही होती हैं. इस प्रोसेस में कभी कभी वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट बनने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि वो अपोजिट हो रहे हैं, लेकिन असल में वो अपोजिशन नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन होता है. यानी मैं आप जैसा नहीं हूं, मैं अपना अलग एक आइडेंटिटी बना रहा हूं. यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिटी समझना जरूरी है. टीनेजर्स प्राइवेसी को बहुत सीरियस ले लेते हैं. ये वो स्टेज होती है जहां उनको लगता है कि उनकी पर्सनल स्पेस उनका हक है. वो अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी लाइफ को थोड़ा प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं. इसको पेरेंट कभी कभी डिस्टेंस समझते हैं, लेकिन टीन्स इसको सेल्फ प्रोटेक्शन समझते हैं. ये डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इस एज में सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. फ्रेंड्स, क्लास फेलोज और ऑनलाइन दुनिया, ये सब मिलकर टीन की थिंकिंग को शेप करते हैं. कभी कभी वो चीजें जो घर में नॉर्मल होती हैं, बाहर उनको डिफरेंट नजर आती हैं. इस कंपैरिजन की वजह से भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो कम्युनिकेशन कम हो जाती है. इंसान नेचुरली उन लोगों से ज्यादा बात करता है जहां उसे जजमेंट का डर कम हो. टीन एजर्स को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि ये क्वेश्चनिंग फेज होता है. बच्चे सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि रूल्स को, एक्सपेक्टेशंस को और इवन अपने पेरेंट्स की बातों को भी क्वेश्चन करते हैं. ये रिबेलियन नहीं होती, ये क्रिटिकल थिंकिंग का इनिशियल स्टेज होती है. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स हर क्वेश्चन को डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं, जब हर डिसएग्रीमेंट को एटीट्यूड समझ लिया जाता है. इससे कम्युनिकेशन और ज्यादा क्लोज होने के बजाय ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है. अगर हम इस स्टेज को एक सिंपल एनालॉजी से समझें, तो ये ऐसा है जैसे एक प्लांट ग्रो कर रहा, अगर उसको हर वक्त फोर्स किया जाए कि वो सीधा हो और या फिर उसकी डायरेक्शन कंट्रोल की जाए, तो नेचुरली स्ट्रेस में आ जाता है. लेकिन अगर उसको स्पेस दी जाए ग्रो करने की, तो वो अपनी नेचुरल शेप में डेवलप होता है. टीनेजर्स भी ऐसे ही होते हैं, उनको स्पेस चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, लेकिन गाइडेंस भी चाहिए होती है. बैलेंस यहीं से स्टार्ट होता है. एक और रियलिटी ये है
आपकी इस एज में इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन वीक होता है, यानी वो महसूस तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक्सप्लेन कम कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी साइलेंस या शॉर्ट रिप्लाइज एक्चुअली में लैक ऑफ वर्ड्स होते हैं, ना कि लैक ऑफ फीलिंग्स। पेरेंट्स अक्सर समझते हैं कि अगर बच्चा बात नहीं कर रहा तो उसे फर्क नहीं पता, उसे बहुत फर्क पड़ रहा होता है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। इस फेज को समझना इजी नहीं होता, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम टीन को प्रॉब्लम नहीं बल्कि पर्सन इन डेवलपमेंट समझें। जब हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो रिएक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, और जब रिएक्शंस चेंज होते हैं तो कम्युनिकेशन नेचुरली इम्प्रूव होती है। आज के इस शो का कोर मैसेज ये है कि टीन एज ईयर्स कन्फ्यूजन नहीं बल्कि ग्रोथ का प्रोसेस होता है। अगर हम इस ग्रोथ को समझकर हैंडल करें तो दूरी कम हो सकती है, और अगर हम इसको सिर्फ डिसिप्लिन या कंट्रोल का इशू समझ लें तो गैप बढ़ता लगता है। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन चेंज होने के जो स्पेसिफिक वजह होती हैं वो क्या है, और टीन क्यों अपनी बात शेयर करना कम कर देता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो खुल के बात करते हैं, लेकिन टीन एज में आकर कम्युनिकेशन चेंज क्यों हो जाती है, वो क्यों कम बोलते हैं, शॉर्ट रिप्लाइज क्यों देते हैं, और कभी कभी बिल्कुल ही साइलेंट क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब एक सिंपल चीज नहीं है बल्कि एक मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, और जब तक हम इन फैक्टर्स को समझ नहीं लेते तब तक हम सिर्फ बिहेवियर देखकर कंक्लूजन निकाल लेते हैं जो अक्सर गलत होते हैं। सबसे पहला और मेन रीजन है इंडिपेंडेंस की नीड। टीनेजर्स इस स्टेज पर ये फील करना शुरू कर देते हैं कि वो छोटे बच्चे नहीं रहे। उनको लगता है कि उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, और डिसीजन लेने की एबिलिटी अभी डेवलप हो रही है, इसलिए वो नेचुरली थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर सके। कि डिस्टेंस इमोशनल रिजेक्शन नहीं होता, कि साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है, लेकिन पेरेंट्स इसको कभी कभी दूर हो जाना समझ लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल और एडवाइस ओवरलोड। छोटे बच्चे के साथ हम ज्यादा कंट्रोल यूज करते हैं, कब सोना है, कब पढ़ना है, क्या पहनना है, लेकिन वो टीन स्टेज में अब एंटर कर चुके हैं तो उनको लगता है कि हर बात में इंटरफेरेंस हो रही है, उनकी बात पर हर बात पर उनको एडवाइस मिल रही है, हर चीज पर उनको करेक्शन दी जा रही है, और हर एक्शन पे उनके क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इससे उनके अंदर एक नेचुरल रेजिस्टेंस डेवलप होती है, वो कम बोलना शुरू कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि हर बात पर एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। तीसरा फैक्टर है प्राइवेसी का स्ट्रॉन्ग होना। टीन एज में पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वो स्टेज होती है जहां इंसान अपनी थॉट्स को अपने तक रखना सीखता है, वो अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करता है बिफोर शेयरिंग, और कभी कभी वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलता कि उसे अभी समझ नहीं आया, बल्कि वो महसूस क्या कर रहा है वो ये जानने की कोशिश करता है, लेकिन पेरेंट्स इस साइलेंस को मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। चौथा फैक्टर है इमोशनल सेंसिटिविटी। इस एज में इमोशंस बहुत इजीली ट्रिगर हो जाते हैं, एक छोटी सी बात भी उनको हर्ट कर सकती है, और जब इंसान हर्ट होता है तो या तो डिफेंसिव हो जाता है या फिर विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉल का मतलब होता है कि हम अब कम बात करेंगे,
شارٹ رپلائز دینا یا اوائڈ کرنا. یہ پروٹیکٹیو میکینزم ہوتا ہے, نہ کہ ڈس ریسپیکٹ. پانچواں فیکٹر ہے مس کمیونیکیشن بٹوین

0: nem o Dada. इस तरह के रिस्पॉन्स तीन को इमोशंस को इनवैलिड करते हैं, और जब इमोशंस इनवैलिड हो जाते हैं तो इंसान अपने आप को इमोशनली क्लोज कर देता है। चौथी मिस्टेक है गलत टाइमिंग पर सीरियस कन्वर्सेशन करना। अक्सर पेरेंट्स तब बात स्टार्ट कर देते हैं जब टीन ऑलरेडी टायर्ड, स्ट्रेस्ड या डिस्ट्रैक्टेड होता है, जैसे स्कूल से आके या किसी आर्ग्यूमेंट के बाद। उस वक्त ब्रेन रिसेप्टिव नहीं होता, रिजल्ट ये होता है कि कन्वर्सेशन फाइट में कन्वर्ट हो जाती है या फिर एक साइड साइलेंस चूज कर लेती है। पांचवी मिस्टेक है ओवर मॉनिटरिंग। हर चीज पर नजर रखना, हर एक्टिविटी को क्वेश्चन करना, हर फोन को ट्रैक करना, ये सब चीजें ट्रस्ट को वीकन करती है। टीनेजर को लगता है कि उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा और फिर वो और ज्यादा प्राइवेट हो जाता है, यानी जो चीज कंट्रोल करने के लिए की जाती है वो उल्टा डिस्टेंस क्रिएट करती है। छठी मिस्टेक है कंपैरिजन। तुम अपने कजन जैसे क्यों नहीं हो, फलाना बच्चा कितना अच्छा है और उसके मार्क्स देखो, तुम अपने देखो। कंपैरिजन टीन की सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है, और जब सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है तो कम्युनिकेशन नेचुरली कम हो जाती है। फिर जो मिस्टेक है वो है सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करना। अगर पेरेंट्स सिर्फ बात करें तब कोई इशू हो या फिर मार्क्स, कंप्लेन या बिहेवियर प्रॉब्लम, तो टीन के माइंड में कम्युनिकेशन का मतलब ही प्रॉब्लम बन जाता है। वो नॉर्मल बॉन्डिंग के लिए बात करना कम कर देता है। असल में कम्युनिकेशन को सिर्फ करेक्शन टूल नहीं होना चाहिए बल्कि कनेक्शन टूल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब मिस्टेक्स इंटेंशनल नहीं होती। ज्यादातर पेरेंट्स ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो केयर करते हैं, लेकिन केयर का एक्सप्रेशन अगर इनकरेक्ट हो जाए तो प्रेशर बन जाता है। इसलिए अवेयरनेस ही पहला स्टेप होता है इम्प्रूवमेंट का। और अगर हम ये समझ लें कि टीन को फिक्स नहीं करना बल्कि अंडरस्टैंड करना है तो अप्रोच नेचुरली चेंज हो जाती है। कम्युनिकेशन ब्रेक टीन की गलती नहीं होती, ये इंटरैक्शन की जो स्टाइल है उसका रिजल्ट होता है। अब हम जानते हैं कि लिसनिंग की पावर क्या होती है और कैसे सिर्फ सुनना ही रिलेशनशिप को चेंज कर सकता है, यानी द पावर ऑफ लिसनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सुनना, लिसनिंग, और ये एक इतनी पावर रखती है अपने अंदर कि ये रिलेशनशिप्स को सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म करने वाली स्किल होती है, जबकि बजाहिर ये सिंपल सी लग रही होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब बोलना है, ज्यादा एक्सप्लेन करना, अपनी बात समझाना या अपना पॉइंट प्रूफ करना, लेकिन असल में कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा बोलना नहीं होता बल्कि सुनना होता है। और ये बात टीनेज कम्युनिकेशन में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। टीनेज को सबसे ज्यादा जरूरत किसी सोल्यूशन प्रोवाइडर की नहीं होती बल्कि किसी सेफ लिसनर की होती है। ऐसा इंसान जो उनकी बात को कंप्लीट होने दे, बिना इंटरप्ट किए, बिना जजमेंट किए और बिना फौरन फिक्स करने की कोशिश किए। लेकिन हम अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब भी बच्चा कुछ कहता है हम फौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं, हम सुनते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। असल लिसनिंग सिर्फ कानों से सुनना नहीं होता बल्कि दिल से समझना होता है। जब एक टीन अपनी बात शेयर करता है तो उसका मतलब सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, उसके पीछे फीलिंग्स होती हैं, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या कभी कभी सिर्फ ये डिजायर कि कोई उसे समझे। अगर हम सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करें और अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह जाती है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब टीम बोल रहा हो तो उसे इंटरप्ट ना करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि तुम्हारी बात इम्पॉर्टेंट है. और जब हम बीच में रोक देते हैं तो अननोइंगली हम ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारी बात कंप्लीट होने से पहले ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या सही है. इससे टीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शेयर करना कम कर देता है. लिस्टिंग का एक और बहुत पावरफुल एस्पेक्ट है इमोशनल वैलिडेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात से एग्री करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करें. जैसे मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये मुश्किल लगा होगा, लगता है तुम इस बात से बहुत अपसेट हो गए हो, ये सिचुएशन तुम्हारे लिए स्ट्रेसफुल थी. कि जो छोटी छोटी लाइंस है ना, टीम के अंदर एक सेंस ऑफ सेफ्टी क्रिएट करती है. और जब इंसान सेफ फील करता है तो वो नेचुरली ज्यादा ओपन होता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है साइलेंस का रिस्पेक्ट. हम अक्सर साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. हमें लगता है कि अगर कोई चुप है तो हमें फौरन कुछ बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी साइलेंस प्रोसेसिंग होती है. टीनएज सोच रहा होता है, अपने इमोशन को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है. अगर हम उस साइलेंस को ब्रेक कर दें अननेसेसरी क्वेश्चन से तो प्रेशर में आ जाता है. लिस्टिंग का मतलब ये भी है कि हम हर साइलेंस को फिल ना करें. एक स्ट्रॉन्ग लिसनर वो होता है जो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता बल्कि टोन, एक्सप्रेशन और पॉजेस को भी नोटिस करता है. कभी कभी टीन ठीक हूँ कहता है लेकिन उसकी आवाज कुछ और कह रही होती है. अगर हम सिर्फ वर्ड सुन रहे हों तो हम पूरा मैसेज मिस कर देते हैं. लिस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट कम्युनिकेशन का फाउंडेशन होता है. जब टीम को ये फील होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो वो धीरे धीरे ज्यादा शेयर करना शुरू कर देता है. और जब वो ज्यादा शेयर करता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है. ये एक बहुत सिंपल रियलिटी समझना जरूरी है कि लोग उन लोगों से बात करते हैं जो उन्हें सुनते हैं. अगर हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे हैं तो हम कनेक्शन मिस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम समझने के लिए सुन रहे हैं तो हम रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं. सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक इमोशनल ब्रिज है. और अब हम जानेंगे कि कन्वर्सेशन के लिए सही टाइम क्या होता है और एनवायरनमेंट का उसमें क्या रोल होता है.
1: आप सुन रहे हैं पेरेंटिंग जर्नी ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
0: अगर हम देखें कि सही वक्त का इंतखाब कैसे करना है, अक्सर हम ये समझते हैं कि अगर बात इम्पोर्टेंट है तो उसे फौरन कह देना चाहिए, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है. हर बात का सिर्फ कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसकी टाइमिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है. टीनेजर के साथ कम्युनिकेशन में ये रूल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. सोचिए एक सिचुएशन के एक टीनेज स्कूल से थका हुआ घर आता है, उसके दिमाग में असाइनमेंट्स, फ्रेंड्स, टेस्ट और अपनी पर्सनल थॉट्स चल रही हैं. वो मेंटली ऑलरेडी ओवरलोडेड होता है और उसी वक्त अगर उससे सीरियस बात करना शुरू कर दी जाए, जैसे ग्रेड्स, बिहेवियर या कंप्लेंट्स, तो उसका माइंड उस कन्वर्सेशन को एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं होता. रिजल्ट क्या होता है, या तो वो शॉर्ट रिप्लाई देता है या इरिटेट हो जाता है या फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं सुनना चाहता, इसका मतलब ये होता है कि वो उस वक्त बात सुनने की कैपेसिटी में नहीं है. सही टाइमिंग का मतलब ये है कि हम समझें कि इंसान का इमोशनल स्टेट क्या है. कभी कभी बेस्ट कन्वर्सेशन वो होती हैं जो प्लान नहीं होती बल्कि नेचुरली हैपन होती हैं. जैसे कार में सफर के दौरान, वॉक करते वक्त, खाना खाते वक्त या किसी रिलैक्स्ड मोमेंट में. इन मोमेंट्स में प्रेशर कम होता है और ओपननेस ज्यादा होती है. तीन, अपने आप को सेफ फील करता है और ज्यादा नेचुरली बात करता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है मूड अवेयरनेस. अगर टीन ऑलरेडी गुस्से में है, अपसेट है, ये किसी आर्ग्यूमेंट से गुजर रहा है, तो उस वक्त लेक्चर देना या एक्सप्लेनेशन लेना सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है. उस वक्त इंसान सलूशन नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहा होता है. इसलिए कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स बात करना नहीं होता बल्कि वेट करना होता है. ये वेट करना वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम बार बार रॉन्ग टाइमिंग पर बात करते हैं तो टीन के माइंड पे कम्युनिकेशन का नेगेटिव एसोसिएशन बन जाता है. मतलब उसे लगता है कि जब भी पेरेंट बात करते हैं कुछ ना कुछ इशू होता है और फिर वो नॉर्मल कन्वर्सेशन से भी दूर होना शुरू कर देता है. इसलिए कम्युनिकेशन को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं बनाना चाहिए. कभी कभी सिर्फ कैजुअल बात, लाइट कन्वर्सेशन या फ्रेंडली इंटरेक्शन भी जरूरी होती है. टाइमिंग का एक हिडन एस्पेक्ट ये भी है कि फोर्स्ड कन्वर्सेशन कभी इफेक्टिव नहीं होती. अगर टीन को लगे कि उससे ज़बरदस्ती बात करवाई जा रही है तो नेचुरली डिफेंसिव हो जाता है. लेकिन अगर उसे स्पेस दी जाए तो वो खुद इनिशिएट करने लगता है. बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है. एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखने वाली चीज है, राइट बात गलत वक्त पर कह दी जाए तो वो गलत लगती है और थोड़ी देर से अगर बात वही वाली की जाए तो सही लग सकती है. इसीलिए कम्युनिकेशन में पेशेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि बात अवॉइड की जाए बल्कि इसका मतलब ये होता है कि बात को उस वक्त के लिए सेव किया जाए जब वो एक्सेप्ट की जा सके. तो टाइमिंग कम्युनिकेशन को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है. अगर हम सही वक्त चूज करें तो छोटी सी बात भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकती है और अगर गलत वक्त चूज करें तो इम्पोर्टेंट बात भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है. आज के शो में एक इम्पोर्टेंट जगह पे हम आ गए हैं जहां आप हम सारी बातों को सिंपल से मैसेज में समझने की कोशिश करेंगे. अगर आपने इस पूरी डिस्कशन को फॉलो किया है तो आपने ये देखा होगा कि टीन एज कम्युनिकेशन कोई एक प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि ये एक प्रोसेस होता है ग्रोथ का, अंडरस्टैंडिंग का और रिलेशनशिप को नए लेवल पर ले जाने का. अक्सर पेरेंट्स ये फील करते हैं कि जब बच्चे कम बोलते हैं तो दूरी बढ़ रही है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि साइलेंस हमेशा डिस्कनेक्ट नहीं होता. कभी कभी साइलेंस सिर्फ ये होता है कि टीन अपने अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपनी आइडेंटिटी. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टीन अभी भी अपने पेरेंट्स की ज़रूरत रखता है, बस उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. वो पहले जैसा ओपनली डिपेंड नहीं करता बल्कि अब इमोशनली वो अभी भी कनेक्शन चाहता है. इस जर्नी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट होता है. पेरेंट्स का रोल कंट्रोल करने वाले से सपोर्ट करने वाले में तब्दील होता है. ये ट्रांजिशन आसान नहीं होता लेकिन यही वो पॉइंट है जहां रिलेशनशिप मैच्योर होता है. जब हम सुनना सीख लेते हैं बिना इंटरप्ट किए, जब हम जज करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, जब हम हर बात को प्रॉब्लम नहीं समझते और जब हम टाइमिंग और टोन का ख्याल रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन वापस ओपन होना शुरू हो जाता है. लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी. एक दो अच्छी कन्वर्सेशन रिलेशनशिप को परमानेंटली नहीं बदलती, लेकिन डेली छोटी छोटी रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शंस ट्रस्ट बिल्ड करती हैं. और ट्रस्ट ही वो ब्रिज है जो टीन और पेरेंट्स को कनेक्ट करता है, चाहे फेस कोई भी हो. ये भी समझना जरूरी है कि टीन को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ समझने और गाइड करने की जरूरत होती है. और जब गाइडेंस प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है. इसलिए अप्रोच सिंपल होनी चाहिए, ज्यादा कंट्रोल नहीं बल्कि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा लेक्चर्स नहीं ज्यादा लिस्टिंग, ज्यादा कंपैरिजन नहीं ज्यादा एक्सेप्टेंस. आखिर में एक सिंपल सी बात, टीनेजर्स अपनी दुनिया में चले जाते हैं लेकिन वो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होते, वो सिर्फ अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं. और इस जर्नी में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक ऐसे घर की जहां उन्हें सुना जाए, समझा जाए और इमोशनली फील करवाया जाए कि वो यहाँ पे सेफ है. अगर हम जरा सा पीछे जाकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमने देखा कि टीनेज इयर्स कोई मसला नहीं होता बल्कि एक ट्रांजिशन ही होता है. हमने देखा कि कम्युनिकेशन को चेंज करना जो है वो दूरी का सिग्नल नहीं होता बल्कि ग्रोथ का हिस्सा होता है. हमने ये भी समझा कि ज्यादा बोलना हमेशा बेहतर नहीं होता, कभी कभी सुनना ज्यादा पावरफुल होता है. अगर हम इसको गहराई से देखें तो असल में वो दूर हो ही नहीं रहे, वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड को बिल्ड कर रहे हैं, वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को शेप कर रहे हैं. और इस प्रोसेस में कभी कभी वो कम बोलते हैं, कभी शॉर्ट रिप्लाइज देते हैं और कभी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब होता है कि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो भी वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है. हर चुप रहने वाला बच्चा दूर नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ समझ नहीं पा रहा होता कि क्या बोलना है कैसे बोलना है. और जब हम इस साइलेंस को जजमेंट के बजाय पेशेंस से देखते हैं तो वो ही साइलेंस एक ब्रिज बन सकता है. इस जर्नी में पेरेंट्स का रोल बहुत पावरफुल है, लेकिन ये रोल कंट्रोल का नहीं है, सपोर्ट का है. जैसे मैंने पहले भी कहा, सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि हर बात से एग्री किया जाए, सपोर्ट का मतलब ये है कि बच्चे को सुना जाए, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाए, उसे स्पेस दी जाए और उसे ये फील कराया जाए कि वो सेफ है. जब हम टीन को ये फीलिंग देते हैं कि उसे समझा जा रहा है तो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाता है. और ये कभी भी इंस्टेंट प्रोसेस नहीं होता, ये ग्रेजुअल होता है लेकिन रियल होता है. अगर हम परफेक्ट कन्वर्सेशन का वेट करें तो हम शायद कभी कनेक्ट ही ना कर सकें, लेकिन अगर हम डेली स्मॉल एफर्ट्स करें, एक सॉफ्ट टोन, एक पेशेंट रिस्पॉन्स, एक नॉन जजमेंटल लिसनिंग, तो रिलेशनशिप नेचुरली बिल्ड होने लगती है, हील होने लगती है. जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो दूरी कम हो जाती है, और जब हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं तो दूरी बढ़ जाती है. तो अगर आप एक पेरेंट हैं, एक टीचर हैं या किसी टीन एज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो याद रखें, आपका सबसे पावरफुल टूल आपकी आवाज नहीं बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है. और कभी कभी सिर्फ इतना कह देना भी काफी होता है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा शो सुनने के लिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अनबाय बाय.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: हाला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
1: यू आर लिसनिंग टू
3: आफ्टरनून एक्सप्रेस।
1: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 से दोपहर के 1 तक
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: Afternoon Express.
2: हाँ जी वेलकम अहलन व सहलन खुश आमदी स्वागत हम एंड भाई खासम खास दिन आज क्योंकि गर्मियां जो हैं वो पूरे तरीके से शुरू हो चुकी हैं और यहां पर स्टूडियो में जो माहौल है वो भी इस वक्त गरम गरम हो रहा है क्योंकि नाजिया को बड़ा गुस्सा आ रहा है किसी एक बात पे। अब ये नहीं मालूम कि किस बात पे गुस्सा आ रहा है, ये जानते हैं उनके हुजूर चलते हैं उनसे सलाम दुआ करते हैं उनका हाल अहवाल पूछते हैं और जानते हैं कि आज कैसी हैं नाजिया यहाँ पे।
4: वालेकुम अस्सलाम एंड सलाम सभी दोस्तों को जो बाहर हमें सुन रहे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वाली ट्यूसडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? और सर मिर्जा आपने कैसे ये समझ लिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है? यहाँ पर दोस्तों एक अलग सीन चल रहा था जो आपको सुनाई दे रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट। मिर्जा भाई जो हैं उनको सबसे ज़्यादा डर घबराहट पैनिक ये होती रहती है हर मिनट
2: इनके जो काम है उनको सही करना पड़ता है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। सर मिर्जा
4: को जैसे ही कोई जिम्मेदारी मिलती है कहते हैं अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। इतना ये घबराते हैं हर चीज में कि जो सामने वाला सोच रहा होगा वो भी हाथ धो बैठेगा सोच से। तो मिर्जा बेग लाइफ में ना थोड़ा सा इत्मीनान भी रखना बड़ा जरूरी है, हर चीज में इतनी जल्दी पैनिक नहीं होते।
2: सही कहती हैं आप और असल में नानी दादी भी वही बातें करती थी। जो
4: इस बात पे आ रहा है वो ये कि मिर्जा को ऐसा लगता है कि मुझे ना ये वाले हेडफोन से कम सुनाई देता है तो ये हर 10 मिनट में मेरा हेडफोन बदल लेते हैं। इस चीज पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि चल क्या रहा है ये।
2: चलिए आप
4: 10 मिनट में आपको कैसे ख्याल आता है कि मुझे कम सुनाई दे रहा है। मैं कह रही हूँ अपनी मशीन लेके आई है, मशीन लेके आई है, ये हेडफोन का चक्कर नहीं है, ये कान में अपने ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की बात है।
2: नाजिया जी आप तो माशाल्लाह हेडफोन छोड़िए और मोबाइल फोन छोड़िए आप तो डायरेक्ट सुन लेती हैं आप इंडिया से इधर उधर से आवाजें आपको आती
4: हैं। मैं तो दीवार हूं, वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान, मैं तो वही दीवार हूं।
2: ये वही दीवार है दोस्तों जिससे आपको बातें छुपानी चाहिए, मैं इसी बात पे आ रहा था।
4: दीवारों के भी कान होते हैं,
2: ये जो दीवारों के कान होते हैं ये वही कान है दीवारों का, इधर से उधर उधर से इधर, पल भर में बची नजर और बात गई आपकी उधर, ये वही कान है।
4: तो जिधर पहुंचानी होती है मैंने वहां पहुंचा दी। अब जो लोग झिझकते हैं बात पहुंचाने में लेकिन चाहते भी हैं कि बात पहुंचे तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई डायरेक्टली पहुंचा दो। वाह
2: बहुत अच्छी सोच है आपकी नादिया जी, बहुत ही बेहतरीन।
4: लेकिन सर मेरी एक चीज मैं देखी, सोच के चलते लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं।
2: नहीं ये उनकी
4: ये
2: कमी है,
4: मुझे लगता
2: है ये एक्चुअली लोगों की कमी
4: वही
2: है।
4: मैं कह रही हूँ बताओ,
2: इसमें आपकी कोई कमी थोड़ी है नादिया जी। लोग
4: तो
2: जो है गलत करने नहीं बता रहे बातें, अपने राज शेयर नहीं कर रहे हो।
4: मुझे नहीं, जब आप बुराई कर ही रहे किसी की तो वो बात उस तक पहुंचाइए, बताइए कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बता।
2: और इस चीज के लिए
4: सॉल्व हो जाएगी,
2: आप नादिया से रابطہ कर सकते हैं। तमाम लिसनर को मैं बता रहा हूँ, शाम में 5-7 की क्लास ले रहे हैं आज के लिए 2 घंटे।
4: मुझे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तो स्ट्रेट जाके बताती
2: हूं। वाह,
4: इसीलिए मैं मशहूर हूँ कि एकदम मुंह पे आके कह देती हूं। मैं तो कह देती हूं अपनी बात, मेरा दिल हुआ साफ।
2: तो भाई अपनी बात कहने के लिए आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ जुड़ जाना है और उसके क्या है तरीके, दो है तरीके। पहला तरीका ये कि WhatsApp पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 2 घंटे हमारा और आपका साथ रहने वाला है। ये जो गाड़ी आफ्टरनून एक्सप्रेस है आपकी ये चलती चली जाएगी और आफ्टरनून तक आपको पहुंचा के छोड़ेगी। WhatsApp नंबर है हमारा 6622107, आराम से बताता हूं एक बार, 6662217, ठीक है। और वहीं कॉल करने के लिए नंबर हमारा क्या है ये भी बताता हूं, लाइन भी हम थोड़ी सी देर में ओपन करेंगे। नंबर है 4434437, यानी 443-443-77। ये जो WhatsApp का नंबर मैंने बताया है इस पे हम कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते, इस पे सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस ही हम ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं और आपका आज का जो भी थॉट है वो शेयर कर सकते हैं।
4: यस यस यस।
2: साथ ही साथ अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत अहम है दोस्तों, बहुत जरूरी है एफएम 107 के साथ जुड़ना। और करना क्या है, आपने बस जाकर हमें फॉलो कर लेना है, बहुत आसान है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, टिकटॉक पे, हर जगह हम हाजिर खिदमत हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हैंडल हमारा इसी नाम से है, FM 107। तो भाई वही नाजिया जी की बात पे लाइन जो है ओपन कर दी गई है।
4: कौन सी
2: और
4: बात पे?
2: फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर।
4: कॉलर भी डर रहे हैं।
2: हेलो हेलो हेलो हेलो
5: हेलो
2: हाय
5: हाय,
2: कब आए?
4: मुझे लगा आप कहेंगे बाय।
5: हेलो
2: हेलो

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वाले सलाम जी।
0: जी भाई जान, क्या हाल है? ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, आपकी दुआ है। आप कैसे हैं? ठीक है।
1: अरे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ अगर रहेगी तो कैसे मैं खराब होऊंगा खुदा ना खास्ता। ये तो बस नाजिया जी के चक्कर में थोड़ी लाइफ इधर से उधर हो रही है मेरी, बाकी सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह।
2: कोई जगह से
1: अच्छा कौन है हमारे साथ ये तो बताइए।
0: मैं तैयब खान बात कर रहा हूँ।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, तैयब साहब, नाम में तैयब तो कितने ही तैयब होंगे, माशाल्लाह यार क्या बात है।
0: जज़ाकअल्लाह।
1: अहलन व सहलन तैयब भाई, कैसे हैं? सब खैर है इंशाल्लाह ताला, घर पे फैमिली में आपके साथ, आपकी हेल्थ सेहत वगैरह सब अच्छी है?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी दुआ है
1: अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयब भाई का पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ आज आप?
0: जी पहली बार, पहले बहुत बार ट्राई की है कभी कभी लेकिन नहीं मिला।
1: अच्छा
2: अच्छा,
1: वो असल में नाजिया ने कॉल कनेक्ट नहीं करी होगी, भूल गई होंगी। असल में आंखों में भी जरा परेशानी है, मोतियाबिंद हो गया है, तो उसका हम जल्दी इलाज करवाएंगे तो दिख ही नहीं होगी।
2: आप अपना क्यों नहीं इलाज करा लेते?
1: तैयब भाई पहली बार आए हैं, वो सोचेंगे कि क्या है ये।
2: मैं वही कह रही हूँ, अपने ब्रेन का क्यों नहीं?
1: तो तैयब भाई कहाँ है अभी?
0: मैं इस वक्त अभी मतार में हूँ।
1: मतार में
0: किसी काम के लिए आया था जी।
1: अच्छा चलिए साहब, क्या हाल चाल है? गर्मी वगैरह कैसी हो रही है? मौसम के क्या हाल है?
2: मतलब वो भी वो कहेंगे गर्मी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत प्यारी हो रही है।
1: अच्छी हो रही है बिल्कुल अच्छी अच्छी
2: ये अजीब सा सवाल था, गर्मी कैसी हो रही
0: है? थोड़ी तेज है।
1: तेज है
2: सरवर भाई,
1: थोड़ी तेज है।
2: आपका सवाल ये है कि तकलीफ कैसी हो रही है?
0: महसूस हो रही है,
1: थोड़ी थोड़ी
2: महसूस हो रही है। हाँ गर्मी है तो भाई होगी।
1: तो तैयब भाई आप जुड़ते हैं हमारे साथ, सुनते हैं हमें आफ्टरनून एक्सप्रेस पे, आप कनेक्टेड रहते हैं एफएम 107 के साथ, जुड़ते हैं?
0: जी जी मैं बहुत जुड़ता रहता हूँ लेकिन कॉल पे ये पहली बार है।
1: अहलन व सहलन, क्या कहना चाहते हैं?
0: कुछ बताना, कुछ नंबर आ गया। हाँ,
1: वाह
0: आपको क्या कहने आज। बाकी सब जो हमारे भाई हैं इधर यहाँ पे बंधु हैं उन सब के लिए सलाम दुआ और अल्लाह उनको गर्मी और महसूस करने की ताकत दे।
1: आमीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बड़ा ही अच्छी बात, बड़ा ही अच्छा थॉट और बड़े ही अच्छे ख्यालात तैयब भाई के, क्योंकि खुद नाम तैयब है माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है तैयब भाई आपका?
0: जी मेरा पाकिस्तान पेशावर से।
1: माशाल्लाह
2: माशाल्लाह,
1: बड़ी प्यारी जगह से हैं तैयब भाई। और जी तैयब भाई,
2: आई थिंक थोड़ी देर में हम सवाल जो है वो जरूर पूछेंगे क्योंकि आज का दिन बड़ा खास है। आज हम पर्टिकुलरली सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो जो नर्स हैं, जिस तरह से हमारा ख्याल करती हैं, हमें टेक केयर कर रही होती है, तो उन्हीं के हवाले से सवाल है। तो थोड़ी देर में हम उस टॉपिक पर आएंगे, लेकिन क्योंकि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े तो अभी आपकी ही बात कर लेते हैं।
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया तैयब भाई। और कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मेरी तारीफ वगैरह करना चाहते हैं तो कोई बात
2: नहीं, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, झूठी तारीफ मत कीजिएगा।
1: नहीं करना चाहते?
2: नहीं कह रहे,
0: झूठ बोलते हैं। आपके लिए हम ऐसा करेंगे कि आपके लिए हम खास दावत रखेंगे।
1: हाय हाय हाय हाय तैयब, हाजा तैयब।
2: नहीं वो कह रहे हैं कि मुझे भाई झूठ बोलना आता नहीं, चलो दावत खाना खिला दूंगा।
0: तो तारीफ तो फिर वो आप भी करेंगे और हम भी सामने बैठ के करेंगे।
1: ओ सामने बैठ के होगी शेर व शायरी, महफिल जमेगी?
0: बिल्कुल महफिल जमेगी ना।
1: क्या बात है यार, क्या बात। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और आज ये भी पूरा हुआ कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अभी तक कोशिश कर रहे थे, आगे कनेक्टेड रहिए इंशाल्लाह ताला, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कॉल उठाते रहे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: दुआओं में याद रखिए, खास स्पेशल नाम लेके भूलिएगा नहीं
0: इंशाल्लाह।
1: ओके तैयब भाई, अल्लाह हाफिज।
2: अपना नाम लेके, हां अपना नाम
1: लेके। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: मैंने कहा बेचारे आपके चक्कर में अपना नाम ना भूल जाए, तो अपना नाम लेके अपने लिए दुआ करें
1: यार। नाजिया जी ये इतनी मतलब कहाँ से लेके आती हैं आप शक्ति? मुझे मुझसे
2: मिर्जा, मैं शाम में आपकी तो घर आती
1: हूँ, मुझसे कुड़ने की इतनी शक्ति कहाँ से आती है आपके पास?
2: आप ही से।
1: क्या बात है यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं शाहनवाज, पेशावर से। मैं
1: शाहनवाज भाई कैसे
2: हैं? क्या बात है, कैसे हैं आप?
3: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। शाहनवाज भाई पहली बार बात कर रहे हैं?
3: पहली बार मिला भाई।
1: क्या कहने क्या भाई, नए नए मेहमान, नए नए लोग और बड़े ही प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ जुड़ते हुए। तो शाहनवाज भाई कहाँ पे हैं अभी?
3: मैं अभी इंडस्ट्री
1: सनाहिया में है।
3: सनाहिया में जी।

0: क्या बात है भाई, क्या खासम खास है आज के दिन और क्या लेके आए हमारे लिए?
1: बस मैं तो पहली बार कॉल मिला है, कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता, तो प्रोग्राम पूरा जितना भी प्रोग्राम कर रहा है पूरा सुनता है, लेकिन ट्राई कर रहा है, कभी कॉल मिला नहीं है,
0: आज मिल गया है।
2: चलिए ये बहुत अच्छा हुआ कि आज फाइनली बात हो रही है आपकी हमसे।
1: जी जी,
0: क्या बात है भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतियाब रखे और इसी तरीके से आप हंसते खेलते रहें और हमसे बातचीत भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज साहब हमारे साथ जुड़ने का। आज से आपकी लाइन कनेक्ट हो गई है, अब ये टूटनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये कुछ नए नए माशाल्लाह से लोग तशरीफ लाते हुए, नए से हमारी मुराद ये कि जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रोग्राम आफ्टरनून एक्सप्रेस पे सरवर नाजिया के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली जो है वो बढ़ती चली जा रही है, दिल मिलते चले जा रहे हैं। हेलो, सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम मेरा भाई।
0: अहलेन आसिफ भाई, कैफिल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहां थे यार आसिफ भाई, यार बताओ, 24 घंटे हो गए।
1: मैं तुम्हारे दिल में
0: हो भाई।
2: तभी कह रहे थे ये कि मेरा दिल भारी क्यों लग रहा है।
0: सुना आसिफ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं बोला।
2: आपने आज सुबह सुबह नहीं कहा जी तबीयत भारी
1: भाई, क्या भरोसा, क्या
2: पता
1: तुम लिख के दे दिया उधर।
0: क्या कहने, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो।
2: अरे नहीं नहीं, ये सच में आज सुबह से कह रहे, मेरी तबीयत बड़ी भारी, दिल भारी हो रहा है, दिल भारी हो रहा
0: है। आपने कितनी फिक्र करी, कुछ सोचा आपने कि इसकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ बेचारा निकल ना ले इधर उधर कहीं, इसको कुछ खिला दें पिला दें।
2: तो मैंने तो कितना कहा
0: आसिफ भाई,
2: खा लीजिए, खा लीजिए।
1: इधर उधर निकलने की बात कर रहे क्या भाई? अरे
0: अब आसिफ भाई आए तो पता चला कि ये था मसला आसिफ भाई। क्या कहने, तो आज क्या नई ताजे है, कैसा शुरू हुआ दिन आसिफ भाई?
1: मॉर्निंग में उठने के बाद अपने कबीर भाई दिन को दिन बना डालते सुबह को, दोपहर में तुम
0: कबीर भाई दिन को दिन बना दे रहे हैं और रात को रात बना दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये बहुत खतरनाक आदमी है, चीजें जो है
2: तभी सर्वर ने कहा ना मैं दिन में आऊंगा ना रात दोपहर आऊंगा।
0: ये आदमी तब्दील कर दे रहा, रात में मिलेंगे आप तो ये रात को सुबह बना देगा, और अगर आप सुबह लेंगे तो सुबह में रात बना देगा। ये खतरनाक आदमी, इससे बच के रहने की जरूरत है बहुत। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, कर नहीं पा
1: रहा। नहीं भाई ऐसा नहीं यार, कबीर भाई बहुत बहुत प्यारे आदमी।
0: अच्छा, प्यारे
1: बहुत प्यारे आदमी
0: प्यारे है। मैं चलिए
2: मुझे अब शक हो रहा है,
0: आज देखूंगा जाके दोबारा शक्ल प्यारा है
1: नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता भाई एफएम पे
0: नहीं बोल सकता,
2: बुरा कह रहा है, बुरा नहीं।
0: अरे ये तो आपकी मोहब्बत है यार आसिफ भाई, ये तो आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत भरी नजरें हैं और ये जो मोहब्बत भरा दिल है आपका, इसी की वजह से बस चल रहे हैं हम लोग।
2: तो आसिफ भाई झूठ मत बोलिए, पैरों से आप कहते हैं मैं चलता हूं
0: आसिफ भाई,
2: लेकिन आज सवाल करूंगी मैं, आज मैं जरूर पूछने वाली हूं।
0: मैं आपके हुजूर आ रहा हूं मैम, आप कैसी बात, मैं आपको काट सकता हूं आपकी बात को, मैं आपकी जबान तो काट सकता हूं मतलब बातों बातों में, मगर बात नहीं काट सकता। जी नादिया फरमाइए।
2: अच्छा आज आसिफ जी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्स का दिन है आज 12th ऑफ मई में। तो क्या कभी किसी नर्स ने आपकी आपकी फैमिली की आउट ऑफ वे जाके मदद की और वो पर्टिकुलर मोमेंट आपको याद है?
0: बिल्कुल सही भाई, नर्स में जो खाली लेडीज ही नहीं है, अब तो हमारे माशाल्लाह से भाई अहबाब भी इसमें बहुत खिदमत कर रहे हैं, जिनको हम यूजुअली ब्रदर कह देते हैं, है ना, देखते हुए, क्योंकि उनको हम नर्सेज जो है, लेडीज जो है उनको हम सिस्टर कह देते हैं, वही जो मेल है हजरात उनको हम ब्रदर कह देते हैं। तो आज के दौर में तो हम इस तरीके से बातचीत करते हैं, मगर जो वो काम अंजाम दे रहे हैं उसके लिए सलाम है भाई, खड़े होकर सलाम है और अल्लाह ताला उन लोगों को खैरियत से रखे।
2: आप तो उल्टे खड़े होकर सलाम।
0: हाँ नहीं बिल्कुल, मैं यकीन जानिए कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और जितने नर्स जो हैं, नर्सेस जो हैं आज हमें सुन रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, अगर हमारे साथ कोई कनेक्टेड है इस वक्त हमें सुन रहा है तो प्लीज कॉल कीजिए।
2: हम यही कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ हीरोज हैं, ये हीरोइंस हैं,
0: हेल्थ हीरोज
2: बिल्कुल एक्चुअली हमारे लिए हर वक्त काम करें। इनकी ना सेलिब्रेशंस है, ना शायद अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम दे पाते हैं, और ना शायद ये सोचते भी हैं मतलब दे आर लाइक कंपैशन काइंडनेस, ये इनका रोज के ये इनके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे ये हर रोज कैरी कर रहे हैं.
0: मतलब माशाल्लाह कोई है हमारे साथ साथ तो वो लोग भी होते हैं, इधर हम होते हैं उधर वो होते हैं. तो आसिफ भाई
2: आपने किसकी मदद की?
0: आसिफ भाई क्या कहना चाहते हैं इसके हवाले से?
1: मैं कहना चाहता हूँ

0: मतलब यहाँ की बात नहीं, मुंबई की बात है ये, मतलब हाँ। मेरी बहन को एक प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। मैं नाम ले सकता हूँ प्रॉब्लम
1: का, अवॉइड कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम इतना ही काफी है जी।
0: हाँ वो सब वो पेट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, अपेंडिक्स बोलते
1: ओके ओके।
0: तो वो मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस टाइम पे मतलब पूरा घर हम लोग का मतलब एकदम रोना धोना शुरू हो गया, मेरी बहन तड़प रही थी। उस टाइम पे एक डॉक्टर ने
1: बस्ट हो गया,
0: एक डॉक्टर ने उसने मेरी बहन की जान बचाई थी। मेरी बहन लास्ट स्टेट पे पहुंच चुकी थी, यानी खलास ऑफ का टाइम आ चुका था उसका, मगर उस डॉक्टर ने बोला कि अगर आप एक घंटा लेट होते तो आपकी बेटी ऊपर होती। तो ये डॉक्टर और नर्स दोनों मतलब उन लोगों ने मेरी बहन को मतलब बचाया है, तो मैं इन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत तहे दिल से इज्जत करता हूँ और सलाम एवरी टाइम उन लोग को।
1: क्या बात है भाई,
2: क्या बात है।
1: बिल्कुल इसी तरीके से दुआओं से हमें नवाजना भी चाहिए, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्तसर
0: वो लोग बहुत आगे बढ़कर हम लोग की मतलब केयर करते हैं, बहुत हम लोग आगे बढ़कर हम लोग को बहुत देखभाल करते हैं वो लोग।
1: सही
2: बिल्कुल सही कहा, सल्यूट है वाकई। और जिस तरह से हेल्प, जितना पेशेंस और ये सारी चीजें, क्योंकि हम लोग भी ना अपनी परेशानी में कितने अपसर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, बाद में खुद पे लगता भी है कि अरे क्या क्या सवाल कर रहे थे, बट हम परेशान होते तो इस तरह के सवाल करते हैं, लेकिन वो काफी पेशेंटली हमें हैंडल करती हैं। तो सीरियसली ट्रूली मीन्स अ लॉट टू अस, हम जितना भी इस शो में कहेंगे मुझे लगता है कम ही होगा, क्योंकि जो उनके काम है, जिस तरह से वो हमारी टेक केयर करती हैं, उस सब के आगे तो एक दो शोज तो बहुत ही कम है। आई थिंक थैंक यू सो मच कि आपने उनके इस काम को एक्नॉलेज किया, याद रखा और एक अच्छा सा मैसेज आपने हमें दिया।
0: मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ प्लीज।
1: बिल्कुल बोलिए आसिफ भाई, बिल्कुल बोलिए।
0: ये थोड़ी फनी टाइप फनी है, मैं थोड़ा मतलब नर्स लोग से चिढ़ता क्यों मालूम, वो लोग इंजेक्शन लगाते हैं और मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है अभी तक, क्यों ऐसा?
1: और बहुत ही प्यार से जब इंजेक्शन लगने वाला होता है तो पता ही नहीं लगने देती है कि होने के वाला है, पूछा जाता
0: मैं बोलता हूँ नर्स प्लीज यहाँ मत इंजेक्शन लगाओ, बोलती नहीं इधर ही लगाऊंगी आपको इंजेक्शन, वो लगा डालती है। मैं बोलता हूँ सर हाथ के ऊपर लगाओ।
1: ये भी हमारे अपने लिए ही है। बहुत ही अच्छी बातचीत और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच
0: भाई, गेम खिला दो भाई।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आइए तशरीफ लाइए इंशाल्लाह एक घंटे के बाद, तो जरूर गेम कर दूंगा आज आपके साथ में। ठीक है, मतलब गेम खेलेंगे, हम गेम खेलेंगे। ठीक है आसिफ भाई, ओके ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो भाई ये थे आसिफ भाई, और आज जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं खासम खास नर्सेस डे के ऊपर, आज उन लोगों का दिन, उन लोगों का दिन जो दूसरों का दिन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
3: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह,
1: मैं कसम से यकीन जानिए, मैं
2: मिर्जा सब बाल निकल गए झूठ कसम खा के।
3: अरुण भाई कसम खाने पे अगर मर रहे होते ना लोग, आज ही आपने ना इंसानियत मार दी होती।
2: अरे इन्होंने इतनी कसमें झूठी खाई, इतनी खाई खाई तो दूसरों की, लेकिन अपने बाल एक ही करके निकलते गए। अब मैंने कहा दो बच्चे
3: ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा ना भाई को हमारे, लेकिन है बहुत अच्छे।
1: अहलन व सहलन तला भाई, तला भाई कैसा शुरू हुआ आज का दिन और कैसा चल रहा है, कैसा गुजर रहा है?
3: भाई बेहतरीन बेहतरीन शुरू दिन अल्लाह के नाम से होता है, फिर कभी से बात होती है, फिर आप लोगों से होती है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत से रखे। तो आज खास दिन जो है इसके हवाले से क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं,
2: कोई मैसेज देना चाहते हैं? आपके हिसाब से अच्छी नर्स का क्या मतलब है?
3: सीरियस बात करनी है, सीरियस चलो दिमाग बना।
2: नहीं चलिए जैसा भी कोई आपका अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है नर्स के साथ।
3: भाई शो बैन हो जाएगा आपका, अच्छा मेरा कुछ नहीं जाएगा।
1: नहीं नहीं, हाँ नहीं आप ऐसी, हाँ नहीं फिर तो बेहतर ही है।
2: नहीं आज का दिन स्पेशल है तो हम ऐसा ऐसा नहीं जाएंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हम ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहेंगे। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया तला साहब कि आप हमारे साथ जुड़े।
3: अच्छा बताता हूँ
1: जी जी प्लीज।
3: वाले साहब को ना मेरे 2007 के अंदर हज के बाद आए थे हम लोग, तो उनको ना कैंसर डायग्नोज हो गया था, फिर कुछ अच्छा फाइट करते रहे 2021 में तक हुआ, तो उससे पहले बैक रेटेड हो गए थे। तो उसमें क्या होता है कि नींद के ना बैक सोल्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही होती। तो आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि एक मेल नर्स

0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल।
1: मेल नर्सेस, फीमेल नर्सेस, लिटरली हैट्स ऑफ टू देम, दे मेडिकल स्टाफ।
2: क्या बात, क्या बात।
1: आप और मैं देखें, मुझे खून बर्दाश्त नहीं है, ठीक है, उसी एंड पे मेल नर्सेस डॉक्टर्स जो है ना उसको ट्रीट करते हैं आपके पैरों को, तो ये बहुत बड़ी चीज है, दिल चाहिए भाई इसके लिए।
2: सही,
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, बहुत ही
2: बहुत अच्छी बात की। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहब्बत नवाज़।
1: बाकी जब ये इंजेक्शन लगाते हैं ना उतने जहर लग रहे होते हैं।
2: अल्लाह ताला वो भी भाई हमारे लिए ही है, जब ये
1: अरे नहीं चाहिए भाई, सर्वर भाई कैप्सूल खा लूंगा मैं, नहीं चाहिए वाला हमारे लिए।
0: अच्छा सभी डरते हैं,
1: आप ध्यान दे रहे हो बिला वजह यार करोड़ भाई। आपको लगे ना उस जगह पे जहाँ पे मुझे लगा था, मैं पूछूंगा आपसे।
0: इनको तो पता ही नहीं चलता। अच्छा लग गया, मैंने कहा भी लगने वाला
2: है, चलते चलते लगा लेता
1: यार। हमारा सर्वर हमारा खुदी भाई है ना, तो
0: अरे आपको नहीं पता इतना डरते हैं सर्वर भाई, सिर्फ देखने के ही सर्वर भाई है।
1: मैंने भाई पता चला ये भाई,
0: अरे ये बहुत डरे, बोले मैं बस अभी आ रहा हूँ, नहीं लगवाऊंगा मैं अभी, ब्लड टेस्ट होगा होगा अभी आ रहा
1: हूँ।
0: ये आए नहीं वापस,
1: आए ना जब जब इंजेक्शन की आवाज़ है, आप भाई को याद करना, कहीं पे भी होगा ना पिक कर लूंगा आपको आके, मैं बचाऊंगा आपको इंजेक्शन से।
0: सवाल ये है कि कौन किसे पिक करेगा।
2: हाँ ये बात भी सही है, दोनों तो डर रहे हैं।
1: सरो भाई कर लेंगे यार, सरो भाई मिल बांट के कर लेंगे कुछ ना कुछ।
2: बहुत बहुत अच्छी बात कही दला भाई ने, और मिल बांट के ही
0: आधा आधा
2: लगवा लें, बिल्कुल ये बात भी सही है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तला हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहब्बत नवाजिश, क्योंकि अब हम एड की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई, अजान का वक्त है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब अजान
0: कॉलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्या।
2: अरे बिल्कुल नादिया जी, आप मुझसे पूछ रही है, ये मेरे कान सही सुना मैंने आज,
0: नहीं कानों में तो आपकी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: एहलेन, क्या कॉल उठाई है देखिए आप, क्या बात है भाई,
0: अच्छी कॉल उठी है,
2: कितनी अच्छी कॉल उठी है भाई, वाह
3: वाह, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। लेकिन ये कहते हैं ना इंजेक्शन का खौफ, मौत का खौफ सबसे बड़ा होता है, इंसान अपने हाथ पांव कटवाने को तैयार हो जाता है। एक पैराशूट से बंदे ने जंप लगाया तो नियर टू रीच, उसका पैराशूट नहीं खुल रहा था, उतने इतनी जोर से उस बटन को जो उनके चेस्ट पे होता है उसने पुश किया कि उसकी पसली टूट गई। उसने कहा खैर है पसली टूट गई, जान बचनी चाहिए। ब्राजील में हुआ था। तो इसलिए ये इंजेक्शन वगैरह या इन चीजों का खौफ जब इंसान को पता हो ना जान मुश्किल में है, तो वह इन चीजों को फिर खातर में नहीं लाता। इंजेक्शन इंजेक्शन है जान बचाने के लिए, ये कोई कैनेडी टॉफी थोड़ी है, ये कोई दावत थोड़ी हो रही है।
0: सही बात, आप स्वीट इंजेक्शन
3: चॉकलेट का इंजेक्शन लगा रहा है या आपको कोई आइसक्रीम का इंजेक्शन लगा रहा है, दिस इज फॉर द अपनी जान की सलामती के लिए आप पैसे देते हैं। और वाकई अगर मेडिकल स्टाफ की बात हो रही है, हैट्स ऑफ टू यू ऑल ऑफ देम, उनकी सर्विसेज के लिए, उनके काइंडनेस के लिए। और बाज़ का इस तरह होते हैं जैसे लतीफा सुनाते सुनाते ये चुटकुले सुनाते हैं ना, इसी तरह वो बड़े खुश मिजाज भी होते हैं। अरे आप कुछ होगा ही नहीं, उन्होंने बस हाथ में हाथ रखा, बात किया, आप जरा डीप ब्रीथ लें, आंखें बंद करें, बस उन्होंने काम कर दिया, हो कुछ हुआ ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
3: तो बड़े कंफर्टेबल और बहुत तरीके से, और उनका उनकी उनकी सर्विसेज को बिल्कुल आई अप्रिशिएट। इवन माय डॉटर आल्सो पार्ट ऑफ देम, शी इज इन स्टडीज द सेम फील्ड।
0: अच्छा,
3: तो हमारा काम और इनका, हाँ चीज मेडिकल ना,
0: वो भी नर्सिंग तो की तालीम हासिल कर,
3: नहीं नर्सिंग नहीं, शी इज गोइंग फॉर द एमबीबीएस फॉर द डॉक्टर।
0: अच्छा अच्छा,
3: तो सेम फील्ड, तो इसका मतलब है ये एक बड़ा नोबल फील्ड है। हाँ वो बात नहीं है, हमारे यहाँ अक्सर आता था बच्चों को, मैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनूंगा, वो कहानी खत्म होगी, वो दुखी इंसानियत को मजीद दुखी कर रहे होते हैं, उनकी बात नहीं है।
2: सही,
0: और मुझे लगता है कि ये वाला जो प्रोफेशन है ना नर्सिंग का, स्पेशली नर्सिंग की आज हम बात करें, इंटरनेशनल नर्सेस डे है, तो यहाँ पर जैसे इनको सैलरी मिलनी चाहिए शायद उस तरह से नहीं मिलती, लेकिन हाँ दुआएं जो हैं वो भरपूर मिलती हैं, क्योंकि सारा काम जो है वो इन्हीं का है, आपको हिम्मत देना, हौसला देना।
3: चीजों पे जाएंगे ना आप कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको, और अगर इसमें अगर आप देखें जो लोग सफरिंग करते हैं ना कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको हमेशा गवर्नमेंट या इदारे या वो इनको ना कंपनसेट करते हैं। एक आदमी जो जिसकी जेब में पैसे भी नहीं है, आमतौर पे गरीबी है, वो जान से जा रहा है, वो पैसे शुरू करे तो अपना घर बेचे, चीज़ें बेचे, वो करे, तो वो होता है। इसमें इंसानियत का बड़ा अमल दखल है।

0: और इसको हमेशा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एडी साहब हैं, एडी साहब की मिसाल है जो वॉलंटियरली काम करते थे और वहाँ उन्होंने बॉक्स रखा था कि आपने डालना है डालें नहीं डालना ना डालें, लेकिन लोग जो है ना कम्युनिटीज वो उनको एड्स करती थी वो करती थी, तो वो उनका इतनी पाकिस्तान में सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम उनका था कि कहीं कॉल करें फ्री में, फिर आप अपनी खुद फीलिंग है आपकी जितनी है, उन्होंने नहीं पूछना आप 100 डालें 1000 डालें एंड वी आर गोइंग डोनेटिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। तो इसमें ह्यूमैनिटी जहाँ किसी की जान बचाने का अमल है वहाँ ह्यूमैनिटी आ जाती है, वहाँ फिर आप पैसे को तो कभी किसी को पूरा कर ही नहीं सकते हैं, साइकिल ली तो बाइक लेनी है, बाइक ली तो कार ली तो जहाज लेना है, देयर इज नो बाउंड्री।
1: हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगती है नर्सिंग नर्सेस के हवाले से, वो ये कि डॉक्टर से पहले आप नर्स को अपना पूरा हाल बता रहे होते हो, क्योंकि वो पहले आके आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ क्या है।
0: सही है, तो नर्स अच्छी मिल जाए ना तो आपकी तकलीफ आधी हो जाती है।
1: वही वो आपको सब चीजें बता के आराम से इत्मीनान से थोड़ा सा कंसोल कर देती है।
0: यस,
1: फिर डॉक्टर्स के पास तो थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है, वो इतना आपका नहीं सुनेंगे, नर्स की ब्रीफिंग्स ले लेते, बट नर्सेस जो है ना बहुत पेशेंटली आपको सुन रही होती है, समझती भी है, और वो आपकी साइकोलॉजी भी मुझे लगता है खट से पिक कर लेती है कि ये बंदा या बंदी डर रही है या आराम से इत्मीनान से है, कॉन्फिडेंट है, मतलब उसी हिसाब से फिर आपको समझाती है।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही बात है, वो आपको प्रिपेयर कर देती है, आपका पैनिक आपको रिलैक्स मोड में ले आती है।
1: True.
0: और वहाँ कहीं आसपास अगर सर्वर भाई बैठे हों, कोई लतीफा शतीफा सुना दें, वो कुछ कर रहे हों वो बात कर बंदा हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाते हैं, बंदे को समझ नहीं आती हंस रहे के रो रहे भाई क्या हो गया, आप हंस रहे हैं रो रहे हैं, कहते पहले मैं हंस ही रहा था, थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि अब हंस निकले।
2: वाह क्या बात है, क्या शेर सुनाया है साहब आपने, मजा आ गया।
0: पता है मेरी कॉल का खत्म होने का टाइम हो गया और अजान का वक्त भी आ रहा है।
2: नहीं बड़ी अच्छी बात करी
1: जी, बहुत समझदार है,
2: बड़ी प्यारी बात करी और
1: अच्छा
2: हमेशा अच्छी बात ही करते हैं और हमारे बड़े पुराने
0: इसी वक्त में कॉल करता हूँ
2: कहानी
1: हमारे
2: बड़े पुराने लिसनर्स में से भी हैं, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुल्कर नैन साहब हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थे दुल्कर नैन साहब हमारे साथ और अब छोटा सा यहाँ पर एक हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हम अब अजान सुनेंगे, अजान से वापस आने के बाद चर्चा जो है इस वक्त जारी रहेगी। सुनते रहिए FM 107 दिल से
3: देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

हेल्थ फॉर ऑल. कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल. और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की. सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ हर जुमेरात शाम 7:15 बजे से सिर्फ FM 107 पर.

0: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। और बिल्कुल आफ्टरनून एक्सप्रेस तेजी से चल रही है और जो आफ्टरनून में पहुंचने वाली है, यहाँ सरवनाजी आपके साथ। और अब आप लोगों के कुछ मैसेजेस क्या कहते हैं, आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। सलाम कहते हैं अफरोज साहब हमारे साथ हैं,
1: वालेकुम सलाम।
0: ओके, बढ़ते हैं आगे। सलाम कबूल करें आप दोनों। अभी अभी बात कर रहा है उसी के साथ बेटा, खुआ खूं है, क्या कहना चाहते हैं नाजी, कुछ समझ में आया आपको? शाकिर भाई हैं और क्या कहना चाहते हैं शाकिर भाई, थोड़ा खुल के बता दो। अस्सलामुअलैकुम सरवर भाई, नादिया मैम, कैसे हैं आप दोनों? गुड मॉर्निंग, नाइट शो, आफ्टरनून एक्सप्रेस, मुमताज अहमद हमारे साथ।
1: थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का फेस हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं? और सर माशाल्लाह से आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा ना हो कि आप भी फिर शाम को शो करें, या तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा ना, इस टाइम में आप हमें देखने को मिलेंगे ना सर।
1: हम लोग ने अपने लिसनर्स को बताया नहीं है कि हमारी जो है वो अब चेंज हो रहा है ग्रिड, और जब हम लोग के ग्रिड चेंज होते हैं तो हम लोग शफल होते ही होते हैं।
0: मुझे आपका शो FM 107 और आपका शो मुझे बहुत पसंद है सर, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी। और मैं नया हूँ सर, कतर में 3 महीने हो गए, बस 3 महीने से अब मैं लाइसेंस अब मिल चुका है, तो अभी गाड़ी ली है मैंने, गाड़ी चलाता हूँ, तो बस ये सुनता रहता हूँ यार कौन है हमारे साथ।
1: और बड़ा अच्छा लगा कि आप
0: अरबाज खान हैं हमारे साथ, सलमान खान के छोटे भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे। अरबाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, बड़ी नवाजी,
1: थैंक यू सो मच,
0: और मुबारकबाद भी आपको, माशाल्लाह से लाइसेंस मिल गया, खैरियत से इंशाल्लाह ताला खैर से गाड़ी चलाइए, सभी का ख्याल करते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते भी रहिए। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ।
1: हेलो,
2: वालेकुम
1: अस्सलाम, आई एम डूइंग गुड, आप कैसे हैं? चलिए जी, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है, और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हमेशा। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे के हवाले से, नर्सेस डे है आज, तो कोई एक्सपीरियंस है आपका बहुत ही अच्छा सा, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कोई नर्स, किसी ने आउट ऑफ वे आपकी बहुत हेल्प की एंड यू वांटेड टू जस्ट थैंक हर नाउ टुडे?
2: मैं अपने चाइल्डहुड में नर्स रहा हूं।
1: अच्छा।
2: हां,
1: मतलब फील्ड में, मतलब प्रोफेशनली या मतलब कैसे?
2: प्रोफेशनली नहीं, एक्चुअली मेरे जो ताए अब्बू थे वो डॉक्टर थे।
1: अच्छा अच्छा।
2: एज अ कंपाउंडर मैं उनके, उनका एक छोटा सा क्लिनिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा सा क्लिनिक था, तो बचपन में मेरे को सिखाते रहते थे सारी चीजें, मतलब उनकी हेल्प करता था, और ये बहुत ही, मतलब एकदम इसके बारे में कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, इग्नोर कर देते हैं सब, लेकिन हकीकत ये है कि इसका काम एक तरह के माँ बाप की तरह ये केयर करना अपने पेशेंट के, बहुत ज्यादा हर वो काम करना, हर वो काम कर सकते हैं जिससे और लोग जीत जाते हैं, मतलब बना कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, कुछ लोग झिझकते हैं, वो काम करना नहीं चाहते या उस तरह से नहीं कर सकते जो ये लोग करते हैं, स्पेशली जो नर्सेस कर रही होती हैं, तो बहुत ही जज्बा चाहिए, हर कोई जो है वो इस फील्ड में नहीं आ सकता,
2: नहीं आ सकता,
1: नहीं आ सकता।
2: अभी देखो जैसे कि किसी को मतलब ब्लड स्टिचेस लगाने हैं, ब्लड बाहर आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ लोग डर जाते हैं, इतना थोड़ा सा अपने
0: जो काम
2: स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है,
0: जो काम घर वाले या बिल्कुल घर वाले भी करने में कतराते हैं, वो काम भी ये लोग अंजाम देते हैं। हमारी जितनी भी हाजात हैं जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, उनको साफ़ करना, हमें सफाई सुथराई के हिसाब से पूरा तैयार करना, दवाइयां देना, फिक्र करना, ठीक है, मगर घर वाले हों, कोई अपना हो तो समझ में आता है, बट जब कोई दूसरा ऐसी खिदमत करता है आपकी औलाद की तरह या भाई बहन की तरह या स्पाउसेस की तरह,
1: स्पाउसेस तो
0: हाँ मतलब इधर से उधर या उधर से उधर, मियां बीवी, बीवी मियां, मेरे कहने का मतलब ये, तो यकीन जानिए ये एक बहुत बड़ी खिदमत खल्क है, और ये पैसा तो मिल ही रहा है, ठीक है, नौकरी भी है, बट सवाब कितना मिल रहा है इसकी कोई भाई मतलब कोई बयान ही नहीं कर सकता, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है।
1: बिल्कुल सही कहा,
0: क्या आप काम भी कर रहे हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है, आपको सवाब भी मिल रहा है।
1: हाँ और बड़ा पेशेंस चाहिए, पता है आसान नहीं होता, आसान नहीं होता, क्योंकि नर्सेस भी तो अगर उनके प्रोफेशन से हट के देखो तो वो भी तो इंसान है, अपने घर की ड्यूटीज करके आई होंगे, हो सकता है 50 परेशानियां लेकर आई हैं, पर आपकी परेशानी को उन्हें वैसे पेशेंटली अटेंड करना
0: सही,
1: है
0: सही।
1: तो देखिए कितना स्विच करना पड़ता है। यस देखिए कितनी मतलब सारे ही चाहे डॉक्टर्स हों या जितने भी मैं कहूँगी हेल्थ सेक्टर के सारे हीरोज थे, बट नर्सेस का अपना एक अलग ही वो था, कितनी मेहनत कितनी मशक्कत कितना पेशेंस कितना काम थ्रू आउट।
2: डॉक्टर्स की भी एक लिमिट होती है, वो भी एक टाइम पर आपको बोलते हैं कि भाई नर्स आपको ही करना है, नहीं करेंगे तो आपका है, आपको ही करना।
1: बिल्कुल
0: बहुत खूब भाई, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात करी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: आप पहचाने नहीं ना मुझे,
0: शुएब भाई बात कर रहे हैं अब इसके 500 रियाल और चढ़ गए, आधे नादिया को दूंगा आधे अपने पास रखूंगा,
1: तो पूरे लूंगी मैं,
0: चलिए दे दूंगा अहलन वसहलन शुएब भाई, आज के अंदर चैलेंज मत कर देना ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह
2: हाफिज़, और उनको पूरे दे देना भाई।
0: हाँ दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा, अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ ना, ऐसा मैं करता ही हूँ ठीक है शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच
0: भाई। यहाँ पर एक और बात, मोहम्मद बशारत है हमारे साथ नाजिया,
1: हाँ जी,
0: और कुछ मायूस है, अफसोस में भी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने बहुत लंबा मुझे मैसेज भेजा है, तो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं, और मैं ये कहूंगा बशारत भाई फिकर की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह मैं शेयर नहीं करना चाहता ऑन एयर, क्योंकि शेयर नहीं कर सकता हूं, मगर इन्होंने अपनी कुछ तकलीफ के बारे में यहां पर बताया हमें, यकीन जानिए कि आपके साथ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होगी इंशाल्लाह, और कतर के अंदर तो खास तौर पे नहीं होगी। हाँ इस वक्त आपको जो चीज़ सामने आई है शायद आपको एहसास हो रहा हो, बट यकीन जानिए बेहतर ही बेहतर होगा, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे और आप खुश रहें, और जो भी आपके नुकसान है अल्लाह ताला वो खैरियत के साथ पूरे करें।
1: हाँ
0: बिल्कुल, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में भी रखे, तमाम लोगों के लिए ये दुआ है बशारत भाई, अहलन वसहलन। ओके यूसुफ भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाज़िया सरवर,
1: गुड मॉर्निंग,
0: कैसे हैं आप दोनों, हैव वेल वेलकम टू आफ्टरनून एक्सप्रेस, कहते हैं हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग, कहते हैं
1: हैप्पी ट्यूसडे मॉर्निंग,
0: हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल नर्सेस हियर इन कतर, देयर एफर्ट्स एंड डेडिकेशन इज आउटस्टैंडिंग, आई हाईली अप्रिशिएट देम, हैट्स ऑफ। और ये सभी इंजेक्शन से क्यों डर रहे हैं, कुछ लोग जो बिल्कुल भी नहीं डरते, हाँ मैंने देखा है जो डायबिटिक हैं डेली 2 बार इंसुलिन शॉट्स लेते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वैसे मुझे भी डर लगता है, उतना भी नहीं जितने यहाँ पे सब डर रहे हैं या बता रहे हैं।
1: बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात। अच्छा यहाँ पर मैं छोटा सा, जैसे भी सर्वर ने एक अच्छी सी बात बताई कि नर्सेज जो हैं वो काम भी कर रही होती हैं, तो शायद हमारे बहुत नियर एंड डियर भी करने से कतराएं बचे, तो यहाँ पर मुझे ये बात याद आती है कि बेसिकली जो हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसा आप जानते हैं 12th ऑफ मई को, ये एक बहुत मशहूर नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका नाम आप सबने सुना है, उनकी जो मॉडर्न नर्सिंग टेक्निक्स थी या जिस तरह से उन्होंने नर्सिंग को एक अलग ही लेवल पर वो लेके गई, बिकॉज ऑफ हर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये काम करती थी सर्वर एक ब्रिटेन में मिलिट्री हॉस्पिटल में, जब आप समझ सकते हैं आप किसी मिलिट्री

0: हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहाँ पे किस तरह के सोल्जर्स
1: और किस तरीके की मशगूलियत होती हम समझ
0: आते होंगे और उनका ख्याल. और उस वक्त क्योंकि हॉस्पिटल्स जो थे वो टेम्परेरी सेटअप किए जाते थे तो सारी चीजें सारे इक्विपमेंट सारे टूल सब कुछ नहीं होता था. एंड एट टाइम्स इन्होंने इनका कहीं मैंने पढ़ा कि ये दे स्ट्रगल अ लॉट. सफाई एक बहुत बड़ा इशू होता था, बहुत बड़ा इशू. ये सफाई कौन करेगा चीजें जो जमीन पे सब गंदगी जो भी आ जाती थी. तो ये खुद इनका हालांकि सफाई से रिलेटेड इनका काम नहीं है, इनका काम तो पेशेंट को देखना उनकी टेक केयर करना ऑल दैट, बट ये खुद सफाई भी करती थी क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है. वो उसकी बॉडी या उसकी जो सिचुएशन या कंडीशन और वर्स ना हो जाए सो फॉर दैट ये खुद सारी अंदर की सारी सफाई करती थी एंड देन पेशेंट का ख्याल करना. और शायद इनके इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जज्बे की वजह से ही 12th of May क्योंकि आज इनकी 12th of May को वाज लाइक इनकी बर्थ डेट होती है तो अब उसी दिन को सेलिब्रेट भी किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से. तो मुझे लगता है कि देखिए इस तरह का जज्बा बहुत ही
1: नाजिया जी एंड सरवर जी. एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना. और ये सब बेजान चीजें हैं, ये जब एक हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं. रमेश यादव भाई का ये मैसेज के साथ कहते हैं गुड मॉर्निंग. कॉलर भी हमारे साथ कनेक्टेड है. ओके हेलो सलाम अलैकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
1: अहलेन, कौन है हमारे साथ?
2: मरहबा शाकिर, शाकिर भाई.
1: शाकिर भाई कैसे हैं? शाकिर भाई खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है. आप कैसे? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है. आपकी दुआएं शाकिर भाई. कैसा गुजर रहा है शाकिर भाई दिन आज का?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छा चल रहा है. सुबह सुबह मैंने आप दोनों को सलाम भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे.
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
0: वबरकातुहू.
1: बहुत बहुत शुक्रिया भाई दुआओं के लिए. क्या कहना चाहते हैं शाकिर भाई आज खासम खास दिन, जिन जो हीरोज की हम आज बात कर रहे हैं, जिन हीरो की हम बात कर रहे हैं, तो उनके हवाले से कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें आप?
2: जी उसमें तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और जो इधर हमारे सिस्टर है इधर नर्स, बहुत अच्छे काम कर रही है. मेरे खुद एक जो मेरी डॉक्टर थी बेटी थी यानी वो एक महीने तकरीबन एक महीने से एडमिट थी इधर हॉस्पिटल में.
0: अच्छा.
2: और यानी हमको नहीं छोड़ा ये काम के लिए, सब चीजें सिस्टर इधर हमारे जो है ना वो लोग करती थी.
0: ओके.
2: खिदमत करती थी सब कुछ सब चीजें यानी जैसे घर के घर में अम्मी अब्बू यानी माँ बेटे के लिए करते बच्चों के लिए वही वही चीजें उससे ज्यादा यानी ख्याल रखते हैं.
0: ये तो बहुत बड़ी बात है वाकई कि चलिए इतना ज्यादा ख्याल करना. और इसीलिए शायद हम उनके इस जज्बे को लगातार जो है सल्यूट भी कर रहे हैं,
1: सराहा भी रहे हैं
0: और हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप अपनी परेशानी में आते हैं हॉस्पिटल में कोशिश ये कीजिए कि मिसबिहेव ना करें
1: प्लीज. हानी और आप
0: किसी भी तरह की, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा नर्सिस ने जो वैसे मैं आपको भी बताने वाली थी कि जो यहाँ पर इंटरनेट जो एक काउंसिल है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस वो ये डिसाइड करते हैं ग्लोबली कि हर साल कौन सी थीम रखी जाए जिस बिना पर जो है इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट किया जाए. तो मुझे पढ़ के थोड़ी सी हैरानी भी हो रही थी कि नर्सिस का जो सबसे बड़ा इशू निकल के आया है ग्लोबली पूरी दुनिया में वो ये कि उनके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया जाता है.
2: जी बिल्कुल. अभी जो भाई ने मैसेज किया था सरवर भाई को और मेरे ख्याल में उसके साथ कुछ ज्यादती हुई होगी, शायद नाइंसाफी होगी, लेकिन सरवर भाई ने उसको बताया कि खासकर कतर में तो ऐसा नहीं हो सकता. ये तो बिल्कुल ठीक बात है. आप और हम जानते हैं हमारे उधर अपने हॉस्पिटलों में अपने मुल्क में और इधर तो इधर जो है ना हमको जो मिला है और जो दे रहे है ना तो बहुत बड़ी बात है.
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: सही,
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल
1: बहुत प्यारी बात कही शाकिर भाई ने. भाई बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू सो मच.
0: यहाँ पर लगातार सर्वर ये लोग जैसे मैसेज करते जा रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ. और मैंने भी आपको बताया कि हर साल जो है वो डिसाइड किया जाता है जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है ICN बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि थीम क्या रखें. और पिछले दो साल से जो मुद्दे हाईलाइट हुए हैं उनमें एक तो मिसबिहेव करने का इशू रहा, उसके बाद काम बहुत ज्यादा मिलता है,
1: अच्छा
0: ओवरलोड का बहुत ही ज्यादा मसला रहा.

0: और इस साल जिस थीम को रखा जा रहा है, जो रखा गया है, वो है अवर नर्सेज अ फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ. यानी जो नर्सेस जो लोग जो पहले जिन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत फेमिलियर नहीं है और चीजों से नहीं है, तो उन सबको फ्री में ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि उनकी लाइफ भी थोड़ा सा कंपैटिबली आसान हो जाए.
1: बिल्कुल.
0: और यहाँ पर तो ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया.
1: बात कर रही है नाजिया जो इस साल के यूनिवर्सली जो मसला है हमारे कतर में, तो माशाल्लाह सब आराम ही आराम है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्या हाल है साहिबान? मैं कुछ नहीं बोलूंगा. और कहते हैं आओ. अच्छा जी,
0: आओ.
1: ये कबीर भाई की लैंग्वेज है. अरे ये शक्ति कपूर कब से बन गया भाई? नाजिया बहन समझदार वाली बातें करने लगी हैं. अच्छा पहले नहीं करती थी क्या? ये सवाल है, मगर अभी कर रही. लगता है अखरोट का कमाल है. वैसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा नसीम भाई.
0: बादाम का कमाल होता है नसीम भाई.
1: तौफीक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं. नाजिया एंड सरवर, अस्सलाम वालेकुम.
0: तौफीक वालेकुम
1: अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसे हैं तौफीक भाई? उम्मीद करते खैरियत से होंगे. यहाँ पर रमेश भाई ने नर्सेस डे के हवाले से हमें विश करने के लिए एक पोस्टर भेजा है. अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून. इस शो में पहली बार मैसेज किया है. समी भाई क्यों ऐसा किया आपने? मतलब आप अभी तक कहाँ थे यार समी भाई? अब तशरीफ लाए आप तो इसका मतलब जुड़ रहे हैं. कुछ मशगूलियत रही होगी. तो समी भाई कनेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह. 443-443-7-7 हमारा नंबर है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम
1: अस्सलाम सरवर
2: भाई और नाज़िया,
0: हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह.
1: और कौन है हमारे साथ?
2: जी मैं सबा बोल रही हूँ.
1: अहलन व सहलन मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से?
2: इन लॉन्ग टाइम, शायद 2-3 महीने हो गया आपको सुनके और आपसे बात भी कर.
0: चलिए ग्लैड कि आपने इसको साल में तब्दील नहीं होने दिया और एकदम से ब्रेक लिया, पॉज लिया, ख्याल हुआ और वापस आया.
2: खतर हुआ सो मच कि हम मार्च और अप्रैल से निकल के थोड़ा मई में आके अभी थोड़ा सेटल हुए हैं.
0: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लैड टू नो कि आप सेटल हो गई, हमें अच्छा लगा सुन के. तो सबा आप क्या कहना चाहेंगी? टुडे वी आर लाइक सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल नर्सेस डे, सो कोई आपका एक्सपीरियंस है?
2: अभी थोड़ी देर पहले सुना कि सरवर भाई को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से और डॉक्टर से.
0: हाँ इनके तो डर अलग अलग हैं. इन्हें छींक से डर लगता है, खांसी आ गई तो.
1: अल्लाह अल्लाह बचाए, आपकी छींक से कौन ना डरे भाई.
0: सरवर मिर्जा आप जो छींके तो 3-4 लोग निकल गए हार्ट अटैक से.
1: तो सबा मैम डरने की बात है मुझे लगता है इंजेक्शन से.
2: एक्चुअली है सरवर भाई ऐसा है कि मैं बचपन से भी इतना डरती हूँ, डॉक्टर है बोले तो मैं उस पार्टी में भी नहीं जाऊंगी या उस दावत में भी नहीं जाऊंगी.
1: चलिए मुझे लगा कि शायद समझाने आई है, ये तो आप बीती और साथ देने आई है.
0: अच्छा कोई ऐसा नहीं आया जो नहीं डरता हूँ मुझे? हाँ बस मैं ही बैठी
2: हूँ. ऐसा होता है कि हम लोग जब इंडिया में थे तो ऐसा था कि उसके बाद में हम इधर आ गए, खतर में आ गए, शादी हो गई, देन वी स्टार्टेड फेसिंग चैलेंजेस खुद ब खुद. अब बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पे मैं रुकी हूँ, जहाँ में मेरा घर है, एक कंपाउंड है जहाँ पे 26 विलाज है, उसमें 20 विला डॉक्टर के हैं. भाई मैं तो सोच रही हूँ इधर से सारे, इधर से सारे.
1: क्या बात है? नहीं तो मैं ये कह रहा था बहन आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे
0: बगल में चले,
1: अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो
0: तो डॉक्टर नहीं मिलेगा.
1: नहीं नहीं तो ऐसे कंपाउंड में तो बीमारी घुसती भी नहीं होगी यार.
2: डॉक्टर होना भी हालांकि थोड़ा डर ही लगता है कि सारे
0: क्यों डरते हैं डॉक्टर से, जबकि डॉक्टर को देख के तो आपको सुकून मिलना चाहिए.
1: हाँ देखिए मैं भी आधे से ज्यादा डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इलाज कर देता हूँ. कैसे भी
0: झोला आपका बाहर रह जाता है,
1: कैसे भी हो बात अलग है उसका
0: इलाज है. डॉक्टर झोला लेकर चलते
2: ऐसी हो जाती है जो एक वो बोलते हैं फोबिया है या मालूम नहीं क्या है, बट वैसा होता है. जब भी उनके बारे में बात करते हैं ऐसा लगता है पल्पिटेशंस बढ़ जा रही है और पता नहीं क्या हो रहा है. हम लोग क्यों डॉक्टर के
0: सबा
2: हाँ सीरियसली क्यों
0: लगती है? आपको तो सुकून होना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास आ गई, नाउ समवेयर ऑफ द अदर यू आर इन सेफ हैंड्स. तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुकून और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है इंसान को जो बीमार है.
2: माशाल्लाह से मेरे 3 लड़के हैं एंड आई डोंट नो हाउ आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस एंड एवरीथिंग. माशाल्लाह एवरीथिंग वाज लाइक इन खतर. मैं इतना पुरसकून मैं हमद हॉस्पिटल जा सकती हूँ ये श्योरिटी के कि मुझे कुछ नहीं करेंगे. भाई मैं इधर जा सकती हूँ और

0: के पास नहीं जाता।
1: देखिए लोगों का एक गलत परसेप्शन है डॉक्टर्स को लेकर के, अरे ये करें वो, जो कुछ कर रहे हैं आपके फायदे के लिए करते हैं,
0: आप इधर आ जाओ इंडिया में आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे हमद नहीं जाना है, किधर भी नहीं जाना है मुझे,
1: बिल्कुल
0: इधर आ जाओ।
1: नहीं सही कहा आपने, यहाँ तो फैसिलिटीज हैं टॉप क्लास और इतना ख्याल किया जाता है, चाहे आप एक्सपेक्ट हैं, चाहे नेशनल हैं, रेजिडेंट हैं, हर किसी की।
0: कोविड के टाइम पे अम्मी तो नहीं थी, हालांकि आई विल रियली अप्रिशिएट ऑल वर्किंग लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स, जो भी है, हमद है या पीएचसी से है, कुछ भी हो, हम एक्सपर्ट्स को इतनी श्योरिटी देते हैं कि पीक कोविड टाइम पे आई वॉज हैविंग माई डिलीवरी, यू विल नॉट बिलीव नाजिया, आई वेंट अलोन, ओके, बिकॉज हस्बैंड और किड्स नो बडी वॉज अलोन, आई वेंट अलोन। आपको आपकी अम्मी की भी जरूरत फील नहीं होगी, उतना अच्छे से देखते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको भी अभी कोई है नहीं है भाई, बट इमोशनली लाइक आपको कुछ भी जरूरत है सब चीज देखते हैं। माशाल्लाह वी आर इन द ब्लेस्ड कंट्री टू गेट
1: सही सही बिल्कुल सही कहा माशाल्लाह,
0: वी आर वेरी ब्लेस्ड।
1: या ट्रू ट्रू। चलिए बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ जुड़ी, और कोशिश कीजिए कि हमारे सेकेंड आवर में भी आप हम तशरीफ लाएं, आइए जुड़िए, और हमारे साथ जो गेम सेगमेंट है उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिए।
2: इंशाल्लाह
1: थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट विद दिस आई थिंक एक गाना तो
2: इसीलिए तो तड़का ले रहा हूँ मैं आपसे, आपकी बात कैसे मैं मना कर सकता हूँ नाजिया।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: फिलहाल चलते चलते ये गाना एंजॉय कीजिए अजीत और शिल्पा राव की आवाज में। चलिया भैया मैं भी चलिया, बस ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आप लोगों से। आफ्टरनून एक्सप्रेस में सरवर नाजिया आपके साथ दिल से।

0: बट यकीन जानिए ओरिजिनल ट्रैक में जो रफी साहब ने सिर्फ एक लाइन गाई है ना, हाय हाय 100 गानों पे भारी है भाई। परमपुरी की आवाज भी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी ही अलग तरीके से गाते हैं, गायकी भी अच्छी है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
1: It's the afternoon express.
0: हाँ जी, वेलकम बैक, अहलन वसहलन, खुश आमदीद, स्वागतम। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस और उसके बाद हम एक अपडेट लेंगे और फिर आगे गेम का सिलसिला भी शुरू करना है, वो भी नाजिया जी की इजाजत, जाहिर बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया एंड सर्वर, ये क्या है भाई? ऑन बिहाफ ऑफ दोहा वाला कबीर। और यहाँ पर नाजिया आपका फोटो भी है, छोटा सा देखिए नीचे स्टिकर बना के भेजा है इमोजी में, कितना मिल रहा है आपसे। मगर ये दोहा वाला कबीर क्या ये कबीर ने भिजवाया आपसे हमारे लिए खास तौर पे? कौन है ये?
2: चल क्या रहा है?
0: अच्छा नाम भी देखिए क्या है, नाम क्या है ये पता नहीं है लिखा तो ऐसा कुछ है। कौन है हमारे साथ, अपना नाम भी बता देते सर। अच्छा बता रहे हैं, अभी टाइप कर रहे हैं। और ये क्यों आपने ये जो, अच्छा ये इन्होंने कबीर की ही इमोजी में शक्ल भेजी है एक्चुअली, ये बताना चाह रहे हूँ, ये मैं उसको दिखा दूंगा।
2: होती है आपसे
0: है ना,
2: आपने मुझे बता दिया।
0: अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया बहन,
2: वालेकुम अस्सलाम
0: रहमतुल्लाह। आधे आधे मैसेज हैं, लोग बराबर टाइप भी कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम,
2: आपको इतनी बेचैनी आधे पढ़ने की?
0: शेख यासर
2: नहीं सकते हैं,
0: शेख यासर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो भाई एक अपडेट की तरफ बढ़ते
2: हैं, अपडेट ले लें। आधा लोग पढ़ रहे सलाम सा, इन्होंने बोल दिया आधे मैसेज को। अरे टाइप तो करने दी, पूरा टाइप करने दीजिए लोगों को।
0: अभी मैं बदल सुना दूंगा, देखिए फिर
2: नहीं नहीं फिर मैं शायरी पे आ जाऊंगी।
0: हां ठीक है,
2: तो वही होगा
0: इरशाद।
2: तो चलिए अब आपको एक छोटी सी अपडेट देते हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल की अपडेट है, एंड दैट टू फॉर आवर फ्यूचर्स रिसर्चर्स इनोवेटर्स और अपने लीडर्स के हवाले से। जी हम बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन यानी MOEHE ने कतर रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन काउंसिल के साथ मिलकर 18th नेशनल साइंटिफिक रिसर्च इनोवेशन एग्जीबिशन लॉन्च कर दी है। ये एग्जीबिशन आज से स्टार्ट हो रही है और ये लास्ट करेगी 14th मई तक कतर के नेशनल कन्वेंशन सेंटर में। आपको बताएं कि इस साल का जो थीम रखा गया है वो है प्रॉमिसिंग रिसर्चर्स फॉर कतर। और इस एग्जीबिशन को जो है अटेंड किया या हेड किया कह सकते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन में, उनकी पैट्रोनेज में से ऑर्गेनाइज किया गया है। और जितने भी यहाँ कंट्री भर से जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपको बताऊं कि इस साल अगर देखा जाए ऑल टुगेदर तो 2900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 249 स्कूल्स हैं और 650 टीचर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट टू फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स दोनों से। 2000 से ज़्यादा रिसर्चर्स भी हैं मौजूद और कई इनोवेशन प्रोजेक्ट्स को जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर इस एग्जीबिशन में जो है प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कुछ वर्कशॉप्स भी हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी बच्चों के लिए रखे गए हैं और इसके अलावा एक अवार्ड सेरेमनी भी है जहां पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये एग्जीबिशन जो है एक नेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है जिसका मकसद है कि रिसर्च और इनोवेशन के कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है या उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उन्हें और मज़ीद बेहतर बनाया जाए, उन्हें रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाए। तो मैं तो कह सकती हूँ कि वही वाली बात है कि हर छोटा आइडिया जो है वो पहले छोटा होता है फिर बड़ी तब्दीली की एक बड़ी बुनियाद भी बन जाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के जो हमारे यंग रिसर्चर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स उनके लिए क्रिएट किया जाए जिससे वो हमारे साथ साथ अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सकें। और ये इनिशिएटिव पर्टिकुलरली कतर के नेशनल विजन 2030 को भी सपोर्ट करता है जिसका कहीं ना कहीं फोकस है ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना और एक इनोवेटिव और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी तैयार करना। तो चलिए ये एक अपडेट और बहुत ही अच्छी अपडेट और बहुत ही अच्छी सोच, और यहाँ पे कतर गवर्नमेंट तो लगातार ऐसे काम कर ही रही है, रिसर्च और इनोवेशन की फील्ड में बहुत काम हो रहा है।
0: भाई कह रहे हैं कि मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, मेरी बेटी को लगता है, नसीम भाई कहते हैं ये बात, तो बच्चों को तो लगता ही है।
2: और
0: कहते हैं दिस इज क्रिस्टल, यही नाम है इनका। और दोहा वाला कबीर भाई ने बोला था कि आप लोगों को ऊ आ आ करना करना है।

0: थ्रू आउट द शो दैट इज मंकी वाला ये यार ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है यहाँ पर। चलिए साहब आप हमारी तरफ से भी क्या करना है ये भी बता देते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। यहाँ पर एक कॉलर है उनसे बात करते हैं और उसके बाद छोटा सा
1: इस टॉपिक को भी हम कंक्लूड करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं और कर ही दिया नाजिया जी ने बड़ी अच्छी तरह। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए।
1: हेलो
2: सलाम
0: सलाम
2: भाई
0: हमारा फोनवा का रहे हैं ऐसा कैसे हो जाएगा तो हार फोनवा काहे नहीं उठाएंगे भाई ऐसा क्या है नसीम भाई
2: कौन गाँव में रहते हो भौजी
0: कौन खेत भैया
2: भैया हम बोले तुम्हारा परेशानियाँ जो है ना हम बता ही देते हैं कि तुमको कहाँ से
0: वो कहा है
2: असल में एक जना मैसेज किए रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारा समझ में तो नहीं आवत बा भैया ये नाजिया और सर्वर के पास भेज दिया ताकि वो लोग एक कुछ वेरिफिकेशन कह के बताई है तू का असल में सुबह में वो सर्वर भाई वो
0: अच्छा
2: ये असल में उन्होंने
0: अब समझा मैं ये थी कहानी।
1: तो ये हमारे साथ रईस भाई हैं सर्वर मिर्ज़ा अब समझे कौन है।
0: हाँ क्या क्या कुछ और भी बताना चाह रहे हैं अच्छा खुलासा किया उन्होंने बताया कि क्या हुआ
2: असल में उनके पास ये मैसेज आया था तो बोले यार तो ये मेरे तो सर से ऊपर जा रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो ये ऐसा करना ये नाजिया और सर्वर के उसमें 11 बजे के बाद में इसको ऐसा करो इसको
0: दोहा वाला कबीर अब तुम्हें भी हम ऐसे ऐसे मैसेज भेजेंगे बहुत अच्छा किया रईस भाई क्या बात है मेरे भाई की
1: ये
0: नहीं कम से कम कम से कम ये खुलासा तो हुआ कम से कम यार
1: कोई है तो
0: ये कुत्ती तो सुलझी
2: ये तो उनके सर से ऊपर गुजर गया था बोले बच्चा उन लोगों के पास भेजो हो सकता है वो लोग
0: चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं क्या महवेश की जाने भेज देते हैं आगे
1: मुझे लगता है
0: अमिता और सफा सफा बहुत अच्छी तरह पहचानी
1: मैं कहती हूँ ये आपसे बेहतर कौन जानेगा ये कहीं ना कहीं आपसे तो मिलता जुलता है
0: आदाब लाजिया जी आदाब
1: इसको आप जिस ढंग से चाहे करके
2: सर्वर भाई बोले कि मतलब शायद वो चाइना जापान घूम के आए हैं तो शायद उनको ये पता हो इसका लाख ये क्या कहना चाह रहा सामने वाला।
1: अरे इन्होंने लिखा बीच में बोर्ड पे चाइना और चारों तरफ घूमे घूमे कह रहे मैं घूम लिया
0: हो लिया भाई आज चाइना हो गया कल फिर देखेंगे कि जापान की तरफ कैसे जाना है तो ये तो चलता ही रहता है घूमते ही रहते। और रईस भाई कैसे हैं आज कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
2: अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे थे बड़ी देर से आज सुबह से ही तकरीबन समझ लो कि हम बाहर ही है।
0: अच्छा
2: पहले उनको
0: क्या
2: तो हम आपको सुन रहे थे माशाल्लाह हम ट्राई किए तो बीच में फिर कट करना पड़ता था फोन असल में कुछ मतलब आप लोगों ने अपडेट का कुछ जाने का तो बोला चलो हम लगे रहेंगे चाहे जितना भी हम कहाँ जाने वाले हम गाड़ी में ही रहेंगे अभी नहीं उठाओगे फिर उठाओगे
0: मोहब्बत है भाई
2: हमेशा ट्राई करते रहेंगे तो उठाना तो पड़ेगा
0: मोहब्बत है मेरे भाई की आज खासम खास दिन तो उसके हवाले से कुछ कहना चाहते हैं नसर जी के हवाले से
2: बिल्कुल कहना असल में उनका जो अपने अपने यहाँ अपने मुल्कों में जो होता है उनके साथ में मिस बिहेवियर तो हालांकि वो लोग कुछ करती भी है ऐसा लेकिन ये सब कंट्री में माशाल्लाह बहुत बेचारे और असल में पब्लिक पैनिक होता है वहाँ पे मरीज भी थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन में होता है तो ये सबसे बड़ा मसला होता है मैम भाई मेरे वो सोचते हैं कि बस एक ही बार ऐसा इंजेक्शन लगाओ कि मैं बिल्कुल एकदम
0: अच्छा भैया क्या दोबारा ना पड़े भैया देखो एक ही बार ऐसा ठोक दो
1: बड़ा वाला
0: हाँ भैया खत्म हो ये
2: डॉक्टर आते हैं 24 घंटा में एक बार दो बार चक्कर मार के और बेचारे वो नर्स जो होते हैं वो हमेशा उनके पास बस उनसे हमेशा सवाल जवाब और वो तरह तरह का उनके मिसबिहेवियर जो सबसे बड़ा मसला यही बनता है।
0: अल्लाह ताला
1: तो
0: हम सबको तौफीक भी दे और अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानियां भी पैदा करे यही दुआ है।
1: और हमें भी समझना चाहिए कि नर्सेस भी काम कर रही हैं लंबी ड्यूटीज हैं उनके पास कम कई बार रिसोर्स है कभी कभी इमोशनल बर्नआउट जैसी सिचुएशन भी होती है तो भाई हमें भी ये समझना है और थोड़ा सा पेशेंट रहना है।
2: बिल्कुल पेशेंट रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल इस तरीके से नहीं भाई डॉक्टर वो बेचारे उनका जो एक ड्यूटी होता है कि उनको किस टाइम कौन सा दवा देना है कभी इंजेक्शन देना है क्या भाई वो डॉक्टर के हिसाब से वो लोग मतलब अपना ये करते हैं अपने मन मर्जी से उनका ये नहीं होता है तो उनके साथ में मतलब थोड़ा मिसबिहेव करना

0: मतलब मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है।
1: बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, सही
0: खतर उतर में तो माशाल्लाह इतना
2: जी।
0: मैं अहमद हॉस्पिटल में कि वहाँ पे एक लेटर पे मतलब एक रखा हुआ कि अगर कोई नर्स आपके साथ में या कोई डॉक्टर आपके साथ में कोई मतलब ये कर रहा है आपके साथ में ज्यादती, तो आप उसके खिलाफ बाकायदा एक लेटर में वो बाकायदा वहाँ पे एक स्लिप रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, आप लिख के ये कर सकते हैं, कंप्लेन डाल सकते हैं। तो इतना इतना इतना ज्यादा अगर गवर्नमेंट ने फैसिलिटी हमें दिया है, इतना क्या मकसद है? मरीज को आप मतलब डॉक्टर के तरफ मतलब वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि मरीज की तरफ वो अपना साइड ले रहे हैं कि भाई कोई भी मतलब यहाँ पे आके उसके साथ में कोई गलत रवैया ना ये किया जाए।
1: सही।
2: और एक चीज रईस जी, मैं आपको यहाँ पर माजरत के साथ रोक रही हूँ, एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ आप सबकी नॉलेज में कि ऑन एन एवरेज मैं देख रही थी तो एक नर्स जो है वो तकरीबन 72 पेशेंट्स को एक दिन में हैंडल कर रही होती है।
0: बिल्कुल
2: डिफरेंट 72 पेशेंट्स के साथ जो है वो डील करना, अब सोचिए सबके अलग इश्यूज हैं, है ना?
0: बहुत
2: हार्ड वर्क है
0: उनके लिए, उनसे मतलब प्यार मोहब्बत से ही बल्कि ये करें तो ज्यादा मेरे ख्याल से।
2: और जैसे
0: बहुत
2: लोड है, जैसे अभी पेंडेमिक था या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर जो क्लाइमेट इमरजेंसीज है उसकी वजह से पेशेंट्स भी बहुत है और उस तरह से नंबर ऑफ स्टाफ नहीं।
0: जी जो मरीज के साथ में जाते हैं वो लोग भी अपने अपने मुल्कों में, यहाँ पे तो वो बदमाशी नहीं चलने पाता है लेकिन अपने मुल्कों में खासकर बस उनके साथ इतना इस तरीके से ये करना शुरू कर देते हैं कि बस जैसे कि मतलब उनके हाथ में साथ की बार में अलादीन का चिराग बस हाँ रगड़ा ये किया बस हाँ फरमाओ मेरे आका बस वही हाल है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही। हाँ थोड़ा सब्र रखिए। और कुछ लोग तो चलिए वर्ड्स जो भी यूज करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होकर बात कर रहे होते हैं तो वो भी नहीं ठीक है, आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, आप भी परेशान हैं तो नर्स भी अपने काम कर रही है, बहुत कर रही है, शायद हमें वो हमारे जहन में नहीं होती बात। तो बहुत ही अच्छा आपका मैसेज है,
0: मतलब उनको भी इंसान, वो भी एक इंसान है, रोबोट नहीं है बल्कि वो भी एक इंसान है,
2: बिल्कुल
0: उनके पास भी दिल है, वो नहीं कभी चाहते मतलब हाँ उनके साथ उनका मरीज और उनका ये जो भी है उसको मतलब ये हो जाए, तो हमें उनके साथ में अच्छा ट्रीट करना चाहिए।
2: बहुत ही अच्छा मैसेज और मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड भी कर दिया, दिस इज द बेस्ट मैसेज कि आप अपने वर्ड्स में ही इज्जत ना दें बल्कि अपने अमल में अपने एक्शन से भी इज्जत और सपोर्ट कीजिए नर्सेस को, दिस इज ऑल what they really look for, वो यही चाहती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया रईस भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातें करने के लिए और मोहब्बतों से नवाजने के लिए। वालेकुम अस्सलाम
2: व रहमतुल्लाहि व
1: बरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे रईस भाई और आज अभी तक का जो हिसाब किताब बना है उसमें एक ब्रेक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस आने के बाद गेम का सिलसिला भी शुरू करना है।
2: यस, और कल हमारे साथ जो गेम खेलते हुए चैंपियन बने थे वो थे यूसुफ खान जी, उनका हाईएस्ट वाज लाइक 10 और मैं आज उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि आप जो है वो 10 से ज्यादा का स्कोर करेंगे, या फिर अगर हमें यूसुफ जी सुन रहे हैं तो आज खुद को ही आप चैलेंज कीजिए, देखते हैं क्या आज आप 10 से ज्यादा का स्कोर कर पाते हैं कि नहीं।
1: फिलहाल सुनिधि चौहान, शारिब साबरी, तू जरूरी।

बच्चा भी वही सीखता है। देखिए रेजिलियंस सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से ट्रांसफर होती है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना भी बहुत अहम है। तो हर सिचुएशन में उनसे सवाल पूछें और हर सिचुएशन का सलूशन निकालना भी उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। इससे बच्चा सोचना समझना सीखना और अपनी खुद की एबिलिटीज पर यकीन करना सीखता है। देखिए आखिर में बस मैं यही कहूंगी कि रेजिलिएंट चाइल्ड जो है ना वही चाइल्ड है जो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने इमोशंस को समझ लेता है और अब मुश्किल वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। जी हाँ, जब पेरेंट्स बच्चों को प्यार गाइडेंस और इंडिपेंडेंस का बैलेंस सिखा देते हैं तो वो बच्चे जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रेजिलियंस उन्हें सिर्फ मुश्किलात से लड़ना नहीं सिखाता बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट और पुर उम्मीद इंसान भी बनाता है। दोस्तों बस जाते जाते यही कहूंगी, अ रेजिलिएंट चाइल्ड इज नॉट अबाउट रिमूविंग दोज डिफिकल्टीज, इट इज अबाउट प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू फेस देम। एक लाइन भी है बड़ी खूबसूरत सी कि स्ट्रॉन्ग चाइल्ड आर नॉट बोर्न, दे आर रेज्ड। और जब हम उन्हें पेशेंस करेज और सेल्फ बिलीव सिखाते हैं तो बच्चा जो है वो इन सारे टूल्स को लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करता है। मजबूत बच्चा वो नहीं है जो कभी गिरता नहीं, मजबूत बच्चा वो है जो गिरने से घबराता नहीं है और फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि रेजिलियंस ग्रो थ्रू ट्रस्ट योर लव एंड थ्रू योर गाइडेंस। जब बच्चा फील करेगा कि उसको सुना जा रहा है, उसे सपोर्ट किया जा रहा है।

0: जिसके बाद उसे कोई भी किसी भी तरह से झुका नहीं सकता। तो शुरू में झुक जाना आखिर में कभी ना झुकने की भी निशानी है। Well, इसी पॉजिटिव नोट के साथ अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और साथियों इस वक्त हमारी एफएम 107 की घड़ी में बज रहे हैं 1:31। आज जो ना टाइम का ट्रैक छूटा हुआ है मुझसे, तो भाई आज अगर मुझसे कोई बात यहाँ वहाँ कोई इधर उधर की कर दूँ ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो समझ जाना सफा के पेज डीले हुए मैं आज।
2: कोई नहीं, अभी मैं सफा के पेज को बिल्कुल टाइट करती हूँ। यहाँ पर हमारी सुपर सफा ए फॉर अमिता आ चुके हैं आपके लिए लेकर।
3: आप सुन रहे हैं द सुपर किड शो।

0: तो यस, हमारे सुपर किड्स क्या हाल चाल है. देखो गर्मी ने ना पूरा असर दिखा रखा है, हम दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ना ज्यादा गर्मी लग चुकी है. है ठीक है, तो हमारे दिमाग में गर्मी लग चुकी है. सो ऐसा नहीं है, जो भी सफर ने बोला कि भाई मेरे पेज डिले हो गए, इनके पेज डिले हो गए, मेरे स्क्रू कहीं गिर गए, लेकिन हम इन्हें ढूंढ लेंगे. फिलहाल आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसे हैं आप, कहाँ हैं.
1: और बच्चा पार्टी, आपको ये बताती चलूं कि आप हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 4434377 पर कॉल करके, और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर. और आपको याद दिला दें कि ये एक इंटरैक्टिव शो है, यहाँ वी लिसन एंड वी डू नॉट जज. ऑलवेज रिमेंबर यू आर व्हाट यू आर, एंडोर्स योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. देखो आपका ना कोई कॉपी हो नहीं सकता, ये याद रखो.
0: हाँ, तो ये जब याद रखोगे ना तो टेंशन एक कम होंगी, क्योंकि अक्सर हमें सुनने को नहीं मिल जाता है सभा घर में, अरे उस बच्चे को देख लो,
1: देखो वो कितना, तुम्हारी बड़ी बहन को देखो कितनी इंटेलिजेंट है, और तुम देखो बस पता नहीं कहाँ से मिल गए हो हमें.
0: बस इसी डायलॉग के चलते ना आधे ज्यादा बच्चों को लगता है कि मतलब ये क्या हो क्या रहा है, मतलब हमने कोई गलती कर दी इस दुनिया में आके. लेकिन बच्चा पार्टी, सच में आप अपने बेस्ट वर्जन हो, और हम आज इसी के बारे में बड़ी मजे की बातें करने वाले हैं. तो आप जहां कहीं भी हो जल्दी से हमें कॉल करो 4434377 पर, 4434377. कोई जुड़ गया हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम
1: जी, कौन है हमारे साथ?
2: अहमद.
1: अहमद, अरे अहमद, इतने इतने अहमद बेटा, ये 6 साल बाद हमारी याद क्यों आई और कैसे आई?
2: क्या था कि रमजान चल रहा था ना, और ईद ही चल रहा था, साथ में चल रहे थे. हाँ. और साथ में मैं थोड़ा क्या कहते हैं, मैं बीमार हूँ थोड़ा, तो इसलिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बिकमिंग इंट्रो तीन नाम से ठीक आता.
1: अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ सीरियस तो नहीं चल रहा बीमारी में, नजला खांसी जुकाम चल रहा है, उससे कुछ ज्यादा चल रहा है.
2: बस दुआ है कि बस ठीक हो जाए, बस इसलिए मैंने अब थोड़ा वो फोकस नहीं डाला था. अब मैंने कहा चलो बहुत टाइम बाद मैंने कॉल किया है इसको, तो मैंने कहा एक और बार मैं इनको कॉल कर देता.
1: बेटा पता ही सब कुछ एक साथ क्यों हो गया,
2: रमजान भी चल रहा था और साथ में लाद भी चल रहे थे, लाद से पहले भी ये हो रहा.

0: मैं एक बात बताऊं, ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है? ये बीमारी, ये टेंशन, ये वो ये लंबी चौड़ी लिस्ट बना कर आए. पता है क्यों हो रहा था? क्योंकि अहमद हमें कॉल नहीं कर रहा था, टाइम नहीं दे रहा था अहमद हमें.
1: नहीं, मेरे शायद कुछ नोज का मसला है बस. यानी क्या है कि मैं बहुत ठंडा चीज खा रहा हूँ, नोज में कुछ आया हुआ है, इसलिए बहुत ये क्या कहते हैं, ये हो रहा है.
2: कोई नहीं, अभी ये ठीक हो जाएगा. मतलब डेफिनेटली अब आप ख्याल रख रहे हैं तो जल्द से जल्द ठीक होगा, डोंट वरी.
0: ये चीता बच्चा है,
2: चीता ही बच्चा है. तभी कॉल किया उसने, देखो इमेजिन करो कितने अच्छे से बता रहा
0: है. पता है क्यों है? इसको पता है कि रूट कॉज क्या है और फिर ये वही हरकतें करेगा. मतलब इसको पता है, इसको नोज में इशू चल रहा है तो फिर ये उन्हीं चीजों से इंडल्ज होंगे. मतलब कोई ठंडा, कुछ ठंडा गर्म, कुछ कुछ कुछ ऐसा किया था मामला.
1: अहमद
2: के बाद मिले.
0: मैं आपको अहमद का बता दूं, अहमद जो है ना माशाल्लाह, ये हमारी जो तेज गांव है, ये यूं दौड़ता है बातों में. आप इससे किसी बात पे डिबेट करा ले, माशाल्लाह माशाल्लाह.
2: कितनी अच्छी सी फीलिंग भी आ रही है कि वो इतने अच्छे से बता भी रहा है कि आज यू नो मौका मिल गया. सो अहमद, आज आप आए हमारे साथ, बहुत खुशी की बात है सबसे पहले तो ये. एंड टेल अस समथिंग कि हाउ वाज योर डे टिल नाउ, कैसा लगा अभी हेल्थ वाइज या स्कूल में जब आप गए, हाउ वाज इट?
1: अभी तो मैं आज से मैंने छुट्टी की थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टेक अ टेस्ट. मैंने एक टेस्ट लिया था, मैं बता तो नहीं सकता ना, फिर कई बार नजर भी लग जाते कि
2: नहीं, नहीं,
1: मैंने किसी से सबको बताता था. तो फिर पिछली बार मैंने भी ऐसे ही टेस्ट लिया था
2: जी,
1: क्योंकि
0: बस अल्लाह ताला कामयाब करे, कामयाब करे इंशाल्लाह,
1: कामयाब रहे बस
0: इंशाल्लाह. I do believe in this thing. ये तो हमें बोला भी गया है, ये तो हदीस है कि नज़र जो है वो ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में ले जाती है. तो ये अच्छी बात है. आप लोगों से ये बोला करें कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं बेहतर से बेहतरीन तक पहुँच जाऊँ इंशाल्लाह, दुनिया में भी आखिर में भी.
1: और ये सदर जो है ना, मैं क्या बोलूँ, ये 3 महीने से चल रहा है.
2: अच्छा, तो ये मसले हो गए आपको? हाँ
1: यस, तो इसलिए मैं इतना बात नहीं कर सकता था आपसे 3 महीने का.
0: अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको कामयाब करे, हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. ये बताएं कि भाई ये जो है क्या कहते हैं, अपना आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आज हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आज आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है.
2: यस, और आपको बताना है कि लाइक
0: डू यू थिंक दैट व्हेन यू डू समथिंग यू आर ऑलवेज गिविंग योर इनफ इन इट, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो एग्जाम्स में हो, चाहे वो डेली लाइफ में हो, एक माइंडसेट आपका.
1: एक चीज बता दूं सफा.
2: यस,
1: अभी मैं एक चीज बता दूं सफा. मैंने अभी भी एक एग्जाम लिया था लाइक लास्ट वीक, अभी जुमरात वाले दिन अराउंड. तो क्या हुआ कि मैं सोच रहा था कि मैं पक्का यानी मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन उस स्कूल में ना यानी जिस में मैं टेस्ट ले रहा था ना, उसकी पासिंग जो था ना मार्क्स 76% या उससे ज्यादा था. तो मैं सोचता था मैं यानी मैं कॉन्फिडेंस के साथ मेरा था कि मैं क्या कहते हैं मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन पास. यानी मैंने जल्दी में भी किया था, मेरी मम्मा ने कहा था हल्का हल्का करना, यानी आराम आराम से करना था, लेकिन मेरे दिमाग में भी सारे आंसर आए थे, सारे मुझे पता चल गया था क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना. और फिर बाद में उतना ही ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया कि मैं फेल हो गया. मैंने कहा कैसे, मैंने तो सारे मैंने अच्छे से पास किए थे, मैंने सारा कुछ, मैंने 2 दिन से ये रिवाइज किया था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 2 डेज.
0: पता है क्या हुआ होगा? देखो, एक तो होता है नॉलेज होना, ठीक है, और ये मेरे साथ भी हो चुका है. आई गिव यू वेरी वेरी वेरी क्या कहते हैं उसे रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ. मैंने एक इंग्लिश का टेस्ट लिया था, ठीक है. अब इंग्लिश तो हम सबकी बड़ी अच्छी है, हम सबको पता है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसमें फेल हो जाए. होता पता है क्या है, कभी आप टाइम मैनेजमेंट में मिस आउट कर जाते हो, कभी आप स्पेसिफिक ना क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, कभी आप वो टैली नहीं कर पाते, कभी अगर आपसे बोला जाए कि ये ओपन एंड क्वेश्चन है आपको समझ में आएगा, आप उसकी डिटेल लिखना मतलब आप उसको एक्सेसिव किसी क्वेश्चन को आप एक्सेसिव लिख जाते हो.
2: हम कहते हैं ना भाप नहीं पाते हैं चीजों को, वो एक चीज हो जाती है. तो इस चक्कर में कभी नंबर कम आ जाता है।
0: और

0: एक और चीज याद रखना अहमद, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस, थिंग्स हैपन फॉर अ गुड रीजन. आपसे जो एग्जाम मिस आउट हो गया या जो एग्जाम में चीज मिस आउट हो गई जिसकी वजह से आप फेल हो गए, ठीक है. अब होता पता है क्या है, वी गेट अ चांस टू लर्न एवरी टाइम. मैंने जब वो इंग्लिश का एग्जाम, कितना तो ईजी होगा कोई, ठीक है, जब मैंने आई टुक दैट एग्जाम और फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज लाइक अभी भाई ये मतलब 60s में कैसे मार्क्स आए, मेरे तो 80s में आने चाहिए थे. और फिर मुझे पता चला नहीं, मैं ये समझ रही थी कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है. और मैंने ना
1: चीज छोड़ जाती है,
0: कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोड़ दिया. फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं हार नहीं मानूंगी. आई टुक द सेम एग्जाम अगेन रादर देन फॉलिंग फेलिंग एंड जस्ट क्राइंग इट ऑफ एंड सेइंग दैट आई विल नॉट परस्यू इट एनी मोर और आई एम नॉट गुड फॉर इट. I took the
2: exam. मैं वही अभी कर रहा था, मैं जो मैं एग्जाम के बारे में बात करता था वो वही एग्जाम के वही था. It was the same.
1: So how did it go? Like अभी पहले के कंपैरिजन में कैसा आ गया?
2: आसान था. It was like fast. यानी मैं सोच में रहा था कि पूरा एक घंटा लग जाएगा. यानी 12 to 1 तक था.
1: कोई नहीं, कोई मसला नहीं.
2: और वो थोड़ा वो लेट भी आई थी टीचर.
0: लास्ट टाइम कल कितने बजे तक सॉल्व किया था? लास्ट टाइम कुछ याद है? जल्दी सॉल्व हो गया था, लेट सॉल्व हुआ था?
2: लास्ट टाइम यानी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया था. यानी मुझे तो 2 घंटे मिल गया था पिछली बार, क्योंकि आई वाज लाइक ट्राइंग एट डिफरेंट स्कूल्स. तो क्या था कि अब मैंने तो बस आधा उसमें कर दिया था, यानी 1 घंटा लगा दिया था मैंने, 1.25 घंटा या फिर कुछ. और बाकी बच्चे भी थे, उन्होंने तो 15 मिनट और आगे कर लिया था, क्योंकि उनका तो कोई और था. यानी क्या कहते हैं कि 13 घंटे.
0: सही.
1: मतलब ये इस तरह से आपका एटलीस्ट इंशाल्लाह आगे, मतलब ये जो एग्जाम आपका हुआ है, वी जस्ट प्रे कि अभी और भी. हाँ बताएं क्या बोल रहे हैं.
2: इवन अमिता एंड सफा बटे अमिता भी आएंगे, मैं इनका आवाज जानता हूँ. तो कहेगी इवन आपने जब मुझे पता चल गया था ना कि मैं फेल हो गया था, तो मैं और सर्वाइव करा था. फिर मुझे पता चल गया था कि मेरी गलती क्या थी. मैंने ऐसे लिखा तो बहुत गलतियां आ गई थी मेरे में. इसलिए मैं अब ठीक ठीक से कर रहा हूँ, ठीक ठीक से मैंने किया.
0: This is what is expected, and this is how we progress. We fall, we get up, we learn from our mistakes, we try again. Myself, yeah. जो स्कोर मुझे चाहिए था ना, आई नीडेड माई स्कोर इन 90s एंड स्टफ. तो जो स्कोर मुझे अचीव करना था ना, उसके लिए मुझे आई लिटरली वर्क लाइक आई टुक द एग्जाम ऑनेस्टली 7 to 8 times. And I'm still working on it. So it's not that thing. There are certain things which we are good in. लेकिन कभी कभी ना memory check कुछ इस तरीके का हो रहा होता है हमारा, कि वो हमें ले डूबता है और हमें उसकी tricks और tactics समझने होते हैं. And it takes time. Trust me, it takes time.
1: Yeah, to actually ये जो उन्होंने बोला ना कि मुझे काफी सारी चीजें पता चल गई.
0: हाँ.
1: कि पहले नहीं
0: exactly.
1: हुआ था. This is a very very good thing कि आपको खुद self recognition भी हुआ.
0: Exactly.
1: Yeah.
0: Exactly.
1: So,
0: and I really appreciate this thing that you're not one of those kids जो कि रोकर कहानी खत्म कर देगा, नहीं हुआ तो भाई अब जिंदगी बर्बाद हो गई.
2: मैं रो तो रहा था, वो होगा.
0: लेकिन वो जो क्विट करने वाला सीन होता ना, यू डिड नॉट फेल. Actually, you're learning from it.
1: Right. तो फिर आपने किया ना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो अभी आप हमसे शेयर कर रहे हो. मतलब हमें लगा था सफा कि वी हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम अहमद, बट इन्होंने खुद ही बताया कि भाई मेरे अंदर ही नेवर गिविंग एटीट्यूड है.
0: गुड गुड वेरी गुड.
1: तकलीफ हुई कि जब एग्जाम में फेल हुए, बट देन आई सेड कि नहीं चलो फिर करूंगा.
0: और जस्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अगर कभी अपनी बायोग्राफी दी है या कभी इंटरव्यूज दिए ना आपने, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई इंटरव्यू के लिए 25 पीपल आए थे, एंड आउट ऑफ 25, 24 गॉट एक्सेप्टेड एंड ओनली आई गॉट रिजेक्टेड. नॉट जस्ट वंस, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स,
1: बट
0: आई
1: येट
0: केप्ट ऑन ट्राइंग. एंड नाउ दे आर द नेम्स हु आर एक्चुअली रेजिलियंस. जो होती है ना रेजिलियंस, वो इंसान को ऊपर लेकर जाती है कि मैं हार नहीं मानूंगा.
1: तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है अहमद. मतलब सच में मुझे और सफा को दोनों

0: को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. अब ये बताओ कि थोड़ा सा माइंड को हल्का करते हैं हम यहाँ पर ना टंग ट्विस्टर्स खेल रहे हैं. सो मतलब आप खेलने के लिए तैयार हो फिर?
1: थोड़ा सा अहमद भाई साफ करें. अहमद भाई तो पता नहीं कितने सालों बाद आए, पता नहीं कितने साल, 22-23 साल के तो हो गए होंगे, है ना अहमद भाई? अब तो मुझे भाई बोलना पड़ रहा है आपको, बड़े भाई.
2: अब तो खेलते हैं ये माइंड का गेम, क्योंकि बहुत टाइम मैंने ऐसा गेम खेला है.
1: नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ उम्र, उम्र उम्र कितनी हो गई आपकी?
2: उम्र तो मेरी 12 साल की अभी तक.
0: बस 12 साल की.
1: मैंने सोचा अभी 22-23 साल तो हो गए होंगे, फिर मैं कहूंगी उमर मेरे बड़े भाई, उमर बोल रही सॉरी अहमद मेरे बड़े भाई.
0: नहीं अहमद बड़े ही है, मतलब जिस तरह से आज इन्होंने बात की है ना, मतलब ये बड़े बड़े रह जाते हैं जिसने अच्छे से.
1: दादा बू
0: या दादा बू है. तो रियली अहमद हैट्स ऑफ टू यू. और आपसे ना मतलब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आप 12 साल के हैं माशाल्लाह.
1: बट
0: यस एग्जैक्टली, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत समझदार सुनाई दे रहे हैं. एंड लाइक हम बड़ों से बात करते ना जैसे, वैसा लग रहा है कि हम अहमद से बात कर रहे हैं. सो दैट्स रियली अमेजिंग, लव टॉकिंग टू यू.
1: अच्छा भाई अहमद ये बताएं, टंग ट्विस्टर खेलेंगे? अच्छा थोड़ा सा अब रिलैक्स करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे अब हम. ओके
2: ओके
1: ओके. अच्छा भाई देखें, चूज कर लें कि टंग ट्विस्टर आपको कौन देगा, पहले ही बता दें फिर ना कहना.
0: या फिर सफा.
1: सफा या अमीता, जल्दी बता दें.
2: पहले सफा
0: वो कह रहे. अरे वाह,
2: कोई
0: हम यहाँ पर हाई फाई कर रहे हैं. नहीं नहीं कोई नहीं, हम मुश्किल नहीं देंगे. आपने कहा है अगर इजी देना है तो हम दोनों ही इजी देंगे. ठीक है तो अभी सफा दे देती हैं. अब वो ढूंढ के निकाली है, गोल गोल नहीं घुमाना. ठीक है
1: देखो अब आपने चैलेंज कर ही दिया है तो फिर आपको आज हम घुमा ही लेते हैं. क्या कहते हैं?
0: नहीं
1: घुमाए कि नहीं घुमाए? नहीं इनको नहीं पता ना. आपने आपने पिछले कुछ दिनों के हमारे एपिसोड सुने थे शो के?
2: नहीं
1: सुने थे
2: ना. नहीं सुना ने कभी. आप बहुत टाइम बाद बनाकर शो सुने, बहुत टाइम बाद.
1: अच्छा चलो अब ये बताओ मुझे, ठीक है सुन लेना अभी. ठीक है अभी अभी बोलना नहीं, सुन लेना. नीली नदी के पीछे नया नरम नूडल निकले, नए नरम नूडल निकले. नीली नदी के पीछे नए नरम नूडल निकले. समझ में आया? नीली नदी के पीछे नए नरम नूडल निकले. बोलो जरा एक दफा बोलो.
2: नीली नदी के पीछे
1: नए नरम नूडल निकले.
2: नए नरम नूडल निकले.
1: देखो नीली नदी के पीछे नए नरम नूडल निकले.
0: ओके समझ गया, समझ गया.
1: छह दफा बोलना आपने अनइंटरप्टेडली.
0: ओके सो शैल वी स्टार्ट सफा?
1: 1 2 3 गो.
2: नीली नदी के पीछे नए नरम नूडल निकले. नीली नदी के पीछे नए नरम नूडल निकले. नीली नदी के पीछे नए नूडल
0: नदर
1: नहीं नहीं नहीं नरम नूडल थे, नडर नूडल नहीं थे.
0: Nice Ahmed, good try.
1: It पता है ये अभी तक का सबसे बड़ा वाला सेंटेंस आपको मिला है.
0: Actually it is tough. It's tough. नूडल बन गए लेकिन नदी के पास. ठीक है ये एक अच्छी चीज हो गई है.
1: दो दफा तो बन गए थे.
0: दो दफा अच्छे बन गए यार. तो वेरी नाइस अहमद, वी रियली लाइक्ड इट. एटलीस्ट आपने ट्राई किया और मस्त किया. सो यस अहमद, बिफोर लीविंग वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज?
2: तो जैसे सुबह और अमिता आप लोग कह रहे थे थैंक यू, आप मुझे बड़ा इंस्पायर कर रहे थे. इवन आपको भी हम कहने चाह रहे हैं कि नेवर गिव अप, प्लीज नेवर गिव अप. सच्ची में
0: That's
1: the spirit. That's how life goes on. We are not here for quitting. We are here for resilience.
0: Absolutely. और अहमद हम उम्मीद करते हैं जो आप next time call करें हमें तो हमें जरूर बताएगा कि हाँ कि आपकी health कैसी जा रही है, आपका exam कैसा गया. And we just pray कि दोनों ही awesome रहे, आपके number अच्छे आए और आपकी health भी कमाल हो जाए.
1: देखो अमिता का बातों में गुजारा हो जाएगा, मुझे लड्डू खाने इंशाल्लाह. ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह
0: लड्डू मिल जाएंगे.
1: अपना बहुत सारा ख्याल रखो एंड नेवर गिव अप. ओके यू आर इन अ लर्निंग फेज.
0: हैव अ गुड डे.
1: अल्लाह हाफिज.
0: अल्लाह हाफिज. क्या बात है, मतलब अहमद से बात करके तो मजा आ गया
1: अहमद माशाल्लाह वो

0: लेटर बॉक्स है मैं तो. मतलब ये ना जो नेवर गिविंग वाला एटीट्यूड होता है ना, ये हमेशा रहे अगर हर बच्चे के साथ ना, तो
1: काम कर जाता है भाई, काम कर जाता है. इट टेक्स अ बिट टाइम बट ये काम कर जाता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: चलिए मैं एक और कॉलर की तरफ चलते हैं.
0: यस, अस्सलाम वालेकुम.
2: वेलकम शाम.
0: यस, प्यारी सी आवाज.
1: गेस करिए. गेस कर लें.
2: हाँ, कौन है?
1: अमाइ डॉटर नहीं है? अमायरा कैसी हो? आज तो बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह खुश नजर आ रही
0: है. माशाल्लाह क्या बात है.
1: अमायरा और मेरा एक सीक्रेट है, तभी तो हम जो है ना ऑफ एयर बताएंगे आपको.
0: मीरा मैं देख रही हूँ, बताए सफा को. अमायरा मुझे चिढ़ा रही है, ये बताए चेहरा बना बना के, और कह रही है कि मेरा सीक्रेट है अमायरा के साथ. क्या क्या सीक्रेट है? चलो मैं इनसे पूछूंगी जब ब्रेक पे जाऊंगी ना.
1: ऑफ एयर बताएंगे अमिता को. ठीक है.
0: ओके ओके. सो अमायरा ये तो बता दो, कैसी हो? कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
1: बहुत अच्छा. और आज अमायरा इतनी एक्साइटेड है ना, आज अमायरा है कि नहीं? अमायरा सुपर डुपर एक्साइटेड है कि नहीं है? हैं सुपर डुपर एक्साइटेड.
0: मैं कुछ शायद गैस कर पा रही हूँ मायरा. मैं थोड़ी देर में पूछती हूँ सफा से. हाँ चलो कोई नहीं. अच्छा ये तो बता दो मायरा, आज टिफिन में क्या खाया है?
1: लंच में क्या? ऑनलाइन क्लास लेती है ना ये.
0: अच्छा तो लंच में कुछ खाया?
1: ये लग्जरी एंजॉय करती है, लग्जरी ये गरम गरम खाना खाती है.
0: क्या क्या? सॉरी मैंने क्या मिस कर दिया?
1: पूरी.
0: माशाल्लाह पूरी खाई है इनने.
1: अमायरा पता है मैं जो ना पिछले दो फ्राइडे से पूरी खाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आधी भी नहीं खा पा रही.
0: आधी? मैं सिर्फ सपनों में ही ख्वाबों में ही खा रही हूँ. सो कोई नहीं. अच्छा ये बताओ पूरी मतलब प्लेन खाई या उसके साथ कोई मतलब रसा या कोई सब्जी क्या था कुछ?
2: प्लेन.
0: ये प्लेन वाला बच्चा है भाई.
1: मजे की होती है प्लेन पूरी.
0: हाउ स्वीट इज दैट.
1: मैं बता रही हूँ खाने पीने में दोनों दोस्त बन सकते हैं. मैं बता रही हूँ मायरा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं. हम दोनों को एक जैसी चीजें
0: खा लेंगी. बिल्कुल. हाँ देखो यहाँ पर सफा मुझे छोड़ रही है, मैं पीछे से आऊंगी, बस एक पूड़ी चोरी करके लेके जाऊंगी तुम लोग. चले कोई नहीं. अच्छा अमायरा ये तो बताएं, हम लोग बातें कर रहे थे कि हम एक्चुअली आज बच्चों से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है अपने बारे में कि यू नो वो क्या अपना बेस्ट वर्जन है. क्या वो कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं
1: या
0: फिर हार मान जाते हैं? तो आप क्या कहोगे आपको लेकर, अपने आप को लेकर? अच्छा जी,
1: प्रैक्टिस मेक्स अमायरा परफेक्ट. माशाल्लाह
0: माशाल्लाह. सो अमायरा जब कोई प्रॉब्लम आती है लाइक पढ़ाई में या कुछ भी, तो आप क्या करते हो? आप थोड़ा रुक जाते हो, डर जाते हो, क्या क्या करते क्या हो या ट्राई करते हो?
2: कभी जब कोई क्वेश्चन में मुझे डाउट होता है
0: हाँ,
2: तो मैम से रेज़ अ हैंड करके पूछती हूँ डाउट.
0: हाँ गोल्डन रूल हम दोनों की जुबान से निकला. पता है हमारा हमारे साथ क्या होता था, ये जो हाथ उठाने वाली चीज है ना, इसमें ही हमारी हम लोग डरने लगते थे कि हाथ उठाए और टीचर कुछ और ना पूछ ले, तो इसमें भी हम कभी कभी डर जाते थे. सो रियली वेरी नाइस कि आप हाथ उठा के पूछते हो. वेरी ब्रेव गर्ल यू आर.
1: माशाल्लाह ब्रेव कॉन्फिडेंट. माशाल्लाह यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू आस्क क्वेश्चंस गर्ल. हर किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती, हमारे अंदर तो बिल्कुल भी ना थी.
0: बाद में आई, ऐसा नहीं है. पहले नहीं थी आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगा आने में. सो यस दिस इज व्हाट यू डू. ओके हाथ उठा के कर लेती हैं.
1: अच्छा अमायरा की मम्मा से मेरी बात हुई थी, तो अमायरा की मम्मा भी ये कहती शी लाइक्स सॉल्विंग हर स्टफ बाय हरसेल्फ. शी इज अ वेरी सेल्फ, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट बच्चा होता है वो. माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड. माशाल्लाह माशाल्लाह देयर आर मेनी थिंग्स. हां जी
0: वो तो बनता है.
2: एक्सक्यूज
1: मी, एक्सक्यूज मी अमिता, मैं इनका बता दूं माशाल्लाह इनके सारे ए प्लस आते हैं यूरो में। इनको देखकर ना मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है, भाई मैं किससे बात कर रही हूं, 10/10 से,
0: 10/10 ही है वो।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, 10 out of 10 बच्चा है ये।
0: सो अमायरा ने अभी आज देखो फुल अपनी एनर्जी अप कर ली है पूरी खा के, वो मुझे लग ही रहा है कि खिलखिला भी रही है। तो अमायरा इसी बात पे आ जाओ, हम लोग टंग ट्विस्टर खेल लें आपके साथ। तो टंग ट्विस्टर खेलेगी हमारी अमायरा। ये बता दो कैसा कैसा टंग ट्विस्टर दे दें आपको, टफ वाला दे दें, इजी अच्छा, वाला दे दें।
1: अमायरा को मैंने दिया था, आपने दिया था टंग ट्विस्टर?
0: हमें खुद याद नहीं किसने दिया था।
1: अमायरा आज कौन देगा टंग ट्विस्टर?
0: ओ सोच रही है कौन सा लूं। अच्छा
1: बेटा, मार्केट में शॉपिंग करने आए हो? 2 kg ये वाला टंग ट्विस्टर दे दो, 1 kg ये वाला दे दो। अच्छा ये बता दें, ये बता दें अमिता या मैं बताएं? बताएं आप।
0: अब सफा गए, गई हमारा, आप गए। सफा से मैंने सेटिंग कर रखी है, जो भी बच्चा बोलेगा ना कि सफा आप, फिर हम लोग ढूंढ के आपके लिए निकालेंगे।
1: चलें अब ये वाला, ठीक है ये वाला, ये वाला,
0: हाँ ये वाला कर दो।
1: सुनना ठीक है, टूटा ताजा टमाटर तोड़ लिया। नहीं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, इसको करते हैं तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया। हाँ जी
0: yes,
1: तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया 6 times। ओके 1 2 3 स्टार्ट।
2: तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया, तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया, तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया, तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया, तोते ने ताजा टमाटर तोड़ लिया।
1: ओ भाई ये तोता जीत गया, तोता तोता तोड़ के ले गया ताजा टमाटर, माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया।
0: और ये तोता कौन है? ये तोता हमारी अमायरा है।
1: चले भाई वेरी गुड हो गया भाई, वेरी गुड हो गया मायरा। तो ये बताएं टमाटर कैसा था?
0: हमारा ही हमारा छोटा सा तोता है। सो गुड, अभी हमने टमाटर खिलाया आपको, अब नेक्स्ट टाइम कुछ और खिलाएंगे ठीक है। तो अमायरा बिफोर यू लीव कुछ कहना चाहोगी?
2: हाँ.
0: बताओ ना।
2: एक सरप्राइज आने वाला है।
1: सरप्राइज आने वाला है? ओह गॉड, व्हाट्स दैट सरप्राइज गर्ल?
0: सरप्राइज पूछते नहीं है सफा।
1: अच्छा सरप्राइज पूछते नहीं, ओहो मैं तो भूल गई सरप्राइज के बारे में पूछते नहीं है। अच्छा ये तो बता दो टमाटर पसंद भी है कि नहीं है? चॉप चॉप
2: चॉप।
1: अच्छा वैसे खाने में पसंद है कि नहीं है खाली टमाटर?
2: ना।
1: तो ये तोता टमाटर लेकर कहाँ गया? अम्मी को दे दिया, अम्मी सालन में डाल लो,
0: चप चप चप करके बना दो।
1: ये सही है।
0: चले कोई नहीं, तोता आपसे बात करके मजा आ गया हमारा। एंड हाँ क्या हुआ?
2: फनी था।
0: यस फनी तो था, आप हमारे क्यूट सी तोता हो, बताए तोता परी हो हमारी छोटी सी। सो यस हमारा मजा आया आपसे बात करके, अब हम आपसे बाद में बात करेंगे, अगली बार कॉल करना ठीक है? चलो हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।
1: चल भी बच्चा पार्टी, आप सुन रहे हैं FM 107 पर द सुपर किड्स शो, और शर्माना नहीं है, कॉल करो, कहीं बंदर कहीं तोता कहीं पप्पू कहीं चीनू सब चल रहा है यहाँ मार्केट में। टंग ट्विस्टर में हर कोई शामिल हो गया है, बिल्ली चूहे राजा सब exactly. है हमारे पास।
0: तो अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी जुबान बिल्कुल साफ करनी है तो आप हमें कॉल करो 4434377 पर 4434377, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो 6662107 पर। और आज मैं और सफा हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारे बच्चा पार्टी से कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या वो अपना बेस्ट वर्जन है, जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर जाने देते हैं कि नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा, या डर जाते हैं, क्या सोचते क्या है, आप लोग हमसे शेयर करें। और अभी क्या कहती है सफा, एक ब्रेक की तरफ रुख किया जाए?
1: अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आकर आपकी कॉल अटेंड करेंगे। सुनते रहें FM 107 पर सुपर सफा और अमिता के साथ।
0: यस द सुपर के शो, स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक बच्चा पार्टी, आप सुन रहे हैं द सुपर किड्स शो ऑन एफएम 107। और भाई हमारे साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4434377 इज द नंबर टू कॉल।
1: एब्सोल्युटली, और कॉल करें और देखते हैं कि आज हमारे जो टंग ट्विस्टर्स हैं कमाल कमाल के, उसमें कितने लोग कमाल धमाल कर पाते हैं। तो भी हमारे साथ कोई जुड़ा है क्या बच्चा पार्टी?
0: यस, हमारे साथ कोई है और हम देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: बड़ी प्यारी आवाज है, कौन है हमारे साथ?
2: साइंटिस्ट
1: क्यों है, पहले ये बताएं जरा, क्या बनाया अभी आपने?
0: दिस इज साइंटिस्ट तमीम बिकॉज ही लव्स साइंस।
1: इज इट सो? हाँ, तो साइंस में देखो, साइंस की जब बात होती है ना तो बहुत सारी चीजें उसमें बड़ी कमाल की होती हैं। सो तमीम, लाइक टेल अस समथिंग कि साइंस में आपको सबसे मजे की चीज क्या लगती है?
0: व्हाट डू यू लाइक अबाउट साइंस? व्हाट
1: स्पेस का बच्चा है तो बिल्कुल वो बनेगा अपना एस्ट्रोनॉट बनने वाला है।
0: व्हेन यू ग्रो अप तमीम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम?
1: वेरी गुड। सो डू लेट अस नो, जब आप एस्ट्रोनॉट बनो ना, देन डेफिनेटली हम आपके लिए बड़ा वाला गिफ्ट लेकर

0: आएंगे, ठीक है?
1: अच्छा, I will say something.
0: Yeah.
1: Whenever I contribute science and space stuff na in the show, most of the times it's Tamim who gives me the information.
0: Oh my goodness.
1: About the space rockets going around.
0: Yeah.
1: He gives me all the information.
0: Right.
1: NASA ki jo hoti hai information that their rockets are flying by, they're going around the moon and this. He gives me all the links
0: so
1: for them.
0: So basically, Tamim understands everything. He reads a lot. Hai ki nahi, Tamim?
2: Yeah.
0: So like free time maybe you love like reading science and experiment wagera kuch kiya hai kabhi?
2: हाँ
0: हाँ, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो आपको याद है और आप शेयर करना चाहते हो अभी हमसे?
2: अगर आप ग्लिटर पानी में डालो और फिर हाथ पे सोप डालो और फिर हाथ पानी के अंदर डालो.
0: ओके,
1: इट्स ओके, यू कैन टॉक इन इंग्लिश. इट्स ओके,
0: यू कैन टेल अस इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम.
1: It just splits, it's like a reaction that when you put your soaped wali finger hoti hai na usko aap jaise pani mein daloge na glitter sari far away ho jati hai. I'm not sure how it works but it's like a reaction.
0: Yeah,
1: it just splits open.
0: Wonderful. So he does all these kind of stuff. That's very nice. So Tamim, definitely अगर ऐसा वक्त रहा तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और कुछ ना बड़े मज़े मज़े की साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आपसे सीखेंगे एक्चुअली, ठीक है?
2: ओके.
0: तमीम, वी आर आस्किंग बेसिकली कि जब अपन बोलते हैं ना कि द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, लाइक इफ यू आर इन एनी प्रॉब्लम, सो डू यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम और डू यू जस्ट लीव इट लाइक दैट और यू आर स्केर्ड? सो व्हाट डू यू डू बेसिकली? यू सॉल्व. Okay, so if, okay, tell us something in detail, like when you have a problem in front of you and if you're not able to do, what do you do, the first thing that comes in your mind, what do you do?
2: Find a solution.
0: A solution. Then darta nahi hai bachcha, bilkul share hi hai ye to bhai, chalo theek hai.
1: Tamim, tell me the truth, do you cry about it or do you find a solution?
2: Find a solution.
1: We cry and we find the solution.
0: मतलब ठीक है, रोना बनता है यार, लाज़मी है, बच्चे हैं.
1: No. It's with all, even even with big people it happens.
0: Right, it does happen.
1: When big people get confused, what do? Is sometimes they get sad and sometimes they cry over it as well.
0: Yeah.
1: And then after some crying and after some being some sadness,
0: right,
1: they begin to try to solve it. Yeah, it happens to all of us.
0: But then I understand ki abhi Tamim se baat karke, he's like very confident kid and he knows what he's doing. So koi panga hai hi nahi life mein. So Tamim, we just pray and we just wish you all the best ki jaise aap science ke experiment kar rahe ho, karte rehna, and jo aapka dream hai to become an astronaut. So we just pray that it becomes true.
1: Inshallah. And let's move on to our game. Tamim,
0: yes,
1: you want to play tongue twisters?
2: Yes.
0: ओके, सो टंग ट्विस्टर, इनको इजी दिया जाए डिफिकल्ट दिया जाए, सफाई बताओ.
1: ये तो इनसे पूछा जाएगा तभी. विच लेवल,
0: इजी या डिफिकल्ट?
1: डिफिकल्ट. आर यू श्योर? अच्छा, आई विल टेल यू वन थिंग, इट्स इन उर्दू.
2: मीडियम.
1: नहीं, हार नहीं मानेंगे, मीडियम फिर खतरों के खिलाड़ी.
0: ठीक है, तो हम मीडियम देंगे और आपको 6 टाइम बोलना होगा, ठीक है?
1: You have to repeat it fast, 6 times, uninterrupted, and try not to make mistakes, okay?
2: Okay.
0: Okay, so your tongue twister is, dhyan se sune, chota chuha chatni chate.
1: What okay. is it?
2: Chota chuha chatni chate. Chota
0: yes. Wait, now we'll say, when we say start, then you start, and fir aap 6 time bolna, okay?
2: Okay.
0: So once again, I'll repeat. छोटा चूहा चटनी चाटे. ऑल राइट, ओके द मीम, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
2: छोटा चूहा चटनी चाटे, छोटा चूहा चटनी चाटे, छोटा चूहा चटनी चाटे, छोटा चूहा चटनी चाटे, छोटा चूहा चटनी चाटे, छोटा चूहा चटनी चाटे.
0: अरे भाई साहब, ये बच्चा एस्ट्रोनॉट ही बनेगा. छोटा चूहा को चटनी,
1: वो चाट लाई चटनी खा रहा होगा.
0: कुछ ना कुछ उसका भी वो यू नो सोल्यूशन निकाल लेगा. वेरी गुड यार तमीम, वी रियली लव्ड इट. एंड ये जो मीडियम सा टंग ट्विस्टर था इसका भी आपने रिकॉर्ड बना दिया.
1: एंड द थिंग अबाउट तमीम इज तमीम डज नॉट

0: not has a grip on Urdu.
1: No, but he does. इसको सुन के कौन बोलेगा कि उसको grip नहीं है. हाँ. So Tamim, we really loved it. It was good. So next time भी जब आप call करोगे ना, तो हम आपको Urdu का tongue twister देंगे and let's see you prove Safar wrong, okay?
0: अच्छा Tamim, tell me, do you even know what is a chutney?
1: Come on, you must be knowing. Mama बनाती होंगी
0: chutney.
1: बिरयानी के साथ बनती है.
0: What is a chutney?
2: It's the green yogurt.
1: Yeah, he knows it. Come on, Safa. See, Safa, बिल्कुल underestimate करी बच्चे को. सब पता है.
0: Very good. चलो, चटनी का चल गया.
1: चटनी का हमें पता चल गया है. Okay, Tamim, we really love talking to you. And tell us something before you leave. कोई message आप देना चाहोगे? Anything that would you like to say?
2: Never give up on your dreams.
0: Oh, very nice.
1: ठीक है.
0: No matter what happens, always keep on trying.
1: Yeah, absolutely. Right, Tamim?
0: Chalen yeah. ji, अपना ढेर सारा ख्याल रखें.
1: Allah Hafiz.
0: मुझे चटनी से याद आया. हमारी अम्मा कितनी. मतलब कोई काम गलत कर दो ना, कहते चटनी बना दूंगी तुम्हारी. चटनी
1: चटनी कौन सी वाली, टेस्टी वाली या कौन सी वाली? माइंड में यही आता है, ग्रीन वाली या फिर लाल वाली. कितनी तो वैरायटी हमारे घर में.
0: लहसुन की चटनी.
1: आइए, मुझे लग रहा है लहसुन मिर्च की, जैसे मतलब अच्छे से
0: कूट कर.
1: सो
0: चलो भाई, अभी हमारे पास एक और कॉल है.
1: आइए इनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम
0: जी. मोहतरमा, कैसी हैं आप? आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे कि आप हेलो आई एम अंडर द वाटर
1: या थोड़ा सा
0: पानी से बाहर निकला है बेटा.
1: पानी से बाहर निकले, नेटवर्क में आए और स्पीकर के नजदीक आए.
2: ओके,
1: आ गई. नाउ साउंड्स रियली नाइस. तो कौन ये प्यारी सी आवाज, गेस कर ले हम कौन है, बताओ जरा. सफा बता सकती हो क्या?
0: मैं तो बता सकती हूँ. आज मेरा
1: मेरा ही टेंशन रहता है ना, इसीलिए. ये शफा है क्या? क्या क्या किया आज सुबह से, बताओ जल्दी जल्दी.
2: आज सुबह सुबह मैं हमारे कंप्यूटर लैब था. और हमारा आज प्रैक्टिकल था.
1: ओके.
2: मैंने वो याद नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे टीचर ने वेरी गुड बोला.
1: माशाल्लाह. ये बच्चा वो है जो प्रैक्टिस करता है. पहले प्रैक्टिस की होगी ना, कुछ तो रीड किया होगा.
2: यस, हमने पहले ही बहुत सी चीजें की थी जो उसमें आई थी. मुझे आज भी देखती वो चीजें.
1: तो बढ़िया है ये, तो फिर मजे आ गए. फिर कैसा लगा आपको जब आपके टीचर ने आपको वेरी गुड बोला?
2: अच्छा लगा.
1: यस, ये भी ना बात. सो शफक, ये तो बताओ, आज हम बात कर रहे हैं बेस्ट वर्जन्स की, तो ये बताओ कि कभी कोई लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है, चाहे स्कूल के यू नो सब्जेक्ट्स में हो या फिर आपकी ऐसे लाइफ में कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें जो आप समझती हैं कि ये थोड़ी डिफिकल्ट है करने में, तो आप बेसिकली क्या करते हो जब कोई चीज़ डिफिकल्ट आपके सामने आती है, तो क्या करते हो? चिप्स और पॉपकॉर्न के बाद सोचूंगी क्या करना है. नो, बट ये हम लोग करते हैं, बताए. हमें टेंशन हो जाती है, ठीक है पहले या तो थोड़ा सो लेते हैं,
0: पहले पेट पूजा कर लेते हैं,
1: कुछ खा लेते हैं, एंड देन वी सॉल्व. ओके, दिस बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग. सफा, शी सेड दैट यू नो कि मैं पहले काम डाउन होती हूँ, रिलैक्स करती हूँ.
0: एंड दिस इज एक्चुअली द थिंग. पता है क्या होता है शफक, साइकोलॉजिकली इट्स प्रूवन कि आप जो ना, हाउ डू आई से इट, कि आप एक पैनिक माइंडसेट के साथ सही डिसीजंस नहीं ले सकते.
1: राइट, दैट्स वेरी ट्रू. So, Shafak, इसके अलावा क्या करती है जब आप calm down होती हैं, and then what do you do?
2: I मैं अपने ब्रेन को calm down करती हूँ, थोड़ा सोचती हूँ इसके बारे में कि ऐसा ऐसा होगा और मैं ऐसे कर लूँ. फिर मैं breathe out and then I start it.
1: अच्छा, एंड देन
0: अच्छा, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है.
1: ये आपको सिखाया किसने?
0: बस सांसें लो, यूं लंबी लंबी सांसें लो, 10-15 मिनट छोड़ दो अपने आप को, फिर बात करो.
1: ये स्कूल में सिखाया है, मम्मा ने सिखाया?
2: मैंने खुद सीखा है.

0: भाई साहब ये अलग ही बनने बच्चे लेवल ही अलग है. अच्छा कुछ सीखा है कि ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन करने से शी जस्ट गेट फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन एंड देन शी डिसाइड कि क्या करना है. अच्छा अभी इस पूरे वीक में या कभी भी कोई ऐसी चीज रही है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगी एंड देन यू एक्चुअली यू नो प्रैक्टिस्ड इट एंड यू डिड इट, कुछ ऐसा रहा?
1: वर्ड उर्दू में कुछ कुछ वर्ड मुझे नहीं आते, लेकिन पहले मैं उसको लिख लेती हूँ रफ पेपर पे, उसको लिख लेती हूँ, उसको ना लाइंस बना लेती हूँ. एक बार उसके ऊपर जहाँ पर लिखा हो उधर ट्रेस कर लेती हूँ और फिर
0: उधर ही लिख लेती हैं. ये भी बढ़िया है, मतलब she does it, she really does her work. तो यार शफक एक चीज़ समझ में आ गई, आप नेवर गिव अप करने वाले बच्चे हो एंड यू आर एक्चुअली द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट दैट. अब चलो इसी बात पे अपन आगे बढ़ते हैं टंग ट्विस्टर की तरफ. सो आर यू रेडी?
2: तो भाई क्या कहते हैं कि मैं टंग ट्विस्टर दूं के अमीता टंग ट्विस्टर?
0: ये सवाल ही बहुत, मतलब ये टंग ट्विस्टर में ना बच्चे बड़ा वो कर रहे हैं सोच रहे हैं कि सफा इजी देगी.
2: सफा ना
0: नहीं नहीं कोई भी देगा. सो यहाँ पर आप बस बताओ कि आप रेडी हो खेलने के लिए. सो वी विल जस्ट गिव यू अ टंग ट्विस्टर और सिक्स टाइम आपको बोलना है.
1: ओके
0: ओके आर यू रेडी नाउ?
1: यस.
0: ओके अब ध्यान से सुने. कमल ने कलम से कमाल किया, ठीक है?
1: कमल
2: कमल ज्यादा हो गया अभी. नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ और कुछ और अभी ज्यादा हो गया.
0: कमल ओके ओके आई विल गिव यू अनदर वन. ओके बिल्लू बोला बबलू से, बबलू बोला बिल्लू से,
2: बिल्लू बोला बबलू से, बबलू बोला बिल्लू से,
1: बिल्लू बोला बबलू से, बबलू बोला बिल्लू से.
0: यस सो दिस यू हैव टू से फास्ट सिक्स टाइम्स. ओके
1: ओके
0: ओके सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. से
1: बिल्लू बोला बबलू से, बबलू बोला बिल्लू से, बिल्लू बोला बबलू से, बबलू बोला बिल्लू से, बिल्लू बोला बबलू से, बबलू बोला बिल्लू से, बिल्लू बोला बबलू से, बल्लू
2: बल्लू बल्लू बल्लू बल्लू बोल गया, बल्लू बोल गया, बल्लू बोल गया.
0: भाई बुलवा के इन्होंने दम लिया. हाँ तो बिल्लू ने बबलू से बोला कि हमारी शफक ने 4 का स्कोर कर लिया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर. मतलब अभी तक 4 तक
2: मुझे तो लग रहा था
0: बहुत मुश्किल था यार ये.
2: भाई हमने तो बिल्लू और बबलू बोला था, ये बल्लू कहाँ से आ गया बीच में? ये कोई तीसरा कैरेक्टर कहाँ से आया बीच में भाई?
0: शफक लेके आई, उन्होंने कहा कि ये बिल्लू बबलू से क्या ही बात करेगा, बल्लू को भी ले आओ. नाइस वन शफक, वी रियली लव्ड इट. सो यस शफक बिफोर यू लीव कोई मैसेज देना चाहोगे? यस
2: हमेशा गड़बड़ हो जाती है जब कोई तीसरा बीच में आ जाता है तो.
0: बल्लू को लेकर आई हो,
2: बल्लू को लेकर
0: तो कुछ कहना पड़ेगा.
1: मैं दे दूं?
0: हाँ क्या बोल रहे हो?
1: डर के आगे जीत है.
0: भाई सारे भाई साहब हैट्स ऑफ, मतलब मेरे सर की जो हैट है ना वो मैंने आपके सर में डाल दिया, आप जैसे डिजिटली इमेजिन कर लो ठीक है. चलो डन है डन है, बिल्कुल अब हम डर के आगे जीत का ध्यान रखेंगे और आप भी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक है.
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज.
1: अल्लाह
0: हाफिज. हाउ स्वीट इज दैट. शफक से भी बात करो, बड़े मजे की है, मतलब क्या ही वादे करती हैं. और अभी कोई और भी हमारे साथ जुड़ा है, आइए जाने.
2: अरे भाई कॉल कट गई, ड्रॉप हो गई भाई, कॉल ड्रॉप हो गई भाई. मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा था अंदर अंदर से ऐसी फील आ रही थी जैसे हाशिम और या जो है ना जक्रिया. वो जक्रिया कॉल कर रहे थे.
0: तो कोई नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 और हाशिम तो ट्राई कर ही रहे हैं और भी बच्चा पार्टी जो हमें सुन रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एंड बातें करना चाहते हैं, दिस शो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू. हमारे सुपर लेजेंड सुपर किड्स, कॉल अस ऑन 4434377 या हमें मैसेज करें 6622107 पर.
2: अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 पर
0: हमारी सुपर सफा और अपनी परमिता को. स्टे ट्यून्ड.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: well, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में, हर थर्सडे सुबह 10 से 11 तक आरजे महवेश खान के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो।
1: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
4: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पे।
1: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
4: ऑन पिच परफेक्ट,
1: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
4: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
1: दोपहर 3 से 4 तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं, जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए। जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
5: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल समान के साथ और आरजे महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। रोजाना 10 से सिर्फ FM 107 पर।
4: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो।
1: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
4: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला हो

0: करता है बिल्कुल पॉइंट पे।
1: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
0: ऑन पिच परफेक्ट,
1: क्योंकि यहाँ क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
0: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
1: दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं द सुपर किड शो।

0: Yes, welcome once again. हमारे सारे नन्हे मुन्ने सुपर किड्स सुपर लेजेंड्स, क्या हाल चाल है.
1: तो बच्चा पार्टी, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव शो है और 4434377 इज द नंबर टू कॉल. और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर.
0: Absolutely.
1: और भाई मैसेजेस की बारी आई है, तो मैसेजेस का नाम लिया है तो क्यों ना मैसेजेस की तरफ बढ़ा जाए.
0: बिल्कुल बढ़ा जाए और देखते हैं कि हमारे बच्चा पार्टी क्या कह रहे हैं, कि वो क्या अपनी लाइफ का या वो अपना बेस्ट वर्जन है, प्रॉब्लम्स देख के डर जाते हैं या उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं.
1: तो भाई कौन है ये हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयान है. जब मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं पहले उसको समझने की कोशिश करता हूँ.
0: Okay.
1: मैं क्विट नहीं करता.
0: Wow.
1: क्योंकि मेरे टीचर कहते हैं यू आर द बेस्ट.
0: ये पता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व जब नहीं कर पाते और तब कोई अगर आपको बोले यू आर द बेस्ट, you know,
1: अच्छा, expectations.
0: Yeah, and that kind of boost मिलता है ना एक नन्हे मुन्ने बच्चे को कि यार okay,
1: motivation मिलता है,
0: मैं कर सकता हूँ, like I should just, yeah, वो ये सुनकर ना मतलब actually pressure release होता है.
1: अच्छा, ये ये ये ये बड़ी अजीब सी बात है. It is, मैं कहूँगी इसे motivation का bias बनती है हमारी, कि हमारे ऊपर ना एक responsibility का pressure आ जाता है कि हाँ भाई किसी को हमसे expectation है, expectation का pressure आ जाता है. और pressure हमेशा negative नहीं होता.
0: Right.
1: प्रेशर खासतौर पे वो जो एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है ना, वो क्या करता है, वो हमारे अंदर से वो पोटेंशियल खोद के निकालता है.
0: Absolutely.
1: जो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर भाई इतना प्रेशर हैंडल करने की हमारे अंदर कोई
0: एक क्षमता है. एंड यू नो सफा, इवन लाइक साइंस में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कहते हैं कि जब ये ओप्स मोमेंट वाला सीन आता है ना, कि जब हमें लगता है हम ये कैसे करें, अब हम फंस गए, तो इवन हमारा जो ब्रेन है ना वो एक्सपैंड होता है टू लाइक थिंक अगेन, एंड यू विल फील लाइक ओके हमको कैसे करना चाहिए. और जब हम ये मन बनाते हैं ना, देन योर माइंड एक्चुअली स्टार्ट्स वर्किंग.
1: अच्छा, ये बिल्कुल वैसा है जैसे वो रबर बैंड इफेक्ट नहीं होता, कि आप जो ना वो रबर बैंड को जब एक्सपेंड करते हो, इट्स डिफिकल्ट,
0: राइट,
1: बट इट हैज द कैपेबिलिटी कि वो एक्सपेंड हो जाए. हमारा दिमाग भी ऐसा होता है कि जब हम उसको ट्रायल पर लेकर आते हैं ना,
0: राइट,
1: तो इट्स वेरी इरिटेटिंग. आप देखोगे आपको मूड स्विंग होना शुरू हो जाएंगे, आपको चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा.
0: कंफर्ट जोन से हट रहे हैं हम लोग इसीलिए.
1: जो बंदा कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाए ना भाई, वही रीच करता है सक्सेस.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो हमारे बच्चा पार्टी जो हमें सुन रहे हैं, हमें जरूर बताएं कि कभी लाइफ में ऐसा हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ एंड यू ट्राइड अगेन, या फिर आपने गिव अप कर दिया, या फिर आप रोने लगे और आपने कहा कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा, किया क्या वो बताओ आप हमसे 6622107 पर, 6622107 पर मैसेज करके.
1: अच्छा, रोना धोना भी ना, ये मत सोचो कि रोने से कोई वीक हो जाता है, कुछ होता है. भाई रोना धोना भी पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, इवन बिग पीपल डू इट. तो मैं आपको ये बता दूं कि रोने धोने के बाद का जो फेज है ना, वो आपको डिफाइन करता है.
0: एक्चुअली क्लियर विजन हो जाता है. हमेशा ये कहते हैं ना कि जब भी आप रोते हो Your visions are clear, तो रोना भी जरूरी है.
1: मजे की बात बताऊं, एवरीबॉडी गेट्स टायर्ड.
0: या एब्सोल्युटली,
1: ट्राई करते करते एवरीबॉडी गेट्स टायर्ड. द पर्सन हु सक्सीड्स इज द वन हु हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड इट, कि भाई अच्छा वापस से खड़ा होना है. आई हैव टू. चलिए भाई नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलते हैं. हाय, मैं फातिमा हूँ. मुझे मैथ्स मुश्किल लगती है, मुझे भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ और जब आंसर सही आ जाए तो बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं हार नहीं मानती.
0: दैट्स सो नाइस. पता है आपको फातिमा, जब मेरा टाइम था मुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर एनीवे हमने काफी इस तरह से ही काम किया, प्रैक्टिस
1: प्रैक्टिस. मैथ्स में तो प्रैक्टिस भाई, मैथ्स में प्रैक्टिस चलती,
0: बिना उसके काम नहीं चलता. अभी हमारे साथ कोई जुड़ गया है. एक्चुअली नंबर देख के थोड़ा सा मेरे माइंड में आ गया कि इनसे बात कर ली जाए. सलाम अलैकुम.
2: वालेकुम सलाम
1: जी. हाशिम भाई कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ.
1: तो मतलब इतनी देर क्यों कर दी फोन करने में?
0: लंच कर रहे थे
2: पहले मैंने की थी 4-5 दफा, लाइक 20 से पहले.
0: हाँ फिर?
2: लेकिन फिर उठाई नहीं थी.
1: तो फिर जैसे ही मैंने कॉल उठाई आपने काट दी, और फिर जब आपने काट दी तो उसके बाद आपकी कॉल ही आना बंद हो गई. मैंने कहा नाराज हो गई कि पता नहीं क्या हो गया, ये अम्मा ने फोन ले लिया हाथ से.
2: फिर उसके बाद
1: मैंने
2: बुला लिया था कि तेल लगाओ आके.
1: हाय सो स्वीट.
0: तो तेल लगा दिया आपकी अम्मा ने आपको? हाँ
2: जी.
0: हाउ स्वीट इज दैट. ये मतलब जो मुझे बोल रहे हैं ना, सर पे ऐसे मोहब्बत से जब मम्मा तेल लगाती है, सो एक्चुअली हम मिस कर रहे हैं अपनी मम्मा को यार.
1: This is so sweet.
0: Yeah.
1: अच्छा भाई ये बताएं कि अगर मैं पूछूं हाशिम से कि हाशिम आज का दिन कैसा गुजरा?
2: अच्छा.
1: बहुत अच्छा कि थोड़ा सा अच्छा?
0: गूंज रहा है.
2: बहुत अच्छा.
1: माशाल्लाह. तो ये भी तो बता दो ना, सिर्फ अच्छा बोल के बात डिस्कशन खत्म थोड़ी करते हैं. अगले को थोड़ा गॉसिप चाहिए होता है ना.
2: वो आज पीई हुई थी.
1: अरे भाई
2: क्रिकेट खेली थी.
1: क्रिकेट भी खेली थी? गर्मी में खेल ली क्रिकेट?
2: जी.
1: पानी वानी पिया था? अरे शेड में खेल. पानी वानी पिया था कि नहीं पिया था?
2: पिया था.
1: वेरी गुड, अच्छी बात है.
0: आज इन्होंने सारे काम किए हुए हैं. हाशिम बिल्कुल अपने फुल जोश में है.
1: चेकलिस्ट पूरी है.
0: या सो बताओ फिर क्या गेम? ऐसा क्रिकेट खेली थी?
1: क्रिकेट खेली थी. तो स्कोर किसने, कौन जीता?
2: हम टीम से नहीं खेल रहे थे,
1: बस हम खेल रहे थे.
0: मतलब कुछ भी हम नहीं सोचते.
1: एक बात बता दो, ये फील्डिंग विल्डिंग
2: लेकिन लेकिन बाकी सारे आउट हो गए थे, बस मैं ही रह गया था.
1: अरे भाई चीता. सचिन बनेगा? सचिन बच्चा धोनी, एमएस धोनी. अच्छा ये तो बताओ कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है?
2: शाहीन शाह.
1: अरे भाई शाहीन शाह, नाइस
0: चॉइस है भाई, चॉइस है.
1: अच्छा मेरा पता है हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट, he doesn't play now, but अब मेरा ऑल टाइम फेवरेट कौन है? शाहिद अफरीदी.
0: ओ
1: एमएस धोनी.
0: रियली नाइस यार.
1: ब्रायन लारा.
0: बस प्री लिस्ट बता रही हूं आपको, ठीक है?
1: मुझे उस टाइप के सारे पसंद है.
0: हां जी.
1: वो अपना शोएब अख्तर, शोएब अख्तर के बारे में आपको क्या ख्याल है?
0: शोएब अख्तर तो यार सबका फेवरेट रहा है. वो
1: शोएब अख्तर का पता है आपको?
2: जी.
1: तो वो एज अ क्रिकेटर आपको कैसे लगते हैं? गेम उनका कैसा लगता है?
2: अच्छा
1: भाई, उड़ता है बॉल, उड़ता है बंदे के हाथ में. अच्छा ये तो बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी क्रिकेट में आप वो वाला स्कोर नहीं कर पा रहे जो आप यूजुअली करते हैं, तो व्हाट डू यू डू? यू क्राई अबाउट इट? यू वर्क मोर हार्ड? क्या करते क्या है?
2: ये होता लेकिन तब होता है जब बॉलर अच्छा नहीं होता.
0: हमारे साथ कुछ नहीं,
1: अपनी बैटिंग कुछ भी चले, अपनी
0: बल्ला कहीं भी जाए, बॉलर सही होना चाहिए. नहीं तो कभी ऐसा हुआ हाशिम कि लाइक ऐसा होता है ना कि हर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी गेम में ना वो बात नहीं रह पाती, उनको लगता है कुछ मिस हो रहा है. तो आपने तो चलो पहला बॉलर बताया, कभी खुद के साथ ऐसा हुआ कि आज मेरी बैटिंग सही नहीं हुई, ऐसा कभी हुआ?
2: जी
0: हाँ. तो थोड़ा बताओ ना, तो फिर आपने क्या किया और कब हुआ ऐसा आपके साथ?
2: कोई एक के दो महीने पहले था. बहुत ज्यादा गर्मी थी तब और हमारे पास पानी था लेकिन वो बहुत कम था. और फिर हम खेल रहे थे तो फिर बहुत ज्यादा पानी भी पी रहे थे. तो फिर पानी खत्म हो गया था, फिर हम घर जाके पानी लिया था फिर से. और फिर उसके बाद हमने खेला था तो फिर मेरी बैटिंग हो ही नहीं रही थी और शॉट्स ही नहीं लग रहे थे, नीचे नीचे थे बस.
0: ओ तो मतलब उस टाइम आप क्या फील कर रहे थे?
2: सैड
0: फील कर रहे थे. महसूस हो रहा था कि मतलब वीकनेस आ रही है, पानी ढंग से नहीं हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, ऐसा हुआ था?
2: जी.
1: तो फिर आपने उसके साथ कोप अप कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज इट?
2: फिर हम घर जाके खेल रहे थे.
1: लो फिर हम भाई हम चिल्लैक्स चल रहे थे, वहां नहीं खेला गया तो क्या हुआ? घर अपनी गली में तो हम शेर हैं भाई, अपनी गली में खेलेंगे.
0: देखो सफा कि इन्होंने अपना गेम नहीं रोका. प्रॉब्लम क्या हो रही है? गर्मी हो रही है. अच्छा ये मतलब वेदर की प्रॉब्लम है, तो हम वेदर को अपने गेम के बीच नहीं आने देंगे.
1: हम वेदर को तो चेंज करने से रहे, लेकिन हम ना प्लॉटिंग तो चेंज कर सकते है ना अपनी. यार हाशिम भाई ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, आई लाइक इट. हम डिसअपॉइंट नहीं होते किसी चीज से.
0: एग्जैक्टली, वी रियली लव्ड इट. सो हाशिम
1: कमाल हो गया. कैजुअल बोला ना, इतना कैजुअल. टेंशन
0: शेड में चले गए, अंदर चले गए, छोड़ो अभी कहानी.
1: अच्छा हाशिम, अच्छा हाशिम टंग ट्विस्टर खेलें?
2: जी.
1: चलो भाई हाशिम के लिए टंग ट्विस्टर रेडी किया जाए. एक प्लेट टंग ट्विस्टर. अमिता आप बताएं, आप पूछें.
0: ओके चलो आज हम पूछ ही लेते हैं, और मुझे लग रहा है हाशिम को मैं ये वाला दूंगी, ये कर लेंगे. ठीक है रेडी?
2: जी.
0: ओके सिक्स टाइम बोलना है. भालू काला, आलू भूरा. ठीक है एक बार बोल के बताओ. भालू काला, आलू भूरा.
2: भूरा.
0: ओके क्लियर हो गया? ओके सो सिक्स टाइम बोलना है आपको, थोड़ा सा जल्दी जल्दी. ओके यू रेडी? ओके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. भालू काला आलू भूरा. ओके
2: ठीक है.
0: ओके लेट्स स्टार्ट.
2: भालू काला आलू भूरा, भालू काला आलू भूरा, भालू काला आलू भूरा, भालू काला आलू भूरा, भालू काला आलू भूरा, भालू काला आलू भूरा.
0: भाई साहब हो गया भाई, सिक्स टाइम हो गया,
1: भूरा हो गया आलू.
0: भूरे आलू को इन्हें बूढ़ा बना दिया.
1: अच्छा ये छोटे बच्चों में ना ये होता है, ये र और ड का जो ना घोड़ा बोलेंगे तो कहेंगे घोरा.
0: या बट इट्स ऑलरेडी ही रियली डिड अ गुड जॉब.
1: आपने
0: सिक्स का स्कोर किया है, पता है, पूरा सिक्स टाइम आपने अच्छे से बोला.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह. वैसे काला भालू देखा है? काला भालू देखा है?
2: नहीं.
1: अरे भाई खोर जू जाते तो पता चलता ना, खोर वाला जो खोर पार के जो अलखोर.
2: आप कब आए?
1: अरे भाई वहाँ पर वो बड़ा वाला वो जू है, वो बेयर है ना, बड़ा वाला बिग बेयर है वहाँ पर.
2: हाँ
1: yes.
2: देखा था.
1: लो जी
0: भूल गए,
1: ट्यूबलाइट अभी जली है हमारी. चलें जी, देखा है ना फिर
2: जी.
1: वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बंदर भी है मजे मजे के
2: जी.
1: हाँ
0: बस हो गया, मतलब हमको समझ में आ गया, आपने देख लिया है. अच्छा ये तो बताओ कि अभी अकेले हो या आपका छोटा भाई भी आपके आसपास ही है?
1: जकरिया
2: वो भी यही है.
1: चलो भाई जकरिया आ जाओ लाइन में, लग जाओ.
2: कहाँ गए? अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम कैसे हो?
2: ठीक हूँ.
1: तो भाई जकरिया आपका स्कूल का दिन कैसा गुजरा है?
2: अच्छा.
1: कैसे अच्छा गुजरा? आज क्या क्या किया जकरिया ने?
2: पी की
0: ओके. और क्या किया जकरिया ने? क्या लड़ाई झगड़े कर रहे हो आप लोग?
1: देखिए जब बात करते हैं ना तो फिर हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात करते हुए फोकस करेंगे. ओके लड़ाई नहीं करनी, नहीं तो फिर हम कॉल नहीं उठाएंगे. फिर हम कहेंगे नहीं भाई जकरिया और हाशिम लड़ाई करते हैं तो फिर हम कॉल नहीं उठा रहे. ठीक है बेस्ट बिहेवियर पे रहेंगे. अच्छा ये बताएं कि आज क्या क्या किया? पीई की थी, पीई में क्या खेला? क्या खेला पीई में भाई? ऐसे बैठे रहे क्या?
2: हम तो टीवी पे वॉच करते हैं.
0: क्या टीवी भी वॉच करते हैं? अच्छा टीवी में क्या देख लिया आपने? अरे जकरिया क्या हो गया?
1: आज जकरिया कहीं गुम है मुझे लगता है. इनका जो कहा जकरिया कहाँ गुम है?
2: भूल गया के
0: क्या देखा ये हर बार.
1: लो जी
0: जकरिया खुद को याद रखते हो आप.
1: जकरिया आपको पता है मेरा जो बेटा है ना वो भी ये काम करता है. मैं उससे पूछती हूँ क्या किया था, वो कहता है आई फॉरगॉट. जकरिया बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, कहीं दोनों फ्रेंड्स तो ना है. अच्छा जकरिया ये बताएं. अच्छा एक बात बताएं इधर सुने फोकस एक बात बताएं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए तो आप उसे सॉल्व करेंगे या छोड़ के भाग जाएंगे?
2: क्या
1: अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स इट्स अ मैथ्स प्रॉब्लम, ओके, आप उसे सॉल्व करेंगे या रोना शुरू कर देंगे और कहेंगे जाओ मैं नहीं कर रहा?
0: लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम जैसे आपको लगे हाय बड़ी बड़ी डिफिकल्ट है तब आप क्या करोगे?
1: कर लूंगा मैं सब कर लूंगा.
2: हेल्प के साथ.
1: अच्छा दिस इज वेरी गुड.

0: आपको हेल्प की जरूरत पड़े ना, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हेल्प मांगी नहीं जाती, उनको शर्म आती है हेल्प मांगने में. जब आप कभी प्रॉब्लम में फंसो तो ऑलवेज ऑलवेज दिस इज अ वेरी गुड एटीट्यूड कि जब आपको पता ना कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आस्क फॉर हेल्प. आस्किंग फॉर हेल्प इज अ वेरी माइंडफुल थिंग. अच्छी बात है, अच्छी बात है,
1: बहुत बढ़िया.
0: अब आपके साथ गेम खेलते हैं, ठीक है?
2: ठीक है.
0: चले भाई, मुझे ये बताए अमिता, आप टंग ट्विस्टर देंगी ने?
1: बिल्कुल टंग ट्विस्टर दे देते हैं. अच्छा ये बताओ जकरिया, इजी वाला चाहिए डिफिकल्ट वाला चाहिए?
2: नॉर्मल.
1: नॉर्मल चाहिए.
0: हाँ
1: नॉर्मल कहाँ से लाऊं मैं इनके लिए? चलो अच्छा, मैंने आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल वाला ढूंढ लिया है. एंड दैट इज, ध्यान से सुनो ठीक है. राजा की रानी ने लाल रुमाल में लड्डू लपेटा. ओके ओके, आई विल गिव यू अनदर वन. से कच्चा कद्दू पक्का कद्दू.
2: ओके,
1: यू कैन से दैट 6 टाइम्स.
2: यस.
1: ओके सो हियर वी गो.
2: आई गॉट.
1: या बोले बोले, स्टार्ट.
2: कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा
1: पक्का कद्दू. दैट्स इट.
0: भाई दो दफा ही हुआ
1: या दो दफा ही हुआ,
0: कद्दू पक गया,
1: पक गया,
0: पक गया कद्दू.
1: सो या जकरिया, गुड वन, अच्छी ट्राई थी. नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना. ओके
2: ओके
1: ओके. सो बिफोर यू लीव, एनी मैसेज जो आप देना चाहेंगे? हाँ कुछ कहोगे?
0: कुछ तो कह दो.
1: क्या? यस जकरिया, कम ऑन.
2: Always help each other.
0: Yes. That's a good thought. बस अमिता ने मुझे टंग ट्विस्टर में आपकी हेल्प नहीं करने दी, वरना तो इट्स ओके. चले हेल्प ईच अदर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.
1: अल्लाह हाफिज़.
2: अल्लाह हाफिज़.
1: इनसे भी ना बात करो ऐसा लगता है हाय, मतलब कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं जकरिया. हाँ
0: अच्छा मजे की बात है, पीछे से ना इनके वो चल रही होती है अपनी एक दुनिया.
1: right.
0: मतलब इस वक्त दो रियलिटीज में जी रहे हैं, एक हमारे साथ फोन पर और पीछे से बहन भाइयों का चलता रहता है शुगल
1: कि मैं मतलब करूं तो करूं क्या, बोलो कि बोलो नहीं, मतलब करेक्शन चलता रहता है. बट यस, इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू टॉक टू यू. और इसी बात के साथ हम कहेंगे कि बच्चा पार्टी 4433477 इज आवर नंबर. आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. और अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुक कर रहे हैं, तो कहीं ना जाए, बने रहे सुपर किस सुनते हुए अपनी सुपर सफा और ए फॉर अमिता को. स्टे ट्यून्ड.

0: Yes, Janao, welcome once again. The Super Kiss Show पर और बिल्कुल आखिरी मुकाम चल रहा है. मैं हूँ आपकी एफ और अमिता और हमारी सुपर सफा. Yes.
1: तो बच्चा पार्टी, आप लोगों को यही बोलूंगी, देखो जिंदगी में प्रॉब्लम्स सबको आती हैं, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो. बस ये है कि आप लोगों के पास लर्निंग का मोर टाइम है. हाँ, लेकिन असली हीरो वो होता है जो हिम्मत जो है ना, वो अपनी हिम्मत को सामने रखता है शील्ड की तरह.
0: या और डरता नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करता है. नेवर गिविंग एटीट्यूड होता है वो एक्चुअली लाइफ में आपको हमेशा पावरफुल बनाता है.
1: अच्छा, ये बात है कि कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, कभी हमें वांटेड रिजल्ट मिलते हैं, कभी हमें अनवांटेड रिजल्ट मिलते हैं. लेकिन एक चीज है जो हमें हमेशा मिलती है, बताओ क्या चीज होती है? बताओ
0: क्या होती है?
1: सीख होती है भाई. ये जो लर्निंग होती है ना, ये हमें मिल जाती है दोनों सिचुएशंस में. ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है. अगर आप कहीं विन कर जाते हो तो आप खुश हो जाते हो. जहां आप विन नहीं कर पाते, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, तो उल्टा आपको क्या मिलता है? करेज मिलता है. के भाई मैं आगे और मेहनत करूंगा. आई हैव टू फेस इट. इसीलिए कभी कहा ही जाता है कि कभी आप ना अपने आप को कम मत समझें, अपने आप को छोटा मत समझें.
0: एब्सोल्युटली.
1: छोटा समझना है ना, वो छोटी छोटी कोशिशों को छोटा समझें, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन आपको बड़ी कामयाबी देती हैं. आज अगर आप कोई टारगेट रखते हो ना, फॉर एग्जांपल तमीम ने हमसे कहा कि भाई मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है.
0: राइट.
1: चार बच्चे सुनकर हंसेंगे उसके ऊपर. भाई तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना है.
0: स्पेलिंग आती है?
1: लेकिन बिकॉज ही हैज अ विजन इन हिज माइंड, ही माइट फेल, ही माइट फ्लंक, ही माइट ट्रिम्बल. लेकिन एंड में होगा ये कि जब तक वो अपने एक, क्योंकि आप लोगों के पास एज है ना, आप लोगों के पास एज है, आप लोगों के पास माइंड सेट है. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा माइंड सेट होता है. वी फॉल एंड वी राइज. जिसने ये बात समझ ली ना कि वी फॉल एंड वी राइज, तो वो कर जाता है भाई.
0: वो डेफिनेटली करता है. एंड एडिंग ऑन टू इट, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, क्योंकि यही आपकी सक्सेस को रोकता है. एंड ऑन दिस नोट, यहाँ पर आपकी ए फॉर अमिता और सुपर सफा साइन आउट करते हैं. कल फिर मुलाकात होगी दोपहर 1:30 बजे. हम सुपर किस शो लेकर आएंगे.
1: बस ये याद रखना, अपना बेस्ट देना जरूरी है, बिकॉज

0: योर बेस्ट इज ऑलवेज इनफ.
1: यस,
0: बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें, सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रखता अमिता
1: वो किसी का नहीं रख सकता. स्टे ट्यून्ड ऑन FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: बांग्लादेश की टीम का तो टाइम बिल्कुल सही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:03।
4: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और पिच परफेक्ट में आप सभी का इस्तकबाल है। और आज का शो खास इसलिए है कि बांग्लादेश की जीत हो गई है, मतलब मुबारक मुबारक मुबारक जितने भी बांग्लादेशी भाई हैं उनको सबको कांग्रेचुलेशन। पाकिस्तान को हराने के बाद ये बात तो कहना पड़ता था कि पाकिस्तान इज अ बिग टीम और बांग्लादेश इज ऑल्सो अ बिग टीम। मैं ये कहूँगा कि स्मॉल टीम बिग टीम और क्रिकेट में हर कुछ हो सकता है। और आज देखिए, आज आखिरी दिन इस मैच का और नाहिद राणा, उनके बारे में हमने पिछले हफ्ते बात करी थी। बिल्कुल सो कमाल का परफॉर्मेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नजरिया, ये जो क्रिकेट का जो नजरिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए मेंबर्स आने से हमें देखने को मिल रहा है। एंड रियली रियली रियली तमिम इकबाल के नेतृत्व में, लीडरशिप में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या कमाल कर दिया है। तो 1-0 अप इन द 2 टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड बहुत बहुत मुबारक बांग्लादेश के भाइयों को, बहुत बहुत मुबारक।
3: बिल्कुल, और हम डिटेल में एक एक करके आगे बढ़ेंगे कि पाकिस्तान की टीम की क्या गलती रही, लेकिन हम अभी फिलहाल प्लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, सेकेंड इनिंग में टास्किन ने जबरदस्त बोलिंग करी है। 3 डॉट के बाद चौथा जो बॉल डाला है उसमें इमामुल हक को आउट किया है। ये क्या माजरा है? इमामुल हक भी बहुत लंबे वक्त से खेल रहे हैं और टेस्ट के भी अच्छे बैट्समैन हैं, बट वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। बस वो खिलाड़ी हैं।
5: एक रिश्ता है किसी के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा।
3: हाँ।
5: तो बस वो रिश्ता जो है कायम है यहाँ पे। और देखिए, ये रिलेशनशिप्स और ये सब चीजें पहले बहुत थी भाई। मैं उनका सगा भांजा हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका ये हूँ वो हूँ, लेकिन उससे चलता नहीं है।
3: ये ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा जैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
5: बिल्कुल, उस्मान ख्वाजा जैसे, मतलब फाइनली उन्होंने तो रिटायरमेंट तो कह ही अनाउंस कर दिया। अच्छा, इसी बात पे अगर इमामुल हक के बारे में बात करूँ, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर टोटली आउट से कंप्लीट फेलियर। वहीं पे आजान ने आजान दे दिया पाकिस्तान का इस नौजवान बल्लेबाज ने। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही बिकेम द 16th पाकिस्तानी बल्लेबाज जो कि पहले ही टेस्ट में डेब्यू मैच में सेंचुरी स्कोर की।
3: क्या बात है।
5: और इसी के ये यहाँ पे एक लगता है कि एक चिराग है, तो ये चिराग को हम थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं।
3: वो लेकिन तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुनिया बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। तो ऐसा नहीं है मामूल हक आज ऐसा खेल रहे हैं और एक जमाने में भी वैसा खेला करते थे जब शुरुआत करी थी। तो आज हम उनके बारे में कह रहे हैं, एक वक्त था जब उन्होंने शुरुआत करी थी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज थे और उन्होंने भी सेंचुरीज और 50s में डील करी है। लेकिन फिर जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो सबसे पहली जो चीज होती है वो आपको आपके फैंस ही बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर बाकी बोर्ड्स वगैरह आते कि नहीं, कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको हम दूसरी टीम में या आपके ग्रेड को हम नीचे करेंगे। तो इन सब तरह की बातें होती हैं। वेल, हम धीरे धीरे करके और डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की टीम ने उनकी बॉलिंग की बैटिंग में क्या रहा, पाकिस्तान की टीम ने क्या गलती करी है कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो कुछ अचीव करके दिखा सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले सवाल,
5: आज का सवाल। अच्छा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सवाल ही जिंदगी है।
3: जिंदगी एक्चुअली
5: सवाल ही है।
3: सवाल ही जिंदगी में
5: आप क्यों हैं, किस लिए हैं, क्यों आए हैं,
3: मेरा मकसद क्या है।
5: तो वैसे ही क्रिकेट में एक सवाल जरूर हर शो में हम पूछते हैं। अच्छा, बता देता हूँ, ODI वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन टीम का नाम क्या है। ODI वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन टीम का नाम क्या है। हमने एक दफा पहले एक शो, 200 पहले हमने पूछा था कि टेस्ट में, पिछले हफ्ते मैंने पूछा था शायद। तो इस बार यह है कि ODI वर्ल्ड कप का मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम का नाम आपको बताना है 666-2107 पर। और
3: कप्तान का नाम,
5: कप्तान
3: का
5: कोच का नाम भी ऐड कर देते हैं,
3: कोच का नाम। तो आप टीम का नाम बता दीजिए,
5: टीम का नाम बता दीजिए, अब अपना नाम बता दीजिए।
3: यानी कि अभी चल रहा है 2026-2027 में वर्ल्ड कप होगा।
5: हाँ,
3: लेकिन ODI वर्ल्ड कप का जो विनर रहा है, जो टीम विनर रही है, उस टीम का नाम क्या?
5: उसका नाम बता दीजिए, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग क्रिकेट पंडित हैं। 666-2107 पर।
3: बिल्कुल, 666-2107। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम फिर एक एक करके यू नो हार्वेस्ट करेंगे
5: हार्वेस्ट करेंगे. आईपीएल है सब, हाँ. सब कुछ है और सूर्यवंशी को लेके काफी कुछ चल ही रहा है. मतलब पता नहीं मतलब बाजार जो है सूर्यवंशी है. हाँ. हर कोई कह रहा है कि
3: और पूरी टीम उन्हीं पर निर्भर
5: है. तो ये सब चीजें हैं हम बताएंगे और यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के बारे में थोड़ा और मजीद हम डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट मैच कब होने जा रहा है. अच्छा एक बात और है बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक. 103 रन की जीत जो है 103 रन ये that is quite astonishingly great victory by the Bangladesh cricket team.
3: Exactly.
5: 103 run aur wo bhi
3: aur 268 run defend kar lena ye aasan nahi hai matlab lekin inhone aasan bana liya hai ya defend kar liya Bangladesh ki team ne. Filhal 3:08 ek chote sa break dil se

0: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हां जी हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 3:11 और ये शो आप सुन रहे हैं
0: पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, दोबारा इस्तकबाल है, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमी, मेरे साथ आरजे फजील पिच परफेक्ट शो में सभी का इस्तकबाल है। एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट न्यूज, बांग्लादेश बीटिंग पाकिस्तान और वो भी बड़े ही आसानी से 103 रन की जो जीत हुई है बांग्लादेश टीम के लिए एंड दैट इज समथिंग, माफ कीजिएगा 104 रन। और ये जो है आज आखिरी दिन था और थर्ड सेशन में बांग्लादेश ने वो चमत्कार परफॉर्मेंस करके दिखाया कि जो सबको चौंका दिया, इवन क्रिकेट के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको मुतासिर कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा रीजन इसके पीछे एक वजह है फजील की, पिछले तीन टेस्ट मैचेस लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जीत हुई है। जो टीम 2024 से पहले पाकिस्तान के खिलाफ कभी जीत नहीं पाई थी, आज वही टीम पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ये तीन मैचेस मुसलसल जीत कर एक साबित किया कि बांग्लादेश इज हियर टू स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम।
1: बिल्कुल, लेकिन जो बात हो रही है आप कंफ्यूज मत करिएगा, पहले के टेस्ट के बारे में बात हो रही है, वो दो मिला के है ना,
2: वो कंटिन्यूएशन सीरीज है। 2024 में ये सीरीज पाकिस्तान में खेला गया था और इस सीरीज उस सीरीज में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने अवे सीरीज में हराने के बाद एक हिस्टोरिक ट्रायंफ उन्होंने कायम किया था। और उसी सीरीज को अगर हम लेते हुए चले 2025 को हम छोड़ देते हैं 2026 में, एंड ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ही एक तरह का नॉट एक तरह का बल्कि कम्स अंडर द फॉर्मेट ऑफ WTC और ये जीत बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत आगे तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी।
1: बाकी प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि मोस्टली
2: बांग्लादेश
1: पाकिस्तान क्योंकि मोस्टली शुरुआत से अगर हम बात करें, पहले इनिंग से बात करें और फिर सेकंड इनिंग पर, सेकंड इनिंग में क्या गलतियां रहीं, पहले इनिंग में क्या गलतियां रहीं?
2: मैं ये कहूंगा गलती ये थी कि बाबर आजम को अपनी टीम में नहीं रखा।
1: हाँ, जो मतलब अगला आदमी T20 में परफॉर्म किया उसका कॉन्फिडेंस हाई है इस वक्त, और ऐसे नहीं है कि वो उलझुल हरकतें करके रन बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, बैकफुट पंच से लेकर उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए हैं और पेशावर जलमी को PSL जितवाया है, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई है। ये हाई टाइम था जब आप बाबर आजम को रख सकते,
2: बिल्कुल रख सकते,
1: तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज होती है। मुझे याद है कि एक मैच था और सहवाग बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, टेस्ट मैच की बात है, सहवाग ने उस दिन 4 विकेट ले लिए थे, तो सहवाग ने कहा कि यार मुझे एक और बार बॉलिंग चाहिए और मुझे 5 विकेट लेने हैं, तो धोनी ने इस पे ये कहा था कि नहीं, हमारे जो बाकी बॉलर है ना उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनसे बॉलिंग कराई जाए, क्योंकि आपने 4 आउट कर लिए, आप तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट मैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस आना जरूरी है और इनको बॉलिंग देना पड़ेगा। नए प्लेयर्स आए हैं बैटिंग करने के लिए, हो सकता है फिरकी से, मुझे लगता है हरभजन के बारे में बात हो रही थी कि फिर किसे आउट कर लेगा वो आदमी और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आप अपने 5 के बारे में ना सोचें, आप अपने रेगुलर बॉलर के बारे में सोचें जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आने वाले वक्त में वो रेगुलर बॉलर ही होगा, आप तो बेटर हैं सहवाग साहब। तो ये बहुत सेंसिबल बात थी कि कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है, उसको बॉलिंग सही टिप्पा गिरना चाहिए, और वैसे ही बाबर आजम अभी हाई कॉन्फिडेंट में है, पूरी टीम को जिताया है, कैप्टेंसी में भी उन्होंने पार्ट लिया है, तो अब ये वक्त था जब वो टीम में हो सकते थे और मुझे

0: लगता है एक बड़ा फर्क पड़ता है जब एक अच्छा बैट्समैन भी हो आपके साथ, तो आपके यू नो एक एक छोटी छोटी डिटेल्स पर फर्क पड़ता है, आपकी बैटिंग पर, आपकी फील्डिंग पर, आपकी बॉलिंग पर, तो इन चीजों पर आपके कॉन्फिडेंस पर फर्क पड़ता है और पूरी टीम पर।
1: हालांकि उनके साथ इंजरी का एक मसला था, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ इंजरी को लेकर भी अगर सिर्फ बाबर आजम को अगर आप टीम में रख देते हैं इस तरह के खिलाड़ी को, मुझे याद है बहुत पहले की बात है कि टीम में कोई एक स्टार खिलाड़ी था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ही जस्ट प्लेड जस्ट एक मोराल, जो टीम के लिए एक मोराल बनता ना, वो मोराल के लिए टीम में रखा गया था उस बल्लेबाज को, सिर्फ एक मोराल के लिए अगर आप बाबर आजम को इस टीम में आप रख देते तो हो सकता है कि हो सकता था कि इस मैच में कुछ और ही फैसला निकल गया था। लेकिन एनीवे बाबर आजम अभी भी तैयार है फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, हम देखते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में क्या होने जा रहा है।
0: लेकिन हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग?
1: मुझे लग रहा है कि बैलेंस्ड है, और स्पेशली ये जो आखिरी सेशन में, वो भी आखिरी दिन के आखिरी सेशन में, जिस तरह से ताजुल इस्लाम की बॉलिंग कुछ मतलब मुझे बड़ा ही डिफरेंट लगता है मुझे।
0: अच्छा,
1: बाएं हाथ से कुछ इस तरह फिरकी बॉलर हैं वो।
0: अच्छा।
1: और पिच भी जो था थोड़ा सा धीमा हो गया
0: था,
1: एंड उसी में सारे पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है, आई मीन वो भी यू नो ऑन द बैक फुट में सबको जाके बीट भी कर रहे थे।
0: अच्छा, ओके, तो वो फ्रंट पे नहीं खेल रहे थे, बैक पे खेल रहे थे।
1: हाँ, बैक पे खेल रहे थे।
0: अब देखिए, टेस्ट का नाम ही टेस्ट इसीलिए पड़ा है कि आपको टेस्ट देना पड़ता है, और यू नो चौथे सेशन तक, सॉरी तीसरे सेशन में आप दूसरी इनिंग में खेल रहे हैं, और तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बड़ा यू नो स्पेसिफिकली पूरा थॉट के साथ कि बॉल का डिप्पा कहाँ है, हमें कहाँ पैर निकालना है, पिच से कितना बाउंस है कि पैर पे, अगर हम पैर आगे निकाल रहे हैं, बॉल इतना बाउंस कर गया कि हाथ पे लग गया और स्लिप पे खड़ा कोई या फिर शॉर्ट मिड विकेट पे खड़ा कोई कैच ले लेगा, तो ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
1: जैसे कि फर्स्ट इनिंग्स में, पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट लिए, एंड 5 विकेट लेने के बाद वो लगता है कि इन सब तमाम बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं ये होनहार लगते हैं मुझे, एंड बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही इन लोगों ने जिस यू नो सफलता के साथ इन्होंने परफॉर्म किया है, तो इसी में लगता है कि पाकिस्तान टीम थोड़ा सा मुझे लगा कि यू नो उनका जो बैलेंस है वो गिर गया।
0: लेकिन अपनी धरती पे खेल रहे हैं बांग्लादेश,
1: वो तो हमेशा हमेशा अभी पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराने का एक तो कुछ तो यू नो होता ही है, 2 साल पहले पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराना एक तो
0: अच्छा, पाकिस्तान में जाके हराया
1: दैट सीरीज, उसी सीरीज के मैंने बात करा था कि अब मुसलसल 3rd मैच में पाकिस्तान को हराया, तो ये एक यू नो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और मुझे लगता है कि जो हमें एक टैग लगा था जब बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिया गया था सन 2000 में, तो जब उस टाइम के ICC के प्रेसिडेंट थे जगमोहन डालमिया, तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को हम दे देते हैं टेस्ट स्टेटस दे दिया, तो सब लोगों ने कहा कि ये बांग्लादेश टीम अभी भी उस लेवल का नहीं है जिनको अभी टेस्ट खेलना जरूरी है, सन 2000 की बात है।
0: अच्छा।
1: और बात हुई थी कीनिया को भी दे देते हैं और जिम्बाब्वे को भी दे देते हैं, तो बांग्लादेश को टर्न पहले मिला, तो लोगों ने काफी कुछ कहा था कि नहीं नहीं अभी देने, हाँ शुरू में दे रियली स्ट्रगल बांग्लादेश क्रिकेट टीम, आज भी थोड़ा बहुत ओडिया या T20 में देखें हम, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, लेकिन टेस्ट टीम में अगर बात करूं, टेस्ट टीम की बात करूं, तो टेस्ट टीम दे हैव रियली शोन रियली वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, अगर पाकिस्तान के खिलाफ जीतना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी।
0: और लेकिन अगर हम देखें तो ODI में और T20 में डोमिनेट भी करने लगी है, एक वक्त था जब श्रीलंका का यू नो इंडिया भी बड़ा यू नो डर के खेलती थी कि जब हम श्रीलंका की टीम आ रही है भाई, बहुत डर के खेलना पड़ता था, पाकिस्तान कौन सी टीम नहीं डरती थी, एक से बढ़कर एक बैट्समैन एक बॉलर थे जिनसे सारी टीमें डरती थी, उसमें बांग्लादेश का भी शुमार था, लेकिन अब बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम आमने सामने होकर खेलती है और एक दूसरे को यू नो टीज भी करती है, और ये राइवलरी हो गई है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की है, ये एक राइवलरी की तरह हो गई है, जहां से श्रीलंका सारी टीम को डोमिनेट किया करती थी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका एक दूसरे को यू नो राइवलरी मानते हैं, तो आई थिंक बांग्लादेश काफी लंबे वक्त से कोशिश में लगा है और उसने कोशिश में कामयाबी पा भी ली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसमें ये बताऊं कि अभी जो पॉइंट्स टेबल है, देखिए दोस्तों अभी WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब हम बात करते हैं कि अभी ये पॉइंट्स टेबल में बांग्लादेश इज द 6th पोजीशन पर, ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर है, न्यूजीलैंड 2nd पे, इंडिया 5th पर है, गौतम गंभीर साहब थोड़ा सा आप सुन लीजिए, इंडिया फिफ्थ पर है और आप अपना थोड़ा सा करिए आप कुछ।
0: आपने दो लोगों को हटा ही दिया।
1: पाकिस्तान जो है 7th पोजीशन पर है, दे नीड लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेज, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को इंग्लैंड के अगेंस्ट में खेलना भी है, और बांग्लादेश का जो नेक्स्ट सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया दे आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर बांग्लादेश कुछ कमाल करके दिखाते हैं तो हो सकता है कि बांग्लादेश जंप मार जाए।
0: बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अभी चांसेस नहीं है क्या?

0: इतना चांस
1: एक ही
0: टेस्ट मैच है लेकिन पॉइंट्स आपने पॉइंट्स तो यहाँ से लेना है, अभी तो पॉइंट्स क्लियर नहीं है बिकॉज सीरीज के बाद पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे।
1: अभी अभी तो मेरे ख्याल से एक घंटे पहले ही तो जीती है बिल्कुल, है ना, तो अभी एक घंटे में पॉइंट्स भी आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या रैंकिंग में है। लेकिन जहां पर भी बांग्लादेश इस वक्त है मौजूद सबसे बेस्ट टीमों में से एक है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है या क्योंकि 268 डिफेंड कर रहे हैं तो आई गेस बॉलिंग ज्यादा अच्छी है,
0: बॉलिंग
1: या आप क्या कहेंगे बैटिंग अच्छी है?
0: नहीं, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग उस टाइम पे अच्छी है जब वो ये होता है ना कभी कभार उस बल्लेबाज को हम कहते हैं कि इज द बेस्ट बैट्समैन क्योंकि टाइम सिचुएशन वहां पर आपने ग्रिप बनाकर आपने वहां टिके रहे और रन बना लिया आपने, वो जब आपके यू नो सारे कंडीशन सिचुएशन आपके टीम के अगेंस्ट में है वो बल्लेबाज खड़े हो गए वहां पर। तो इस तरह के हमें बल्लेबाज देखने को भी मिला बांग्लादेश टीम में, एंड बांग्लादेश टीम में इस तरह के कि हम बैट्समैन मजबूत हैं। अच्छा हाँ, अपने अपने ही मुल्क में खेल रहे हैं तो ठीक है।
1: अच्छा चलो, हाँ ये भी एक बात है कि अपने मुल्क में खेला। अच्छा एक और चीज मैं वो ये कहना चाहूंगा कि हम बात करते हैं कि तीन ऐसे बैट्समैन का एडिशन होना चाहिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को नेक्स्ट टेस्ट मैच जिता सके। एक तो बाबर आजम है क्योंकि आप कह रहे हैं अगर आ रहे हैं, दो और कौन से इंक्लूड हो सकते हैं, एक्सक्लूड तो हटा दीजिए हम नहीं पूछते आपसे एक्सक्लूड क्योंकि आप ये ना कहें नहीं भैया हम किसी
0: मैं सोचता हूं कि मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया जाए।
1: अच्छा
0: नहीं
1: मतलब रिजवान तो खेल रहे थे, दूसरे वाले रिजवान थे?
0: नहीं मोहम्मद रिजवान तो खेल, हाँ मोहम्मद सॉरी माफ कीजिएगा मोहम्मद रिजवान नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ ये सॉरी ये जो बोलर है
1: बोलर
0: अपना
1: हारिस
0: माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं।
1: नहीं हो जाता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा एक तो बाबर आजम हारिस रऊफ, बैटर को किसी एक को इंक्लूड करना चाहें तो किसको करेंगे आप? अच्छा या फिर निकालना हो अगर निकालने वाले पे तो ये करने भैया हम ये नहीं बताएंगे, ये मत पूछा करो हमसे,
0: निकालने की बात हम करते नहीं है, हम तो इंक्लूड करने मतलब इंक्लूसिव लोगों में से है, इंक्लूड करने वाले में से, एक्सक्लूड करने के। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये टीम सही है फजील।
1: अच्छा।
0: क्योंकि आजान जो है ये लड़का जो है काफी होनहार लगा, हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, स्कोर करने के बाद सेकेंड इनिंग्स में 15 रन पे ऑल आउट हो गए। मुझे लगता है कि लेट देम ट्राई, लेट देम इसी टीम को, बिकॉज अब पाकिस्तान के पास भी टेस्ट टीम अलग है, T20 अलग है, सबके पास वही है, ODI अलग है, तो मुझे लगता है कि ये शायद फ्यूचर को देखते हुए इस टीम को उन्होंने इतना यू नो प्रमोट किया है। आजान आजान लड़के को मुझे तो कभी सुना ही नहीं देखा आजान कब आया है, और वो रिकॉर्ड भी कर लिया है कि पाकिस्तान के लिए 16 बैट्समैन बने डेब्यू में सेंचुरी करना, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को निकालना जरूरी है, एंड सब ठीक ही है, सिर्फ बाबर आजम इसमें आ जाए। मैंने कहा कि एक वैसे कंसोलिडेटेड एक बैट्समैन हो जो कि टीम में रहे और बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बने।
1: अच्छा
0: जैसे कि बाबर आजम, चाहे ओपन कर लें चाहे वो थोड़ा सा नीचे उतर जाए, नीचे लोअर डाउन दी भी खेल लें, वो नाम से ही काफी हो जाता है। अगर टीम में विराट कोहली है और रोहित शर्मा है तो उस नाम से बहुत फर्क पड़ता है।
1: और मुझे लगता है कि बाबर आजम बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे जैसे T20 या वनडे में करते हैं, तो इसलिए वो अपने क्लास पर रहेंगे और आपका विकेट बचा पाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। अगर बाबर आजम जैसा आदमी जो है खेल रहा है, विकेट बचा रहा है, जहां पर वो स्कोर भी बाद में कर सकता है लेटर ऑन तेजी से, तो उसका खेलना बड़ा लाजमी भी है। खैर हम मजीद बात करेंगे FM 107 पे, और ये था आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान के टूर के बारे में हमने बात करी। पाकिस्तान बांग्लादेश गई है जहां पर उसने आज बांग्लादेश ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं पिच परफेक्ट फजील और अमीन के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: जी वेलकम बैक टू दिल से देसी एंड पिच परफेक्ट शो पर मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और मेरे साथ है आरजे फजील। और आज हमारा शो का जो शुरुआत हुई है बड़े अच्छे मूड से, क्या कहते हो?
2: बिल्कुल, और ये जो टीम है बांग्लादेश की उसने जीत जो है हासिल करी है पहले टेस्ट मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड नाउ हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में, क्या चल रहा है आईपीएल में और क्या है आपका एनालिसिस, क्या है
1: पंजाब और दिल्ली के मैच। दोस्तों पंजाब के बारे में बहुत हम खासा बात कर रहे थे कुछ शोस, आई थिंक पिच परफेक्ट शो में शुरुआत जब से आईपीएल की शुरुआत हुई थी एंड तब से लेके पंजाब टीम ही ऊपर ही थी एंड सडनली हमने इतनी तारीफ कर दी कि उनको लग रहा है कि आप उनके कॉन्फिडेंस जो है कुछ ज्यादा ही बहक गए हैं। पिछले चार मैचेस, लास्ट फोर मैचेस में डिफीट, और इस बार सवाल ये उठ रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर साहब जो हैं जो कप्तान हैं तो क्या उनकी कप्तानी पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भाई
2: आप भी तो एक्सपर्ट ही हैं, मतलब आपका मानना भी है।
1: अस्तगफुरुल्लाह
2: मानते नहीं है अमीन भाई,
1: अस्तगफुरुल्लाह। आजकल एक्सपर्ट जो है छुपे रहते हैं, बेटर है वो।
2: वही तो मैं पूछ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आप एक्सपर्ट है छुपे।
1: तो यजुवेंद्र यानी उनके जो स्पिन बॉलर है, देखिए एक टाइम था यजुवेंद्र बड़ा ही इंडियन टीम के लिए जब वो खेलते थे काफी
2: कुलचे के नाम से बहुत फेमस थे दोनों,
1: तो उनको बॉलिंग में उनको ला ही नहीं रहे हैं, उनको बॉल करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और इस बात पर काफी चर्चा हो रही है। आई मीन दिस इज वन कंट्रोवर्सी कि क्या श्रेयस अय्यर जो है इनको पसंद नहीं करते हैं क्या। अच्छा ये भी बात हुआ कि जब मैच खत्म हुआ कल, मैच खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने सायराज बाहुतोले बॉम्बे के रणजी ट्रॉफी में खेलते थे, एक का दुक्का मैच इंडिया के लिए भी खेले थे, वो स्पिन बॉलर थे उनको भेज दिया गया कि आप बताइए कि भाई इस मैच में ये उन्होंने क्यों नहीं खेला एंड ऑल, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अच्छा सवाल ये कि उसको मैच में बॉल आप क्यों नहीं दे रहे हैं।
2: ऐसा भी नहीं है कि इंपैक्ट प्लेयर था कि आपने उसको हटाया फिर आप बैटर को लेके आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, और इसी से अब चलते चलते हम देख रहे हैं कि जो टेबल जो है आईपीएल टेबल, पंजाब अभी
2: पहले नंबर पे था,
1: हमने बहुत तारीफ की इनके बारे में, अब वो नीचे हटते अब कहीं ये ना हो जाए कि अब जो मेन राउंड है जिसपे हम काउंट करते हैं कि फोर टॉप टीम्स जो है तो उसमें से ना बाहर हो जाए।
2: हम हैदराबाद के बारे में इतनी बात नहीं कर रहे थे लेकिन हैदराबाद ऊपर पहुंच गया था
1: पिछले हफ्ते एंड नाउ टुडे आरसीबी यानी बेंगलुरु की टीम जो है 14 पॉइंट्स और हैदराबाद भी 14 पॉइंट्स, गुजरात वो भी 14 पॉइंट्स लेके ऊपर है और पंजाब यू नो नीचे आई मीन चौथे नंबर पर है 13 पॉइंट्स लेकर। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या दे वुड बी एबल टू यू नो फिनिश, अब ये क्या वाकई ये कम आगे जाकर नॉकआउट स्टेज में ये पहुंच पाएगी ये टीम, ये एक सवाल।
2: बिल्कुल, लेकिन हम बात कर लेते हैं पांड्या ब्रदर्स की, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से फेमस हो रखे हैं, एक हो रहा है कि परफॉर्म नहीं कर रहा, एक हो रहा है कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो हार्दिक पांड्या मुंबई से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कृणाल पांड्या ने अभी 70 रन मारे हैं जबरदस्त आरसीबी के लिए, उन्होंने जो पारी खेली उसकी वजह से आरसीबी एक्चुअली में नंबर 1 पर अगर पहुंची है तो उसका रीजन वन एंड ओनली ग्रेट

0: कृणाल पांडे है जो आजकल बाउंसर मार रहा है भाई साहब, ये फास्ट बॉलर भी हो गया स्पिनर,
1: जो थोड़ा सा पीछे ना लाइमलाइट के पीछे रहते हैं वो थोड़ा सा चमकते हैं, ज्यादा लाइमलाइट के सामने होते हैं, सिर्फ आपको फोटोज दिखाने हैं, शौकी आपको वो दिखाने हैं, तो आपके खेल में नजर कहाँ होगी।
0: और देखिए क्या ऊपर वाले ने क्या चेंजेस मारे हैं, एक कॉन्ट्रोवर्सी के लिए पांड्या ब्रदर्स में से, एक कॉन्ट्रोवर्सी के लिए फेमस है और एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और आपको लग रहा होगा हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं मेरे भाई, एज अ कैप्टन भी, और अब तो सूर्य कुमार यादव आ गए, लेकिन एज अ बॉलर एज अ बैटर कृणाल पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या लगता है इंडियन टीम में देखेंगे क्या?
1: इतना नहीं है बस वही आईपीएल तक आप रहने दीजिए, ठीक है। अब एमआई यानी मुंबई इंडियंस के ऊपर दबाव है कि वो हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दे कम से कम, क्योंकि अभी चांसेस मुंबई इंडियंस के मैं कहता हूँ है भी है। या नहीं भी, आई मीन 11 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स हैं। अगर यही बात है गुजरात के लिए करूँ, गुजरात भी बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे बीच बीच में, तो नाउ दे आर ऑल्सो जंपिंग अप और अब थर्ड पोजीशन पर है। अभी चेन्नई भी बहुत नीचे, चेन्नई और बॉम्बे आगे पीछे, मुंबई आगे पीछे, तो अब जब परफॉर्मेंस अगर आपकी टीम की इतना मतलब बहुत ही खूबसूरत तो नहीं कहेंगे कि बहुत ही अच्छा, वो मुंबई इंडियंस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी टीम आईपीएल में अलोंग विद चेन्नई, और कप्तान के ऊपर पूरा दारोमदार भाई, आप कप्तान किस बात के लिए, आप किस खेत के मूली हैं भाई, प्रूफ करिए हाँ,
0: कौन सा बैट्समैन कहाँ खेल रहा है, क्या उसकी पार है, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी पड़ती है। और आपका बॉलर क्या कर सकता है, ऐसे नहीं कि बैट्समैन की पावर क्या है, ये छोटी छोटी चीजें देखनी होती है, फिर उसको उसको रिदम में लेकर आइए, अपने थॉट का प्रोसेस ऐसे करिए कि एग्जीक्यूट अच्छा हो पाए और फिर आप विकेट ले पाए और बैटिंग कर पाए।
1: और स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कप्तान, क्रिकेट में तो कप्तान की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल में कप्तान की इतनी जरूरत नहीं है जैसे क्रिकेट में है।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली आरसीबी से अच्छे कप्तान नहीं थे?
1: नहीं,
0: हर बार फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ,
1: सर्वर नाराज हो जाएगा।
0: अच्छा, ये भी है,
1: कोहली का फैन है वो।
0: तो हम बाकी बातें कर रहे हैं दोस्तों, एक बार सवाल रिपीट कर देते हैं।
1: सवाल ये है, आज का सवाल ये है कि जो मौजूदा वो ओडीआई चैंपियन है उस टीम का नाम बताना है आपको, और जो एफएम 107 के व्हाट्सएप हैंडल है आपको पता है, नंबर पता है 666-22-107 पर, तो इस पे आप थोड़ा सा भेज दीजिए और आपको बताइए कि मौजूदा ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन टीम का नाम क्या है, साथ में आपका नाम भी बता दीजिएगा, हार्दिक पांड्या के साथ आपका नाम भी हम ले लेंगे। अच्छा, हार्दिक पांड्या को हटाने के बाद अगर कप्तान बनाया जाए, लोग कह रहे कि कौन बनेगा, तो यहाँ पे बात आ रही है भाई जसप्रीत बुमराह को ही बना दो। तो बुमराह भी आज मुझे लगता है कि मुंबई टीम इस बार कुछ खास, हर कोई मुझे नहीं लगता है कि चमक वाली बात नहीं है, बुमराह भी पिटे जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी अपने शोशाबाजी में उसमें लगे हुए हैं भाई, क्या है, आई मीन परफॉर्मेंस इज द की। अच्छा, इसी को चलते चलते एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि फजील, ये बात भी इम्पोर्टेंट है, कल एक स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने मैंने दिखा और बड़ा चौंक गया कि जिस आईपीएल को लेकर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे 62% इसके जो टेलीविजन व्यूअर्स है वो घट गया है
0: टेलीविजन। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं वो 25% है, लेकिन यहाँ टेलीविजन के बारे में बात हो रही है, तो एक स्लाइड चेंज यहाँ पर ये है। और मुझे लगता है उसका रीजन एक ये है कि मोबाइल पर लोग ज्यादा देखने लगे। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस में हैं, अगर कहीं स्टोर पे बैठे हैं, तो लोग मोस्टली क्योंकि मोबाइल पे एक्सेस ज्यादा आसान हो गया है, लोग टीवी नहीं खोल रहे हैं, इसका भी रीजन हो सकता है। बाकी 25% ओवरऑल जो मैंने देखा है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि 25% ओवरऑल व्यूअरशिप जो है वो कम हो गई है, उससे कई रीजन है कि एक ही स्टार प्लेयर है जो है वैभव सूर्यवंशी, उसके अलावा जो धोनी है धोनी नहीं आ रहे हैं, फिर उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर ला दिए आपने, फिर बैटर के लिए सब कुछ बना दिया, बॉलर के लिए नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों का कहना है कि इस तरह की सिचुएशन जो है पैदा हो रही है, जिसमें व्यूअरशिप बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ गई है।
1: तो इसमें एडवर्टाइजमेंट भी एक तरह से देखा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज अपना एड देते थे उनमें भी वो इंटरेस्ट अब थोड़ा सा घटने लगा है। आई मीन हर चीज अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो अच्छा ही लगता है। तो आप अगर मतलब रोज अगर
0: वेज चावल खाएं, इवन नॉन वेज भी खाएं जिसको अच्छा लगता है,
1: नहीं नॉन वेज खाते खाते आप बोर हो जाते कभी, चलो लेट्स ट्राई वेज थाली और सलाद। तो इसी तरह से आईपीएल भी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में There will be a dip in the IPL, definitely and definitely.
0: Okay, तो दोस्तों ये हमने IPL के बारे में बात करी। एक और सवाल जो बड़ा जरूरी है कि हमें बात करना चाहिए, वो है मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या, एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी है, क्योंकि हर बार हम एक कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रोवर्सी है कि हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के टीम को अनफॉलो किया और फिर फॉलो कर लिया।
1: अच्छा
0: हाँ,

0: ये क्या केस हो सकता है?
1: मतलब मुंबई इंडियंस को फॉलो किया,
0: फॉलो करा, पहले अनफॉलो करा फिर फॉलो कर दिया,
1: अनफॉलो किया
0: हार्दिक पांडे ने, हाँ
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अनफॉलो किया फिर फॉलो किया,
0: हाँ
1: तो उसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर
0: बाय बाय होने वाला है,
1: बाय बाय होने वाला है। मतलब ये जो है सारे दिग्गज जितने भी जो बॉम्बे के खिलाड़ी हैं, गावस्कर, संजय मांजरेकर और ये सब
0: पीछे पड़े,
1: सब पीछे पड़े हैं भाई, इनको भगाओ।
0: सबसे ज्यादा इरफान खुश होंगे, जिनको कॉन्ट्रोवर्सी पता है इरफान और हार्दिक की वो पता है। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नेशनल टीम के कैप्टन भी रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जिता के लाए, बट यहाँ IPL में एक भी परफॉर्म नहीं दे पा रहे।
1: नहीं, उनको वही जो है उनको भी टाटा बाय बाय बहुत जल्द जल्द होनी चाहिए, बिकॉज आपको परफॉर्मर चाहिए। पैंतीस छत्तीस साल और अगर कोहली और रोहित शर्मा को आप कह सकते हैं कि भाई आपके आप जो है बूढ़े हो गए हैं, तो आप किस आप क्यों हैं, आप किस लिए हैं? बस मैंने कहा ना कि भाई सवाल ये है कि आप क्यों हैं,
0: जिंदगी सवाल है,
1: जिंदगी सवाल है।
0: ओके, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल के यू नो टीम के बारे में, और सिर्फ इकलौते ऐसे बैट्समैन के बारे में जो परफॉर्म कर रहा है और उस पर सबकी नजर है, कॉल्ड वैभव सूर्यवंशी। क्या है ये मसला कि सब उस पर डिपेंड है टीम पर, पूरी टीम, और वो परफॉर्म नहीं करता तो टीम हार जाती है?
1: ये बात ये है कि भाई वो ना चमक नहीं होती, चमक कि भाई इसमें हाथ लगा लो सोने आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएंगे, वही है। ये एक अंधविश्वास की बात हो रही है। देखिए बार बार यही बात आ रही है कि भाई क्या ये जो है ये रॉयल किड है इंडियन क्रिकेट के लिए? नहीं है, नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि आप अगर उनको उन पर भरोसा कर लें, जिस दिन वो फ्लॉप है, जिस दिन वो फ्लॉप है तो आपकी टीम फ्लॉप है,
0: फ्लॉप है। लेकिन इनकी तारीफ तो भुवनेश्वर कुमार ने भी करी है,
1: वो करने दें आप।
0: अरे यार देखो इतनी सारी बातें हैं ना, अगर हम करने को शुरू करें तो ये शो 2 घंटे का भी कम पड़ेगा। अभी तो भुवनेश्वर के बारे में बात नहीं करी, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले और जबरदस्त स्विंग के साथ क्या जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं भुवनेश्वर।
1: अब वो IPL तक है,
0: IPL तक
1: आई डोंट थिंक इंडियन टीम में दोबारा वो वापसी कर सकते हैं।
0: तो वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि क्रिकेट के वो धोनी बन गए हैं, बॉलर।
1: बिल्कुल, आपको लगता है कि भुवनेश्वर कुमार जो है दोबारा इस टीम में, अब जहाँ पे नए नए सारे प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में, युवा यानी यूथ को, नौजवान खिलाड़ियों को इतना यू नो भरा जा रहा है, तो वहाँ पे आप जहाँ 35 के हो गए, अब विराट कोहली जब नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो फिर ये क्या भुवनेश्वर कुमार और कौन कुमार और
0: सही है दोस्तों। अब लेकिन IPL में भी लोगों के घर जो है वो चल ही जा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर एक सवाल किया है, मौजूदा वर्ल्ड कप यानी कि 50 ओवर वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन है, कौन सी टीम चैंपियन है, ये आपको बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-221-07। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना, दिल से
1: देसी।

0: अमाल मलिक की आवाज और अरमान मलिक का साथ ही गाना सुना आपने। हाल हबीबी अस्सलाम वालेकुम, पिच परफेक्ट शो में आपका है इस्तकबाल। और अब वक्त आ गया है कि आपके मैसेज की तरफ बढ़ा जाए। सवाल ये था कि 50 ओवर में कौन है मौजूदा, कौन सी टीम है मौजूदा चैंपियन, ये आपको बताना था। 2023 में एक वर्ल्ड कप हुआ था और वो 50 ओवर के गेम का था। 50 ओवर के गेम में कौन चैंपियन है, कौन सी टीम चैंपियन है, ये आपको बताना था। हमारा व्हाट्सएप नंबर 6622107। और अब्दुल्ला का सबसे पहले मैसेज है, कहते हैं इंडिया। ओके, फिर सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। तौफीक भाई ने कहा है इंडिया। ओके, हरजिंदर सिंह कैप्टन, पैट कमिंस, और इन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया। ओके, उसके साथ एक और ये मैसेज है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हरा कर, ये कहा है नाम तो नहीं लिखा है, मलिक साहब ने ये मैसेज किया है। उसके अलावा इकबाल ने कहा है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हुआ था और विनर थी ऑस्ट्रेलियन टीम। 50 ओवर के बारे में इन्होंने ये जवाब दिया है। तो क्या लगता है, ये क्या सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है या इंडिया?
1: एक्चुअली कुछ लिसनर्स ने जिन्होंने जवाब दिए हैं वो मतलब उन्होंने कहा इंडिया, सो दैट मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज्ड हो गए हैं T20 को लेकर। आपके अगर T20 का सवाल नहीं था लेकिन ये ODI का था, तब भी मैं कहूंगा हाँ T20 अगर आप सोच के आपने दिया है तो दैट्स करेक्ट आंसर, इंडिया सही जवाब है। लेकिन ODI यानी 50 ओवर के गेम को अगर हम बात कर रहे हैं ODI वर्ल्ड कप जो 2023 में इंडिया में हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी Against us in India, मेजबान टीम इंडिया को हरा के।
0: क्या बात है, तो लोगों के लिए तालियां जिन्होंने सही जवाब दिया था।
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस सवाल अगेन, अगर फजील मुझसे पूछेगा क्या सवाल है, मैं को जिंदगी एक सवाल, आप क्यों हैं, किस लिए है, कहाँ है।
0: अमीन भाई इस वाले पे ट्रिप हो गए कि क्या ट्रिपी चीज है यार ये तो जिंदगी ही तो सवाल है,
1: जिंदगी सवाल है, आप क्यों हैं। तो दोस्तों ये हमारा शो था पिच परफेक्ट शो। अच्छा, आज पिच परफेक्ट में ये एक चीज जरूर बता दूं कि हाँ। पंजाब वर्सेज दिल्ली का तो हमने बता दिया है और मैच जो है गुजरात वर्सेज हैदराबाद का मैच, ये देखिएगा इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। एंड दो बोथ द टीम्स आर ऑन द टॉप लेवल ऑफ द यू नो IPL पॉइंट्स टेबल पर। अच्छा, एक जाते जाते एक बात और कि राहुल द्रविड़ ने कमाल कर दिया, एक टीम खरीद लिया उन्होंने। वाह,
0: अरे वाह, क्या बात है, कौन सी?
1: स्कॉटलैंड में T20 उन्होंने एक टीम उन्होंने खरीद लिया है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
0: और वो पहुंचे तो स्कॉटलैंड पहुंच गए थे।
1: हां, स्कॉटलैंड पहुंच गए हैं एंड उसकी टीम का जो यू नो मतलब वो काफी मुझे लग रहा है कि सही है। और उसमें कोच शायद कप्तान या कोच जो है रविचंद्रन अश्विन।
0: ये तो इंटरेस्टिंग है भाई, देखना पड़ेगा, स्कॉटलैंड जाना पड़ेगा अब तो। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ अमीन और फजील को दीजिए इजाजत। ये शो सुन रहे थे आप पिच परफेक्ट, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे परसों इसी शो में और हम फिर बात करेंगे तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिकेट के बारे में और इंटरेस्टिंग मैचेस के बारे में। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठ या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ।

0: FM 107. Time check. Time check.
1: Assalamualaikum and good evening. आप सुन रहे हैं डियर फैमिली विद अर्जुन भावेश खान ऑन FM 107. चार बज के हो गए हैं 2 मिनट और मेरा आपके साथ रहना है 5 बजे तक. और आज हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगी. आज का हमारा टॉपिक क्या है लेकिन उससे पहले हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए. वो लोग जो कि नए हैं 4434377 पे आप हमें कर सकते हैं कॉल. और अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है हमारा 666-22107. आज का टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार है भाई. मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंट भी है. डिफरेंट कहना चाहिए मतलब जो पिछले दिन बात हो रही थी उनके मुकाबले में डिफरेंट है. वैसे तो खैर फैमिली को हमने जनवरी से माशाल्लाह मई तक सेलिब्रेट किया है, कर रहे हैं और भी करते रहेंगे आखिर तक. तो खैर आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ फैमिली शेप्स हु वी बिकम. किस तरह से हमारी फैमिली हमें शेप करती है. हमारी फैमिली मतलब जो कुछ हम होते हैं उसमें कितना हमारे ख़ानदान का अमल दखल होता है. वो उनकी वजह से, उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस, कोई ऐसी चीज़ें, कुछ भी जिसकी वजह से हम जो हैं वो बन जाते हैं जो हम बन जाते हैं. तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम बात करते हैं आज. आप बताइएगा हमारा बचपन, हमारी फैमिली किस हद तक एक इंसान के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो हो जाती है वो, ठीक है, डिफरेंट मतलब बनता है वो, दूसरों से मुख्तलिफ होता है. तो इस हवाले से बात करनी है. वैसे अगर देखा जाए मतलब आप लोग अपनी राय दीजिएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक हमारी फैमिली ही होती है जो कि हमें शेप करती है. बाकी और बहुत दीगर अवामिल भी आ जाते हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे. लेकिन पहले आप लोग कॉल कीजिएगा, हमें कॉल कीजिएगा, मैसेजेस कीजिएगा, शामिल होइएगा. आप लोग अपनी राय बताइएगा और पहली कॉल आ ही गई है तो हम ले लेते हैं उनको. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मैडम जी कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ. आज पता नहीं कैसे मैं पहले कॉल लगी है आपको. चंदा तलाब ही है या फिर वही पहले करेंगे तो मतलब कंपटीशन में मैं ही आ जाता हूँ पहले.
1: चलिए गुड, जबरदस्त, अच्छा किया आपने, आपने आज पहले कॉल कर ली. और सुना आपने टॉपिक समझ?
2: हाँ जी, मैंने आपने कहा कि रिश्तेदारों का अमल और दखल.
1: नहीं, हमारी जो फैमिली है मतलब हमारी जो इमीडिएट फैमिली है.
2: अच्छा, हमारी इमीडिएट फैमिली.
1: उनका कितना अमल दखल है हमारी जिंदगी पे, हमारे बचपन पे, जो हम बन जाते हैं फिर कैसे, मतलब उनका कितना किरदार होता है.
2: नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये अल्लाह सुभान व तआला ने जो है, पहली चीज़ तो वो खुशनसीब लोग होते हैं जिनके पास में सारे लोग फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहन भाई, और किसी के पास में बहनें होती हैं तो कोई किसी के पास में सिर्फ लड़के होते हैं और किसी के पास में लड़के और लड़कियां. मेरा ये मानना है कि जहाँ पर बहनें होती हैं और भाई होते हैं वो वाला कॉम्बिनेशन डेडली होता है. उसमें जो मज़ा है लाइफ का कि बस पूछो मत. और मतलब सबसे बड़ा मेन रोल जो प्ले करता है ना वो करता है फ्रिज.
1: ये कैसे?
2: ये नहीं है आपके भाई, बचपन की यादें होती है कि हम जब अम्मी कुछ बनाया करते थे तो उसमें हम जब बहनों भाइयों से बाकी सबके भाई सबका अपना अपना शेयर होता है. और मैं जो है स्पेशली समर में जो है मैंगोस होते हैं, शायद मैंगो तो सभी का फेवरेट होता है, तो आइसक्रीम्स वगैरह अपने इससे काम बना के रख लिया करते थे. उसमें बहनों की नोक झोंक, प्यार मोहब्बत, ये चलता है. तो बड़ी बहनें जो होती हैं चलो भाई छोटे भाइयों का ख्याल कर लेती हैं, और छोटे भाई जो होते हैं वो उनका अपना रोला होता है कि भाई मैं छोटा हूँ सब मेरी बात सुनेंगे. और बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट करती हैं और हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं कि आपके अगर कोई बड़े हैं घर पर, बड़े भाई हो गए या बड़ी बहन हो गए हैं, इन सब जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे कि मसलन के जिस तरीके से वो जो हमारे पेरेंट्स के जो वैल्यूज जो हमारे पहले बड़े बहन भाई को मिलते हैं वो ही हमको ट्रांसफर होते हैं. हमको क्या है, छोटे होने का एक बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे कि पेरेंट्स के तरफ से भी हमको मिलते हैं परवरिश जिसे हम कहते हैं, और हमारे बड़े बहन भाई की तरफ से भी मिलता है.
1: सही, बिल्कुल सही.
2: तो ये जो मैंने थोड़ा बहुत जो है नोटिस किया है और मेरी जिंदगी में जो असर किए हैं वो चीज. हाँ, बाकी छोटी मोटी बातें हो ही जाती हैं. तो वो कहते हैं ना कि फोन के रिश्ते ऐसे होते हैं कि पानी में छड़ी मारो तो वक्तिया तौर के लिए अलग होता है, बाकी फिर मिल जाता है. तो ये कुछ ऐसा ही. लेकिन जायदादें बड़ी गंदी चीज है.
1: अच्छा. सही, उससे क्या होता है, कुछ भुगता है आपने?
2: देखिए जायदादों का सीन ऐसा होता है ना कि हमने तो छोड़ दी है जमीनें सारी सब चीजें, अल्लाह ये कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में तुम अगर लड़ाई झगड़ा ना करो अपनी खूनी रिश्तों से और अपना हक छोड़ दो तो कयामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ से मैं तुम्हें लेकर दूंगा.
1: Exactly,
2: तो हमने वही चीज सुनकर जो है छोड़ दिया है. तो मट्टी डालो क्या करना है.
1: एग्जैक्टली. और पता क्या, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, मुझे ऐसा लगता है समझ कि हम लोग ना कुछ अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुल्कों में हैं. अब जाहिर सी बात है उनके मुकाबले में जो भी बंदा बाहर कहीं पे रह रहा होता है तो एक फ़र्क आ जाता है आमदनी वगैरह में. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको जब अल्लाह ताला कुछ नवाज देता है ना तो फिर छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए. अल्लाह ताला ने आपको कहीं और से बहुत कुछ दे दिया तो आपको वो छोड़ देना चाहिए वाकई उन लोगों के लिए जिनके पास शायद उतना नहीं है. तो अल्लाह ताला आपको अपने पास से और इंशाल्लाह ताला अता करेंगे.
2: हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. सही है. मेरा ये मानना है कि देखिए सारी चीजें ना नियत पे तय है, तयशुदा है. इनमदामिया तमाम दारो मदार का अमान नियत पे है. तो मतलब नियत ठीक रख लो सारी चीजें ठीक ही हो जाएगी. किसी भी मामले में किसी भी मरहले में अगर आप देखोगे नियत, अभी हमारे माशरे में सबसे बड़ा रोल जो निभा रहे हैं वो नियत. क्योंकि नियत के इतने खोटे हो चुके हैं ना सब कि हर चीज मुझे ही चाहिए, हर चीज मेरे पास ही रहना चाहिए, ऐसे वैसे एक्सपायर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल. कुछ लोग होते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, बीमार कहता हूँ मैं उन्हें. तो हाँ शायद हम भी कुछ ऐसे चीजों से गुजरते हैं जैसे कि बचपन में हमारी छोटी छोटी चीजों पे नियत खराब हो जाया करती थी कि हम अब जैसा कि बड़े भाई का मुझे अक्सर होता था कि बड़े भाई की जीन्स मुझे पसंद आ गई तो मेरी नियत वहां पर हो जाती थी कि यार ये जीन्स मेरे पास क्यों नहीं होती, ये जॉगर्स मेरे पास क्यों नहीं है. तो ऐसे कुछ होकर वो उस टाइम पर मेरी वालदा मोहतरम अल्लाह उन्हें मगफिरत फरमाए वो कहा करते थे कि बेटा जिंदगी में हमेशा नियत को साफ रखना. जब नियत साफ होगी, साफ पानी की तरफ हर कोई आना पसंद करता है, गंदे पानी की तरफ कोई जाना चाहेगा नहीं. तो साफ बने रहो तो सब लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे, सब तुम्हारे पास आएंगे. तो ये वो बताया सिखाया करते थे हमें. तो ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं. जैसा कि हमारे भाई बहन भी जो है हमको इस चीज से बताते थे कि जब हम छोटे थे कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए तो बोलते थे कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो मिलेगी लेकिन अभी नहीं, बाद में, तुम्हें पहले ये करना पड़ेगा. तो इस तरीके से फैमिली का इम्पैक्ट बहुत होता है.
1: सही बात है बिल्कुल. देखें मतलब ये वाकई मतलब पता चल जाता है ना कि आपको बहुत सारी जगहों पे हम डेफिनेटली गलत होते हैं. जब छोटे होते हैं ना तो हमें इतना ज़्यादा इदराक तो होता नहीं है चीज़ों का, लेकिन हमें अगर बताने वाला बंदा जो है ना उसकी एक तो खैर अपनी मतलब एक तरह देखा जाए वो बंदा खुद चीज़ों को जिंदगी को समझा हुआ है ना तो उस चीज़ की एक अलग ही बात होती है.
2: हाँ, और ये जो फैमिली के जो वैल्यूज हमें मिलते हैं ये सब सारी चीजें तो यही हमको हमारे करियर में ग्रो करने के लिए आसानी होती है. और टॉप ऑफ इट हमको हमारे जब हमारी शादी होती है तो वो जब हम हमारे पार्टनर के साथ में जब हम रहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है. क्योंकि हमको जो चीज सिखाई गई है, हमको जो चीज बताई गई है, हम फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे बच्चों के साथ में. तो फिर वो ऐसे ही चलेगा.

0: इंशाल्लाह अल्लाह आसान ही फरमाएंगे सब।
1: यही है सबका इरादा,
0: बहुत असरदार होता है। मैं कुछ फैमिलीज को भी देखा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अल्लाह पता नहीं क्या मतलब ऐसा होता है, छोड़ो यार खत्म करो, पॉजिटिव रहो, जो भी हो रहा है हो रहा है, एक ना एक दिन तो सब ठीक ही हो जाएगा, बट अपनी नीयत को हमेशा साफ बांधी रखो बस। जैसा कि कपड़े पे कोई दाग लग जाता है ना तो हम फौरन से साफ कर लेते हैं कि ये हमेशा परमानेंट ना हो जाए, तो उसी तरीके से हमें हर वक्त यही कोशिश में लगे रहना है कि भाई जो नीयत है उसे हमेशा साफ रखो, तो सारी चीजें साफ होती रहेगी। शायद आप एग्री करेंगे मेरी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और नीयत का बहुत ज्यादा दारोमदार होता है, वो जो कहते हैं ना कि मतलब अमाल का दारोमदार नीयत के ऊपर है। मैंने कहीं पे सुना था, मैं बहुत दफा उस चीज को जो है ना बता भी चुकी हूँ, मेंशन भी कर चुकी हूँ, कि आपकी जो नीयत होती है ना वही आपकी किस्मत भी डिफाइन करती है। जिस तरह की आप नीयत रखते हो अल्लाह ताला वैसे ही आपको अता करता है फिर। तो ये बड़ा एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए, और हमें उस तरह से अपने आप को अपनी नीयतों को साफ करना चाहिए। जैसे आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि साफ पानी के पास ही सब लोग जाते हैं, जो गदला पानी होता है उसके पास कोई नहीं जाता।
0: नहीं ये तो मेरी वालदा ने मुझे बताया था, तो मुझे याद आ गई थी बात, तो मैंने शेयर कर लिया। और बाकी दूसरे लिसनर्स कोई कॉल वगैरह आ रही है फिर
1: जी,
0: हम बात
1: बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आगे ये कॉल।
0: अच्छा चलें तो फिर
1: थैंक यू सो मच आपकी कॉल का,
0: उनके भी एक्सपीरियंस सुन लेंगे, तो थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, कल मिलते हैं जी। तो हमारे साथ थे समद, और बेहतरीन बातें करके गए, बेहतरीन उन्होंने आगाज कर दिया। अब देखते हैं कि दूसरे जो कॉलर हैं वो क्या कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, सब सुनने वालों को सलाम और दुआ, और सब्जेक्ट क्या है प्लीज।
1: आज हम बात करें कि कैसे फैमिली हमें शेप करती है, एक बच्चे को किस तरह से शेप करती है कि वो बड़ा होके वो बन जाता है जो वो बन गया।
2: सही, इसमें फैमिली के अलावा उस वक्त के जो हालात और सिचुएशन जिससे फैमिली गुजर रही होती है वो भी बहुत मैटर करते हैं। हाँ, तो उसको शेप करने में, मिसाल के तौर पे एक अच्छी खाती पीती फैमिली है, उनके पास प्रॉपर वक्त है या पैसा है तो बच्चों को स्कूल में डालते हैं, केयर करते हैं, और जहाँ पूरी फैमिली ही अफरा तफरी का शिकार है कि हर बंदा सुबह निकल रहा है कि कुछ हमारे पास काम के लिए या जो भी बिल या खर्चे उनको पूरा करने के लिए हों, तो इस अफरा तफरी में ना तवज्जो की ज़रूरत रहती है, बल्कि बाज़ आप देखें छोटे बच्चे भी इसी स्ट्रगल में बचपन में शामिल हो जाते हैं। फिर वो किस तरह किन माहौल में किन लोगों के हत्थे चढ़ते हैं, तो उनकी वो जो फैमिली शेपिंग वाली जो कंडीशन या टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं होता, या उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे सकती। बल्कि कल का जो आपका चल रहा था ना, मैं ड्राइविंग कर रहा था, उसमें जो लोग जी आप जहाँ तक मुझे समझ में आई कि जो बाहर लोग जा रहे हैं या
1: मतलब
2: जो कुर्बानी देते हैं,
1: टॉपिक था कि वो लोग जो कि हाँ जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको मतलब इतना ज्यादा एक्नॉलेज भी नहीं किया जा रहा होता।
2: अच्छा नॉलेज, उसमें मैं शॉर्ट में सिर्फ जो क्योंकि थोड़ा इट टच माई हार्ट, तो कि जो लोग एक तो होते हैं ना कि कुर्बानी दे रहे हैं, फिर एक नौबत आती है जिनके लिए दे रहे होते हैं ना, वो कुर्बानी मांगना शुरू हो जाते हैं लाइक द पैरासाइट, कि वो उससे ना उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि वो लोगों को जी हमारे जो आपने इतना स्टैंडर्ड कर दिया है तो अब आप बाहर ही रहें, नहीं, अब आप दूसरा बंदा ये नहीं सोचेगा कि मैं अब इसको रिलैक्स दूँ, इसने इतनी स्ट्रगल की है, बहुत अपने कीमती साल वक्त जाया किया है, ऐसे लोगों की तो वो लोग शादियां भी नहीं करते, सोचते हैं कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। दिस इज ट्रू,
1: हां सही बात।
2: तो वो उसकी सैक्रिफाइस, और देखें एक वर्ड है कि डोंट गिव देम फिश, लेट देम कैच द फिश। भाई आप भी ये बने, यू हैव टू कैच द फिश, कि आप बिल्कुल बैठे हैं जी, पैसे आ रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, हमारा स्टैंडर्ड हाई हो गया है, नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ टीम। आपको मौका दिया उस बंदे ने कि अब आप तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें, या आप उस परेशानियों से बच के यू आर हैव बेटर सिचुएशन, तो आप दूसरे के लिए अब ये सोचें कि नहीं, क्योंकि अब वो तो कहते हैं ना परिंदा भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो वो घोंसले से उसको टुड्डा मार देता है, चल अब उड़ जा, कि अब जमानत आसमान तुम्हारे लिए फॉर एवर, कोई किसी को फीड नहीं कर सकता, इवन हम लोग अपने बच्चों को भी फीड नहीं कर सकते। एहसास होना चाहिए, तो
1: बिल्कुल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जुल्कर्णन साहब इस मामले में ना थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना माथे पे आंखें रख ली, तो वो रख लेनी चाहिए उन लोगों की बेहतरी के लिए जिनको आप चाहते हैं ये वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि जितना आप सहारा देते रहते हो ना किसी को तो वो सहारा सहारे के आदी हो जाते हैं, आपको सहारा छीनना पड़ता है पैरों पे खड़ा करने के लिए अगले को।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं, और आजकल की आप सिचुएशन देखें, जॉब की और काम की इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि आपके पास जो बाकी लोग हैं जिनके लिए दे रहे हैं उनमें से भी कोई

0: काबिल होना चाहिए कि अगर पहला बंदा किसी की जॉब चली गई, बीमारी हो गई, अल्लाह ना करे नागहानी मौत हो गई, तो आप इसका मतलब है यू आर बिकमिंग इन द जीरो, 99 से आप जीरो पे आ गए, नहीं। आप फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, उस बंदे ने सेक्रीफाइस, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर लें कि आप मुंह खोल के खड़े हैं कि चिकअप दाना वो मुंह में डालेगा तो हम खाएंगे नहीं, दिस इज अ रॉन्ग आइडिया।
1: बिल्कुल।
0: तो इसमें कुर्बानी वाले की आज का टॉपिक बिल्कुल शेप में माहौल, सिचुएशन और हालात, और इसमें फिर वही बात है कि आपकी जो स्टेट है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे कि आप बच्चों को स्टेट अगर ऑन करें ना, तो फिर जहां फकीरों के बच्चे आपको रोडों पे मांगते हुए मिलेंगे, बल्कि मेरा एक शायद मैंने शेयर किया हो, मैं उधर तीन तलवार के पास खड़ा था, तो अपने मैं कज़न के साथ, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ बच्चा आया 10-12 साल का, बहुत भूख लगी है तो हमें खाना खिला दें। तो वहाँ करीबी सैलानी वाले थे, हमने कहा चलें गाड़ी में बैठ जाएं, हम आपको वहाँ छोड़ते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बर्गर खाना है। हमने कहा बर्गर कमा के खाना, मुफ्त में जो मिले ना शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपने बर्गर खाना है ना,
1: देखिए एक रील टाइप ही थी कि उसमें उन्होंने कहा कि कराची का जो ये हाल हो गया ना, मतलब इस वक्त मतलब जब मैं वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ कि मुझे गए हुए टाइम हो चुका है, तो वाकई मतलब आप पहचानोगे नहीं कि ये वही कराची है। तो उसमें एक उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा रोल उन लोगों का है जो कि मुफ्त में खाने खिलाते हैं, मुफ्त में सुबह दोपहर शाम का दस्तरखान लगता है। तो वो बहुत से ऐसे लोग ना जिनको कमाना वमाना नहीं था, वो वहाँ पर आके शहर की फयाजी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो सारे आगे पड़ गए, पार्कों में पड़े रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, कहीं पे झुग्गी डाल देते हैं, फुटपाथों पे डाल देते हैं, और उसके बाद फिर आके वो खाने के वक्त में खाना खा लेते हैं। तो अब उनको कमाने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक चीज़ है कि आपको स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों को मुफ्त में खाना खिलाना नहीं, बल्कि उनके पैरों पर खड़ा करना।
0: हाँ, इज्जत नफ्स ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसमें ये रमज़ान में जो इसकी बात है ना ज़कात की, बल्कि मैं पूछा तो वहाँ हमारे उधर रिश्तेदार के उधर आए जी, हमारे अब्बा या पता नहीं जो घर वाले हैं आपसे ज़कात ले रहे थे, हम अब आए हैं, पता नहीं उनकी इंतकाल हो गया है, तो मुझे बाजी ने बताया कि इस तरह हैं, तो हम इनके बड़ों को भी देते थे। तो मैंने कहा इन्होंने नस्ल दर नस्ल ज़कात ही लेते रहना है, तो आप ज़रा सब्र करें उनको। मैंने कहा सब्र करें, आपका अता पता बताएं, मैं आपसे ज़रा मिलने आऊँगा, ये वो है। तो जनाब मैं जब उनके घर पहुँचाऊँ तो वो टीवी लगा के देख रहे हैं, घर में लोग पान छालिया पता क्या खा रहे हैं, बाहर गाड़ी बाइक खड़ी है यानी उसका पेट्रोल भी है, पंजाब से चिल करके टीवी देख रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, बस हर बंदा मिशन पे जाता है अपने हिस्से की ज़कात इकट्ठी करने। तो ये इन लोगों की तो ज़कात तो मेरे हाल में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और इनको जायज़ भी नहीं है, ज़कात मांगी नहीं जाती, उसके लिए दी जाए। देखें हम लोगों के लिए यही मसला, जान छुड़ाते हैं मसला, तो उसमें आप उसको, अब उनको तो आदत पड़ गई है, और कितने मजे से उन्होंने कहा अच्छा वो भी इस पे एग्री करें, हाँ हम इनके बड़ों को देते थे अब इनको भी देंगे यानी ये कोई विरासत है मुंतकिल हो रही है।
1: सही बात है, सही ये चीजें देखनी चाहिए बच्चों को। वाकई मतलब जो शेप आपने करना है ना, माहौल और जो भी फैमिली ने, उनको सबसे पहले वाकई खुददारी और पैरों पे खड़ा होना सिखाना चाहिए,
0: बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि लोग कहते थे, सोचते थे हमने किसी से मांगना नहीं लेना नहीं, खाली पेट सो जाएंगे, तो ऐसों को लोग उनकी इज्जत नफ्स रखते हुए उनको गिफ्ट करके या वो करके, क्योंकि उन्होंने जो मांगने वाला है उनकी इज्जत नफ्स और शर्म और गैरत तो खत्म हो गई, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे हम भी मांग रहे हैं, हमारे बच्चे भी मांग रहे हैं, आगे भी मांगेंगे, तो हम भी वैसे मांगने वाले ये सब। इन द लाइट ऑफ नॉट इफ यू आर अंडरस्टैंड। ओके जी, थैंक यू जी,
1: अल्लाह हाफिज। रही जी, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारा टॉपिक आज का। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी फैमिली हमें शेप करती है। एक बचपन जो है ना वो कितना वैल्यूएबल होता है, इस तरह से कि जो तरबियत होती है, जो जिस तरह का माहौल मिलता है घरों पर, वैसे ही एक इंसान उस तरह ढल जाता है। इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले एक म्यूजिकल ट्रैक।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Absolute cinema.
5: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, मैं हूं ना. भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 से मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी.
2: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ मौजूद डियर फैमिली और टॉपिक में आपको बता चुकी हूँ. अच्छा जी, मैसेजेस की तरफ मैं आ जाती हूँ. इस वक्त मौका मिल गया है, जब तक कॉल आती है तो मैसेज पढ़ देते हैं.

0: थोड़ा चाहिए, और उससे फायदा होता है उनके उनके मुस्तकबिल के लिए, कि उनके फ्यूचर में अगर कोई सामने चैलेंज आया खुदा ना खास्ता। कभी कभी बहुत से लोग पढ़ाई के डिग्री तक पहुंचते पहुंचते बीच में उनको मतलब स्किप करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे हालात में मतलब जिम्मेदारी उनको ये करना, अटेंड करना और अपने आप को संभालने में समझ लो कि मजबूती मिलता है अगर उनके ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारी दिया जाए और वो खुद जिम्मेदारी को समझें।
1: एग्जैक्टली कल जैसे आपने कहा था ना कि आपने अपने बच्चों को शुरू से प्रिपेयर किया, पता है मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अगर कुछ देखा जाए 10-15 सालों से 20 सालों से लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं, वरना पहले एक दौर वो भी था जब नए नए लोग जाते थे ना बाहर और तो उनके बच्चे वहीं पे होते थे, तो वो उनके बच्चे बाकी लिटरली बिगड़ जाते थे क्योंकि उनको एकदम से इतनी आसाइशें प्लेट में रख के मिल रही।
0: हाँ जी बिल्कुल मैम, मैं इस बात बिल्कुल मैं समझ लो कि मैं एक विलेज का रहने वाला, मैं शहरों का रहने वाला नहीं, समझ लो कि हम लोग फार्मर हैं और सारे हालात से हम बिल्कुल वाकिफ हैं, और बड़े समझ लो कि हम लोग के पास खेती का तो बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा था, लेकिन खेती से नहीं पूरा होता है सारे काम। आजकल इतने खर्च हैं उसके पीछे, इतना समझ लो कि हर चीज के ऊपर मजदूर से लेके और सारी कामों को करते करते तकरीबन हम लोग का एक अच्छी खासी खेती का मतलब ये है, लेकिन वो बराबर हो जाता है तकरीबन ये करके दे लेके सब। तो अगर बाहर से अगर हमारा कुछ मतलब फाइनेंशियली कुछ मजबूती अगर नहीं होता है तो कुछ भी आगे हम नहीं कर सकते हैं, आज की दुनिया भी जो जरूरियात बन चुके हैं नहीं कर पाते हैं। और बच्चों को अगर हम खाली बस से इसी उसमें भी यार बच्चा पढ़ रहा है यार उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी देना क्या ये करना, तो ये हम समझ लो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
1: हाँ।
0: उनको कुछ जिम्मेदारी से मतलब उनको आगाह करते रहना चाहिए और कभी कभी वक्तन फवक्तन उनको देना भी चाहिए कि बेटा आज आज तुमको छुट्टी है, ये काम तुमको ये कर लेना है और ये जिम्मेदारी फला जगह। तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए और हमारे उनके मुस्तकबिल के लिए भी वो फायदेमंद साबित होगा। और अगर बिल्कुल हम उनको छोड़ दिए उसी हाल पे कि बस हाँ तुम अब आज छुट्टी है तुम्हारा तो बस तुम मजे करो फिर उसके बाद पढ़ाई, तो ये फिर मेरे ख्याल से कि वो नुकसानदेह बच्चे के लिए भी और अपने आप के लिए भी, क्योंकि जब हम उनके सामने लाचार होंगे तो वही बच्चे फिर हमारे लिए समझ लो मुसीबत का ये बन जाएंगे, जरिया बन जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तकरीबन मैंने बहुत से बच्चों को बहुत से अपने मतलब करीबी के लोगों को देखा है कि वो अगर वो ऑर्डर करते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, लाखों रुपए का मतलब खर्च करके यहाँ से लेके गए हैं और हाँ हमारा फला जगह पे वो बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है। मैंने देखा है कि मतलब अभी थोड़ी दिन पहले मेरे रिलेशन की उन्होंने मतलब शिकायत किया कि बच्चा बिल्कुल समझ लो कि वो निकम्मा हो के और 9 में फेल हो गया और बोलता 10 में मेरा नाम लिखवा दो। अरे भैया तुम 9 को तो तुम ये नहीं कर पाए, 10 में कैसे तुम्हारा नाम लिखवा दें? तुम यही प्रॉब्लम है कि बस बच्चों की जरूरियात को उस हिसाब से हम अगर ये कर दिए जाएंगे कि यार अभी हम लोग अपने जिंदगी में नहीं पाए इनको दे दो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
1: ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
0: और किए जो लोग किए हैं वो पछता भी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि भाई ठीक है थोड़ा सा उनको ये ना करो कि अच्छा ठीक है चलो फ्यूचर हमारे हमारी जो मतलब माजी गुजरा है तो हम अपने माजी में बहुत तो उसी उसमें नहीं लेके जाओ, लेकिन जो एक ये होता है वक्त का तकाजा उसी हिसाब से हमको ये करना चाहिए कि ना कि इतना ज्यादा मतलब उनको ये कर दें कि बस वो बिल्कुल बिगड़ने के उससे आ जाए।
1: बिल्कुल सही रहे भाई,
0: बस इतना दें उनको जरूरियात के ऊपर, हाँ बेटा ठीक है इतने में तुम कर लो आज, इतने में तुम्हारी जरूरत पूरा हो जाएगी।
1: सही बात है, बिल्कुल सही।
0: और कुछ जरूरी नहीं कि मतलब सारी चीजें मतलब सबसे हाई क्लास का तुम मगर, क्योंकि हम बड़े मिडिल क्लास से उठ के फिर यहाँ तक पहुँचे हैं।
1: हाँ। तो तुमको बेटा कहते हैं ना कि अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, तो वो रूट्स को ना अपने बच्चों को भी याद दिलाते रहना चाहिए भाई हैं हम यहाँ से। और
0: बहुत परेशानी का वक्त देखा है मैम, और मैं अपना वक्त नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास बहुत कुछ, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, मैं ज्यादा मतलब ये नहीं करता हूँ, बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ।
1: हाँ।
0: मतलब लाखों लाख का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कभी गुरूर करके मतलब इस तरीके से नहीं कि भाई इतने इस तरीके से कि मतलब मैं अपने समझ लो म्याना रवि जिस तरीके से हमारे इस्लाम में कहा गया म्याना रवि अख्तियार करके रहो,
1: बिल्कुल
0: तो म्याना रवि में ही मैं रहा, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुश रहता हूँ मैम की मतलब अल्लाह ताला हमारे सामने ऐसी मजबूरी की कभी किसी के ऊपर मैंने दिया होगा सामने से मांगने वाली जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो काम मैं उतने में किया उतने में खुश रहा कि जितने से मेरे अपनी कमाई से अपनी जरूरियात की जो मेरे पास है उससे मैं अपना काम चलाऊं। सामने वाले के सामने हाथ फैलाएं करें यार दे दो, फिर कल हमको रुसवा होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: ये भी अपनी जरूरत का देख के अपने बच्चों को भी उस पर ये करें, बहुत ज्यादा उनको छूट ना दें, अपने करीब के लोगों को जितने भी हैं।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं डियर फैमिली आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं डियर फैमिली और हमारे साथ हैं कोई कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
2: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: गेस्ट करो,
2: थोड़ा सा बात करें फिर मैं करती हूँ।
3: क्या हाल चाल, खैरियत है, बेचपानी कैसे आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप अभी भी आवाज को दबा दबा के बात करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लग रहा है।
3: बहुत टाइम के बाद फोन उठाया तुमने।
2: कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझी।
3: सोचो, थोड़ा जोर डालो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जोर डालो, बाद में खुद ही समझ में आएगा तुम्हारे दिमाग में। हाँ बोले, ये बंदा बोल रहा है।
2: आसिफ।
3: अरे वाह, शुक्रिया शुक्रिया पहचानने के लिए।
2: जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
3: अरे बहुत, मैं भी जी आपसे बात करने के लिए, मतलब मेरे को लगता है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मतलब एफएम वाले को बोलना पड़ेगा भाई प्लीज अपॉइंटमेंट दे दो बात करने के लिए।
2: नहीं नहीं, बस वो कॉल्स जो है ना वो आ रही होती हैं, टॉपिक लोगों के दिलों को छू जाता है, ये हो जाता है, आपके भी दिल को छू गया।
3: एक ये आपका जो मतलब एक घंटा है ना आपका?
2: जी एक घंटा। जी एक घंटा,
3: बस वो एक घंटे में ना, मतलब हम जैसे गरीब लोग का नंबर लगता ही नहीं कि चलो हाँ भाई बात कर ले, जरा बहन को सलाम दुआ कर ले, बहन कैसी है आज कल, वो मौका ही नहीं मिलता है।
2: जी जी, ये हो जाता है। आप बताएं भाई, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक?
3: बस एक नंबर, दिल से जी रहे, दिल से FM सुन रहे हैं।
2: जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। और क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे?
3: एक मैं टॉपिक तुम्हारी सुना था, मैं आपको मैसेज भी किया मैंने। मैं बोला मेरे को बात करने का टॉपिक पे, बहुत अच्छी टॉपिक निकाला था आपने।
2: बिल्कुल, आज हम बात करें, आज हम बात करें कि फैमिली किस तरह से हमें, जो हमारा बचपन होता है ना उसमें हमें शेप करती है, जो हम बन जाते हैं, फैमिली का रोल बेसिकली।
3: सच्ची मैं बताता हूँ आपको, मतलब आपके पास अभी टाइम है ना, मतलब
2: जी जी जी,
3: ये टॉपिक बहुत प्यारी टॉपिक है मेरे लिए, तो खास तो मेरे लिए तो मेरे को बहुत अच्छी लगी टॉपिक। मैं सुना पब्लिक जो बोल रही थी ना आपसे, सब सुना था मैं, मगर क्या है रिप्लाई नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि गाड़ी चला रहा था मैं, अभी एक तरफ गाड़ी लगा दिया मैंने। बेंड ऐसा है ना, मतलब फैमिली का कोई भी अपने शौक से मतलब गल्फ कंट्री में, बाहर कंट्री में नहीं आता है, और किसी को मतलब मजबूरी, कुछ तो वो एक कहावत है ना, कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। बस वैसी जिंदगी चल रही है अपनी। और फैमिली वालों का तो ऐसा है कि मतलब एक भाई तुम्हारे एक शो में, मैं अभी सुना थोड़ी देर पहले, कुछ तो बात कर रहा था वो, तो वही बात, इन्ना माला अमालो भी नियत के ऊपर, तो कुछ उसने बोला था वो अमाल का दारोमदार नियत ऊपर है, बिल्कुल सही बात बोला वो भाई ने, मैंने वो सुना भी, मेरे को बहुत अच्छी भी लगी बात। मगर ऐसा है ना बहन, मेरी तरफ मैं अपने थॉट से, मतलब मेरी तरफ से एक बोलने का तरीका ये है कि हम मतलब उम्र, हमारी उम्र हुई कमाने की, पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ के हम कमाने लग गए, घर को देखे, घर के बड़े हम, तो घर को देखे, फिर दो बहन की शादी कराए, उसके बाद में अभी तक अपना कुछ नहीं करे, अपना कुछ नहीं करे, सिर्फ फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे, जी रहे फैमिली के लिए, नहीं मेरे मेरी फैमिली अच्छे लेवल पे जाए तो हम अपने लेवल को बाद में सही करेंगे, अपना पहले फैमिली का लेवल ठीक करो, ये सोचने में ये करने में ना, मतलब बहन आज इतनी उम्र हो गई, 27 या 28 लगभग उम्र हो गई हमारी, अभी तक हम यही सोच रहे कि मतलब कैसे फैमिली ऊपर लेवल तक जाएगी, और अभी तक का लेवल तक फैमिली पहुंची नहीं, वो क्यों? उसका एक रीजन है बहन, क्योंकि हम अकेले सिंगल है, क्योंकि हम सिंगल ही सोच रहे हैं इस चीज को, कोई दूसरा मतलब हमारे बारे में सोच रहा नहीं है, कोई दूसरा हमारे तरफ नहीं आ रहा सोचने के लिए, कोई अपना हाथ नहीं पकड़ रहा है, मतलब कि हाँ भाई चल तू थोड़ा हाथ बढ़ा, मैं तेरा हाथ पकड़ने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ, कोई नहीं सोच रहा, तो एक अकेला इंसान क्या कर सकता है?
2: बिल्कुल सही कह रहा है।
3: अभी लोग फिल्में देखते हैं, यार उस बंदे ने इतना वो कर लिया अकेले, नहीं वो फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिल्मों में दिखाता है कि एक एपिसोड में ये बंदे ने इतना गरीब था, अगले एपिसोड में ये बंदा अमीर बन के आया, ले दो काली गाड़ी इसके पीछे, वो खुद एक गाड़ी में आ रहा है, एक बंदा गेट खोल रहा है, वो फिल्मों में सीरियलों में वो चलता है, अपनी लाइफ में तो जो जो मतलब जी रहा है ना जिंदगी, असली जिंदगी, उसको पता है,
2: उसको पता है। वो देखिए ना धड़कन में, मैं चला गिरा फिर चला और करोड़पति बन गया।
3: सुनील शेट्टी मतलब गया उधर काम करने पहाड़ों के पीछे, या जाता है पहाड़ के सामने आता है जैसी अमीर बन के आता है,
2: अमीर बन के आता है, बिल्कुल ऐसे ही है।
3: ये क्या है? वो फिल्मों में ठीक है, समझ में आता है भाई, वो किरदार, वो लोग का, वो लोग के पास किरदार है, वो लोग काम करते हैं, वो लोग को पैसा मिलता है। अभी हम लोग अपनी जिंदगी में बहन मतलब मेरे थॉट से ऐसा है कि मतलब मैं 15 साल की उम्र से काम करने लग गया। मैंने अपनी पढ़ाई को एक तिजोरी में बंद कर दिया। काश अगर मैं पढ़ाई कर लिया होता, ये मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ आगे निकल गया होता, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन। क्योंकि वो टाइम ऐसा आया था ना कि मेरी फैमिली में ऐसा एक प्रॉब्लम आई थी कि मतलब उस टाइम पे मेरे को कदम उठाना ही था। तो मैं 15 साल की उम्र से, मेरी जब 15 साल की एज थी, जब से मैं जॉब कर रहा हूँ और आज तक मैं जॉब ही कर रहा हूँ, आज तक मैं जॉब ही कर रहा हूँ बहन, और कुछ नहीं।
2: घर में और बहनों के अलावा कौन है?
3: दो भाई है, छोटे भाई है, अभी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, बस नजदीक हूँ मैं। एक बड़ी बहन की शादी कराने में मेरा मतलब आधा हाथ मेरा है और आधा हाथ मेरे मम्मी और पापा का है।
2: सही।
3: और अभी एक छोटी बहन की शादी करा है, उसमें मतलब पौना हाथ मेरा है और पाव हाथ मेरी फैमिली का है। अभी मेरे घर वालों मतलब ऐसा हो गया, मतलब मैं कमा रहा हूँ तो मेरे घर वालों को लगता है कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अल्लाह पाक उसको कमाने की तौफीक और दे। मतलब उन लोग का बोलना यह है, सडनली मतलब एक छोटा भाई उठ के आ गया, उसको शादी करनी है। वो शादी भी चलो शादी ठीक है, सबकी नसीब का जोड़ा कहीं ना कहीं तो लिखा होता है, किसको लेट से मिलता है, किसी को जल्दी से मिलता है। वो अपनी

0: शादी कर रहा है
1: हुँ.
0: और मेरा बोलने का मतलब ये है कि तुम अगर जब अपने बेटे को उस लेवल पे देख रहे हो कि मेरा बेटा सब कुछ कर रहा है, मेरा बच्चा सब कुछ कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, तो उसके बारे में तुम नहीं सोचोगे?
1: नहीं सोचते आसिफ, जो मतलब एक मतलब हार्श रियलिटी है ये, लेकिन ऐसे ही है जहाँ पे लोग नहीं सोचते. पता है क्या होता है कि ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये हर उस बंदे के साथ होता है जो अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करने निकलता है. और शुरू शुरू में सब आपके साथ होते हैं, सब आपके साथ होते हैं, आपका दुख भी महसूस करते हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, आपका ऐसा लगता है आपको कि आपका एहसान भी मान रहे हैं, आपको शर्मिंदगी होने लगती है इतना एहसान मानते हैं. लेकिन असल जो चीज है ना वो ये है कि उस चीज के वो आदि हो जाते हैं, उन उस प्रिविलेज के, उन आसाइशों के वो आदि हो जाते हैं. वहां पे ना अभी माशाल्लाह आपकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 27-28, मतलब आप बिल्कुल इस वक्त वो एज है कि एक तरह का आप समझते हैं स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन अगर आपने 4-5 साल और गुजार दिए इसी तरह से तो डेफिनेटली फिर जो है ना मतलब मसला हो जाएगा. तो मैं एज मतलब आप जैसे मुझे बहन कहते हैं, तो मैं बहन के तौर पर आपसे ये जरूर कहूंगी कि आपको एहसास दिलाना पड़ेगा. नहीं एहसास होगा और ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि आपकी फैमिली ना सेल्फिश हो गई है, मेरे घर वाले ऐसे क्यों हैं. पते बेचारे हो जाते हैं हालात और ये सब कुछ, हाँ हो जाते हैं, उनका भी कसूर नहीं होता. लेकिन ये कि उस वक्त में अगर आप आज नहीं बोलते तो ज्यादती करेंगे आप अपने साथ भी और अपने साथ साथ उन लोगों के साथ भी जो कि कुछ बन सकते हैं लेकिन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आप उनका सहारा बने हुए. तो अभी जैसे मैंने एक कॉलर से ये पहले भी बात बोली थी ना कि दूसरों को पैरों पे खड़ा करने के लिए बाज़ औक़ात उनके मतलब जो है ना बैसाखी जो है ना जो आप बने हुए वो छीनना पड़ती है, फिर वो पैरों पे खड़े होते हैं.
0: बिल्कुल आपने जो बात कही ना 100% सही बात करी आपने, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ आपकी. मेरा मतलब ये जो आपका जो मतलब ये आज टॉपिक निकाले ना, तो मेरे बहुत से भाई लोग मेरे को सुन रहे होंगे या तो फिर मेरे को कुछ लोग बोल भी रहेंगे, कर भी रहा है एक और एहसान भी जता रहा है.
1: नहीं नहीं नहीं ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा, बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं सोचेगा.
0: क्योंकि ना मतलब बहन मेरा बोलने मतलब हम कर रहे हैं, हमारी हिम्मत है करने की, अल्लाह ने हमको बनाया उस दौर पे हमको खड़ा किया अल्लाह ने कि हाँ भाई तेरे अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता ये. मगर एक वक्त होता है करने का, एक वक्त तक करते करते करते आखिर में आके तुम्हारे भी लाइफ में कोई ना कोई आएगा जो तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, आधा इधर आधा उधर, फिर आधा अपने पास रखना पड़ेगा आधा उधर रखना पड़ेगा, फिर बच्चे, फिर जमाना, ये सब देखना पड़ता है. तो मतलब अभी से मेरा बोलने मतलब ये है कि मेरे जितने भी भाई लोग हैं जितने भी मतलब है सुन रहे, पूरा मत निछावर हो जाओ, कुछ अपने पास भी रखो.
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
0: कल के दिन ना मतलब ये जमाना है, ये आज का जमाना है, पहले का जमाना अलग था बहन. पहले के जमाने में बाप दादा के थी मतलब अल्लाह पाक अभी भी होगा उनको उन लोगों के पास, मगर अभी के जमाने में कैसा है मतलब सब कुछ ना यही हो गया है.
1: बिल्कुल ऐसे
0: दो बस ये लेने का कोई तुम्हारा नहीं है, अब देते रहो सुदीप भाई.
1: बिल्कुल ऐसे
0: जमाना पैसे का हो गया अभी. लोग बोलते ना कि पैसा है मतलब पैसा ही सब कुछ होता है क्या, मेरा कहने का मतलब कि हाँ इस जमाने में आज के दौर में पैसा ही सब कुछ हो गया है, बिना पैसे के कोई कुछ नहीं.
1: बात हर दौर में होता होगा आसिफ, ये हम लोगों को लगता है बेसिकली क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं. हम लोग सुनते पहले का जमाना बहुत अच्छा था, वो लगता होगा कुछ लोगों को, लेकिन हकीकतन ये है कि हर जमाने में हम अगर हजरत आदम अलैहि सलाम से देखें ना तो देखें मतलब एक भाई ने भाई को मार दिया था और उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लालच ही था. तो ये हर जमाने की कहानी यही है, लेकिन यही है कि हमें ना दूसरों के तजुर्बों से और दूसरों की चीजों से सीखना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी को भी और दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब मेरे जो छोटे भाई है मतलब अभी है खड़े है, वो लोग अपने पैरों पे खड़े हैं माशाल्लाह, बाकी कुछ कर नहीं पा रहे. मैं तो सीधा मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मतलब आपके लिए आपके मतलब कैसे बोलेंगे उसको आपके दौरान आपके जरिए सबको मालूम पड़ेगा,
1: जरिए सबको पता चल जाए, राइट,
0: जरिए सबको मालूम पड़ेगा
1: इंशाल्लाह. मतलब भाई फिर हम इस पे आपने बहुत अच्छा किया कॉल की और शहजाद सलीम आपकी कॉल की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, सुपर कॉल कह रहे हैं आपको. आप इंशाल्लाह फिर हम आपसे बात करते हैं आसिफ, बिल्कुल मेरे जाने का वक्त हो गया है और आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन जो मैंने कहा है ना वो जरूर कीजिएगा, अपने भाइयों को उनके पैरों पे खड़ा करें और इंशाल्लाह अपनी शादी के लिए आप बोल दें बस मुझे शादी करनी है, बिंदास कह रहे हैं ठीक है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. रही जी उसके साथ मेरा भी इजाजत लेने का वक्त आ गया. नसीम ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मामूश बहन अखरोट खाती हैं क्या? क्यों अखरोट खाने से क्या मतलब दिमाग तेज चलता है मेरा क्या? चले जी थैंक यू, अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है आपने थैंक यू जी. और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: गिंगे गिंगे सलाम अलैकुम हबीबी। 5:03 और आप सुन रहे हैं
1: यू आर लिसनिंग।

0: कुछ गाने समय पे नहीं करते इतने ज्यादा ट्रेंड, जब ट्रेंड करते हैं जब कोई ऐसा बंदा गा दे जो एकदम से अलग तरीके से यू नो सोशल मीडिया पे आता और ट्रेंड करा देता है, अलग तरीके से गाने का उसका तरीका होता। आय हाय ये जो गाना है मेरे कान में भाई रातों को बजता है ये गाना। या हबीबी सलाम अलैकुम। अच्छा जिनको नहीं पता ये क्या है और बड़ा अजीब सा साउंड लग रहा है, ये आई गेस मलयाली, मोस्टली मलयाली या तो ये तमिल का कोई मूवी का गाना है जो आजकल एक अंकल गा रहे हैं और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा कि बड़े बड़े स्टार भी उनकी एक्टिंग कर रहे हैं और वो सबसे पहले सुबह उठते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उसके बाद ये कोई भी अपना गाना गाते हैं। अगर वो हिंदी वर्जन गा रहे हैं तो आपको एक्चुअली में डिकोड करना पड़ता है कि ये क्या है यार, ये वाला समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और फिर जब हुक लाइन आती है ना, यानी कि जब वो गाते हैं तो समझ भी नहीं आता, बट जब हुक लाइन आती है तब आपको समझ में आता, ओ ये वाला गाना गा रहे थे ये, तो ये सीन हो जाता है। और सबसे पहले वो यही करते हैं, सुबह उठते हैं तिरछा मुंह करके, मतलब अच्छा उनको पता है कि उनकी कौन सी प्रोफाइल बेहतर लग रही है, यानी कि राइट हैंड साइड की प्रोफाइल या लेफ्ट हैंड साइड की प्रोफाइल चेहरे की, है ना। तो वो एक तरफ चेहरा करते हैं सेल्फी के मोड में गुड मॉर्निंग और उसके बाद गाना गाना चलूं। अरे भैया ये तो मैं भी अब यही करूँगा अब से, FM 107 पे जब भी ड्राइव थ्रू शो आएगा मैं करूँगा गुड इवनिंग गिंगे। मेरे को पता नहीं इसका मतलब क्या है लेकिन अलग अलग तरह का ट्रिप है यार, इसमें मज़ा आता है भाई साहब। और यू नो उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए हैं सोशल मीडिया पे कि लोग सिर्फ इस गाने की वजह से इतना फॉलो करते हैं, वो कोई भी गाना गाए अब लोग एक ही कमेंट करते हैं, आपको पता है वो कमेंट क्या है? गिंगे। अच्छा अब नहीं आओ और नहीं आओ और नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। हाँ ठीक है वो आई नो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी है वो बट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम FM 107 पे वेदर से लेकर अपडेट देंगे इवेंट्स तक की, और चाहे वो बात हो यू नो स्पोर्ट्स की, चाहे वो बात हो अशगाल की अपडेट की, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी FM 107 पे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से देसी कर दूँ, आप भी वही सोचे कि करते हुए जाएगा ना ये सॉरी दिल से देसी।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

चल 5:17 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और खतर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। गर्मी आ रही है लेकिन इस गर्मी के बीच में, बीच तो जाना नहीं लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खतर का असली मजा जो है वो इवेंट्स में भी है, में भी है। क्योंकि सर्दी है तो बीच वगैरह है, काइट फेस्टिवल वगैरह होते हैं बाहर, आउटडोर के खूब सारे इवेंट्स होते हैं, फूड फेस्टिवल से लेकर काइट फेस्टिवल तक सब कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन गर्मियों में क्या बीच पे जा नहीं सकते, घूमे तो कहाँ घूमे। तो ऐसे में काफ़ी इवेंट्स हैं जो कतर में होते हैं, जैसे कि 4th GCC गेम्स चल रहे हैं, कल भी आपको इसके बारे में बताया था, 11 यानी कि कल से शुरू हो गया है, 11 मई से 22 मई तक ये जारी रहेगा। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें एथलीट्स होंगे 6 GCC नेशंस के और एक से बढ़कर एक जबरदस्त यहां पर आपको खिलाड़ी मिलने वाले हैं। उसके अलावा आज जो गेम है वो होने वाला है स्विमिंग हमद एक्वेटिक सेंटर में, और ये कंपटीशन देखना तो एकदम लाजमी है। एंट्री जो है उसके लिए आपको फ्री में एंट्री मिल जाएगी और इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए। उसके अलावा अलकास चैनल पे लाइव भी चल रहा होगा, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। और फिर एग्जीबिशन का जो शौक रखते हैं जीनाथा एग्जीबिशन भी, ये 8th edition होगा जहां पर वीमेंस से रिलेटेड फैशन लाइफस्टाइल के एग्जीबिशन होंगे, जहां लग्जरी ब्रांड्स होंगे मजेदार, और ये 13th May कल कंक्लूड हो जाएगा। तो इसके लिए अल हजम मॉल जाना जरूरी है, गैलेरिया अल हजम में ये हो रहा है। और फिर एक और जबरदस्त इवेंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो नहीं था, जैसे ये वाले जो अभी तक इवेंट बताए ये तो कल भी हम आपको बता चुके थे, बट आने वाले सैटरडे को यानी कि इस 16 तारीख को, सैटरडे मे 16th को शाम को 5 से 9 बजे तक वापस आ गया है तोरबा मार्केट। और ये एक ज़बरदस्त मार्केट होता है कनत क्वार्टर में, द पर्ल आइलैंड में ये मौजूद है। खूबसूरती, वाइब, हल्का म्यूज़िक, अच्छा माहौल, ये आपको कनत क्वार्टर में मिलेगा। द पर्ल में ये मौजूद है तोरबा मार्केट, जो कि हर साल ये आता है, लोगों को मज़ा आता है, दिल खुश होता है। और फिर बहुत सारे एग्जीबिशन उसके अलावा तो हो ही रहे, बट ये जो मार्केट है इसकी फील, इसकी वाइब बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है इस पर तो जाना ही चाहिए। उसके अलावा कई एग्जीबिशन म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में चल रहे हैं, अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रहे हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में भी चल रहे हैं, तो इसका भी लुत्फ ज़रूर उठाइएगा। अब बात कर रहे थे वेदर का क्या है हाल चाल, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं, हाल चाल तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि आज जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री पहुँच गया था भाई, मामूली बात है 40 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया यार, इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अच्छी खासी गर्मी थी, वो तो ह्यूमिडिटी कम थी तो हो सकता है आपको कम फील हो रहा हो, और हवाओं की रफ्तार 10 से 15 मीटर पर आर की थी, 14% पे ह्यूमिडिटी थी, जो कि ठीक है चलता है, ये आपको तंग नहीं करेगी। और उसके अलावा ये हीट वार्निंग भी दी गई है, डेंजरस हीट कंडीशन आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, ऐसे में पानी का सेवन ज़रूर करते रहें, पानी वानी पीते रहें। और अगर हम कल के बारे में बात करें तो कल भी अच्छी खासी गर्मी जो है वो होने वाली है, ऑल दो आज के मुकाबले कल थोड़ी सी कम होगी, और रात को मेरे ख्याल में 30 या 29 डिग्री सेल्सियस तक माहौल होने वाला है। उसके अलावा कुछ ख़ास और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं रेसिडेंट्स के लिए, और ये है ईद के मुतालिक बात। तो ईद उल अधा फोरकास्ट अगर हम कहें, कतर कैलेंडर हाउस ने अनाउंस किया है आज के दिन की ईद उल अधा की जो डेट है वो 80-90% मान लो तय हो गई है, विच इज़ अराउंड 27th of May। तो वेंसडे 7th May से ये ईद उल अधा का सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा, और सारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कर ली गई है, और 18 तारीख को और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी, बात का पता चल जाएगा, लेकिन 27 मई को ईद उल अधा का सेलिब्रेशन होगा। कपड़े ले लिए कि नहीं लिए यार, खैर अब तो वाला वक्त आ गया है ना हम लोगों का कि हम अपने लिए कहाँ कपड़े लेते हैं अपने फैमिली के लिए कपड़े लेते हैं भाई। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ज़रा हाया प्लेटफॉर्म के बारे में, जो नए लोग हैं जिनको कल जिन्होंने ट्यून नहीं किया था, बता दें एक नई परमानेंट कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, ताकि विजिटर की एंट्री और प्रीमियम रेसिडेंसी एप्लीकेशन को हाया प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज किया जा सके। तो इसके लिए एक परमानेंट कमेटी बना दी गई है, जो कि बढ़िया है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ने आज बताया है कि उन्होंने कंडक्ट किए हैं तकरीबन 1700 इंस्पेक्शन पहले
क्वार्टर में 2026 के, ताकि इंश्योर किया जा सके एनवायरमेंट का, एनवायरमेंटल कंप्लायंस हो रहा है कंट्री में या फिर नहीं। तो ये कुछ खास और ज़रूरी बातें थी जिसको यू नो आपको भी जानना ज़रूरी है, अपने आसपास के माहौल को, अपने घर को, अपने यू नो अगर आप रह रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ एकदम खुला डुल्ला माहौल है, आप विला में रह रहे हैं, विला के बाहर आपने सेटअप कैसा किया हुआ है, ये बड़ा लाजमी है कि वहाँ गंदगी ना हो, पानी ना भरता हो, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ये सारी चीज़ कंडक्ट कर रहा है और 1700 इंस्पेक्शन 2026 के पहले क्वार्टर में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में हो चुका है। साफ सुथरा रखना ये हमारा और आपका काम है। और अब जरा रुख करते हैं आज के सवाल पे कि आज का सवाल क्या है। थोड़ा टेढ़ा है पर है सवाल जबरदस्त।

आज का सवाल सैडनेस पर है थोड़ा, मतलब एकदम से सैडनेस पे नहीं है। वो होता है ना कि हम मर्दों को आता नहीं है कंसोल करना, हम मर्दों को समझ में नहीं आता है कि किसी के ज़िंदगी में तकलीफ़ें आए तो हमें करना क्या है, बोलना क्या होता है। ये औरतें दुखती हैं कि नहीं कोई बात नहीं बहन, हम लोग ये कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्चुअली में पूछा जाए ये सवाल कि किस लाइन या किस एडियम के ज़रिए हम अपने मोहब्बत अपने करीबियों को कंसोल करने की कोशिश करते हैं जब वो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना। तो कई बार होता नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में तकलीफ आई और हम उसके बगल जाके कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा भाई। अरे ये लाइन कैसे चल सकती है भाई, मतलब सोचो किसी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा परेशानी आई है, उसकी टेंशन एकदम हाई लेवल पे है, कम्मों की शादी नहीं हो रही है, लड़के वाले दहेज में कार मांग रहे हैं, चार पहिया मांग रहे हैं और कंगन चाहिए, उतने में ये लड़का परेशान है और कोई आके कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई। तो ऐसी क्या क्या लाइनें हैं, ऐसे क्या क्या मुहावरे हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं या ऐसे क्या क्या लफ्ज़ हैं जिनका हम मर्द इस्तेमाल करते हैं जब कोई शख्स हमारा अपना स्ट्रगल कर रहा होता किसी चीज़ से, तो हम कैसे उन्हें बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये आज का सवाल। और मुझे पता है ऐसी ऐसी बातें आएंगी भाई, देख लेना तुम। मैं दो तो मेरे खुद के दोस्त हैं, कभी कंसोल नहीं कर पाए, किसी बात की टेंशन हो ना, घर में पैसे नहीं हैं, नौकरी चली गई हो, कोई भी बात हो गई हो, ये ऐसी बात बोलते हैं जिसमें मोटिवेशन तो नहीं होता है लेकिन ये ज़रूर होता है कि अरे तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, अरे कोई बात नहीं मेरी भी हुई थी एक वक्त पे। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे कि तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी तैसी हो गई, कोई बात नहीं यार मेरी ज़िंदगी में भी हुई थी। ये ऐसे बराबर कर रहे थे, ये कोई तरीका है? वो तो है कि सोसाइटी में मुक्का मारना सही नहीं, वरना मैं तो नाक पे दे मारूं यार ऐसे लोगों को।

0: अच्छा ऐसा तो नहीं अली रजा भाई कल वाला प्रोग्राम सुनने के बाद आज कॉल किया?
1: ना ना कल वाला प्रोग्राम नहीं सुना, कल बहुत बिजी था।
0: अच्छा कल बिजी थे ओके कोई बात नहीं। तो आज का सवाल है, आपने सुना
1: मैंने कि जो कोई बंदा परेशान होता है तो उसको उसके लिए क्या क्या सेंटेंस बंदा यूज कर सकता है, मेल हजरात जो है वो।
0: मेल ही हजरात के बारे में औरतें कर लेती हैं भाई कि बहन कोई बात नहीं, बहन इट्स ओके, बहन तुम्हारे साथ जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, पता है ये इसलिए ही हुआ क्योंकि तुम्हें कुछ बहुत अच्छा मिल जाए, तो वो देखो कंसोल बहुत अच्छी तरह से करती है। हम मर्दों
1: मजे की बात, वो कन्विंस हो भी जाती है।
0: हाँ
1: ये कन्विंस हो जाते हैं, हम लोग नहीं हो पाते।
0: हम लोग नहीं,
1: अगर मैं दोस्तों किसी को बोलूँ ना कि यार बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ये वो, अपनी कहानी
0: हाँ।
1: सुनाने अगर बैठ जाऊंगा चल फोन रख बातें बात करते
0: हैं।
1: हाँ? काम करते रात में होटल में तब बात करेंगे यहाँ
0: कहते हैं वो
1: सोल्यूशन निकाल
0: सकते। हाँ वो मालूम है, इनको कुछ बताओ तो ये अपना बताने लगते हैं तुरंत कि अरे यार मेरे साथ भी यही हुआ था, पता है वो जमाने में, ये जमाने में मेरा और खून खोल जाता कि ये कौन सा तरीका, हम अपनी बता रहे हैं यार तुम अपनी बता रहे हो, मेरा थंडर चुरा रहे हो तुम।
1: अपनी कच्ची तो डूबी डूबी उनके भी साथ में डूब रही होती
0: है। सही बात है मेरा भाई। तो आप असल में क्या लाइन इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं?
1: जब से गल्फ में रहना शुरू किया जब से तो अपनी परेशानी के अलावा किसी की परेशानी दिखी। हाँ जब अपने मुल्क में था पाकिस्तान में थे तब यही होता था कि कोई अगर बोलता था परेशान है भाई तो चल आजा बैठते हैं होटल पे।
0: हाँ यार
1: आजा बैठते हैं होटल
0: पे, हाँ कि कढ़ाई चिकन से सारा मामला हल हो जाएगा मेरा भाई, आओ बगल में आओ।
1: ऐसा ही है, हम होटल में बैठते थे बेचारा वो भी खुश होके जाता था।
0: हाँ
1: परेशानी साइड में जाती थी, सुकून हो जाता था जिंदगी में थोड़ी देर के लिए। सही लेकिन
0: ये बात बिल्कुल
1: चला गया,
0: वो तो वक्त वापस भी नहीं आएगा भाई क्योंकि अपना शहर छोड़ चुके हैं। लेकिन हम मर्दों की एक बेस्ट बात यह है कि दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, कितनी बड़ी भी टेंशन हो हंसी मजाक में निपटा देंगे। हम मर्दों को कंसोल किया भी मत करो भाई, हमसे ये आप लोगों के लफ्ज़ यानी कि जो दोस्तों के लफ्ज़ होते हैं ना मीठे मीठे वो सही नहीं जाते हैं। तो ऐसे में सही तरीका ये है कि हमारी बात सुन लो, कोई रिएक्ट मत करो, जवाब नहीं चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमारी परेशानी सुन लो, हम खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेंगे।
1: जवाब लाजिम आना है, कुछ भी आना है लेकिन आना है। हाँ। मैं अपना बताऊंगी, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ यार मेरी प्रॉब्लम बस तू सुन।
0: हाँ।
1: तू कुछ बोल मत ना, कोई मशवरा दे मुझे बस तू सुन।
0: हाँ।
1: उसने नहीं सुनना, उसने बताना है कि इसके ऊपर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अरे मुझे पता है हो सकता है, तू बस सुन ले।
0: हाँ। हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे। ओके तो अली रजा भाई आपने कभी, क्योंकि आप तो चलिए ठीक है, आपको कभी किसी ने अजीब अजीब बातों से कंसोल किया आपकी, मतलब फीमेल पार्टनर को छोड़कर अगर हम देखें तो, क्योंकि वाइफ वगैरह तो चलो ठीक है वही वाली बात बोलती है जो आपको समझ में आ रही, लेकिन मर्द ने किसी ने कहा हो कि हाँ यार देखो किस तरीके से आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है अच्छी तरह से बताया हो किसी ने?
1: दोस्तों
0: में
1: तो नहीं बताया लेकिन जो मेरी एज से बड़े लोग हैं ना उन्होंने मुझे बताया।
0: क्या कुछ आपको याद है जो असल में आपकी जिंदगी में असर की उस लाइन ने उस बात को?
1: मेरे मैंने एक बंदे एक अंकल थे मेरे, मतलब ऐसी मेरी सिटी के थे।
0: हाँ।
1: तो वो कनाडा से आए थे, क्या नाम है अपना, इंग्लैंड से आए थे, कनाडा से आए थे।
0: हाँ।
1: तो उनको ना रेंट पे अपार्टमेंट चाहिए था तो वो मैंने उनको अपार्टमेंट जो है रेंट पे निकलवा के दिया था।
0: अच्छा
1: तो उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने देखा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ और उसके साथ अपना दो दो टाइम की शिफ्ट भी करता था अपनी सिटी में रह के ना, दो टाइम की शिफ्ट कर, मॉर्निंग में कोई और काम कर रहा हूँ तो रात में डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, जैसे इंडिया में रैपिडो का काम चलता है। तो उन्होंने मुझे बोला था बेटा एक काम करो, तुम इतनी एफर्ट यहाँ करना छोड़ो, एक काम करो गल्फ चल जाओ। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2018 की।
0: और वो काम आई है?
1: वो काम आई, वो दो उनकी बात सुनी है जो था पहले, मैंने एक बाइक खरीदी थी अपनी।
0: हाँ।
1: हमारे मैंने उसके लिए 80,000 पाकिस्तानी रुपीस जोड़े थे।
0: अरे वाह। हाँ।
1: तो उन्हीं पैसों से मैं गल्फ चला गया, थोड़ा सा मैंने उधार लिया और थोड़ा सा मैंने जमा किया, उस समय मैंने मतलब समझे 2,00,000 पाकिस्तानी में मैं गल्फ चला गया।
0: ओके अच्छा मुझे याद आ रहा है, एक बार मेरे दोस्त ने पता नहीं कोई तो मसला चल रहा था तो उसने बहुत कर्री लाइन बोली थी और वो ये कि जिद बुरी नहीं होती है, अगर जिद सही तरीके से की जाए तो जिद सबसे परफेक्ट चीज़ है भाई। तो उसने अपने कोई किस्सा बताया था कि एक दिन मैंने जिद किया था, वो बास्केटबॉल

0: बॉल होती है ना, तो वो बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा था, तो करीब वो आधे घंटे कोशिश करता रहा, लोग हंसते रहे, फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं आज तो हम करके रहेंगे कुछ भी हो जाए, वो कोशिश करता रहा, फिर उसके बाद उसने एक घंटा लिया, सारे दोस्त वगैरह चले गए, लेकिन वो बास्केट में एक पोजीशन से डालने की कोशिश कर रहा था, यानी कि कुछ 5 मीटर की दूरी होगी, बट वो बास्केट जा नहीं रही थी। फाइनली करीब जब सब लोग चले गए, शाम का वक्त हो गया, और करीब एक डेढ़ घंटे कोशिश करने के बाद एक बार बास्केट में गई है, तब उसने ये कहा कि चलो मैंने ये अचीव कर लिया, अब मैं घर जाऊंगा। तो जाकर वो ये बात मुझे बड़ी सही लगी कि जिद अगर पॉजिटिव हो, सही दिशा में हो, सही एंगल पे हो, तो आपका काम हो जाता है, और ये बात मुतासिर करा था मुझे उसने, कि इसलिए जिद करते रहो, यानी कि कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। तो शायद मेरे ख्याल से मेरी जॉब की ही किसी चीज़ की तो बात थी, या तो कुछ तो था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे उसकी, बस उसी ने जो करा था वो करा था। हेलो
1: जी,
0: ना तो ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन हाँ ये भी है कि आपके जो बड़े ने आपको बताया कि भाई ऐसा है गल्फ चले जाओ, और आपने 80,000 रुपए से सही फैसला लिया, वरना कुछ लोग 80,000 रुपए का फैसला सही नहीं ले पाते ना भाई।
1: ना सर, वो भी 80,000 रुपए उस एज में जमा करना, आप 2017-18 की बारे समझे।
0: हाँ।
1: मैंने 2017 में अपना कॉलेज कम्प्लीट किया था।
0: हाँ।
1: और उस टाइम पे 18 में 80,000 रुपए जमा करना बड़ी बात है।
0: अरे और क्या भाई, 80,000 रुपए,
1: दो जगह काम करके, और उस टाइम पे जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी।
0: हाँ।
1: मैं आईसी कार्ड बनाता था।
0: हाँ।
1: और नए नए आप मार्केट में उतरे होते, क्योंकि मैट्रिक तक तो कुछ पता ही नहीं था दुनिया में चल क्या रहा है।
0: हाँ। ये भी बात सही है,
1: मतलब समझो 2018 में एक साल के अंदर 80,000 रुपए जमा करना, मतलब कितनी ख्वाहिशों को मारा होगा।
0: मैं अपने गुल्लक भी अगर तोड़ू ना जमानों पहले वाले, तो भी उसमें 80,000 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं जमा भी नहीं करता था ना, कंजूस आदमी। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करते हुए, थैंक यू सो मच,
1: शुक्रिया।
0: ओके, तो कौन कौन है जिसको बोलना कुछ नहीं आता, बस वो कहता है कोई बात नहीं भाई, सबके साथ होता है। ये वाली लाइन इस्तेमाल करके और ज्यादा आग लगा देता है। एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम फदील भाई, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कौन बात कर रहे हैं? एक बार फिर से आवाज कहीं देखे ही नहीं लगती है मेरे को।
2: मैं विमलेश वर्णन बोल रहा हूँ।
0: हाँ विमलेश भाई, क्या हाल है?
2: बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने इस टॉपिक पे बात करना चाहता था, क्योंकि ना तो मुझे कंसोल करना आता है, ना हमने आज तक जिंदगी में कंसोल किया है।
0: कभी नहीं किया।
2: नहीं, वो झूठी वाली, एकदम सच बता रहा हूँ, झूठी वाली। हाँ सब ठीक हो जाएगा, भगवान की मर्जी है। ये तो हर किसी की जिंदगी में होता है। मतलब मैं एक छोटी छोटी घटनाएं सुनाऊंगा, तुम्हें हंसी भी आएगी। और क्या यार,
0: अरे नहीं सुनाओ, हम तो इसीलिए यहाँ पे, सुनाओ भाई।
2: एक तो मैं 14-15 साल का था ना, तो जब बहने शादी होके विदा होके जाती है ना, ससुराल जाने वाली होती है, तो उस टाइम ना मुझे पता था कि बहने कितनी भी तुमसे लड़ाई करे रोएगी।
0: सही,
2: इतना प्यार दिखा कि हाँ इसके बिना तो मेरी जिंदगी कहाँ रहेगा मेरा भाई। और मेरे अंदर ना एक पैसे की कंसोल करने के लिए जा रहे जाने बार। और लिटरली उस टाइम मैं कोल्ड ड्रिंक के बक्से को जो क्रेट बोलते कहते ना, उसको कंधे पे रख के साइड करने जा रहा था, कहीं टूट गया तो जो पैसे लगे थे एक्स्ट्रा पापा के, वो बक्से मतलब डांट पड़ी गया मैं ये वो। हाँ ठीक है मम्मा, सच में मम्मी ने लिटरली कहा कि जा रही है, फिर पता नहीं कितने महीनों में लगे। हाँ बहुत, क्या बोले ये भी नहीं।
0: हाँ यार, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट पॉइंट पकड़ा है आपने। मुझे अपने वाला भी याद है, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने ये शायद यहाँ पर एक बार जिक्र भी किया था कि बहन की विदाई हो रही थी, बहन एकदम फूट फूट के रो रही है। मैं उससे दो बात कही, मैंने कहा सुनो अभी कार के आगे रुक, पैसे मिलते हैं, क्योंकि अगर दुल्हा लेकर जा रहा हो दुल्हन को, कार के आगे रुक जाओ तो मतलब मुझे पैसे मिलेंगे, लड़की की भाई को पैसे मिलते हैं। और वो मुझे पता नहीं था, किसी ने बताया, तो मैंने कहा सुनो दो चीज़ है, एक तो रो मत, दूसरा ये है कि मुझे अब रिमोट मिलेगा टीवी का, तुम्हारा तो हो गया, कट लो यहाँ से। तो वो रो रही है आंसू से, मोटे मोटे आंसू से कहती थी कि फजील जब मेरी विदाई होगी तो तुम रोगे। और मैं हंस रहा था भाई, क्योंकि मुझे 8,000 रुपए मिले थे।
2: सच में बताओ, और जो दूसरी चीज सुनाऊंगा तुम तो पक्का कहोगे कि मतलब मेरे दोस्त, वो जो दोस्त होगा मुझसे, क्या हुआ था।
0: हाँ।
2: मेरा एक दोस्त था दिल्ली में।
0: हाँ।
2: और वो दिल्ली में पला बड़ा था ना, तो हम लोग साथ में एक कंपनी में इंजीनियरिंग कॉलेज से जॉब लगी थी हमारी।
0: हाँ।
2: तो वो मैकेनिकल में था, मैं सिविल में, हम लोग की काफी अच्छी दोस्ती थी।
0: हाँ।
2: और क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, उसके पापा की ना सडन डेथ हुई।
0: अरे
2: ठीक है ना, ऐसे ऑफिस में था, उसको कॉल आई कि डेथ हो गई, तो वो चला गया. और नेक्स्ट डे ना जब मॉर्निंग में हम सबको जाना था ना, बिलीव करो मैं, मतलब बुरी बात है, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम मेरे और मेरे एक दोस्त को समझ ही नहीं आ रहा कि वहां जाके ना कैसे उसको कर, क्योंकि उसके साथ हम रोज हंसते खेलते थे, बजा करते थे, ये वो फलाना ढिमकाना, एकदम आइडिया नहीं है कि मतलब क्या बोला जाएगा, कैसे कंधे पे हाथ रखे, वो रोएगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे. और हम ये दोनों दोस्त बातें कर रहे हैं यार, मुरली के घर जा रहे हैं ना, कैसे बात करेंगे यार, कैसे बात करना होता है. बिलीव करो जो वहां जाके, मैं एक्चुअल सिनेरियो बता देता हूँ, जब हम दोनों वहां पहुंचे तो हम दोनों ने एकदम कोशिश करी कि मतलब रुआंसा आंखों से आंसू वाला चेहरा दिख जाए, ठीक है,
0: शक्ल देखिए हंसी आ रही है,
2: आ रही है, हम ला नहीं रहे, एकदम नहीं ला रहे. और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उसके वो इंजीनियर था लेकिन उसके पापा की ना वो थे, किराने की दुकान भी थी.
0: अच्छा,
2: तो रहते रहते थोड़ी देर जब गुमसुम रहे, कुछ बात नहीं, एंड ऑफ द डे मेरे और दोनों दोस्त के मुंह से निकला, अब तो मुरली परचून की दुकान चलाएगा.
0: अरे मेरा भाई, तो आखिरी दोस्ती रही होगी फिर आप.
2: बहुत नहीं, आखिरी तो नहीं, मतलब आखिरी मतलब कह रहे ना कि वो भी हंसा, स्माइल किया उसने बेचारे ने डर से, ठीक है ना, कहीं को देख ना ले, कह रहे इसके पापा के, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये एकदम सच्चाई वाली बात है. और ये ट्रुथ लड़कों को नहीं आता कंसोल करना, ना कंसोल करवाना आता है,
0: ना कंसोल करवाना आता है. अच्छा, जिनको नहीं पता, किराना दोस्तों ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, या फिर बाकी जो बांग्लादेश से, उनको शायद अगर ना पता हो तो बांग्लादेशी बाकी लोगों को.
2: और आज भी हम ये डिस्कस करते तो वो कह रहा है, हाँ यार मतलब मैं तुम लोगों की वजह से मुस्कुराया था, वरना पूरे.
0: हाँ,
2: ये थी मेरी कहानी.
0: नहीं लेकिन ये लाइन तो नहीं बोलनी चाहिए थी कि समझ
2: नहीं,
0: नहीं आता
2: ना, मैं कहता हूं,
0: उम्र भी तो कम थी. और वो तो अलग बात है कि जब पता ही नहीं है कि बोलना क्या होता है, और पहली बार जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना, तो हम लड़कों को पता नहीं होता है. अच्छा, जो बाकी फीमेल्स होती हैं वो बगल में बैठ जाती हैं, मुझे लगता है वो भी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो बस दो चार सवाल कर लेती हैं, उसी में कंसोल हो जाता है कि बहन बहुत गलत हुआ, बहन बहन करके ये लोग अपना आपस का बना लेती हैं. मर्दों में आपसियत हो नहीं पाती भाई,
2: हम पिट के भी एक दूसरे को कंसोल ना करें, एक ही जगह पिटे ना दूसरे सब पिटे, तब भी कंसोल नहीं कर पाते, हाय तेरे को बहुत चोट लगी, तेरे को ज्यादा चोट लगी, हमसे ज्यादा मजा आया.
0: उल्टा हंस के चले जाते हैं कि अरे यार बता.
2: सच में फजील, इसका ना कोई डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और सबको सीखना चाहिए. मुझे लगता है आप भी इतने परफेक्ट नहीं हो गए इस मामले में.
0: परफेक्ट मेरे को नहीं समझ में आता भाई, इसलिए तो सवाल किया था.
2: बहुत सही सवाल. और उन लोगों, मैं सुन तो नहीं पाऊंगा आपका शो पूरा, मैं घर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं उस लिस्नर के बारे में जानना चाहूंगा जो कंसोल करने में नंबर वन है, हमें भी कभी मिलवाना, हम कंसोल करवाएंगे अपने आप को,
0: रिकॉर्ड करके तुमको भेज देंगे. हमें कोई नहीं मिलेगा लेकिन श्योर है, मुझे तो ये लग रहा है कि वो श्योर है. चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. है कोई जो सुन रहा हो, जिसको कंसोल करना आता हो, जिसको अच्छी बातें बोलना आता हो, किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो अच्छी बोलना आता हो, अच्छी बात कहना आता हो, वो बताएं. हमारा व्हाट्सएप नंबर 6622107. फिलहाल एक और कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम, क्या बोलती पब्लिक?
0: क्या बोलती पब्लिक, मेरा भाई कौन बात कर रहा है?
3: भाई मैं तो लगता है मेरे को ना सुबह, आफ्टरनून और इवनिंग और अभी आपका शो, लगता हाजिरी देना ही पड़ेगा बेकार टाइम
0: भाई. एक्चुअली हमारे ऑफिस में बात भी चल रही थी कि एक बंदा है जो कॉल करता है माशाल्लाह, उसको FM 107 का एम्बेसडर ही बना दे.
3: अरे भाई मैं तो चाहता हूँ जॉब पे लगा दो मेरे को.
0: नहीं
3: अभी एक कॉल खत्म किया मैं बस जस्ट थोड़ी देर पहले, और अभी मैं बोला यार ये फजील भाई को तो मैं जानता हूँ पहले भी, सुनते था, मगर आज मौका मिला है फजील भाई से बात करने.
0: क्या बात है, माशाल्लाह. नहीं मोबाइल में फ्री का बैलेंस होना तो इंसान कॉल कर ही लेता.
3: मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, कसम से सच्ची बता रहा हूँ, मैं फुकट में पहले मैं अपना बैलेंस मतलब पैसा भर रहा हूँ और यूज नहीं कर रहा हूँ मैं.
0: हाँ तो यही यूज कर रहे हो आप?
3: तो कोई है नहीं अपने पास बातचीत करने के लिए.
0: ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके कोई पास नहीं, अपन लोग क्या बैठे हुए मेरा भाई. भाई कैसे है, क्या नाम है आपका, हमारे सुनने वालों को बताए.
3: मेरा नाम भाई मोहम्मद आतिफ है.
0: मोहम्मद आतिफ,
3: मुंबई से बिलोंग करता हूँ.
0: क्या बात है, तो मुंबई में कहाँ से आप?
3: मैं मुंबई से भाई, बहुत फेमस जगह से हूँ
0: भाई, बहुत सी फेमस जगह. कुछ दिन पहले अभी हमने धारावी के बारे में बात करी है, ऐसे तो बहुत सी.
3: वो ज्यादा फेमस हो गई भाई, मैं थोड़ा कम फेमस हूं. मैं जोगेश्वरी से हूं.
0: अच्छा जोगेश्वरी है. मैं क्या नाला सुपारा से है क्या?
3: नहीं नहीं वो ज्यादा फेमस है. okay. हम लोग में ना मैं अपना जोगेश्वरी में एक मतलब बोलते पब्लिक नाला सुपारा गरीबों का सहारा 2000 डिपॉजिट 5000 भाड़ा
0: क्या है असली मुंबईया क्या है दोस्तों ये है जो अभी अभी मेरे भाई ने आतिफ ने बताई आपको। तो
3: भाई
0: आज का सवाल आपने सुना कंसोल कैसे करते हैं, क्या आप कर पाते हैं अपने दोस्तों को कंसोल?
3: भाई कंसोल जोगेश्वरी मतलब मुंबई वाले को कंसोल करना हाँ। तो मतलब भाई बोलते ना वो सीधी उंगली से घी निकालने का काम हो गया।
0: नहीं होता अपने लोगों से
3: नहीं होता भाई मतलब अभी थोड़ी देर पहले अभी आपके पिछले को पिछला कॉलर था ना वो भाई आपका
0: हाँ, हाँ।
3: वो बोल रहा था बोले मैंने अपने दोस्त को मतलब उसके टाइम पे गलत टाइम पे सही बात बोल दिया उसने
0: अच्छा
3: मैं वो चीज सुन के हंसा बस मैं बोला यार ये बात बंदे को कहनी नहीं चाहिए उसके दिल पे लगी होगी बोले साला मेरा दोस्त मेरे को ही
0: मेरे को हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊ
3: हमारी बिल्ली हमी को ये मतलब एक ना मतलब एक टाइम का है
0: हाँ।
3: हम लोग दोस्त लोग कॉलेज में थे मतलब
0: हाँ।
3: हम लोग को ना मतलब बहुत कीड़ा था मतलब बाहर कंट्री के जाने का शौक था
0: हाँ।
3: मेरे तीन दोस्त लोग थे तीनों अभी बाहर कंट्री में तीनों मतलब बदनसीबी वो लोग बाहर कंट्री में
0: अच्छा।
3: मेरे को इनक्लूड मेरे को मिला के
0: अच्छा
3: हम लोग देखने का बड़ी बड़ी गाड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी बोले भाई हम लोग कार चलाएंगे भाई चलो बाहर कंट्री में जाते हैं एजाज खान के जैसा मतलब
0: हाँ, हाँ, हाँ।
3: भाई टैक्सी चलाएंगे बाहर जाके गल्फ कंट्री में
0: अच्छा
3: तो उसने उतने मतलब एक दोस्त हम लोग का मतलब छलांग मार दिया वो पासपोर्ट ऐसा बना के पहुंच भी गया
0: हाँ, अरे क्या बात
3: है पहुंचने के बाद भाई वो उधर बंदा लगा के टैक्सी वैक्सी में फोन वोन हम लोग को बताने लग गया
0: हाँ।
3: ये देख भाई हम लोग अभी यहाँ पर बाहर कंट्री में आ गए कमा रहे फुल छाप रहे
0: हाँ।
3: तो उतने में मतलब उस बेचारे का मतलब कोई फैमिली में
0: हाँ।
3: तो चल दिया
0: अच्छा कुछ खा रहे हो क्या भाई?
3: नहीं भाई
0: अच्छा
3: तो उसकी फैमिली में ना कोई चले गया
0: हाँ।
3: तो उस टाइम पे मतलब हम लोग अपने दोस्त को बोलने का कि माँ यार एक काम कर चल जान दे सबर कर ऐसा है वैसा है कोई बात नहीं होता है
0: हाँ।
3: मगर मेरा एक दोस्त है ना वो बोलता है भाई तू कुछ भी कर कुछ भी सोच मत टेंशन मत ले तू सिर्फ मेरे को 10,000 रुपए भेज दे बाकी मैं सब संभाल लूंगा
0: हाँ।
3: मतलब उसको वहां पर वो चीज बोल रहा उसको कि भाई तू 10,000 रुपए को भेज दे मैं संभाल लूंगा उसको
0: अच्छा मुझे यही पंच लाइन थी
3: ये पंचलाइन मारा उसने बाहर बंदे ने तो हम लोग मतलब जॉइंट कॉलिंग पे है हम लोग बोले उसको सबर दे रहे चल भाई कोई बात नहीं होता है वो कोई बात नहीं जिसकी चीज से उसने ले लिया ऐसा वैसा मगर हम लोग का जो तीसरा दोस्त ना वो तो अलग ही माइंड का था बोलता भाई एक काम कर मेरे को 10,000 रुपए पार्सल कर दे वहां से मैं तेरे को ना टेंशन मत ले मैं सब संभाल लूंगा इधर
0: नहीं नहीं
3: मतलब ऐसे हम लोग के दोस्त लोग हैं
0: नहीं होते हैं भाई मैं बहुत देर में समझा ये पंच लाइन लेकिन
3: नहीं अरे क्या बात कर रहे भाई मतलब ऐसे दोस्त लोग हैं हमारे मतलब तुमको जिस जगह से बंदे को सपोर्ट करना चाहिए
0: हाँ।
3: अरे भाई
0: वहाँ से पैसे मंगवा रहे हैं
3: वहाँ से बोल रहा भाई तो एक काम कर 10,000 तो मेरे को भेज दे मेरे अकाउंट में बाकी मैं सब देख लूंगा
0: सीख लो मर्दों ये कम से कम ये जरूरी बात है कि हमें क्या नहीं बोलना है आज इस शो से हमें ये तो पता चल जाएगा देखो क्या नहीं बोलना तो एक तो विमलेश वाली बात नहीं बोलनी है और एक आतिफ वाली बात नहीं बोलनी है ठीक है
3: बिल्कुल नहीं बोलनी है मैं अपने दोस्त लोग से मतलब मेरे दोस्त लोग है अभी भी मतलब है दूसरी दूसरी जगह पे मौजूद है वो लोग कभी मेरे से बातचीत करते तो वो लोग यही पहले सवाल यही पूछते भाई तेरी कैसी कंट्री है
0: तेरी कैसी कंट्री
3: मतलब तेरी कैसी कंट्री है जिंदगी मैं बोलता हूँ भाई तुम मजे में फुल मजे में चल रहा हूँ गाड़ी
0: नहीं तो आपको कहना चाहिए मजे में तो नहीं कट रही अगर 10,000 रुपए मिल जाते तो सब आसान हो जाता
3: ये मतलब एक छोटी सी चीज बोलूंगा मतलब मैं घर जाने का टाइम हो गया था मेरा दुबई में था मैं दुबई में
0: हाँ, हाँ।
3: दुबई से मैं घर जा रहा हूँ बल्कि मेरे दोस्त लोग भी एक महीना पहले मेरे से लोग पहले पहुंच चुके घर पे
0: हाँ।
3: और मेरा मतलब उन लोग के एक महीने के बाद मेरी टिकट थी आने की
0: अच्छा।
3: अभी तुम बताओ भाई वो लोग भी मतलब 4-4 साल से काम करके मतलब बंदर लोग गए अपने घर पे काजू बादाम चॉकलेट वॉकलेट सब लेके गए अपनी फैमिली के लिए और खुद मतलब फुल मुद्दा उद्दा पैसा जेब में लेके जमा करके गए भाई मेरे को जब आने के टाइम पे क्या बोलता हूँ बोले आसिफ बोले आने के टाइम पे ना तू हाँ। आज ना मेरे लिए एक परफ्यूम लेके आ
0: हाँ।
3: और काजू बादाम लेके आ
0: अरे ये डिमांड
3: एक महीना भी खत्म नहीं हुआ
0: कुछ भी हो मतलब की लालच तो थोड़ी बहुत तो होती है थोड़ी लालच
3: मतलब
0: तो है
3: दोस्त
0: अगर गल्फ में रह रहा है अगर गल्फ में रहते हुए दोस्त कोई सामान ना ला पाए तो फिर कैसी चलेगी अब तो मतलब आप देखिए कितने भी बड़े स्टार बन जाएं दोस्त आपको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि तुम उनके यार आप कंधे पे हाथ रख के जब तक उसको दो चार लफ्ज उल्टे सीधे वाले ना कह पाए तो दोस्ती कैसी और आप चॉकलेट ना मंगवा पाए गल्फ से सामान ना मंगवा पाए तो दोस्ती कैसी बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगा बात करके
3: मतलब एंजॉय ना मैं मतलब कतर में आके किया हूं
0: क्या बात है बिल्कुल यार कतर जगह ही ऐसी है कौन छोड़ना चाहता है चले भाई।
3: मतलब मैं सोचता मैं कभी जिंदगी में सोचा था कि एफएम पे मेरी बात होगी, लोग मेरे को सुनेंगे।
0: अरे क्या बात है, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया
3: मतलब इतना इंपॉर्टेंट देने के लिए।
0: अरे नहीं भाई, सब इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके,
3: शुक्रिया भाई,
0: थैंक यू। 10,000 का जुगाड़ हो जाता है अगर तो नहीं। एक और कॉलर हमसे कर लेते हैं बात, फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं फजल भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी दुआ है, क्या नाम है आपका?
4: जी मेरा नाम सैयद फैजल है।
0: सैयद फैजल जी, फैजल साहब फरमाइए।
4: मैं सुनता डेली हूँ प्रोग्राम, लेकिन मैं आज कॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सवाल है फजल भाई आपका, ये कंसोलन वाला,
0: हाँ
4: ये कंसोलन कंसोल जो है दोस्तों का वही है जो अभी विमलेश भाई ने और इन्होंने बताया, बस यही है हम लोग के कंसोल।
0: कि भाई तुम्हारी जिंदगी बहुत बुरा, हमारी जिंदगी में भी बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं। तो अच्छा ये, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि जब आपका कोई दोस्त कहता है ना कि यार अरे मेरी भी जिंदगी में भी ऐसी तैसी हो रखी है, तो आपको सही में आप कंसोल तो हो रहे होते कि चलो अच्छा मेरे ही में ही वाट नहीं लगी, इसकी भी वाट लगी, तो हम बराबर पे लेवल पे आ जाते हैं।
4: भाई वो कंसोल नहीं, हम लोग सबर कर रहे होते कि चलो भाई हमारे साथ हुआ तो इसके साथ भी हो रहा है, कोई नहीं कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा।
0: आप देखिए ये वाली लाइन ऐसे ही फील देती है जैसे आप क्लास में बैठे हो, आपका होमवर्क पूरा ना हो और आज मैडम ने या सर ने डिसाइड कर लिया हो कि होमवर्क पूरा नहीं है, बहुत मारूंगा आज इसको या बहुत मारूंगी, और फिर दूसरा दोस्त कहे कि हाँ यार मेरा भी होमवर्क कंप्लीट नहीं, तो आपके दिल को सुकून मिलता है कि अकेला मैं नहीं हूँ, सुताने वाला ये भी सुता जाएगा,
4: अकेला मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं,
0: और भी लोग हैं। ये लाइन ऐसे ही करती, भाई तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी उल्टा सीधा हो रहा है।
4: मुझे भी आज तक कोई ऐसा मिला नहीं कि मतलब कंसोल कर पाए, मेरे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं अरे कोई नहीं चलो मसला क्या है, हो गया चल तो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं।
0: आपने कभी किसी को अच्छे से कंसोल किया है, कोई अच्छी बात बोली हो?
4: नहीं, मेरे मुंह से कभी नहीं निकली ये चीज़।
0: मैं आज एक ऐसा मर्द ढूंढ रहा हूँ, ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जिसने बहुत अच्छी बात बोल दी हो, लगाओ कि यार ऐसी लाइन बोलना, अगर अच्छी कोई लाइन मिल गई तो सारे मर्द उसको कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी के साथ बुरा हो रहा हो ऐसी लाइन बोल दो। तो आज का दोस्तों शो का जो कह सकते हैं कि जो जरूरी चीज है या हमें जो चाहिए शो का, हमें टॉपिक ही यही है, हमें चाहिए ऐसी कोई लाइन जो कंसोल करने के लिए परफेक्ट हो, ऐसा मर्द ढूंढ रहे हैं आज।
4: बिल्कुल फजील भाई, मैं भी आज ये मैं देखूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो मैं गाड़ी रोक के देखूंगा कि हाँ कोई ऐसा बंदा है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
0: चलो दोस्तों आज हमें वजह मिल गई है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा बात करके।
4: चलिए शुक्रिया भाई,
0: थैंक यू भाई, थैंक यू। अब ये देखिए, कोई अगर ऐसा शख्स मिल जाए जो अच्छी लाइन बोलकर कंसोल कर पाए, तो बाकी मर्द समाज, बाकी सोसाइटी उसको कॉपी कर सकती है और हर जगह उस लाइन को ठोक सकती है, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:49 और बाकी लोगों के मैसेज जल्दी से ले लेते हैं, वरना वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे हमारे मैसेज को छोड़ दिया। सबसे पहले ये मैसेज है किस भाई का, नाम यार फजील भाई बहुत हार्ड हो आप, ये आदत मेरी भी नहीं जाती। कौन सी वाली? ये तो पहले का मैसेज है, लेकिन सैयद फैजल, अच्छा फैजल भाई ने भी कॉल भी करी थी। सईद कहते हैं सिर्फ एक ही लाइन आती है, नो प्रॉब्लम लेट्स सिट एंड टॉक। ये वाली लाइन अगर हम रैंक देते ना लाइनों को, तो सबसे नीचे यही वाली लाइन होती भाई। जिसका असल में, इस लाइन का असल में कोई मतलब नहीं है कि आओ बैठो बात करते हैं। और यकीन मानिए इस लाइन को सुनने के बाद सामने वाले का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। फजील भाई कल गाड़ी की बात हो रही थी तो मैंने अपनी भी देखी दोहा में, लेकिन यार उसने वैसे नहीं रखी जैसे मैंने रखी थी। क्या बात है यार, कल हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी पुरानी गाड़ी अगर बेच दी है तो आपको उसके बाद कभी वो दिखी दोबारा से? देखिए किस्मत की बात है, अशफाक साहब को आज ही दिख गई, लेकिन बड़ा बुरा लगा होगा ना कि आपकी गाड़ी को वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो इज्जत नहीं मिल रही है जैसी आपसे मिलती थी। मैं तो कहता हूँ अगर मौका लगे उस गाड़ी को चुरा के अरे मतलब धुलवा दो यार तुम तो। अब भाई प्यार है मोहब्बत है, अपनी गाड़ी से धुलवा तो सकते ही है ना। बाकी एक और मैसेज है यूसुफ साहब का, सलाम हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग, विमलेश भाई और आसिफ भाई की कॉल जबरदस्ती हुई, इन दोनों को सलाम है, कॉल करें प्लीज। ओवैस अहमद भाई अभी कुछ देर में आपको कॉल करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नंबर है इनका लास्ट में 786। ओके ठीक है, कुछ देर में आपको कॉल करते हैं, बट जाने से पहले एक जो परफेक्ट बात है मैं बताना चाहता हूँ कि औरतों को तो कंसोल करना आता है, उनकी लाइन कभी सुनी है कितने प्यार से बोलती हैं। अगर आप देखो कोई महिला एक महिले के पास बैठी हो, महिले नहीं एक दूसरे महिला के पास, फीमेल के पास बैठी हो और उसके आंसू मोटे मोटे गिर रहे हो, वो बगल में पहले कुछ देर बैठती है और देख

0: ती अभी भी रो रही है, तो ये लोग लाइन इस्तेमाल करते कि देखो मत रो, देखो अगर तुम रोगी हमको भी रुलाई आ जाएगी, ठीक है मत रो प्लीज़, और फिर अब्बा देखेंगे हम रो रहे, फिर अब्बा भी सब लोग रोने लगेंगे, फिर देखो वो बगल वाले देखेंगे वो भी रोएंगे, वो भी पूछने लगेंगे क्या हो गया क्या मसला, बहुत बात बढ़ जाएगी, मत रो बहन छोड़ जाने दो ये सब, बहुत आंसू पूछो, फिर वो अपने ही पल्लू से आंसू पोंछ रही होती, नहीं कितना अच्छा कंसोल है ये कि तुम मत रो वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी, और हमको देखेंगे फिर अब्बा का दिल बहुत कमजोर है, अब्बा भी रोने लग जाएंगे, अपने आंसू पोंछे बहन आंसू पोंछ ले बहन। क्या पावर है यार इन लोगों में, और सीरियसली अपने पल्लू से आंसू पोंछ देती हैं, उनका रोना सही में बंद भी हो जाता है। हम जंगलियों को देखा है, एक तो हम जंगली लोग रोते ही नहीं है, पता नहीं क्या एक तो आफत ये किस बात की कि हम लोग रोते क्यों नहीं, और अगर मूड सैड भी है एक आदमी आएगा कहेगा कोई बात नहीं लेट्स सिट एंड टॉक, कोई बातें नहीं हो रही तुम जाओ यहां से। हम जो बता रहे वो सुन लो बहुत है। खैर इन फीमेल से हमें कुछ सीखना चाहिए भाई, कंसोल बहुत अच्छा करती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हम बात करेंगे आपके मैसेज पे और आपको कॉल भी करेंगे, एक भाई ने कहा है कॉल कर लेना। एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे दिल से देसी।
1: ए बनी आदम क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति वल अर्द व मिल अमा शित मिन शैइन बाद। ए हमारे रब तमाम तारीफें तेरे लिए है, इतनी तारीफ जो आसमान और जमीन को भर दे और उससे भी ज्यादा जितने तू चाहे। अहल सना वल मजद وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد। اے اللہ تو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، بندہ جو کچھ کہے سب سے سچی بات یہی ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللهم لا مانع لما اعطيت، اے اللہ جو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطي لما منعت، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اور کسی مالدار طاقتور یا صاحب حیثیت کو اس کی دولت اور حیثیت تیرے سامنے فائدہ نہیں دے سکتی۔ سامعین کرام، قیامت کے دن نہ مال چلے گا، نہ شہرت، نہ عہدہ، صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال۔ हम आज नौकरी पर भरोसा करते हैं, बैंक बैलेंस पर भरोसा करते हैं, ताल्लुकात पर हमारा एतमाद जमा हुआ है, लेकिन ये दुआ कहती है असल देने वाला अल्लाह है, असल रोकने वाला भी वही ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी युत्तइमु वला युत्तअम, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो सबको खिलाता है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، اس نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ہدایت دی۔ وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، اس نے ہمیں کھلایا اور پلایا۔ وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہر حال میں ہمیں اچھے انداز سے آزمایا۔ یعنی زندگی میں خوشی بھی آزمائش ہے، غم بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، کمی بھی آزمائش ہے، مومن ہر حال میں خیر دیکھتا ہے۔ الحمدللہ غیر مودع ولا مکافئ ولا مکفور ولا مستغن عنہ، اللہ کی حمد جو ہمیں چھوڑنے والا نہیں، اس کی نعمتوں کا بدلہ کوئی نہیں ادا کر سکتا، اس کی نعمتوں کا انکار بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کوئی بے نیاز بھی نہیں ہو سکتا۔ الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो हबीबी, टाइम फॉर द टाइम चेक। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल 6:03 और आप सुन रहे हैं ये शो जिसका नाम है ड्राइव थ्रू। अभी फिलहाल बेहतरीन सा गाना प्ले करते हैं केके की आवाज में। अगर ये गाना प्ले हो जाए, तू ही मेरी सब है सुबह है। ओ माय गॉड, क्या आवाज है फजील भाई आपकी। दूसरी वाली सुना दे फिर ये वाली। केके की आवाज में गाना एंजॉय करें, वापस आते हैं कुछ देर में, फिर आपके मैसेज और बाकी बातें आज के सवाल पे। दिल से देसी।

107 पे वाइपू हाल अभी इस्तेमाल है आप सभी का FM 107 पे। और आज का सवाल इंटरेस्टिंग, आज हमारा मुद्दा है एक्चुअली, और मुद्दा ये है कि हमें एक ऐसी अदद लाइन चाहिए मर्दों वाली जो एक्चुअली में किसी की जिंदगी में अगर स्ट्रगल चल रहा हो तो उस लाइन को इस्तेमाल कर ले और कंसोल कर दे किसी को, है ना। तो ये एक लाइन चाहिए और एक ऐसी लाइन चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगी में जो भी टेंशन हो उससे वो कंसोल हो जाए, उससे वो मोटिवेट हो जाए। तो एक भाई का मैसेज है और इनका नाम है सैयद साहब। तो सैयद कह रहे हैं कि फजल भाई, एक बार की बात है, मेरे दोस्त ने नई बाइक ली थी और वो चलाना उसने नहीं सीखी थी और कुछ दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि हम कुछ दोस्त उससे मिलने गए तो पता चला कि उसकी सीने की हड्डी टूट गई। ओल्लो, फिर हम लोग उससे मिले तो मेरे मुंह से निकला, चलेगा रेस लगाने? ये था मेरा कंसोल। अरे मेरा भाई, ये कंसोल नहीं था, ये तो ज्यादती थी। अच्छा, और वो कहता, आगे भी लिखा है, और वो कहता कि ठीक होने के बाद बताओ भाई कितना ढीट है वो। अच्छा, ये इन्होंने लिखा है। और सब लोग हवा देख रहे थे कि ये क्या बोल दिया, अब मेरे मुंह से निकल गई तो मैं क्या करता बस। देखो, उस टाइम पे ये बात अगर निकल गई बाद में सॉरी बोल सकते थे, लेकिन हाँ यार, हम मर्दों को कंसोल करना नहीं आता है और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमको सिखाया नहीं गया है। मैं तो इसमें ये कहूँगा, कुछ अंकलों से थोड़ा थोड़ा सीख लो, आसपास के लोगों से उल्टी सीधी बातें जो करते हैं वो सीख लो। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई मूवी का देता है अल्टीमेटम कि अरे यार, उस मूवी में देखा था क्या हुआ था, है वैसा ही है तुम्हारे साथ, सही हो जाएगा, बस थोड़ा मेहनत, थोड़ा लग कर करो यार, मेहनत सही होगा, सब बेहतर हो जाता है। फिर एक दोस्त आता है, वो एक और लाइन चेप जाता है, वो कहता है सब कुछ सही हो जाता है आखिर में भाई, है ना, ये सारी टेंशन छोड़ दो, सब सही हो जाएगा, अपने समय पे सब सही हो जाता है, चाय पियो, चलेंगे यार घूमने फिरने, सब ठीक हो जाएगा। ये कौन सी लाइन है कंसोल करने की? तुम मर्दों ने क्या सीखा है यार, क्या दोस्ती निभाओगे यार, तुम लोग सही एक लाइन नहीं बोल पा रहे हो। एक अंकल आते हैं, अंकल अलग तरह से, अंकल बहुत कम लोग अंकल ऐसे होते हैं ना जो कंसोल करते भी हैं, लेकिन इनका कंसोल एकदम अलग से होता है कि बेटा जिंदगी जो है ये प्रेशर कुकर की तरह है ना, अगर जिंदगी में प्रेशर नहीं होगा तो तुम सीखोगे कैसे, जिंदगी में प्रेशर नहीं होगा तुम्हारी दाल कैसे गलेगी, मतलब तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी, बस सही समय का इंतजार करो बेटा, सब कुछ अच्छा होता है। ये अंकल ये लाइन मार के जाते हैं। ये अंकल भी कभी किसी को अपने दोस्तों को कभी इन्होंने कंसोल नहीं किया होगा, बुढ़ापे में ये मूवी देखकर ये सब लाइनें मारते हैं। अच्छा, एक और लोग आते हैं और ये होते हैं वो मतलब इनको, इनका लॉजिक अलग होता है कि देखो यार वो शनि तुम्हारे ऊपर चल रहा है, ये तो मूवी वाला है ना। यार वो ऐसी

0: अलाइनमेंट में आ रहा ना शनि, इसके वजह से ये सब हो रहा है। उसके अलावा ये कुछ जमाने के लोग जिसमें वो सिर्फ इतना आता कि यार तुम, ये तुमको बुरा लगता है, तुम्हारे साथ हो रहा है जो बहुत सही है भाई, मेरे साथ तो और भी बुरा हुआ था, तुम्हारी एज में जब मैं था तो ऐसा होता था वैसा होता था, भाई इनने तो क्या क्या दंगे काटे इन लोगों ने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम इस पर बात करेंगे, ये मुद्दा आज क्लियर हो जाना चाहिए। एफ एम 107 पे फिलहाल अजान का वक्त, दिल से देसी
1: उर्दू रेडियो एफ एम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।
2: अल्लाहु अकबर।

हाला हबीबी 6:23 स्टूडियो की घड़ी में। और आपने एक बात नोटिस करी है, वो ये कि जब भी कोई ऐसी बुरी खबर आती है कि कोई गुजर गया हो जैसे, तो उसमें मर्दों को कॉल कम की जाती है, बाकायदा महिलाओं को कॉल पहले की जाती है। उसका रीजन ये है कि ये सही से कंसोल कर लेती है। सोचे यार, मर्दों का इतना बुरा हाल चल रहा है, इतने बुरे हालात चल रहे हैं कि मर्दों को फ्यूनरल में भी नहीं बुलाया जाता है कि आके पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल देंगे। ये औरतें तो फिर भी बात कर लेती हैं। मैंने एक बार तो सुना भी था, खैर ये वाला थोड़ा फिल्मी भी है, आपस में औरतें बात करती हैं, किसी तरह की टेंशन आ जाए, किसी दोस्त की जिंदगी में टेंशन आ जाए, वो बैठाल कर बात करती कि देखो ऊपर ऊपर देखो, खुदा सब देख रहा है, वो बैठा है वो सब देख रहा है। अगर उसने तुम्हें ये टेंशन दी है, ये परेशानी दी है, ये प्रॉब्लम दी, ये सैडनेस दी है, तो वही इसका हल निकालेगा। और उसने तुम्हें ये परेशानी, ये टेंशन सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर ब्रेन है, तुम इसे सॉल्व कर सकती हो, तुम लड़ सकती हो, तुम्हारे अंदर है वो हिम्मत। तो खुदा उसी को हिम्मत देता जो लड़ सकता है। तो बेसिकली तुम्हारे पास वो सब है जो इस टेंशन को दूर कर सकता है, और तुम खड़ी होगी अपने पैरों पे, इस परेशानी से लड़ोगी और सीखोगी। देख रहा हूं कितनी पावरफुल लाइन है भाई, कोई भी मोटिवेट हो जाएगा यार। और हम मर्द क्या कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा भाई, कोई बात नहीं। अरे तुम्हें इसीलिए कोई कॉल नहीं करता है, तुमको को लोग फ्यूनरल में भी नहीं बुला रहे। ये मर्द समाज नहीं बोल पा रहा है, कंसोल ही नहीं कर पा रहा है। मर्द समाज बात बात पे कह दे रहा है कि सबके साथ होता है भाई, जो आया है वो जाएगा। देखा ये लाइन सुनी है, जो आया है वो जाएगा भैया, ये तो नियति है, ये लाइन बोलता ही है। महिलाएं बिल्कुल सही टैकल कर रही है किसी भी सिचुएशन को। हम मर्द एकदम अलग, बहुत सूखे लोग हैं भाई। ये कोई लाइन है, आप बताओ मेरा भाई, कि यार सब चले जाते हैं, जो आया है वो जाएगा। बूढ़े ये लाइन सबसे ज्यादा बोलते हैं, एक उम्र आती है, उम्र के बाद क्या रखा है, ऊपर वाला है भाई। सच में ये सारी लाइनें मत बोला करो भाई कहीं जाके। मैं खुद भी उनमें से हूं, मैं जाके चुपचाप बैठ जाता हूं, मैंने ये सीख लिया, चुपचाप बैठ जाओ, सुन लो वही बहुत है। क्योंकि ये सब लाइन बोलोगे ना तो सामने वाला ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखेगा, फिर इतना गंदा मुंह बनाएगा कि उसकी मूंछ उसकी नाक को छू जाएगी भाई, और वो गंदा मुंह बना के आपको देखेगा, कहेगा उठो चलो, बस बस ठीक है, हाँ बस वो तो अल्लाह वाले हैं, ऊपर बुला लिया अब तो क्या करें। ये सब लाइनें बोल के छोड़ना पड़ता है भाई मामला। नरेश चौधरी ने भी ये बात लिखी है, कहते हैं जो आज आपका टॉपिक, उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं तो दोनों सिचुएशन में यही याद करता हूँ, यही लाइन बोलता हूँ, जब बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख हो। वैसे ये बहुत स्ट्रांग बात है, क्योंकि दुख हो तो ये लाइन बोल सकते हैं, लेकिन जब खुश हो तो ये लाइन बोलने में दुख होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। नरेश भाई आप तो जिंदगी में मतलब मकाम पा चुके हैं आप। ये बात तो मैं कहूँगा। ओके, एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिशाम भाई का मैसेज बहुत पहले आया था लेकिन लेना भूल गया था, सॉरी।

0: करेंगे किसी की सैडनेस में, हम सब मिलकर ढूंढ रहे भाई।
1: बॉलीवुड
0: का कोई गाना गाते हैं तब भी टूटे फूटे वर्ड होते हैं कुछ।
1: तो ये मोहनलाल का गाना है, मोहनलाल का गंगे गाना है, उसमें बोलता है कि तुम इतनी पवित्र हो लोग तुम्हें पाप धोते हैं।
0: आए हाय क्या बात है, क्या बात है मेरा भाई। आपने जब गुड मॉर्निंग कराना तो मेरा काम था ये करना की गंगे। लेकिन ये गाना असल में जो फेमस हुआ है वो सिर्फ गिंगे से ही हुआ, तो अब लोग गिंगे ही गा रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: तो गुड इवनिंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: ओके कैसे है भाई?
1: कई तो लोग इसका टोन मच्छर भगाने के लिए यूज करते हैं कि मच्छर बहुत तंग करते हैं, उसकी आवाज यूज कर रहे हैं।
0: मच्छरों को तंग करने के लिए यही वाला प्ले कर दो।
1: जी भाई। और क्वेश्चन था भाई कंसोल करने का।
0: हाँ किसी की जिंदगी में अगर स्ट्रगल चल रहा हो तो कंसोल कैसे करते हैं, तो आप कैसे कंसोल करते हैं, या आपने कभी सुना हो किसी से अगर कोई कंसोल आपको कर रहा हो अच्छी बातें कह के? तो आज का मुद्दा यह है कि हम एक ऐसी लाइन ढूंढ रहे हैं जिससे ये पूरा समाज उसे इस्तेमाल कर पाए किसी को कंसोल करने में, किसी की जिंदगी में कोई टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी चल रही हो, कोई एक ऐसी लाइन जिससे हम कंसोल कर पाए, क्योंकि मुद्दा यही है कि हम मर्दों को नहीं आ रहा है कंसोल करना।
1: ठीक है, हमें वो लाइन एक मास्टर लाइन ढूंढनी है जिससे आदमी को हौसला बन जाए।
0: हाँ, लेकिन वो मिली नहीं अभी तक। ये मामला है
1: जी।
0: तो अगर
1: उनको यही कहना है एक ही लाइन में, मैं यही कहूंगा इन केस अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कोई बात नहीं, कल अच्छा वक्त था, आज बुरा वक्त है, कल फिर अच्छा वक्त आएगा। तुम हौसला रखो।
0: यही वाली तो बेकार लाइनों में आ रही है। कि ये कोई हाँ, तो यही तो है कि असली वाली लाइन नहीं मिल रही है। देखो औरतें फिर भी कर लेती है ना कि देखो ऊपर वाले ने तुमको ये परेशानी दी है तो उसके अलावा तुम पे कैपेबिलिटी दी है, इसी वजह से तुम्हारे पास ये परेशानी है। फिर एक और महिलाओं में ये चलता है जो बड़ी वाली होती है कि देखो तुम मत रो, तुम रोगी तो बहन हमें भी आंसू आ जाएगा, हमें आंसू आओगे फिर अब्बू भी बैठे हैं, अब्बा भी रोने लगेंगे, उनका दिल बहुत कमजोर है, उनके लिए तकलीफ हो जाएगी, मत रो। और देखा है आपने और भी लोग बोलते हैं कि बेटा तुम रोगी तो वो जो रूह है रूह को तकलीफ होगी। कितनी भारी लाइन है ये सब। हम मर्द क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जो आना था आया, जो गया था वो गया, जाएगा जो आया है वो जाएगा, नियम है ये, कानून। ये सब लाइनें बोलते हैं, हम मर्दों को नहीं आ रहा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कोई अगर बता पाए अच्छी लाइन।
1: ओके सही है मेरे पास तो यही लाइन है, मेरे में तो यही कुछ है बस।
0: हाँ इसीलिए तो कह रहे ये वाली भी सही नहीं। सब यही कह रहे हैं कहीं से तो सही है
1: भाई।
0: चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया अमन जामवाल है ना।
1: और कोई प्रोग्राम आने वाला है, कोई प्राइज विनिंग कोई मोमेंट आने वाला है? मुझे तो 5 महीने बाद पैसे मिले हैं।
0: अरे बस ये है जेब भरनी चाहिए है ना। तो
1: मैं तो अरब कप विनर था, 16 दिसंबर को विन किया, ये एक कितने 8 मई को पैसे मिले जाके।
0: अरे वाह। तो लेकिन बस क्या है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, मसला यही होता है कि यू नो प्रोसीजर ऐसा होता है कि उस प्रोसीजर में टाइम लगता है।
1: मैं तो कबीर भाई से बहुत बार झगड़ा किया, भाई क्या आपने मुझे फंसा दिया, क्या मुझे विनर बना दिया, नाम का विनर बनाया आपने मुझे।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होता है, मिलता है, बस सारा माजरा ये है कि थोड़ा यू नो दो दो तीन तीन स्टेप होते हैं और उस स्टेप को फॉलो करते करते हमें काम करना होता है। ऑब्वियसली हम नहीं, हमारी मैनेजमेंट जो है उनको काम करना होता है, इसलिए जैसे वक्त लग जाता है। चले
1: भाई,
0: ओके बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके भाई, थैंक यू।
1: ठीक है भाई।
0: कल अच्छा था आज बुरा है, कल फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है ये वाली लाइन चलेगी नहीं चलेगी, कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, मेरे को तो नहीं लग रहा। फिलहाल एक और भाई का मैसेज है, सलाम, वक्त मुश्किल कटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए, ये शायरी मारोगे? ये वाली शायरी नहीं चलेगी, ये सब शायरी मारोगे तो कहीं ऐसा ना हो किसी माहौल में स्ट्रगल वाला माहौल हो या टेंशन वाला माहौल हो, वो आपको देखकर ये कह दे कि भैया उठिए चलिए हो गया, अब मिलेंगे इंशाल्लाह, हाँ चले अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज करके वही निकल गया। लेकिन शायरी के माहौल में अगर आप ये बात मार दें, एक बात कह दें हसन साहब, तो भारी हो जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये टॉपिक छोड़कर, वैसे ये टॉपिक ऑन है, 7 बजे तक अगर कोई अच्छी लाइन बता देगा तो हम मर्द समाज ये इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ में अर्थ की ग्रेविटी पर. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या अर्थ की ग्रेविटी धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर ऐसा हो कि अर्थ की ग्रेविटी अचानक से कम हो जाए तो क्या हमारे और आपकी ज़िंदगी में असर पड़ेगा, क्या ये हल्का असर होगा, क्या एटमॉस्फेयर पे असर पड़ेगा.

0: के समंदर पर, या फिर यू नो हम हवा में उड़ने लगेंगे, है ना? ऐसा कुछ होगा कि हम स्पेस, हमारी बॉडी जैसे स्पेस में होती है वैसे बिहेव करने लगेगी। सैटेलाइट पर क्या भरोसा होगा? सैटेलाइट उधर ही रहेगा कि अपन बचेंगे सैटेलाइट से, क्रैश करने लगेगा, या फिर सन रेडिएशन, क्या कुछ होगा आज हम बात करेंगे अगर अर्थ की ग्रेविटी अचानक से कम हो जाए तो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम इस पर करेंगे बात। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

क्या बात है, ये गाना आपने सुना है FM 107 पे धुरंधर मूवी का ट्रैक, जिसमें है शाश्वत, शहजाद अली, सुबदीप और अरमान खान। अस्सलाम।

वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजील के साथ हैं आप 6:39 39:40 स्टूडियो की घड़ी में। और आज हम बात करेंगे व्हाट इफ में, अगर अर्थ की ग्रेविटी अचानक कम हो जाए तो क्या कुछ होगा। वेल, धीरे धीरे असर तो पड़ेगा और ये असर जानलेवा है एक्चुअली, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं क्योंकि नासा ने और ना ही किसी एजेंसी ने आज तक ये कोई रिसर्च करी है। वैसे सोशल मीडिया पे एक फेक जो न्यूज़ है वो ज़रूर चल रही है कि अगर अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाएगी और 2026 में 7 सेकंड के लिए अर्थ की ग्रेविटी एकदम से खत्म हो जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक फेक न्यूज़ तो नहीं कहेंगे, एक फेक वीडियो जो है वो चल रही है। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा सही में हो जाए, इस पर अगर बात करेंगे तो क्या इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, अगर अर्थ की ग्रेविटी अचानक कम हो जाए तो ये किसी हॉरर मूवी से तो ज़्यादा ही डरावना होगा। सब कुछ वेटलेस हो जाएगा और आपको भी किसी भी चीज़ का वेट नहीं लगेगा, लेकिन असर मौत का सबब बनेगा। यहाँ ग्रेविटी कम होने का मतलब है कैटास्ट्रोफिक सिनेरियोज होने, जैसे कि एटमॉस्फेयर का खात्मा। ग्रेविटी की हवा यानी कि ऑक्सीजन को धरती से पकड़ कर रखती है। ग्रेविटी ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन हमारे आसपास रहे। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, चंद मिनट में हम अल्लाह हाफिज हो जाएंगे भाई साहब, कोई कंसोल करने के लिए आ भी नहीं पाएगा। और ग्रेविटी कम होते ही हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस में लीक होने लगेगा, इंसान और जानवर सांस ना लेने की वजह से सफोकेशन से मर जाएंगे और फिर समंदर का उबलना शुरू होगा जिसे हम शायद कभी देख ही नहीं पाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो गिर जाएगा, समंदर का पानी भाप यानी कि स्टीम बनकर उड़ने लगेगा जिससे धरती पर जीना नामुमकिन हो जाएगा, जमीन का फटना भी शुरू होगा। ग्रेविटी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स और कोर को दबा कर रखती है। प्रेशर कम होते ही धरती यानी कि ये जो अर्थ है, अर्थ के अंदर की गर्मी और लावा बाहर निकलने के लिए प्रेशर डालेगा जिससे मैसिव अर्थक्वेक्स आएंगे, वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, भयंकर भूकंप्स अर्थक्वेक्स जो है वो आएंगे। उसके अलावा आपको हर तरफ चीज़ें उड़ती हुई नज़र आएंगी जो कि बड़ी ख़तरनाक है। किसी तरह अगर आपने एक ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से मार लिया है ना, हवा में उड़ते हुए बचने की कोशिश करी कि नाक में लगा लूँ भाई ऑक्सीजन सिलेंडर, शायद जीवन आ जाए, जिंदा रहूँ मैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी भारी चीज़ें हवा में होंगी कि एक बार टकराने पर आपका हिसाब बन जाएगा और कंसोल करने के लिए अगेन कोई नहीं होगा। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इतने भारी होंगे, वो आपको लगेंगे तो आपको चोट लगेगी, चोट से भी मौत हो जाएगी। हर वो चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी नहीं है, जैसे कि गाड़ियां हैं, लोग हैं, घर है, मिट्टी है, वो हवा में उड़ने लगेगी जिससे थोड़ी ही देर में या उसके मूवमेंट की वजह से हमें इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि हमारा ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं होगा, भले हम ऑक्सीजन यू नो कहीं से ले रहे हों, सिलेंडर से ले रहे हों। उसके अलावा हड्डियों की कमज़ोरी, मिसाल के तौर पे साइंटिस्ट ने पहले ही अगर डिसाइड कर लिया कि हाँ इस दिन से ऐसा होना है तो चलो फिर हमें तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रेविटी कम हो रही है, सब कुछ हवा में उड़ेगा तो हमें कैसे चीज़ें बांध के रखनी है, ऑक्सीजन कैसे हमें मेंटेन करनी है, ये सब करने के बाद भी क्या मुमकिन होगा हमारा जीना, एक्चुअली वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हड्डियों की कमज़ोरी सबसे बड़ा मसला हो जाएगा। आप ग्रेविटी क्रिएट नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट जब ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अगर घर ऐसा है कि आप जैसे स्पेस स्टेशन नहीं होता है, अंदर ही अंदर उड़ उड़ के चीज़ें ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिंदा रहते हैं, वहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन नहीं है बट ऑक्सीजन का कोई सोर्स तो है, फिर उसके बाद वहाँ पर भी सारा सिचुएशन ऐसे है जैसे ग्रेविटी ना होने का हिसाब है, लेकिन फिर भी वो जिंदा तो रहते हैं कुछ महीनों तक, कुछ साल तक, बट वो उतना ही होता है। उसके बाद उनकी जो यहाँ आने के बाद हालत होती है कि वो चल नहीं पाते, उनको डेली कहा जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, बगैर एक्सरसाइज किए आप सो नहीं सकते हैं स्पेस स्टेशन में। तो आप जब किसी घर को बना भी लेंगे तब भी यहाँ पर जीवन आसान नहीं होगा क्योंकि आप हवा में उड़ते रहेंगे, कुछ दिनों बाद आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, वो इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि वो डेंस नहीं होगी, डेंस नहीं होगी तो आपकी हड्डियाँ बिल्कुल से जवाब दे जाएंगी क्योंकि गोश्त नहीं होगा, गोश्त चिपकेगा नहीं, तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाएगा, हम बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाएंगे, बस जिंदा रहेंगे वो भी कुछ तब तक जब तक वो सांस हमारे लेने की कैपेबिलिटी है, हमारा जिस्म ग्रेविटी के खिलाफ लड़ने के लिए बना है। ग्रेविटी कम होने से हड्डियां मिट्टी की तरह भुरभुरी हो जाएंगी और मसल्स ख़त्म हो जाएंगे, जैसे एस्ट्रोनॉट के साथ होता है, पर ये बहुत फास्ट होगा हमारे साथ,
उसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू, हमारा दिल यानी कि हार्ट खून को ऊपर की तरफ ढकेलने के लिए बहुत मेहनत करता है। ग्रेविटी कम होने से सारा खून सर की तरफ जमा हो जाएगा, जिससे ब्रेन हेमरेज का या आँखों की रोशनी का ख़राब होना या चले जाना रोशनी का वो दिख सकता है, दिखेगा कहाँ जब रोशनी चली जाएगी तो। उसके अलावा सैटेलाइट क्रैश होने लगेंगे, जो सैटेलाइट्स हमारे इंटरनेट और जीपीएस को चलाती हैं वो अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगी, कुछ स्पेस में खो जाएंगी और कुछ आग का गोला बनकर धरती पर गिरेंगी। और ये तो बिल्कुल सही है, सन रेडिएशन एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से सूरज की खतरनाक यूवी रेज जो है वो सीधा हमारे अर्थ पे, हमारे धरती पर आएगी, जो हर जिंदा चीज को जलाकर राख कर देगी। तो जैसे ही ग्रेविटी ख़त्म होगी, सबसे पहले तो हमें सन रेडिएशन का ही सामना करना पड़ेगा, हम हवा में उड़ेंगे और भारी चीज़ हमारे सर से टकराएगी, और फिर सबके साथ होता है भाई, तुम्हारे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, चलो यार जो आता है ना वो जाता है, फिर कंसोल करने के लिए कोई मिलेगा नहीं ना। फिर आप सैड भी नहीं होंगे ना, सबको देख रहे होंगे, सब हवा में उड़ रहे होंगे। तो दोस्तों ये था आज का व्हाट इफ, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक सोशल मीडिया पे बस ऐसी फेक बातें चल रही हैं, और वो ये है कि 2024 में 100 सेकंड के लिए ऐसा होगा वैसा होगा, ये एक फेक न्यूज़ है, ना ही किसी एजेंसी ने, ना ही नासा ने किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, ना ही उन्होंने रिसर्च करी है कि ग्रेविटी जो है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि जो वज़न है ना अर्थ का, वो हर साल कम हो रहा है, और ये 50,000 टन हल्का हो रहा है। इसका नुकसान ये है कि हर साल लगभग 95,000 टन हाइड्रोजन और 16,000 टन हीलियम जो है वो स्पेस में निकल जाता है। तो हर साल अगर 50,000 टन हल्का हो रहा है तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर हम फायदे के नज़रिए से देखें हाइड्रोजन और हीलियम जो स्पेस में जा रहा है, 40,000 से 45,000 टन स्पेस की धूल और उल्कापिंड जैसी चीज़ें जो है वो हमारे अर्थ पे भी आ रही हैं, जिससे वजन जो है वो बढ़ जाता है, वापस लगभग सेम हो जाता है। अब मामला ये है कि अगर 50,000 टन सिर्फ हल्का होता रहा और स्पेस से जो धूल वगैरह आ रही है, जो उल्कापिंड वगैरह आ रहे हैं, अगर वो नहीं आए तो अगर 50,000 टन के बारे में बात करें तो ये ऐसा ही है जैसे समंदर से एक बूंद किसी ने निकाल ली हो, तो ज़माने ज़माने लग जाएंगे, अरबों साल खरबों साल लग जाएंगे अगर अर्थ को अपने ग्रेविटी खोनी हो तो। वैसे ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है और ना ही होगा कभी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जिसके बारे में हमने बात की, और ताकि हम इज्जत कर पाएँ, ताकि हम करीब से समझ पाएँ, जान पाएँ अपने ग्रेविटी के बारे में भी, अपने अर्थ के बारे में, और खुश हो पाएँ कि यार हमारे आसपास जो भी है जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए कितना खूबसूरत है। फिलहाल एक छोटे से गाने की तरफ बढ़ते हैं और जब वापस आएंगे तो मजीद आपके मैसेज लेंगे, और अभी फिलहाल संजू की आवाज में वॉल्यूम तेज करने वाला ये गाना FM 107 पे दिल से देसी।

संजूरा दौड़ की आवाज में गाना सुना आपने शेखी। FM 107 पे ये गाना सुना आपने। हाँ जी हबीब इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। 6:50 स्टूडियो की घड़ी में जाने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जाजेब यार यहाँ पर मैं जाजेब या जाजेब, क्योंकि मैंने दोनों नाम सुने हैं। जाजेब नहीं, जाजेब ज़्यादा, जाजेब जाजेब मैं थोड़ा खैर सलाम अलैकुम। भाई ने लिखा है कि भाई ग्रेविटी अगर ख़त्म हो जाए अपने आप को चेन से बांध सकते हैं क्या? ये क्या बात है भाई, मतलब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इंसान को आ जाए गुस्सा। ओके ये एक और मैसेज है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन शो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस इसी बात, ये बातें मत करा करो, मेरे को घमंड आ जाता तुरंत। उसके अलावा ये एक और मैसेज है। सलाम वालेकुम। भाई कुछ मिला नहीं? भाई अभी भी नहीं मिला, हमें नहीं मिलेगा, हम समझ गए, हम मर्दों को कंसोल करना नहीं आता, हम कभी नहीं सीख पाएंगे। उसके अलावा ये एक और मैसेज है। मेरी लाइन तो यही है, अच्छे के जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाय हाय यदि ये बात सही है, मर्दों की एक और ये वाली लाइन तो मिस हो गई थी ना दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये लाइन तो मिस हो गई थी। हम कंसोल करने के लिए सिर्फ यही बोल पाते हैं जब किसी की जिंदगी

चलो हम अब अल्लाह हाफिज कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगा बेहतरीन न्यूज़ बुलेटिन FM 107 पे। अभी तो फिलहाल कहाँ आतिफ भाई, आतिफ भाई आओ इधर, ये वाला गाना पछताओगे गाना सुनो आतिफ असलम की आवाज में। मैं निकलता हूँ, आप भी इंजॉय करो। चलो आशिक भाई घर चले, ये लंगड़ा के क्यों चल रहा हो यार आशिक, क्या पैर टूट गया है? अरे कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है।

0: FM 107 पर बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Mixing in the house.

0: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए। आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन। तो जरूर सुने, टुगेदर वी थ्राइव, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: And very very good evening. मैं हूँ नाजिया आपके साथ and welcome to the show called Together We Thrive. एक ऐसा platform जहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रगल की, सक्सेस की और सबसे जरूरी पता है क्या, इंसानियत की। क्योंकि जब हम एक साथ आगे बढ़ते हैं तभी हम असल में थ्राइव भी करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं जनाब अनवर अली राणा साहब। आप एक मशहूर कम्युनिटी लीडर हैं, एक हसास दिल के मालिक, शायर और वो शख्सियत जो खामोशी से लोगों के लिए काम कर रही है। आपका ताल्लुक सोनी धरती ऑर्गेनाइजेशन से भी है और आप यहाँ कतर में रहकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। चलिए तहे दिल से हम वेलकम कहना चाहेंगे राणा साहब को ऑन FM 107। होप यू आर डूइंग गुड। आप कैसे हैं, खैरियत से?
2: जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाजिया, बहुत शुक्रिया।
1: जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अच्छा, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ख़ास है और मुझे लगता है कि आपकी स्टोरीज हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली इंस्पायर करेंगी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से। आप हमें बताइए कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में एक तो थोड़ा सा बताइए और फिर वो कौन सा मोड़ था जहाँ से आपने ख़ुद को कम्यूनिटी सर्विस के लिए पर्टिकुलरली डेडिकेट किया।
2: जी नाजिया, आपको जैसे पता है मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान में मुल्तान के एक छोटे से गांव बस्ती सलाबाबाद में मेरी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम जो है वो मैंने अपने गांव में हासिल की, फिर उसके बाद शहर में आ गए, वहां पर तालीम जारी रखी और इस तरह से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर जो है वो कहते हैं ना कि रिस्क जो है वो बांट दिया जाता है और परिंदे जो है वो जहाँ दाना पानी होता है वहाँ चुगने चले जाते हैं। तो फिर हम सऊदी अरब आ गए और सऊदी अरब के बाद जो है फिर कतर में आ गए। तो इसमें ऐसे है कि नाजिया, मेरी ज़िंदगी में जो असल तब्दीली उस वक्त आई जब मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीना काफ़ी नहीं होता। कुछ ज़ाती तजुर्बात, कुछ लोगों की मुश्किलात को बड़े करीब से देखा तो ये एहसास पैदा हुआ कि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी काबिल बनाया है तो इसमें दूसरों का भी हक है। बस वही लम्हा था कि जब मैंने फैसला किया कि अपनी तवानाइयां जो हैं वो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए मैं वक्त कर दूँ।
1: वाह, बहुत ही गहरी बात आपने शेयर की और सच में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो ज़िंदगी का रुख ही बदल देते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग बात। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जहाँ रोज़ी रोटी अल्लाह ताला ने लिखी होती है इंसान वहीं चला जाता है, लेकिन जब आप किसी नए मुल्क में आते हैं, नए सिटी में आते हैं तो आई एम श्योर बहुत सारे इनिशियली चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। तो शुरुआत के दिनों में कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए जो आज आप देखते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज ये मेरी स्ट्रेंथ बन चुके हैं?
2: जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि 9 साल जो है वो मैंने सऊदी अरब में गुजारे थे और 9 साल में जो है वो बंदा बड़ा स्टेबल हो जाता है कि भाई अब तो बस यहीं पे रहना है। लेकिन फिर एक फैसला मुझे करना पड़ा, वो था बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, कि उस वक़्त जो है सऊदी अरब में बच्चों के एजुकेशन के हवाले से इतने अच्छे जो है इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे मुल्क में जाया जाए जहां पर एजुकेशन को बहुत अहमियत दी जाती, तो वो मुझे चांस मिला। قطر میں آنے کا. یہ ایک بڑا فیصلہ تھا کہ 9 سال کی سٹیبل لائف کے بعد میں موو ہو رہا ہوں, کیونکہ مین جو تھا وہ بچوں کی ایجوکیشن تھی, اور میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے چیلنجز کا تو سامنا نہیں کرنا پڑا قطر میں آ کے, لیکن مجھے ایک خوشگوار جو ہے وہ مجھے لگا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے. مطلب قطر کے لوگ بہت اچھے, ملنسار, نظام بہت اچھا, اور سب سے زیادہ مجھے لگا کہ یہاں پہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے, کہ مطلب میری وائف آئیں, انہوں نے ڈرائیونگ کرنی شروع کر دی, اس سے میری بہت سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تقسیم ہوئیں, جس میں میں اپنے شوق اور کمیونٹی سروس کی طرف زیادہ وقت مجھے دینے کو ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اور خوشگوار میرے لیے ایکسپیرئنس رہا. مجھے کسی بھی ایسے چیلنجز کا سامنا قطر آ کر نہیں ہوا, کیونکہ گلف اسٹیٹ ہے, ایک جو کلچر ہے وہ سعودی عرب کا قطر کا تقریباً مل کا جلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اچھا فیصلہ تھا اور اس پر میں خوش ہوں.
1: سب سے اچھی بات جو آپ نے ہائی لائٹ کی کہ ایجوکیشن پرسپیکٹیو سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں قطر میں موو کروں, اینڈ وی نو دیٹ, اینڈ وی ٹرولی ٹرولی ایکولیٹ کہ جس طرح سے قطر گورنمنٹ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے وہ تو واقعی جتنی بھی ہم تعریف کریں کم ہے. اور بہت ہی اچھی بات یہ کہ کئی بار مشکل فیصلے لگتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ آسانی ہی آپ کی لائف میں ایڈ آن کر رہے ہوتے ہیں.
2: بالکل
1: جی. اچھا, آپ جو ہے وہ سونی دھرتی آرگنائزیشن کے ساتھ بھی جڑے, تو پہلے تو مجھے اپنا یہ ایکسپیرئنس بتائیے.
2: جی, سونی دھرتی جو ہے وہ 2003 میں قائم ہوئی تھی, اور میں قطر آیا تھا 2009. ہاں, بہت بہت پرانی آرگنائزیشن ہے, یہ پہلے سے قائم شدہ تھی, اور جب میں نے 2009 میں اسے جوائن کیا تو اس وقت یہ اتنی فعال نہیں تھی, مطلب ایک دو پروگرامز ہوتے تھے, زیادہ ایکٹیو نہیں تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے وہ کمیونٹی سروس کا, کیونکہ ہمیں پہلے بھی تجربہ تھا, شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی کمیونٹی سروس میں رہے, سعودی عرب آ کر بھی کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, تو مجھے لگا کہ اس فورم میں ایک پوٹینشیل موجود ہے جہاں پر رہ کر ہم بہت کام کر سکتے ہیں. تو بس پہلے ممبر بنے, اور ممبر بننے کے بعد پھر لوگوں نے قیادت کے لیے منتخب کر لیا. تو یہاں مجھے نازیہ بچوں کے لیے کام کرنے کا بہت موقع ملا, کیونکہ بچے میرا سبجیکٹ ہے, میں بچوں کا لکھاری تھا, بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا تھا, بچوں کے لیے طائف اور چیزیں لکھتا تھا, تو رائٹر تنظیموں میں بھی تھا, تو بچوں کے ساتھ میرا ایک یوں سمجھ لیں کہ بڑا تعلق, ایک مضبوط تعلق تھا. تو مجھے یہاں پر بچوں کے لیے کام کرنے کا بہت موقع ملا, اور ہم 180 بچے, 180 جو چلڈرن ہیں انہوں نے اسٹیج پر پرفارم کیا سونی دھرتی کے. تو ہم ماشاءاللہ اتنے بچوں کی جو ہے ہم نے ڈیولپمنٹ کی. تو
1: کس طرح کے پروگرامز آپ کنڈکٹ کرواتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہیں ہماری آڈینس؟
2: جی, ہمارے ہاں جو سونی دھرتی ہے یہ ایک, اب تو یہ بلکہ ویلفیئر فورم ہو گیا, تو کمیونٹی ویلفیئر فورم ہو گیا. ہم یہاں پر بچوں کے مختلف جو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں, اس میں کمیونیکیشن اسکل اور لیڈرشپ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بچوں کے اسپورٹس کے بہت پروگرام ہوتے ہیں, جیسے فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, اس میں بچے ہی کیپٹن ہوتے ہیں, پھر بچے ہی اس کو پورا فارمیٹ بناتے ہیں, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو جو اس کے اندر مختلف انتظامیہ کے رول ہوتے ہیں وہ بھی بچے کرتے ہیں. تو ہم ہمیں بچوں کو یوں سمجھ لیں کہ گیجٹس کی دنیا سے نکال کے, موبائل اور گیم کی دنیا سے نکال کے, ہم ان کو کھیل کے میدان میں لے کر آئے.
1: کیا بات ہے.
2: اور نازیہ, آپ دیکھیں کہ بچوں, عید کا سماں ہوتا ہے جب یہ میچز ہو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, تو مطلب ایسے لگتا ہے پیرنٹس بھی آتے ہیں, میچز دیکھتے ہیں, پھر بچے جا کے بتاتے ہیں آج میں نے چھکا مار دیا, آج میں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا, आज आज मैंने इतने स्कोर बना लिए, तो एक बड़ी एक मतलब ईद का सा समा होता है बच्चों में। तो ये फुटबॉल के मैचेस है, फिर क्रिकेट के मैचेस है। क्रिकेट हम बिल्कुल जो PSL होती है पाकिस्तान की सुपर लीग जो है, उसी के फॉर्मेट से हम बनाते हैं। हम बच्चों का नाम लिखवाते हैं शर्ट के पीछे और उस टीम वही टीम का नाम देते हैं, तो बच्चा प्राइड फील करता है मैं लाहौर कलंदर का हूँ, मैं पेशावर गलमी से मेरा ताल्लुक है। तो एक कनेक्शन जो है वो हम बिल्ड करते हैं। इसके अलावा जो नेशनल डेज है उन पर प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चे मुख्तलिफ शोज प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर। इसके अलावा माह रमजान में हम अपने मजहब से यानी रिलीजियस रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, नात खानी हो गई, किरत का मुकाबला हो गया, स्पीचेज हो गई बच्चों की, और इसी तरह से मुख्तलिफ सिलसिले जो है वो कतर नेशनल डे पे कतर के हवाले से बच्चों को आगाह करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। कल्चरल इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हैं, इसी तरह एम्प्लॉयज के फिर प्रोग्राम है, लेडीज के प्रोग्राम है, कुरान की तफसीर जो है वो यहाँ पे होती है, तो हज की ट्रेनिंग भी होती है। तो इस तरह की तमाम जो वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सोनी भर्ती जो है वो एग्जीक्यूट करती है।
1: माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव मैं कह सकती हूँ, और आपका रोल उसमें वाकई काबिले तारीफ माशाल्लाह। अच्छा, आपको एक कम्युनिटी लीडर के तौर पर लोग जानते हैं, बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन आप खुद लीडरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे?
2: नाजिया, मेरे नज़दीक जो है वो लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आगे चलना है, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना है। एक अच्छा लीडर वो होता है नाजिया जो सुनता है, सीखता है और अपनी टीम को इम्पावर करता है। असल क़यादत जो है वो खिदमत से, सर्विस से शुरू होती है। और मैंने क्योंकि मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव कमेटीज के साथ काम किया है, हर साल हम लीडरशिप जो है वो डेवलप करते हैं, वो मतलब हर साल एक नई कमेटी फॉर्म होती है, उसमें नए लीडर

0: कम ही सुनने को मिलती है. बट थैंक यू फॉर दैट. अच्छा, अक्सर लोग जो है वो लीडर्स की बात करते हैं. जैसे ही लीडर की बात होती है, इट रिमाइंड्स अस ऑफ स्पॉटलाइट, कैप, पावर, पोजीशन, एवरीथिंग. लेकिन आपके बारे में ये है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं. तो कम्युनिटी के लिए काम करते हुए सबसे अहम लेसन अब तक का आपने क्या सीखा?
1: नाज़िया, कम्युनिटी वर्क में जो है ना, सबसे अहम सबक जो मैंने सीखा है वो ये है कि छोटे छोटे काम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं. मतलब कंसिस्टेंसी, सिंसेरिटी, और ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, ना कि सिर्फ बड़े बड़े दावे जो है वो किए जाए. हमने सबसे पहले यहाँ पे नाज़िया, हमने घरों से डिश बना के और हमने फूड फेस्टिवल का आगाज किया था सबसे पहले.
0: अच्छा।
1: और उसके बाद फिर वही फेस्टिवल जो है वो मैंगो फेस्टिवल में कन्वर्ट हो गया. और आप यूं समझे कि कतर का पहला मैंगो फेस्टिवल जो है वो सोनी धरती ने किया. इससे पहले कतर में मैंगो फेस्टिवल नहीं होता था.
0: अब तो खैर बड़े स्केल पे
1: एम्बेसी लेवल पे, अब तो एम्बेसी लेवल पे चला गया. हमने 30 बॉक्स से फेस्टिवल शुरू किया था और उसके बाद हम तकरीबन जो है वो 3,000 के ऊपर जो है वो एक दिन में बॉक्स जो है वो आते थे. मतलब पाकिस्तान से फ्रेश मैंगो आता था और फ्रेश मैंगो जो है वो फ्राइडे को पहुंचता था. फ्राइडे को आफ्टर फ्राइडे हम ओपन करते थे फेस्टिवल और 8 बजे लोग जो है वो खाली जाते थे. तो इस तरह से जो है मैंगो इंट्रोड्यूस यहाँ पे हमने किया. तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम हमने किए थे जो आज माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़े नजर आते हैं. इसके बाद हमने फिर मैंडरिन फेस्टिवल शुरू किया, जो अभी आपने गुज़िश्ता दिनों देखा कि ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो बहुत बड़े ऑरेंज फेस्टिवल हुए. कम्युनिटी में हमने पहला पाकिस्तानी लेवल पर हमने फेस्टिवल शुरू किया था. इस वक्त जो है आप यूं देख लें कि 70 से ज्यादा कम्युनिटी है जो कि फेस्टिवल में इन्वॉल्व होती है. तो ये जो छोटे छोटे काम है ये बड़ी तब्दीलियां लेकर आते हैं.
0: बहुत सही काम, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है. और असल काम ही आपकी असल पहचान होता है. जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे काम ही जो है वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. बहुत ही वैल्यूएबल लेसन, बहुत ही वैल्यूएबल.
2: हर सफर की कहानी अलग है और हर कामयाबी का राज अलग है, लेकिन जब लोग पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. इस शो में हम आपको मिलवाएंगे उन प्रोफेशनल से जो अपनी मेहनत, चैलेंजेस और इंस्पिरेशन के जरिए दुनिया को बेहतर बना रहे हैं. हर इंटरव्यू एक नई सोच, एक नई मोटिवेशन को लेकर आए. आपको मिलेंगे वो इंसाइट्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे. हर कहानी एक लेसन है और हर गेस्ट एक इंस्पिरेशन.
0: अच्छा, अब आपकी शायरी पोइट्री की तरफ आते हैं. आपकी जो शायरी है बहुत गहरी है और जज्बात से भरी होती है. तो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपके लिए जो शायरी है, जो पोइट्री है, वो किस तरह से थेरेपी का काम करती है?
1: नाज़िया, मेरे लिए शायरी जो है वो दरअसल अपने जज्बात का इजहार है. मेरा एक शेर भी है कि ये जो लफ्जों को तरतीब अता ना होती, हम तो मर जाते अगर शेर न कहते अंदर.
0: वाह.
1: तो ये जो शायरी है ये मुझे अपने अंदर के ख्यालात को समझने और उनको दूसरों तक पहुंचाने में बहुत मदद. मतलब कभी कभी जो बात हम नसरी लहजे में नहीं कह सकते वो हम शायरी के जरिए आसानी से कह सकते. वो बात शायरी के जरिए आसानी से बयान हो जाती. तो वैसे तो मैं नसर का आदमी हूँ, नसर ही लिखता था, लेकिन जो है वो शायरी में मुझे इजहार करना ज्यादा आसान लगा. तो इसलिए जो है वो शायरी को मैं अपने जज्बात का इजहार करता.
0: बहुत ही अच्छा. अच्छा, कभी ऐसा पल आया जब आपकी शायरी किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आई? कोई ऐसी कहानी जो इंस्पायरिंग हो और आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें?
1: जी हाँ, कई दफा लोगों ने बताया कि मेरी शायरी ने उन्हें जो है मुश्किल वक्त में बड़ा हौसला दिया है. ये मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है कि मेरे अल्फाज जो हैं वो किसी के लिए

0: उम्मीद बन जाए। तो अक्सर लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि आपके अशआर में ऐसा लगता है कि आप हमारे दर्द की अक्कासी कर रहे हैं। और फिर दूसरा नाजिया, मैं अपनी मादरी जुबान में भी शायरी करता हूँ क्योंकि मेरी मादरी जुबान हरियाणवी है और मैं हरियाणवी जुबान में शायरी करता हूँ, तो जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। उनके बहुत से पुराने अल्फाज जो उनकी माँ बोलती थी, जो उनके वालदैन बोलते थे, जो उनके आबाओ अजदाद बोलते थे, जब वो उन अल्फाज को शायरी के अंदाज में सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं।
1: क्या बात है, क्योंकि अब आपने जिक्र कर ही दिया है तो मैं चाहूँगी कि हरियाणवी में जैसे आपने कहा खुशी मिलती है, तो इसी जबान में हमारी लिसनर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
0: जी बिल्कुल, देखिए कि जिद ठाडे से यारी हो जाए, ठाडे कहते हैं ताकतवर को, कि जिद ठाडे से यारी हो जाए, हड़का आपे भारी हो जाए, हर वक्त बिगड़ जाए जिद मानस का, वक्त बिगड़ जाए जिद मानस का, डींग भरण भी भारी हो जाए, अर भाई रड़के जे ना चाखे। ये तफाक व इत्तेहाद पे शेर है कि भाई रड़के जे ना चाखे, घर की खांड भी खारी हो जाए। मतलब अगर भाई मिलके जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद से ना रहे तो जो घर की जो चीनी मीठी होती है ना वो भी खारी लगने
1: लगती है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी कल्चर की, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से यहाँ कतर में हैं मुकीम, तो कतर में रहकर आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप पाकिस्तानी कल्चर और आइडेंटिटी को जिंदा रख पा रहे हैं?
0: नाजिर देखें, हम अपनी जुबान रिवायात और त्योहारों के जरिए जो है वो अपनी शिनाख्त को जिंदा रखते हैं, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, मतलब वही दरख्त जो है वो मजबूत और सायदार होते हैं जो अपनी जड़ों के साथ बड़ा मजबूत ताल्लुक रखते हैं, जो अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहते हैं। वरना अगर जड़ें मजबूत ना हो तो आपको पता है कि हवाओं के थपेड़े जो है ना वो उखाड़ देते हैं। तो इसलिए अपनी रिवायात से, अपनी जुबान से, अपनी शनाख्त से हमेशा इंसान को जुड़े रहना।
1: अच्छा, यंग जनरेशन की हम बात करें तो यंग जनरेशन को लाइफ के रियल पर्पस के बारे में आप क्या प्रैक्टिकल मशवरा देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरा मशवरा जो है वो ये है कि अपने मकसद को तलाश करें, और जो हम जल्दी कामयाबी के पीछे भागते हैं ना, वो हम जल्दी कामयाबी के पीछे ना भागें, बल्कि कंसिस्टेंसी लर्निंग पर फोकस करें, अपनी स्किल डेवलप करें। सीक्रेट ये है कि हमेशा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, यही मेरा मशवरा है।
1: बहुत ही अच्छा मशवरा दिया। अच्छा, यहाँ पर आज के दौर में अगर हम देखें तो हम सबकी लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है, ऐसे में आपके ख्याल में कम्युनिटी के लिए वक्त निकालना क्यों जरूरी हो जाता है?
0: नाजिया देखें, कम्युनिटी जो है ना वो आप यूं समझ लें कि एक इकाई है, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, और वक्त में जो है ना वो अल्लाह ताला बरकत देता है। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि हमेशा कहते हैं कि हमें जो है ना वक्त नहीं मिलता, तो मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ कि देखें, वक्त में बरकत अल्लाह ताला देता है। आप एक दफा नियत कीजिए, आपका जो है सिंसेरिटी, आपका मिशन क्लियर होना चाहिए, फिर देखें कि अल्लाह ताला आपके वक्त में कैसे बरकत देता है। आप कम्युनिटी के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, और कम्युनिटी के साथ कनेक्शन जो है ना वो बहुत जरूरी है ताकि आपको एक दूसरे के हाल अहवाल पता चलते हैं, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इंसान नाजिया इंसान से सीखता है। इस तरह से आपकी लर्निंग होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे आगे बढ़ने की। लेकिन बात वही है कि मुस्बत सोच होनी चाहिए।
1: अच्छा, एक चीज और मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगी, आप शायर हैं, राइटर हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, इन रोल्स को आप आपस में किस तरह से कनेक्टेड देखते हैं, और क्या शायरी ने कभी भी आपकी लीडरशिप को इन्फ्लुएंस किया किसी वे में?
0: देखिए, शायरी क्योंकि इजहार का जरिया है, यूँ समझ लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग टूल भी है कम्युनिकेशन का और लोगों के दिलों तक पहुंचने का। तो मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो मेरी शायरी है उसने आसान बना दिया है लोगों तक पहुंचना। मेरे अल्फाज, मेरी सोच, मेरी बातें बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाती है। मैं समझता हूँ शायरी ने मुझे बहुत सहारा दिया है इस कम्युनिटी सर्विस में कि लोग जो है वो मुझे शायर भी समझते हैं, सोशल वर्कर भी समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे अच्छा है कि लोग मुझे अपना समझते हैं।
1: बहुत प्यारी बात,
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बहुत बड़ी बात है वाकई, लोग आपको अपना समझते हैं और उसके लिए भी आप जो हैं जिस अपनाइयत के साथ, आई एम श्योर जो कनेक्शन आपने बनाया है कम्युनिटी और लोगों के बीच, वो वाकई एक अलग ही लेवल का, उसको टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही ये कनेक्शन डेवलप हो जाए। अच्छा, इसी कनेक्शन के हवाले से अगर मान लेते हैं कि कोई नया बंदा है वो कम्युनिटी वर्क शुरू करना चाहता है, तो आप उसे सबसे पहला कदम क्या लेने का एडवाइस देना चाहेंगे या क्या मशवरा देंगे उसे?
0: देखिए, कम्युनिटी सर्विस जो है ना नाजिया, ये एक आप यूँ समझ लें कि बड़ा मुखलिसाना काम है। इसके लिए आपकी सिंसेरिटी, आपकी जो है ना लगन, वो बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ लोग कहते हैं ना कि वो आपकी राह में दीवार नहीं बन सकते, वो स्पीड ब्रेकर जरूर होते हैं कि आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएंगे, आप अपनी स्पीड को स्लो कीजिए, आराम से उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कीजिए और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ सफर फिर शुरू कर दीजिए।
1: सही।
0: अक्सर लोग हौसला हार जाते हैं। आपकी जो सोच है, विजन है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जज्बे सादिक होना तो फिर मंजिलें बहुत आसान हो जाए। मैं तो बल्कि मेरे एक उस्ताद ने मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा जब सोया करो ना तो सोते हुए दुआ किया। अल्लामा शिबली साहब होते थे, हमारे इस्लामियात के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे ये बेटों की तरह से नसीहत की कि जब सो तो ये दुआ करो कि या अल्लाह ताला मुझे सोने से जो एनर्जी हासिल होगी, जो तवानाई हासिल होगी, वो मैं इस मखलूक की भलाई के लिए तर्क करूँगा। मैं हमेशा ये दुआ करके सोता हूँ और अल्लाह ताला से मेरी मदद करता है।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज और मुझे बताइए, क्या आपकी बातों से जो मुझे महसूस हुआ, क्या कम्युनिटी सर्विस एक जज्बा है या आपको लगता है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है?
0: ये जज्बा भी है और जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और जिम्मेदारी इसलिए है कि आप एक ऐसे मिशन पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग आपको देख के फॉलो करते हैं, आप उनके लिए एग्जाम्पल होने चाहिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने अपने इलाके की सफाई रखनी है और मैं खुद जो है वो बोतल भी नहीं उठाता हूँ, मैं पार्क में जाता हूँ तो रैपर पड़े हुए हैं, मैं उसको क्रॉस करके चला जाता हूँ और फिर मैं कहूँ कि मैं कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूँ कि पार्कों को साफ रखना चाहिए। तो जो कम्युनिटी सर्विस है इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ता है और ये आपको मुखलिसाना जो है काम है, इसके अंदर जो रिवार्ड है वो आपको लोग नहीं देते, वो अल्लाह ताला जो है उसका सिला आपको देता है। मैं बच्चों की जो बात कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था कि बच्चे जो है ये

0: शायद वही मेरी असल पहचान हो।
1: बहुत ही खूबसूरत सोच, और इंसान अपने अमल से ही जिंदा रहता है जैसे आपने कहा, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी और इतनी इंस्पायरिंग बातें आपने हमारी ऑडियंस, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर इनसाइट्स।
0: नाज़िया बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया और अपने लिसनर्स के साथ बात करने का मौका दिया।
1: थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं तो यही कह सकती हूँ कि आज की बातचीत से हमें और आपको ये सीखने को मिला कि असली कामयाबी सिर्फ अपनी जिंदगी बनाने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने में है। जैसे आज हमारे गेस्ट, उन्होंने बताया, हमें इंस्पायर किया कि हम भी अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे, किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो सोचिए, आसपास के लोगों को देखिए, शुरुआत आसपास से कीजिए। हो सकता है ये शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी हो, लेकिन झिझके नहीं, छोटी सी शुरुआत। जैसे कहा हमारे गेस्ट ने कि कई बार छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? छोटे से स्टेप से। तो वो छोटा सा स्टेप लेने के लिए आप रिलक्टेंट ना हो, वो स्टेप लीजिए और यकीनन आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे एंड यू विल सी कि आपकी पूरी टीम तैयार हो जाएगी। बस फिलहाल इसी पॉजिटिव नोट पे मैं आपसे इजाजत लूंगी इस वादे के साथ कि नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, और वो कहते हैं ना कि जब हम साथ होकर मिलकर बैठकर आगे सोचते हैं कुछ पॉजिटिव करने की, तभी हम पूरी तरह से थ्राइव करते हैं। इसी नोट पर आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

वालेकुम FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लेकर आई हूँ आपके लिए कतर 2026 का ब्रांड न्यू एपिसोड. तो जनाब ये काफी ग्लोरियस मे आफ्टरनून है और मुझे लगता है कि जो ये मे का कैलेंडर है ना, लाइक इवेंट्स का हैपनिंग का कैलेंडर, उफ बड़ा कमाल का होने वाला है. टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है और ये गर्म हवा भी हमें महसूस हो रही है. उफ वल्दुआ की स्काई लाइन हमेशा की तरह डायमंड की तरह चमक रही है और माहौल बिल्कुल कमाल का हो रहा है. बस आप और मैं और हमारा ये खूबसूरत सा मुल्क, हमारा कतर. Well, today we are going on a journey across the city. हाँ, फिर चाहे हम cruising down कर रहे हो Lucelle Expressway पर, या फिर हम कहीं लंबी drive पर निकल चुके हैं अलखोर की, या फिर मुशर्रफ के किसी शानदार कैफे में कॉफी पी रहे हैं, करक पी रहे हैं, enjoy कर रहे हैं अपने हर एक moment को कतर के. और इस पर

आता है जब हमको पता चलता है कि हमारे कतर में क्या खास हो रहा है। पहले जो मई का महीना है ना, ये हमारे कतर में हमेशा ट्रांजिशन का वक्त होता है। इट्स दैट स्वीट स्पॉट बिफोर द पीक समर हिट्स। हाँ जी, तो सिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट एनर्जी से बज कर रही होती है और मौसम चेंज हो रहा होता है, लेकिन हमारा दिल जो है ना, वो हमेशा की तरह वैसा ही मजेदार है, एंटरटेनिंग है, और उसे और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप सही जगह पर आ गए। कदर 2026 का ये ब्रांड न्यू एपिसोड इस हफ्ते का बिल्कुल आपके उस एंटरटेनमेंट वाली जो वाइब है ना, वो जो फील है, वो जो क्रेविंग है, उसको पूरा कर देगा। पर आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे क्लासिकल म्यूजिक का मैजिक, वेल दोहा का एक्सप्लोडिंग आर्ट सीन, और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कमाल के सीक्रेट्स जो शायद आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं। वेल, हमारे पास आज फुल पैक कैलेंडर है, तो इस पर हम थोड़ी सी एक नजर मारते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को लूज कीजिए और रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी। चलिए जनाब, शुरुआत कर दी जाए एक काम, एकदम सूदिंग, एक एलिगेंस के साथ। यस, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, हमें थोड़ा सा सोल फूड चाहिए ही होता है। मतलब एक तो हमें फूड यानी कि एक तरह तो हमें खाना चाहिए होता है जो कि हमारी सिर्फ जुबान के लिए होता है, फिर दूसरा हमारे पेट के लिए होता है, और तीसरा हमारे खुद के लिए होता है जो कि हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, हमारे माइंड को एकदम से तेजी से दौड़ा देता है और दिल में एक सुकून भी पैदा करता है। So, we'll talk about the soul food. तो जनाब, मई के महीने की शुरुआत करते हैं एक सॉफ्ट फ्लिकर के साथ, जहां पर ढेर सारी नहीं मतलब कहीं हजारों की मात्रा में या हजारों की तादाद में फ्लेम्स होने वाली हैं। Yes, this week होने वाला है the candlelight concert series। हाँ जी, इसने वापसी की है हमारे कतर में। एंड इमेजिन कीजिए कि एक सीक्रेट इंडोर लोकेशन हो, यूजुअली एक बड़ा सा बॉल रूम हो, एकदम स्टनिंग म्यूजियम का कोई कोर्टयार्ड हो, और फिर वहां पर कोई भी एलईडी स्क्रीन ना हो, कोई फ्लैशी स्टेज लाइट ना हो, यहाँ तक कि वहां पर आपका खुद का फोन, मोबाइल फोन ले जाना भी अलाउड ना हो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बड़ी उमदा होती है। बस आप होंगे और हजारों की तादाद में होंगी कैंडल्स और उनकी वो हल्की हल्की रोशनी। वेल, इस बार ये एक हैवी वेट बैटल है मास्टर्स की, एंड दोज मास्टर्स आर मोजार्ट वर्सेस चोपिन। वेल, मैंने लास्ट ईयर एक चोपिन का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, एंड ऑनेस्टली इट फील्स लाइक टाइम हैज स्टॉप्ड। हाँ, जब वो पियानो की धुन शुरू होती है ना, तो आप बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया में ऐसे पहुंच जाते हो, एक अलग सी ट्रांजिशन हो जाती है। यस, इट फील्स लाइक यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड वो 19th सेंचुरी के यूरोप में। हाँ जी, और वैसे आपको पता है कि मोजार्ट ने, जो कि बड़े ही फेमस कलाकार रहे हैं, उन्होंने अपनी पहली सिम्फनी कब लिखी थी? जब वो सिर्फ 8 साल के थे। हाँ जी, ये सब म्यूजिक के मास्टर्स हैं। And imagine, हम 8 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे अपने खिलौनों से, अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रहे थे, घूम फिर रहे थे, लेकिन 8 साल में मोजार्ट ने अपनी पहली सिम्फनी लिखी थी। और उसके बाद हम दूसरे मास्टर चोपिन की अगर बात करें, तो उन्हें पोएट ऑफ द पियानो कहा जाता है। हाँ, उन्हें बड़े ऑर्केस्ट्रास बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़े बड़े मतलब भीड़ उनको ज्यादा पसंद नहीं थी, पर वो हमेशा चाहते थे कि एक इंटीमेट या इंटीमेसी के साथ कॉन्सर्ट हो, और वही इंटीमेसी हम उनके म्यूजिक और उनके कॉन्सर्ट्स में महसूस करते हैं। यस, एंड ये कैंडल लाइट सीरीज जो होने वाली है हमारे कतर में, कैंडल लाइट कॉन्सर्ट सीरीज, ये आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसके जो स्लॉट्स होते हैं ना, ये बड़े कमाल के होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको अपनी टिकट जो है ना, वो पहले ही ऑनलाइन जाके बुक करनी होती है, क्योंकि इनके टिकट जो होते हैं ना, हॉट केक्स की तरह बिक जाते हैं। और जब भी आप इस कॉन्सर्ट में जाएं, सो मेक श्योर करें कि 45 मिनट्स अर्ली जाएं, ताकि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है, उसमें आपको ना किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और आराम से आप जाके अपनी सीट पर बिल्कुल स्टेज के सामने बैठ सके। और हमारी लेडीज के लिए एक
छोटी सी टिप है। देखिए जनाब, हमारा जो कतर है ना, उसके जो वेन्यूज हैं और वहाँ के जो एसीज हैं, हमेशा हमको ना आर्कटिक मोड पर ले जाते हैं मतलब बहुत ठंड होती है। सो कैरी अ लाइट पश्मीना और अ शॉल और फिर जाके आप मोजार्ट की सोनाटा तभी इंजॉय कर पाएंगे और फुल ऑन एंटरटेन हो पाएंगे। सो डोंट मिस क्या द कैंडल लाइट कॉन्सर्ट सीरीज, जो कि इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। और इसके बाद क्या है, चलिए जान लेते हैं। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अमिता, म्यूजियम्स तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही वहाँ पे नॉलेज हो जाता है, ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ पता चल गई है वेल, मैं आपको कहूंगी कि वहाँ सिर्फ पुरानी चीजें नहीं होती हैं। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो लेट मी चेंज योर माइंड राइट नाउ। मई जो है वो ऑफिशियली 8 मंथ है हमारे कतर का, और दोहा का आर्ट सीन 2026 में कोई पुराना किस्सा नहीं है जनाब। इट इज वाइब्रेंट, इट इज डिजिटल एंड इट इज वेरी वेरी क्यूट एंड इट इज वेरी वेरी वाइब्रेंट। वेल, आज मैं आपको दो ऐसी जगहों पर ले चलूंगी जो आपके सोशल मीडिया फीड्स को एक अलग अलग लुक देगा और आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगा। यस, तो हमारा पहला स्टॉप है कटारा कल्चरल विलेज। सोचिए कटारा की वो कॉबल स्टोन स्ट्रीट्स, वो ब्लू टाइल्ड वाले वॉल्स और समुन्दर की ठंडी हवा। पर इस बार वहाँ कुछ अलग है। अलग क्या है? कटारा इज होस्टिंग द कंटेम्पररी ग्राफिक आर्ट एग्जीबिशन। वैसे ग्राफिक आर्ट क्या है? ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है जनाब, ये वो आर्ट है जो पोस्टर्स, डिजिटल स्क्रीन्स और बोल्ड टाइपोग्राफी से निकल कर आता है। एंड मिडल ईस्ट में इसका एक एक्सप्लोजन हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे आर्ट वर्क की जिसमें अरबिक कैलीग्राफी के नियॉन लाइट्स के साथ अरबिक कैलीग्राफी को मिक्स किया गया है। इट्स वेयर द स्ट्रीट मीट्स द गैलरी। वेल, मैं कल वहां से गुजरी थी और मैंने एक

करक लीजिए और कटारा की गलियों में घूमिए और इस मॉडर्न रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। ये एग्जीबिशन हमें बताता है कि कलर सिर्फ अपनी हिस्ट्री की इज्जत नहीं करता बल्कि फ्यूचर को एम्ब्रेस करना भी जानता है। अब चलिए थोड़ा वेस्ट की तरफ चलते हैं, एजुकेशन सिटी के हार्ट में। वहां पर हमें मिलेगा मताफ। व्हाट इज मताफ? इट्स एन अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। अगर आपने मताफ अभी तक नहीं देखा तो आपने दोहा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बड़ी वाइब मिस कर दी है। वेल, इनका नया शो है रेजोल्यूशंस इवॉल्विंग रियलिटीज। टाइटल थोड़ा सा हैवी लग रहा है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल और डीप है। ये एग्जीबिशन दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, एआई और क्लाइमेट चेंज हमारी डेली लाइफ को रिजॉल्व यानी बदल रहा है। वहाँ कुछ ऐसे इमर्सिव रूम्स हैं जहाँ आप जब खड़े होंगे ना तो लाइट्स और साउंड्स आपके मूवमेंट्स के साथ एकदम से चेंज होते रहेंगे। इट्स लाइक बीइंग इनसाइड अ मूवी। और ये इतना प्रोवोकेटिव, इतना डीप और इतना कमाल का है कि आपके सोशल मीडिया के लिए ये परफेक्ट है। पर आपका हर एंगल एक मास्टरपीस लगेगा। पर जनाब, सिर्फ फोटो मत खींचिएगा, उस आर्ट के पीछे की स्टोरी को भी ना फील कीजिएगा। वो हमें बता रही है कि 2026 में हम कहाँ खड़े होंगे। वैसे अगर आप मताफ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ, क्योंकि जब आप उस तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप ट्रैफिक में फंस जाएं। तो क्या करना है, इंस्टेड यूज द मताफ बस। ये एक फ्री शटल सर्विस है जो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और मताफ को कनेक्ट करती है। इमेजिन आप MIA के हेरिटेज से शुरू करते हैं, बस में बैठते हैं और पूरे शहर का एक मिनी टूर लेते हुए एजुकेशन सिटी पहुँचते हैं। ये बस राइड अपने आप में ना एक एक्सपीरियंस है जनाब, सो डोंट मिस इट अगर आपने ट्राई नहीं किया है। प्लस बजट फ्रेंडली भी है। वैसे आपको पता है कि मताफ की बिल्डिंग जो है वो हमेशा से म्यूजियम नहीं थी? कितने लोगों को पता है? जिनको नहीं पता है, चलिए मैं बताती हूँ। ये बिल्डिंग पहले एक स्कूल थी। आर्किटेक्ट जॉन फ्रांसवा बोरन ने इस पुराने स्कूल बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म किया, इसे एक स्टनिंग मिनिमलिस्ट स्पेस बनाया। हाँ, तो जब आप वहाँ वॉक करते हैं ना तो सोचिए वहां पर एकदम आसपास की चीजों को देखते हुए कि यहाँ पर पहले कोई स्कूल होता था, बच्चे पढ़ा करते थे और आज हम कमाल की जगह पे खड़े हैं जहाँ दुनिया भर का मॉडर्न आर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये मॉडर्न आर्ट यहाँ हमारी आंखों के सामने चमक रहा है। वैसे जनाब, एक आखिरी सीक्रेट तो मैं आपसे शेयर करना भूल ही गई। जब आप मताफ एग्जीबिशन रेजोल्यूशंस देखकर निकलेंगे ना तो उनके गिफ्ट शॉप को इग्नोर मत कीजिएगा। अक्सर हम गिफ्ट शॉप्स को महंगा समझकर ना छोड़ देते हैं, पर यहाँ लोकल कतरी डिजाइनर्स के लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स मिल रहे होंगे। मैंने वहाँ कुछ ऐसे स्टिकर्स और स्मॉल प्रिंट्स देखे हैं जो शायद 2030 तक कलेक्टर्स आइटम बन जाएंगे। इट्स अ ग्रेट वे टू सपोर्ट आवर लोकल आर्टिस्ट। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि चाहे आप मोजार्ट की धुनों में खोना चाहते हैं जो हमने पहली बात की थी, या मताफ में फ्यूचर को टच करना चाहते हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। सो डू नॉट मिस इट। कतर 2026। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कतर इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट इज द स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो या फॉर्मूला 1, यहाँ की मिट्टी में स्पोर्ट्स ना बिल्कुल बसता है, इनफैक्ट लोगों के दिलों में भी। पर जनाब, कभी आपने सोचा कि जब एक एथलीट पोडियम पर खड़ा होता है और उसके गले में वो चमकता हुआ गोल्ड मेडल डाला जाता है तो वो फील कैसा होता होगा, उसे क्या लगता होगा? व्हाट डज इट फील लाइक टू होल्ड अ पीस ऑफ हिस्ट्री? हमने मेडल्स को टीवी पर देखा है, एथलीट्स को उन्हें चूमते हुए देखा है, बट द डिजाइन, द वेट, और वो कहते हैं ना कि सोल बिहाइंड दैट मेडल, उफ, वो एक अलग ही कहानी है। हाँ, और वही कहानी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम लेकर आ रहे हैं एक अमेजिंग इवेंट, द गोल्डन मेडल डिजाइन वर्कशॉप। तो पहले बात करते हैं वेन्यू की। अगर आप 3-2-1 म्यूजियम गए हैं तो आपको पता ही होगा, इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस। और ये म्यूजियम हमें स्पोर्ट्स की जर्नी दिखाता है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न एरा। और अब ये म्यूजियम सिर्फ देखने के लिए नहीं रहा, हाँ, इट्स गेटिंग हैंड्स ऑन।
ये वर्कशॉप द गोल्डन मेडल डिजाइन वर्कशॉप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. नो बॉस, दिस इज फॉर द डिजाइनर्स, द स्पोर्ट फैंस, द ड्रीमर्स एंड द क्रिएटर्स. अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है ना, या आप स्पोर्ट्स हिस्ट्री के फैन हैं, तो ये 15th May 2026 आपके कैलेंडर में ना मार्क हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ सुनेंगे नहीं लेकिन आप क्रिएट करेंगे. चलो थोड़ी खास बातों पर बातें कर लेते हैं कि आपको क्या ये पता था कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड का नहीं होता. क्या पता है? चले बताती हूँ मैं. एक्चुअली थोड़ा सा जो ये सच्चाई है ना, वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है. जो स्पोर्ट फैंस हैं उनको शायद थोड़ा बहुत पता, और जिनको नहीं पता है मैं बताने वाली हूँ कि जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है वो एक्चुअली सिल्वर का बना होता है. हाँ, उसमें सिर्फ 6 ग्राम प्योर गोल्ड होता है, बाकी का पोर्शन हाई क्वालिटी सिल्वर से बनाया गया होता है. इस वर्कशॉप में आपको यही मेटलर्जी सिखाई जाएगी, मेटल्स का मिक्सचर, उनकी ड्यूरेबिलिटी और वो शाइन कैसे आती है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है. लेकिन ये सिर्फ उस मेटल के बारे में नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट द सिम्बोलिज्म. हर होस्ट सिटी अपने मेडल में अपने कल्चर, अपनी पहचान डालती है. टोक्यो ने रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से मेडल्स बनाए, पेरिस ने आइफल टावर का लोहा यूज किया. तो सोचिए अगर दोहा एक दोहा गेम्स होस्ट करेगा तो उसके मेडल में क्या होगा? पर्ल्स, ड्यून्स, स्काईलाइंस या हमारा ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी? वेल, वर्कशॉप में आपको यही मौका मिलेगा टू डिजाइन योर ओन कॉन्सेप्ट फॉर अ फ्यूचर दोहा गेम्स मेडल. इमेजिन कीजिए आप वहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट डिजाइनर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके हाथ में स्केचेस हैं, टूल्स हैं, और आपका दिमाग आइडियाज से बिल्कुल मतलब भरा हुआ है. आइडियाज आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं, रश हो रहा है. वेल, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक छोटे से राउंड पीस ऑफ मेटल में एक पूरे देश की उम्मीद और गर्व, जिसे हम प्राइड कहते हैं, उसे समेटा जाता है. This is where art meets sport. अब पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? It is free. Yes. Registration बिल्कुल मुफ्त है. आपको बस अपना पैशन और अपनी

0: अंत में शाम 4 से 6 बजे तक दो घंटे जो शायद आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा. वेल जब आप अपने मेडल डिजाइन कर लें, उसे फाइनलाइज कर लें और वो जो क्रिएटिव एनर्जी है ना वो थोड़ा सेटल हो जाए तो सीधे जाइए 321 कैफे में. हाँ, ये कोई आम कैफे नहीं है. इसका मेन्यू मिशलन स्टार शेफ्स ने डिजाइन किया है. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हेल्दी बट इंडल्जेंट. यस, मतलब खाना टेस्टी भी होगा और आपकी फिटनेस के लिए बिल्कुल बढ़िया होगा. वहां एक कॉर्नर पकड़िएगा, ठीक है. एक कप बढ़िया सी कॉफी लीजिएगा और अपने स्केच को फाइनलाइज कीजिएगा और व्यू आपके सामने होगा मैजेस्टिक खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम. सूरज ढल रहा होगा, स्टेडियम की लाइट्स ऑन हो रही होंगी. इट्स द परफेक्ट प्लेस टू फील लाइक अ विनर. तो जनाब, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ सारी डिटेल्स. हमारा ये खासम खास इवेंट है गोल्डन मेडल डिजाइन वर्कशॉप 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में होने वाली है 15th मई को शाम 4 से 6 के दौरान. एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. चाहे आप एक एस्पायरिंग डिजाइनर हो या बस एक क्यूरियस सोल है, ये वर्कशॉप आपको कुछ नया सिखाएगी. हिस्ट्री को टच करने का और फ्यूचर को डिजाइन करने का ये मौका मिस मत कीजिएगा. तो कतर रेडी है, म्यूजियम रेडी है, क्या आप रेडी हैं? तो मैं मिलूंगी आपको वहीं, यू नेवर नो, 321 कैफे में कॉफी के साथ. तब तक के लिए क्या करना है आपको? बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े बड़े ख्वाब संजोने हैं और अपने अंदर के उस चैंपियन को बाहर लेकर आना है जब आप इस वर्कशॉप के लिए जाएंगे. तो अभी बने रहना हमारे साथ कतर 2026 सुनते हुए अपनी अमिता के साथ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026
2: only on FM 107 दिल से देसी.
0: So welcome once again. पिछले सेगमेंट में हमने बात की म्यूजियम की, हिस्ट्री की और गोल्ड मेडल्स की. एंड सच में वो गोल्डन टच बड़ा कमाल का था, है कि नहीं? लेकिन अब वक्त है थोड़े गियर्स बदलने का. इनफ ऑफ बीइंग कल्चर एंड आर्टिस्टिक, अब थोड़ा शोर और थोड़ा स्पीड हो जाए. हम निकल रहे हैं दोहा से नॉर्थ की तरफ, एक ऐसी जगह जो फ्यूचर का फेस है. गैस कर लो कौन सी जगह है? Yes, I'm talking about Lucelle, the city of the future. आपने वो वाइब तो फील की ही होगी जब भी आप Lucelle की रोड्स में या आपकी वो स्काईलाइन देखते हुए या वो एटमॉस्फेयर. आई मीन इट्स रियली नाइस. और वहां जाओ तो ऐसा लगता है कि हम 2026 में नहीं 2050 तक पहुंच गए. बट वहाँ हम सिर्फ बिल्डिंग्स देखने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वहाँ पर अपनी एनर्जी को बूस्ट करने, पंप करने. Lucelle Karting is calling. Yes, जनाब, yes. ट्रैक पर उतरने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं. Lucelle इंटरनेशनल सर्किट कोई मामूली ट्रैक नहीं है बॉस. वैसे आपको पता है कि Lucelle सर्किट पूरे मिडल ईस्ट का पहला ऐसा सर्किट है जिसने MotoGP और फॉर्मूला 1 दोनों को होस्ट किया है. आई मीन जस्ट इमेजिन, उस ट्रैक पर ल्यूइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन और वैलेंटिनो रोसी जैसे लेजेंड्स ने अपने टायर्स के निशान छोड़े हैं. आप वहां अपनी कार चला रहे होंगे. यस, यू आर लिटरली ड्राइविंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लेजेंड्स. हाँ, जब आप वहां कार्टिंग जोन में होते हैं ना, तब आप वही हवा फील कर रहे होते हैं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर F1 ड्राइवर्स फील करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी जनाब, इट्स अ पिलग्रिमेज फॉर स्पीड लवर्स. अब बात कर लेते हैं थोड़ी टाइमिंग्स की. देखो, मई का महीना है ना, तो जाहिर सी बात है अब गर्मियां थोड़ी बढ़ रही हैं, धूप वगैरह भी निकली रहती है. तो अगर हमको कतर की ब्यूटी को इंजॉय करना है, देन आई शुड से अगर आप नाइट कार्टिंग का एक्सपीरियंस लेंगे, दैट्स गोना बी द बेस्ट वन. हाँ, तो नाइट कार्टिंग एट Lucelle एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है. इमेजिन कीजिए, ब्लैक स्काई होगा, मैसिव स्टेडियम की वो जो स्टाइल फ्लड लाइट्स होंगी और वो 1.2 किलोमीटर का एक लंबा ट्रैक चमचमा रहा होगा. और आपको ऐसा एहसास होगा, ऐसा महसूस होगा दैट यू आर एट मिनी ग्रैंड प्री. वो फ्लड लाइट्स के नीचे जब आप स्टीयरिंग पकड़ के आप गाड़ी चला रहे होगे, तो आपको लगेगा कि आप पूरी दुनिया को देख रहे हो और पूरी दुनिया आपको देख रही है. तो जनाब, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल ड्राइवर या फिर आपने पहली बार कार्ट में पैर रखा हो, ये 1.2 किलोमीटर का टेक्निकल मास्टरपीस आपका इम्तिहान लेगा, हर मोड़ एक नई कहानी आपके लिए होगा. वैसे मैंने काफ़ी जो इस तरह के रेसेस पे पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और कुछ टिप्स दी हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे शेयर करूंगी तो बड़ी काम आएगी. यहाँ पर सिर्फ पैडल दबाने से रेस नहीं जीती जाती, मैं तो कहूँगी स्पीड के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर चलो टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो एक सीक्रेट सॉस है. सीक्रेट सॉस क्या है कि ट्रैक पर एक सेक्शन है टर्न 4. यस, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं, वो जल्दी टर्न ले लेते हैं. सो व्हाट आई विल से, डोंट डू दैट. टर्न 4 पर थोड़ा रुकिए, वेट फॉर इट और फिर कॉर्नर को क्लिप कीजिए. हाँ जी, इससे क्या होगा, आप अपनी स्पीड को नेक्स्ट स्ट्रेट स्ट्रेच पर कैरी कर पाएंगे. एंड इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट, नॉट जस्ट फास्ट. और दूसरी चीज, ड्रेस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बट फॉर सेफ्टी पर्पस. हाँ जी, मैंने लुसेल में देखा है कि लोग मस्त स्लाइड से या चप्पल पहनकर आ जाते हैं. बॉस वहां से आपको वापस भेज दिया जाएगा. क्लोज्ड टो शूज आर मस्ट. आपको स्पोर्ट्स शूज पहनने ही पड़ेंगे, वरना आप सिर्फ साइडलाइन से रेस देख पाएंगे. स्टाइल अपनी जगह है, सेफ्टी और रूल्स अपनी जगह है. सो थोड़ा सेफ्टी पर हमें ध्यान देना है. उसके बाद फिजिक्स ऑफ ग्रिप, ये तो आपको पता ही होगा. चलो नहीं पता तो बता देती हूँ. कार्टिंग में स्टेयरिंग को बहुत टाइट मत पकड़िए. रिलैक्स योर शोल्डर्स. यस, जितना आप स्मूथ रहेंगे ना उतनी ही कार्ट तेज चलेगी. तो जनाब, अगर आप टिकट्स वगैरह बुक करने का सोच रहे हैं फॉर द कार्टिंग, रात 9 बजे की ही करें, वही स्लॉट बेस्ट होगा. क्यों? देखो मेरे तरफ से दो रीजन से. पहला तो टेम्परेचर बिल्कुल सेट रहेगा. इस टाइम तक ट्रैक का जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट हो जाता है. टायर्स को जो ग्रिप चाहिए होती है ना वो इसी वक्त बेस्ट मिलती है. एंड ह्यूमिडिटी फैक्टर, कदर में हमें पता ही है कि मई के महीने में गर्मियां बढ़ रही हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ना ट्रिकी हो जाती है. तो अगर रात 9 बजे की बात करें तो उसका लेवल थोड़ा सा ना पीक से हटते हटते हटते इट्स लाइक स्वीट स्पॉट. हाँ, थोड़ा ठीक हो जाता है, पर आपको ठंडक भी मिलेगी और पसीना भी कम आएगा. और हाँ, भूलना नहीं है आपको कि ये बड़ा ही पॉपुलर इवेंट है. सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. हाँ, अपनी टिकट्स वगैरह बुक करें, ऑनलाइन करें, और लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन बनाएं वहां जाकर, ठीक है, और इंजॉय करें उस फ्लडिंग एनर्जी को. तो जनाब, हमने डिजाइन से शुरू किया और स्पीड पर खत्म किया. मतलब 3-2-1 म्यूजियम में मेडल डिजाइन करना है हमको, ठीक है, फिर वहाँ के कैफे में कॉफी एंजॉय करना है, देन लुसेल की तरफ आकर रेस जीतना है. ओ माय माय, लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबी है कि नहीं. इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम कतर में एंजॉय कर सकते हैं खुद के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ. वो क्या है, चले बताते हैं. तो जनाब, आप सभी का वेलकम है फिर से. वैसे जब भी मैं बात करती हूँ कतर के बारे में तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस मिट्टी के नीचे, इन गलियों के पीछे और इन पुराने किलों के अंदर कौन सी कहानियां छुपी हुई है. पर मैं कहूंगी कि कतर से अगर दोबारा प्यार करना है ना तो इनके बारे में जानना और इन जगहों पर जाना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली, क्योंकि कतर एक ब्यूटीफुल बुक की तरह है, एक ऐसी किताब कि अगर आप सिर्फ उसके कवर को देखकर छोड़ दोगे ना तो आपको असली स्टोरी कभी पता नहीं चलेगी बॉस. इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस जर्नी पर चलें, और जहाँ हिस्ट्री एडवेंचर हो और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर आपको फुल एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट मिले, प्लस आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए कमाल के पिक्चर्स वीडियोस मिले, तो मैं कहूँगी ऐसी वाइब वाली जगहों को ना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. हाँ जी, सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट इज सुख वाकिफ, द हार्ट बीट ऑफ दोहा. हाँ, ये टाइमलेस जगह है. मतलब सबसे पहले ना वहां चलेंगे जहां से शुरू होती है सारी कमाल की चीजें. जब भी आप कतर में एंट्री मारते हैं तो सबसे पहले जब कोई किसी से पूछता है कि कहाँ जाना है तो हर कोई ये रेकमेंड करेगा, भाई अब सुख वाकिफ चले जाए. ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है ना वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है. इमेजिन कीजिए, जो बेदुइन लोग थे वो अपने ऊंट पर आते थे, यहाँ सामान खरीदते थे, 100 साल पहले से ये चीज चली आ रही है, और वो अपना माल भी बेचते थे, जैसे कि वूल हुआ, सिल्क हुआ, इसे ट्रेड भी करते थे. तो सोचिए मतलब वो माहौल क्या खूब

खूबसूरत रहा होगा. तो सुक का मतलब है मार्केट और वाकिफ का मतलब है स्टैंडिंग. यस, तो ये नाम क्यों पड़ा, कभी आपने सोचा इसके बारे में? चले आपको बताते हैं.

एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाती हूँ. आई मिस माई होम कंट्री. यस, मुझे लगता है कि ये जो क्रेप है ना, मुझे मेरे मेरी मिट्टी का जो वो एक डिश है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज डोसा. आई रियली लव दैट. उसकी याद दिला देता है. वैसे वहाँ पर जो मिट्टी की खुशबू है, लोकल टेस्ट है, वो जब एक साथ आता है ना, उफ, मज़ा आ जाता है. और उसके बाद मेरी सेकेंड फेवरेट जगह है जहाँ पर आप अकेले भी जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं, एंड फैमिली के लिए तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट प्लेस है, एंड दैट इज कटारा कल्चरल विलेज.

टेक्चर है, उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी पुरानी ओरिएंटल फिल्म में आप आ गए हैं। और ये कतर का सबसे पुराना मैप नेम है, यस, जो 150 AD में था। हाँ, यहाँ जो बड़े बड़े पीजन टावर्स हैं ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है जनाब, पर वो यूज भी होते हैं। इस विलेज को बनाया गया है एज अ मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं। हाँ, जब आप कटारा जाएंगे ना, तब आपको ये भी एक चीज मिलेगी कि जो पीजन ड्रॉपिंग्स होती है, उसके वेस्ट होता है, उसे कलेक्ट किया जाता है फार्म्स के लिए, क्योंकि माना जाता है इट्स अ वर्ल्ड क्लास फर्टिलाइजर। एंड नेचर्स गोल्ड है भाई, गोल्ड है। वेल, सनसेट के वक्त टार्स देखेंगे आप।

पैक करती थी इन पिजन्स को ताकि उनका वेस्ट कलेक्ट किया जा सके और फिर उसे खाद बनाकर इस्तेमाल किया जा सके खेतों में. इतना सस्टेनेबल है कि अगर आप धीरे से भी बोलेंगे ना तो पूरे थिएटर में सुनाई देगा.

0: खूबसूरत आसमान है एंड द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल कि जब आप वहाँ पर पिक्चर्स लेंगे वीडियोस बनाएंगे तो एक अलग वाइब आएगी. और अगर ये सब ना भी करेंगे और वहाँ खड़े रहेंगे सो यू विल फील कि क्या कमाल की जगह है बॉस. तो जनाब आज हमने इतनी सारी जगहों के बारे में बात की, आई एम वेरी सर्टेन कि आप यहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं. प्लस बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें, हैपनिंग्स, इवेंट्स हमारे कतर में हो रही हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया. तो कतर 2026 के इस एपिसोड में इस हफ्ते बस इतना ही. अगले एपिसोड में देखेंगे और क्या क्या खास हो रहा है, कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं और कौन कौन से इवेंट्स और हैपनिंग्स को आप कवर कर सकते हैं, उन्हें इंजॉय कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात होगी. सो डोंट मिस दैट. ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, अपने कैलेंडर की डेट्स को फ्रीज करना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे कैसे अपने दिन को एंजॉय करना है. सो यू मेक योर प्लान्स. और इसके साथ आप हमसे जुड़े रहिए, FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, हर जगह पर वी आर अवेलेबल. और हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 6622107, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी आर्जमिता को भी आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. तो फिलहाल के लिए इंजॉय योर डे, प्लान योर डेज, प्लान योर वीक्स और अपना खूब सारा ख्याल रखें. ठीक है, और अभी क्या करना है, मुझे दीजिए इजाजत. एंड यस, जाने से पहले ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी. कतर 2026.
1: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है. ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है. सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई.

0: पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए। जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
4: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या एआई एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कंपास सीजन टू जहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट। एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
6: उसके लिए तो
5: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
6: वैसे वो तो
5: देखो, इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
6: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे।
1: प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी सोचा है हेल्थ की शुरुआत हॉस्पिटल से नहीं घर से होती है? एग्जैक्टली जिस जगह पर हम दिन की शुरुआत करते हैं, जहां हम थक कर लौटते हैं, जहां हम बिना मास्क के खुद को देख सकते हैं, वहीं से हेल्थ शेप लेना शुरू करती है। वेल, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ स्टार्ट्स एट होम की। घर सिर्फ चार दीवारी का नहीं होता, घर एक फीलिंग होती है और वही फीलिंग आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर डायरेक्ट असर डालती है। वेल सोचिए, सुबह उठते ही अगर घर का माहौल एकदम शांत हो, थोड़ी रोशनी हो, थोड़ा फ्रेश हवा का फ्लो हो, तो दिन ऑटोमेटिकली कितना हल्का लगता है ना। और अगर घर में हमेशा शोर, टेंशन या क्लटर हो, तो बॉडी और माइंड दोनों अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। वेल, हेल्थ स्टार्ट्स एट होम इसका मतलब सिर्फ हेल्दी खाना नहीं होता। हाँ, घर का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर घर का एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्पेस सिर्फ एस्थेटिक लिए नहीं होती है, क्लीन स्पेस आपके माइंड को काम डाउन करती है। जब चीजें अपनी जगह पर होती है, तो दिमाग भी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फील करता है। और घर के अंदर की हवा, फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सब नेचुरल मूड बूस्टर्स होते हैं। कभी कभी सिर्फ खिड़की खोल देना थेरेपी जैसा काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, घर का कॉन्वर्सेशन बहुत मैटर करता है। वेल, घर वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा बोलते भी हैं और सबसे ज्यादा चुप भी रहना पसंद करते हैं। अगर घर में बातचीत ओपन हो, फीलिंग शेयर करना सेफ हो, तो इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग होती है। और अगर सब कुछ दबा के रखा जाए, तो वो स्ट्रेस बनकर बॉडी में उतर जाता है। हेल्थ स्टार्ट्स एट होम का मतलब है छोटी छोटी हैबिट्स, जैसे कि साथ बैठकर खाना, फोन साइड में रखना और सिर्फ एक दूसरे को सुनना। घर वो जगह है जहाँ रूटीन बनती है स्लीप टाइमिंग, ईटिंग हैबिट्स, स्क्रीन टाइमिंग से। इसीलिए जब हम घर पर हेल्थ फ्रेंडली हैबिट्स क्रिएट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ के बाकी एरियाज में भी फ्लो हो जाती है। और हाँ, घर सिर्फ फैमिली के साथ नहीं होता, अगर आप अकेले रहते हो तो भी ये बात उतनी ही ट्रू है। आप अपने घर के केयर टेकर हो, आप डिसाइड करते हो कि वो स्पेस आपको स्ट्रेस देगी या सुकून। वेल, घर ऐसी जगह होनी चाहिए कि ऑफिस के पूरे टाइम के बाद, दोस्तों से मिलने के बाद, आप एक ऐसी जगह आ रहे हो जो सिर्फ आपकी है, जो आपको सुकून दे रही है। एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड गोइंग बैक टू होम। तो आज का एक सिंपल सा थॉट, घर को सिर्फ रहने की जगह मत बनाइए, उसे रिचार्ज जोन बनाइए। क्योंकि जब घर हेल्दी होता है ना, तो आप भी हेल्दी फील करते हो, और जब आप ठीक होते हो तो जिंदगी थोड़ी ज्यादा स्मूथ लगती है। इसलिए याद रखिए, हेल्थ का फाउंडेशन कहीं और नहीं, घर से ही शुरू होता है। एंड योर हेल्थ मैटर।
0: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.

आज हम बात करेंगे एक एक यंग बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान जिनका नाम है समीर मिन्हास। जी हाँ दोस्तों, समीर मिन्हास एक उभरता हुआ नाम है जो आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। स्पोर्ट्स दुनिया नहीं बल्कि क्रिकेट वर्ल्ड में अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन के जरिए समीर ने ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया बल्कि टीम के लिए भी एक की प्लेयर साबित हुआ है। मैदान पर उनकी एनर्जी और फोकस देखने लायक होता है, चाहे वो अटैकिंग प्ले हो या डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। समीर की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी है। यहाँ दोस्तों, हर मैच में वो अपना 100% देता है जो किसी भी यंग एथलीट के लिए एक मिसाल है। कोचेस भी उनकी डेडिकेशन से काफ़ी मुतासिर हैं और उन्हें फ्यूचर का स्टार करार देते हैं। उनका गेम अवेयरनेस और प्रेशर सिचुएशंस में काम रहना उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाता है। देखिए ना, फैंस भी समीर मिन्हास को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अच्छा प्लेयर ही नहीं बल्कि एक हम्बल इंसान भी है। सोशल मीडिया पर भी उनकी फॉलोइंग बढ़ रही है और लोग उनकी जर्नी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। यही वो समीर मिन्हास है जिन्होंने अंडर 19 एशिया कप में धूम मचाया। और अगर समीर इसी तरह मेहनत करता रहा तो वो जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम रोशन कर सकता है, जो कि इन दिनों पाकिस्तान सुपर लीग T20 क्रिकेट में समीर वही दिखा रहा है कि मैं काफ़ी टैलेंटेड हूँ, मुझे मौका दीजिए। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट टीम में वो अपनी जगह बना ले। ये एक ऐसा टैलेंट है दोस्तों जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ आप हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: डियर कस्टमर, आपका बैंक अकाउंट आज रात 12 बजे ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई करें।
4: फोन वाइब्रेट, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है और दिमाग ऐसी सिचुएशन में काम करना बंद कर देता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। ये इस किस्म के फ्रॉड को कहते हैं अकाउंट ब्लॉक थ्रेट स्कैम। स्कैमर्स फेक एसएमएस या व्हाट्सएप भेजता है जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट एटीएम या यूपीआई बंद होने वाला है, साथ में एक लिंक भी होता है बिल्कुल असली जैसा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं, फेक वेबसाइट्स ओपन हो जाती है और आप खुद ब खुद अपनी बैंकिंग डिटेल्स इंटर कर देते हैं। बस फिर डेटा उनको मिल गया है, वो बाकी काम खुद कर लेते हैं। अब कैसे बचें? बैंक कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस पे लिंक भेज के डिटेल्स नहीं मांगता। अकाउंट ब्लॉक का मैसेज अगर आया है, वेरिफिकेशन का प्रेशर बनाया जा रहा है, ये एक स्कैम का सिग्नल है। सो अकाउंट ब्लॉक

0: अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए।
2: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
1: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड। तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ, द स्टूडेंट्स गाइड, एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, हमारे साथ दोपहर 3:30 से, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
3: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं, जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ हर जुमे की शाम 5 से, सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
4: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
5: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
4: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 से RJ नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
6: वैल्यूज आर वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूँ नाजिया आपके साथ, एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं टॉपिक पर, उसका नाम है परसिस्टेंस। देखा जाए तो जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है, कभी कई ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, धूप होती है, कभी आंधी भी आती है, कभी हम बिल्कुल थककर बैठ भी जाते हैं और कभी फिर वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसे लम्हों में जो चीज इंसान को गिर कर फिर खड़ा कर देती है, वो सिर्फ उसका टैलेंट या हौसला या लक नहीं होता, वो होता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है हर मुश्किल के बावजूद कोशिश जारी रखना। जब सब लोग गिव अप कर देते हैं, तब परसिस्टेंस इंसान से कहती है बस एक कदम और बस अपनी मंजिल तक। दोस्तों, अगर परसिस्टेंस के मतलब को मैं समझाऊं तो मैं कह सकती हूं कि परसिस्टेंस का मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, चाहे रास्ते में नाकामी हो, रुकावट हो, तनकीद या देर ही क्यों ना हो। ये एक ऐसी सोच है जिसमें इंसान अपने मकसद से नजर नहीं हटाता। अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो कल फिर कोशिश करते हैं, अगर कल भी ना मिले तो परसों। परसिस्टेंस का मतलब जिद नहीं है बल्कि सब्र के साथ मेहनत है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि परसिस्टेंट इंसान फेल होने से डरता नहीं, वो फेलियर को एंड नहीं बल्कि

लेसन मानता है। हर गलती से कुछ सीख कर वो अपनी स्ट्रैटेजी बेहतर बनाता है, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ता। आज की दुनिया को परसिस्टेंस की जरूरत है। दुनिया की हर बड़ी कामयाबी के बीच परसिस्टेंस होती है। टैलेंट बहुत लोगों के पास है, लेकिन सब तो कामयाब नहीं होते ना, तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग रुक कर फिर चल पड़ते हैं। परसिस्टेंस इंसान को मुश्किल वक्त में हिम्मत देती है, खुद पर यकीन सिखाती है।

होते हैं कामयाबी के, लेकिन लेकिन थक कर पीछे हट जाते हैं। परसिस्टेंस वही कुव्वत है जो कहती है अभी मत रुकना, मंजिल पास है। सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में जो एग्जाम्स में बार बार फेल हो रहा है, अगर वो परसिस्टेंस छोड़ दे तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो हर फेलियर के बाद अपनी गलतियां समझकर मेहनत करे तो एक दिन वो जरूर पास होता है और शायद टॉप भी कर लेता है। या फिर एक अच्छे जॉब सीकर को ही देख लीजिए, हर इंटरव्यू में रिजेक्शंस, ईमेल्स का जवाब नहीं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन जो इंसान परसिस्टेंस रहता है या परसिस्टेंट होता है वो अपना सीवी इम्प्रूव करता रहता है, स्किल्स सीखता है, अप्लाई करता है और एक दिन वो इंसान जॉब हासिल कर लेता है। थॉमस एडिसन का एग्जांपल मुझे याद आता है, किस तरह से उन्होंने जब बल्ब इन्वेंट किया हजारों बार या हजारों मर्तबा नाकामयाब हुए। जब लोग कहते थे कि तुम फेल हो चुके हो, अब छोड़ दो मेहनत, तब उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये पता चला कि काम कैसे करना है। ये परसिस्टेंस ही थी जिसने दुनिया को आज रोशनी दी। हैरी पॉटर जो ऑथर, उनके नॉवल के वो अपने पब्लिकेशंस के लिए लगे हुए थे, उन्हें करोड़ों बार रिजेक्शंस मिले। आपको ये बात पता है? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। हैरी पॉटर के ऑथर को उनके नॉवल के पब्लिशिंग के लिए बार बार रिजेक्ट किया गया। वो सिंगल मदर थी, पैसों की कमी थी, लेकिन उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अगर वो परसिस्टेंस छोड़ देती तो शायद आज दुनिया हैरी पॉटर के जादू से महरूम रह जाती। परसिस्टेंस दोस्तों सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि खुद पर यकीन भी होता है। जब कोई और आप पर यकीन ना करे, तब आप परसिस्टेंस के जरिए आप खुद पर यकीन रखते हैं और ये यकीन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है और एक वक्त आता है जब मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाती। इम्पॉर्टेंटली, परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुन मेहनत करते जाएं। कभी कभी डायरेक्शन बदलने भी पड़ते हैं, अप्रोच चेंज करनी पड़ती है, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल, मकसद वो जिंदा रहना चाहिए। जहां परसिस्टेंस नहीं होती वहां आधी अधूरी कहानियां होती हैं।

जल्दी गिव अप कर देते हैं, वो अपनी असली पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि अक्सर कामयाबी दूर नहीं होती, हम ही थोड़ा सा पहले रुक जाते हैं। तो बस आज जाते जाते आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये समझना बड़ा जरूरी है कि परसिस्टेंस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि रोज का छोटा फैसला है। आज फिर कोशिश करने का फैसला, आज फिर आगे बढ़ने की कोशिश। हर दिन जब आप गिर कर उठते हैं, हर दिन जब आप थक कर फिर खड़े हो जाते हैं, तब आप अपनी कहानी खुद लिख रहे होते हैं। कामयाब लोग और आम लोगों में बस इतना ही फर्क है कि कुछ लोग थक कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग गिव अप नहीं करते। एक परसिस्टेंस जो है वो ऐसी शमा है जो आंधियों में भी जलती रहती है। अगर आप इस शमा को बुझने ना दें तो यकीन मान लीजिए कोई ना कोई मंजिल जरूर आप रोशन कर ही पाएंगे। आज अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लीजिए आप गलत जगह पर नहीं,

0: करीब है। बस एक चीज याद रखिएगा, परसिस्टेंस रखिए, क्योंकि जो रुकता नहीं वही पहुंच जाता है। चलिए मैं भी पहुंच गई टुवर्ड्स द एंड इस वादे के साथ कि एक और नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए आज महविश खान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ FM 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर शो, है ये पल्स ऑफ कुरान और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अभी शो का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलें पल्स ऑफ कुरान का आगाज करते हैं। आज इस शो में जो आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये है सूरह अल तहरीम की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त दिल और मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। इस आयत का बुनियादी मकसद मुसलमानों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जो करना है। यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों को यह समझाना मकसूद था कि ईमान सिर्फ अपनी जात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर घर और खानदान तक जाता है। अगर कोई शख्स खुद नेक हो लेकिन अपने घर वालों की इस्लाह ना करे तो वो मुकम्मल जिम्मेदारी अदा नहीं करता। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो फर्द के साथ साथ खानदान को भी एक मजबूत इखलाकी निजाम में देखता है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ वाज़े फरमाया, हर शख्स अपनी निजात का खुद जिम्मेदार है लेकिन साथ ही अपने घर वालों की इस्लाह भी उस पर लाजिम है। मकसद यह है कि पूरा घर जहन्नुम के अजाब से बच जाए। इस आयत में जहन्नुम की शिद्दत, फरिश्तों की सख्ती और अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल अताअत का जिक्र करके

यहाँ अपने आप को बचाओ पहले कहा गया और फिर अपने घर वालों को। इस तरतीब में भी एक बड़ी हिकमत है कि इंसान किसी और को बचाने से पहले अपनी इसलाह करे, क्योंकि जो शख्स खुद सीधे रास्ते पर नहीं होगा वो दूसरों की रहनुमाई भी सही तरीके से नहीं कर सकेगा। सबसे पहली बात यह है कि इंसान अपनी जात के बारे में जिम्मेदार है। हर शख्स को अपनी जिंदगी के अमाल का हिसाब देना होगा। कोई दूसरा शख्स किसी की जगह कयामत के दिन जवाब नहीं दे सकेगा। अपने आप को बचाने का मतलब यह है कि इंसान अपने अकायद को दुरुस्त रखे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करे, गुनाहों से बचे, हलाल और हराम में फर्क करे, अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाले। ये सब चीजें इंसान की अपनी निजात के लिए जरूरी हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ दूसरों की फिक्र करे लेकिन खुद को नजरअंदाज कर दे तो ये अधूरी जिम्मेदारी होगी। इस्लाम ये नहीं कहता कि इंसान सिर्फ दूसरों को नसीहत करे बल्कि पहले खुद को दुरुस्त करे, क्योंकि अमली मिसाल जबानी नसीहत से ज्यादा असर रखती है। अपने आप को बचाने के बाद दूसरी बड़ी जिम्मेदारी घर वालों की है। घर वाले यहां सिर्फ बीवी और बच्चे नहीं बल्कि पूरा खानदान मुराद हो सकता है। वालदैन, भाई बहन और जो भी करीबी रिश्तेदार इंसान के साथ रहते हैं या उसके जेर असर हैं। घर वालों को बचाने का मतलब यह है कि इंसान उनकी दीनी और अखलाकी तरबियत करे। ये जिम्मेदारी सिर्फ खाना, लिबास या रिहाइश देने तक महदूद नहीं बल्कि असल जिम्मेदारी रूहानी और अखलाकी रहनुमाई है। इंसान को चाहिए कि घर में दीन का माहौल कायम करे, नमाज की आदत डलवाए, सच्चाई और अच्छे अखलाक सिखाए, बुरे कामों से रोके, कुरान की तालीम की तरफ तवज्जो दे। ये सब चीजें घर को एक महफूज और बामकसद माहौल बनाती हैं। इस्लाम में तरबियत सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं है। तरबियत एक मुसलसल अमल है जिसमें मोहब्बत, समझाना, बर्दाश्त करना और मुस्तकिल कोशिश शामिल होती है। अगर कोई शख्स अपने घर वालों को सिर्फ सख्ती से रोके और खुद अच्छे अमाल ना करे तो ये मौसर तरीका नहीं होता। असल तरबियत वो है जो अमल के साथ हो। जब बच्चे या घर वाले देखते हैं कि बड़ा खुद भी नमाज पढ़ता है, सच बोलता है और अच्छे अखलाक रखता है तो वो खुद ब खुद मुतासिर होते हैं। आयत में आग से मुराद जहन्नुम है। ये सिर्फ आम आग नहीं बल्कि वो अजाब है जो आखिरत में होगा। इसका जिक्र इसलिए किया गया है ताकि इंसान को एहसास हो कि ये मामला कितना संजीदा है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ तो इसका मतलब यह है कि आखिरत की फिक्र दुनिया की फिक्र से ज्यादा जरूरी है। सिर्फ दुनियावी कामयाबी काफी नहीं, असल कामयाबी वो है जो आखिरत में निजात दे। ये जुमला इंसान को झंझोड़ता है कि वो अपनी जिंदगी को मामूली ना समझे। इंसान अपने घर में एक असर रखता है। अगर वो अच्छा होगा तो घर भी बेहतर होगा, अगर वो गाफिल होगा तो घर भी मुतासिर होगा। इसीलिए इस्लाम ये समझाता है कि हर इंसान एक जिम्मेदार है। उसका असर सिर्फ उसकी जात तक महदूद नहीं रहता, खास तौर पर वालदेन और बड़े अफराद का असर बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है। अगर बच्चे छोटी उम्र से अच्छाई और बुराई का फर्क सीखें तो बड़ी उम्र में भी उस पर कायम रहते हैं, लेकिन अगर बचपन में ही लापरवाही हो तो बाद में इसलाह मुश्किल हो जाती है। इस आयत में एक बड़ी तंबीह भी पोशीदा है कि अगर इंसान अपने घर वालों की इसलाह ना करे तो वो भी नुकसान में आ सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ खुद नेक होना काफी है, लेकिन इस्लाम ये बताता है कि जिम्मेदारी इससे आगे जाती है। अगर इंसान के घर वाले गलत रास्ते पे हों और वो खामोश रहे तो ये गफलत शुमार हो सकती है। घर वालों की इसलाह का बेहतरीन तरीका मोहब्बत है।

0: साथ चल रहा है। हर चीज अपने मुकर्रा काम पर लगी हुई है और किसी जगह कोई टकराव नहीं। फरिश्ते इस हम आहंग निजाम का हिस्सा है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहा है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। वो जानते हैं कि जो भी हुक्म दिया जा रहा है वो हक और अदल पे मबनी है, इसलिए वो इस पे कोई शक नहीं करते। ये एतमाद इंसान के लिए भी एक सबक है कि उसे अपने रब पर ऐसे ही मुकम्मल यकीन और एतमाद रखना चाहिए। आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला कहते हैं, ये बहुत ही इंसान के दिल को झंझोड़ देने वाला हिस्सा है। पहले जहन्नुम, उसकी आग, उस पे मुकर्रर सख्त और ताकतवर फरिश्ते, ये सब इसलिए बयान किया गया ताकि इंसान को अंदाजा हो कि आखिरत कोई मामूली मामला नहीं है। ये सिर्फ एक नजरी बात नहीं बल्कि हकीकी अंजाम है जिसका हर इंसान को सामना करना है। इसलिए अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ अंदाज में इंसान को मुतवज्जा करते हैं। इंसान अक्सर दुनिया की जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो जाता है कि उसे आखिरत याद नहीं रहती। वो समझता है कि वक्त बहुत है, लेकिन कुरान उसे बार बार याद दिलाता है कि वक्त महदूद है। याद इंसान को गफलत से निकालने के लिए एक सख्त मगर जरूरी याद दहानी है। इस पूरे बयान का असल मकसद इंसान के अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है कि हर इंसान अपने अमाल के लिए जवाबदेह है और उसे अपने और अपने घर वालों की फिक्र करनी चाहिए। इस आयत से वाज़े होता है कि अल्लाह का निज़ाम मुकम्मल, मजबूत और नाकाबिले तब्दील है। वहाँ जज्बात की बिना पर फैसले होंगे और ना ही सिफारिश और ताल्लुकात की बुनियाद पर। हर चीज अदल के मुताबिक होगी और फरिश्ते इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेंगे। क्या आयत इंसान को यह एहसास दिलाती है कि उसकी जिंदगी एक फैसला कुन मरहले से गुजर रही है। हर दिन, हर अमल और हर इंतखाब उसके अंजाम को मुतासिर कर रहा है, इसलिए गफलत में रहना सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। ये तंबी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि इसलाह का मौका भी है। अल्लाह ताला इंसान को बता रहा है कि अभी वक्त है, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को बेहतर बना लो और अपने घर वालों की भी इसलाह कर लो। इस आयत का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि आखिरत की तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। सिर्फ ख्वाहिश या नीयत काफ़ी नहीं बल्कि अमल ज़रूरी है। हर इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले और देखे कि किस सिमत जा रही है। यह आयत बहुत ही मजबूत तंबीह की हैसियत रखती है। जो लोग अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज करते हैं उनके लिए एक सख्त अंजाम मौजूद है। ये तंबी इंसान को झंझोड़ कर ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो कहाँ खड़ा है और उसे कहाँ जाना है। जनसर्स, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपने यकीनन इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।
1: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
2: FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: स्टूडेंट्स के लिए आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन सा रास्ता चुने। नए करियर ऑप्शंस की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या AI एक्सपर्ट, करना क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए करियर कैंपस सीजन 2 वहां मिलेगी वो गाइडेंस जो आपको कंफ्यूजन से निकाल कर बनाएगी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑन स्पॉट क्वेरीज के जवाब और वो टिप्स जो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे तो जरूर सुने शो करियर कंपास सीजन 2 आरजे नाजिया के साथ हर सैटरडे शाम 4 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से बीसी
2: आप सुन रहे हैं एफएम 107
1: दिल से देसी

0: एक्सक्यूज मी,
1: अच्छा यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
2: हाँ उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ, जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में।
3: अरे हबीबी किफाक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो कतर 101, और हर हफ्ते जैसे कि हम आते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और आज का भी टॉपिक यही है, यानी कि अरबिक लैंग्वेज। मैंने शुरुआत में कोशिश की थी और थोड़े थोड़े लफ्ज जो है वो बोलना इंसान को आना भी चाहिए ना। ये अरबी जो लैंग्वेज है ये बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत है, और इस अरबी लैंग्वेज में आपको एहसास होता है यार कि यू नो जो लफ्ज हैं और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टफ ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप एक बार सीख लें और इस डायलेक्ट को सीख लें, इस लैंग्वेज को सीख लें, तो आपकी वैल्यू ऐसा बढ़ जाती है। नहीं आपको कहीं पर अगर जॉब चाहिए तो वहाँ पर भी ये चीज़ें रखी होती है कि भाई देखिए अरबिक में अगर आप फ्लुएंट हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अंग्रेज़ी आती है तो अच्छा है, क्योंकि आप जिस मुल्क में काम कर रहे होते हैं उस मुल्क की लैंग्वेज बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जिस शहर जाते हैं वहाँ का डायलेक्ट सीख लेते हैं, और इवन हमारे मुल्क में भी अब होने लगा है, यू नो आप जब मुंबई जाते हैं तो आपको मराठी थोड़ी थोड़ी सीखनी अच्छी भी लगती है, आपको बोलते हुए भी अच्छा लगता है, उसके अलावा आप तमिल जाते तो वहाँ पर भी आप सीख लेते ना। सही है, तो आज जो है हम कतर 101 में इसी अरबिक लैंग्वेज के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो एक बार फिर से इस्तकबाल, ये शो कतर 101 जहां पर हर हफ्ते हम लाइफस्टाइल, कल्चर और ट्रेडिशन के साथ साथ कतर के बारे में बात करते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो है अरबिक लैंग्वेज। दोस्तों ये अरबिक जो लैंग्वेज है वो कतर की आइडेंटिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। अगर आप कतर में या गल्फ कंट्री में जाएंगे तो अरबिक में लोग आपसे बात करेंगे, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं और रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के रेसिडेंट्स भी इवन 30-40% ऐसे हैं जो अरबिक सीख गए, सालों से रहते रहते अरबिक सीख गए। इसलिए कतर की आइडेंटिटी या गल्फ की आइडेंटिटी का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का टूल नहीं है बल्कि कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री का एक सिंबल है। कतर में हर ऑफिशियल काम, गवर्नमेंट सिस्टम और लीगल डॉक्यूमेंट्स अरबिक में होते हैं। आपको याद होगा वो दिन, वो वक्त जब आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर आप अपने किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन चाहिए होता है आपके अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपने MBA किया हो, BCom किया हो, इंजीनियरिंग करी हो या फिर कुछ भी किया हो, कोई भी काम किया हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसका ट्रांसलेशन चाहिए था, आपके बोनाफाइड का ट्रांसलेशन चाहिए था। थोड़ा सा मेहनत का काम था, लेकिन आपके अपने मुल्क में यानी कि आपके इंडिया में, पाकिस्तान में, वहाँ पर भी ट्रांसलेशन के कुछ ऐसे स्टोर या ये कह सकते हैं ऑफिसर्स होते थे जो ट्रांसलेट करते थे बाकायदा। तो वहाँ जो ट्रांसलेशन करने वाले होते हैं वो जो ट्रांसलेशन करके देते थे, फिर आप अपने यहाँ पर कतर में अपनी कंपनी को, अपने गवर्नमेंट कंपनीज को ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देते थे। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगे थे यार, अपने को यहाँ नौकरी पाने में बड़ी मेहनत लगी है। तो वो सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है कि कतर में हर ऑफिशियल काम में, गवर्नमेंट सिस्टम में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में अरबिक ज़रूरी होती है। ये लैंग्वेज लोगों को उनकी रूट्स और ट्रेडिशन से दोस्तों कनेक्ट रखती है। जब हम अरबिक बोलते हैं हम सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलते बल्कि अपनी पहचान को भी एक्सप्रेस करते हैं। कतर जैसे मॉडर्न कंट्री में भी अरबिक लैंग्वेज अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखती है और हर जनरेशन के लिए एक कल्चरल ब्रिज का काम भी करती है। अगर हम मॉडर्न कतर के बारे में बात करें जिसमें ग्लोबल कंट्री या इंटरनेशनल जो पीपल हैं, जैसे कतर में बहुत से अलग अलग मुल्क से लोग आकर काम कर रहे हैं, कतर को खूबसूरत बना रहे हैं। मॉडर्न कतर एक ग्लोबल कंट्री बन चुका है अब, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, काम करते हैं और काम करते करते बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक्सपैट्स की जो पॉपुलेशन है कतर में अच्छी खासी है, मिलियंस में कतर में एक्सपैट्स जो हैं वो काम करते हैं। इस वजह से डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर्स एक साथ मिलते हैं। दोहा जैसे सिटीज में मॉडर्न बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल स्कूल्स और ग्लोबल बिजनेसेस नजर आते हैं। इस डाइवर्सिटी ने कतर को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बना दिया है, लेकिन इस ग्लोबल लाइफस्टाइल के साथ लोकल आइडेंटिटी को मेंटेन करना भी बेहद जरूरी है। अरबिक लैंग्वेज इस डायवर्सिटी के बीच कतर की कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। अगर हम अरबिक लैंग्वेज एज आइडेंटिटी बात करें तो अरबिक कतर की नेशनल आइडेंटिटी का कोर पार्ट है। गवर्नमेंट,
2: एडुकेशन और लॉ सब अरेबिक लैंग्वेज पर बेस्ड है, जो इसको एक ऑफिशियल और पावरफुल आइडेंटिटी बनाता है। कुरान की लैंग्वेज होने की वजह से अरेबिक को रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस भी मिलती है। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं होती बल्कि एक नेशन की वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे अपने मुल्क में इवन सिर्फ मराठी बोलने को लेकर या हिंदी को बोलने को लेकर ना अलग अलग किलोमीटर पे ये लिंग्विस्टिक जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं चेंज। जैसे मराठी बोलने का जो मुंबई में तरीका होगा, हो सकता है कि महाराष्ट्र के दूसरे सिटीज में मराठी बोलने का तरीका अलग हो, डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। ऐसे यूपी में है, ऐसे ही यू नो हमारे कश्मीर में है, हमारे कर्नाटका में है, तो थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं, इवन डायलेक्ट के चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही अरेबिक में भी लिंग्विस्टिक चेंजेस जो हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ शहरों में नहीं, यहाँ पर कंट्रीज बा कंट्रीज। जैसे कुवैती जो अरेबिक है वो थोड़ी सी अलग है, यूएई की थोड़ी थोड़ी बहुत थोड़ी सी आपको फर्क नजर आएगी, सऊदी की अरेबिक थोड़ी अलग है, और ऐसे ही कतर की जो अरेबिक है वो थोड़ी सी अलग है। लैंग्वेज सिर्फ बोलने का तरीका नहीं बल्कि एक नेशन की वैल्यूज, हिस्ट्री और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है। अगर लैंग्वेज वीक हो जाए तो आइडेंटिटी भी इम्पैक्ट होती है। इसलिए अरेबिक को प्रिजर्व करना सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं बल्कि कल्चरल सर्वाइवल और नेशनल प्राइड का मैटर है। आपने देखा होगा चाहे ये फानार की बात हो, चाहे यहाँ पर अरेबिक क्लासेस के बारे में बात हो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन आपको अरेबिक सिखाते हैं, और असल में अरेबिक की जो नीड है ये नीड ऑफ द आवर है। आप देखें अलग अलग मुल्कों में अरेबिक की डिमांड, खास तौर पे जो गल्फ एरिया है वहां पर अरेबिक की डिमांड अच्छी खासी है। अगर आपको अरेबिक आती है, आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी पकड़ स्ट्रांग है अरेबिक में, तो आपको नौकरी मिलना आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। आपके अपने काम कहीं पर रुक रहे हो, अटक रहे हो, अगर आपको अरेबिक आती है तो वहां पर आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हैं। इवन अगर आप देखें कई कंपनीज में ऐसे लोग होते हैं जिनको अरेबिक ही आती है या थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो ऐसे में अगर आपको अरेबिक आती है आप अपने बॉस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन लोगों को अरेबिक नहीं आती है तो बॉस से कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और बॉस को एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितना वक्त आप गुजारते जाएं, अगर कतर में हैं या कहीं पर भी हैं, थोड़ी थोड़ी अरेबिक मुझे लगता है सीखनी भी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इन्फ्लुएंस जो है वो भी देखने को मिल रहा है। आज के कतर में इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो गया है, ये जाहिर सी बात है। चाहे वो स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों और वर्क प्लेसेस में इंग्लिश वाइडली यूज़ होती हैं। कतर एक इंटरनेशनल हब है जहाँ एक्सपैक्ट्स की लार्ज पॉपुलेशन जो है वो रहती है। इस वजह से इंग्लिश कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गई है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी इंग्लिश को डोमिनेट करते हैं। इस मॉडर्नाइजेशन की वजह से अरेबिक और इंग्लिश का मिक्स डेली लाइफ में नॉर्मल हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश अरेबिक को रिप्लेस कर रही है या सिर्फ उसका सपोर्ट सिस्टम बन रही है। तो वैसे जहाँ तक मेरा अपना मानना है, अगर आप कितना भी अंग्रेजी पढ़ लें, कितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े हों, बट आप जब गवर्नमेंट एंटिटी में काम करते हैं या फिर किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर अरेबिक बोलना बेहद इंपॉर्टेंट भी है और उसकी नीड भी है कंपनी में बोलना अरेबिक, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इंग्लिश कितनी भी बोल लें आप अरेबिक धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं, आपको मज़ा भी आता है, आप लोगों से पूछते भी हैं। इवन हमारे FM 107 पे भी यू नो अरबी की कुछ क्लासेज

0: वो चलती हैं। स्कूल और वर्क प्लेसेस के बारे में अगर हम बात करें, इंग्लिश एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया के कुछ क्वेश्चंस भी उठते ही हैं। कतर के स्कूल और वर्क प्लेसेस में इंग्लिश का यूज़ बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के बारे में बात करें, गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बात करें या वर्क प्लेसेस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अरेबिक प्लस इंग्लिश भी चलती है। तो अरेबिक कहीं ना कहीं आपको हर जगह सुनने को, देखने को मिल जाएगी। उनके अगर आप यहाँ पर कतर में भी जाएंगे तो इस जगह है ना कॉर्निश पे, तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े क्राफ्ट या फिर स्कल्पचर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अरेबिक में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से आकर काम करते हैं, इसलिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट भी इंग्लिश कॉन्टेंट को प्रमोट करते हैं जिससे यूथ ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करता है। इस सिचुएशन में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या इंग्लिश अरबिक को रिप्लेस कर रही है या सिर्फ सपोर्ट सिस्टम ही बनी है? ये बैलेंस समझना ज़रूरी है ताकि लोकल आइडेंटिटी और ग्लोबल कम्युनिकेशन दोनों स्ट्रॉन्ग हो। यूथ और लैंग्वेज के बीच एक गैप भी है दोस्तों। आज की यंग जनरेशन कतर में अरेबिक और इंग्लिश दोनों को मिक्स करती है। इवन हमारे हिंदी में भी होता है ना, उर्दू में भी होता है कि उर्दू का 6 लफ्ज होते हैं तो 3 लफ्ज उसमें से अंग्रेजी के जो है इस्तेमाल कर लेते हैं हम। बहुत से बच्चे जो हैं टीनेजर्स भी अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में अरेबिक सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश वर्ड ऐड करते हैं। जो मैंने ये लैंग्वेज बोली है ना अभी इतनी देर में, या दो लाइन जो बोली है कि बहुत से बच्चे और टीनेजर्स अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में अरेबिक सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश वर्ड्स ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसमें कितने बार अंग्रेजी वर्ड आए हैं, जैसे कि टीनेजर्स, डेली कॉन्वर्जेशन, वर्ड्स ऐड, ये जो लफ्ज़ हैं ये अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं, तो उर्दू में अंग्रेजी के लफ्ज़ भी एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ भी है कि आपने अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दूसरे लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपकी कम्युनिकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक नॉर्मल ग्लोबल ट्रेंड भी है, लेकिन इससे अरेबिक लैंग्वेज का डीप यूज़ धीरे धीरे कम हो जाता है। सिंपल अरेबिक फ्रेजेस जो पहले हर घर में कॉमन थे, अब उनका यूज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया। कुछ यूथ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और अरेबिक को सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट समझते हैं। इस वजह से एक लैंग्वेज गैप क्रिएट होता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच भी। पेरेंट्स अरेबिक प्रेफर करते हैं जबकि चिल्ड्रन इंग्लिश या मिक्स्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। लेकिन वो घर जहाँ अरेबिक में बात होती है, जहाँ पर अरेबिक में कम्युनिकेशन होता है, उसके अलावा स्कूल में भी अरेबिक है, अपने दोस्तों के बीच भी अरेबिक है, तो वहाँ पर एक तरह से ये अरेबिक जो है लव्स या कहें अरेबिक जो लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग है। और असल में अरबी जो वर्ड हैं, अरबी जो लैंग्वेज है, ये स्ट्रॉन्ग इन्हीं जगहों पे रहेंगी और धीरे धीरे कतर में ये ऑब्वियसली काफ़ी लंबे वक्त तक चलने वाली हैं और काफ़ी लंबे वक्त तक रहेंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया भी इस गैप को थोड़ा सा वाइड ज़रूर करता है। देखिए दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक सोशल मीडिया पे हमारे जैसे लोग जो उर्दू इंग्लिश जान रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया उनका भी है जो अरबी में यूज़ कर रहे हैं। हम उनसे इतना मुखातिब नहीं हो पाए हैं, जो हमारे दोस्त हैं या हमारे यार हैं वो अरबी नहीं जानते, तो अरबी में लिखते भी नहीं हैं और अरबी में सोशल मीडिया में ना पोस्ट करते ना कॉन्वर्जेशन करते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जैसे कतरी जो भाई लोग हैं वो सिर्फ कतरी ही लफ्ज़ में या कतरी ही अरबिक लैंग्वेज में या अरबिक डायलेक्ट में बात करते हैं, तो उनकी कॉन्वर्जेशन, उनका सोशल मीडिया एक है और वो सब एक है। तो ऐसे में क्योंकि हम कतर में रहते हैं तो हमें लगता है ऐसा कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अरबिक का एक अलग सोशल मीडिया कह सकते हैं चल रहा है जहाँ पर हम नहीं जानते हैं। और ऐसे ही अरबिक जो बोलना जानते हैं उनको ये लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले कम लोग। लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इस गैप को और भी वाइडन करता है। शॉर्ट मैसेजेस, इमोजीज और स्लैंग लैंग्वेज यूज होने से फॉर्मल अरबिक राइटिंग और स्पीकिंग वीक होती जा रही है। यूथ अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन ग्लोबल कल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से अरबिक एक्सप्रेशन वीक हो जाता है। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यूथ कम्प्लीटली अरबिक को छोड़ नहीं रहा है। बहुत से यंग लोग अरबिक सीखने और इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं, स्पेशली स्कूल और फैमिली सपोर्ट के थ्रू। ये एक मिक्स्ड सिचुएशन है जहाँ अडेप्शन भी हो रही है और लॉस का रिस्क भी है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए ज़रूरी है कि घर में अरबिक यूज़ हो, स्कूल में प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो और मीडिया अरबिक को अट्रैक्टिव बनाए। अगर बैलेंस बना लिया जाए तो यूथ ग्लोबल भी बन सकता है और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी भी स्ट्रांग रख सकता है। इसी तरह देखा जाए कई ऐसे लोग हैं जो यू नो 10 साल 20 साल 30 साल से कतर में हैं, गल्फ में हैं, उन्होंने अरबिक सीख लिया, तो साथ ही साथ अपने बच्चों को भी अरबिक स्कूल में डालें, साथ ही साथ अपने बच्चों को अरबिक सिखाएं, किसी इंस्टीट्यूशन जहां पर अरबिक सिखाई जाती है वो भी सिखाएं, ताकि ये प्रिजर्व तो रहे, लेकिन फिर जब आप एक लैंग्वेज और सीख लेते हैं तो आपकी अपनी आइडेंटिटी में एक और एडिशन हो जाता है, आप थोड़े और यू नो लोगों के बीच बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इससे सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं आपके काम भी मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका अपना कोई बिजनेस है और उस बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी एक अरबी आदमी को समझाना है ना, जो कंट्री में रहा है, जो कतर में रहा है, जो गल्फ में रहा है, उन्हें तो अरबी ही आती है और उन्होंने शायद इंग्लिश इतनी नहीं पढ़ी हो और उन्होंने या तो कल्चर इतना स्ट्रांग रखा अपना कि हम अरबी में ही बात करेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो ऐसे में आपको अरबी आनी चाहिए और यही रीजन है कि जब भी किसी कंपनी की हायरिंग होती है तो वहां पर अरबिक लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है। इसलिए अगर आप या आपके बच्चे अरबिक सीख लेते हैं तो आपके बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने में बहुत मदद मिलेगी। अपने बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, जो कोई बंदा है या कोई ऐसा शख्स है जिनको सिर्फ अरबिक आती है, तो उससे आपको कम्युनिकेशन करने में आसानी मिलेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हम हर तरफ देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल में भी और इंस्टीट्यूशन में भी ये खासतौर पर पढ़ाया जाता है। इवन हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में भी अरबिक की क्लासेस होती हैं। स्कूल और एडुकेशन के बारे में बात करें तो स्कूल्स कतर में अरबिक लैंग्वेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडुकेशन सिस्टम में अरबिक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन साथ में इंग्लिश भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये डुअल सिस्टम एडुकेशन को ग्लोबल और लोकल दोनों स्किल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज सीखना काफ़ी नहीं होता, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी बेहद ज़रूरी है। स्कूल का मेन रोल ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ना दे बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी स्ट्रॉन्ग करे। जब स्टूडेंट्स अरबिक लिटरेचर, पोइट्री और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका कनेक्शन अपनी रूट्स के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये उन्हें अपनी आइडेंटिटी समझने में भी हेल्प करती है। आज के मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का यूज़ भी ज़्यादा हो गया और टेक्नोलॉजी में अरबिक नहीं अंग्रेजी लफ्ज़ ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यू नो यूरोप की तरफ से आती है और वहाँ पर अंग्रेजी लफ्ज़ ज़्यादा चलता है। इस वजह से जब टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर इंग्लिश लफ्ज़ आपके सामने आते हैं। हालांकि अब इस मॉडर्न दुनिया में अरबी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान तरीके से सिस्टम में किए जा रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना है तो ऑब्वियसली अरबी जो है वो लैंग्वेज आ रही है। उसके अलावा जो भी सिस्टम जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब क्योंकि इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, AI का ज़माना आ गया है, तो आपको अरबी समझना भी, अरबी लिखना भी थोड़ा सा आसान हो गया है और ये सिस्टम अरबी में भी आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। स्मार्ट बोर्ड्स, ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल लर्निंग ने एजुकेशन को इजी बना दिया है, लेकिन इस डिजिटल एनवायरनमेंट में अरबिक लैंग्वेज को इंगेजिंग बनाना एक चैलेंज ज़रूर है। टीचर्स को क्रिएटिव मेथड यूज़ करने पड़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स अरबिक को बोरिंग सब्जेक्ट ना समझे। स्कूल्स एक ब्रिजेस का काम करते हैं जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को कनेक्ट करता है। अगर स्कूल्स अरबिक को कल्चर के साथ लिंक करें, जैसे स्टोरी टेलिंग, डिबेट्स और कल्चरल इवेंट्स, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। इस तरह लैंग्वेज सिर्फ सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी बन जाता है। फिलहाल दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। जब आप कतर जैसे या गल्फ जैसे मुल्क में घूम रहे हों, टहल रहे हों, इंजॉय कर रहे हों गल्फ कंट्री को, गल्फ मुल्क को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें और क्या ना करें इन गल्फ कंट्री में अरबिक लैंग्वेज को लेकर। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: Excuse me. अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
0: उसके लिए तो
1: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
0: वैसे वो तो देखो,
1: और इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
0: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। ये खास शो आप सुन रहे हैं अरबिक लैंग्वेज पर, जहां अरबिक लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है। आजकल मिक्स्ड अरेबिक लैंग्वेज बोली जा रही है जिसमें अरेबिक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश का भी इस्तेमाल है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। तो हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे अरेबिक लैंग्वेज हमको आनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी आनी चाहिए, ताकि आइडेंटिटी के साथ साथ हमारा काम भी एक्सपेंड हो सके, हमारी आइडेंटिटी भी बढ़ सके, हम स्ट्रांग रह सकें ऐसे मुल्क में जहां पर अरेबिक लैंग्वेज की पकड़ स्ट्रांग है। तो ऐसे में इंग्लिश में बात करना, अरेबिक में बात करना, ये दो एक अलग चीज है। इंग्लिश इसलिए है क्योंकि एक ग्लोबल लैंग्वेज बनती जा रही है, और अरबी इसलिए क्योंकि हमें हमारी आइडेंटिटी, और कतर में अगर आप रह रहे हैं, गल्फ में अगर आप रह रहे हैं, तो ये अरेबिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए भी क्योंकि आप जो है इस खूबसूरत लैंग्वेज के पास रहते तो आप एक लैंग्वेज और जानते हैं, आपकी अपनी शख्सियत में एक बढ़ावा मिलता है। पिछले कुछ मिनटों में हमने काफ़ी अहमियत जो है अरेबिक लैंग्वेज की समझी है, और अब मॉडर्न स्टैंडर्ड जो अरेबिक है उसे भी समझते हैं, गल्फ अरेबिक को समझते हैं, और फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब हम कतर में या गल्फ में रहें। तो दोस्तों, दो अलग तरह की अरेबिक लैंग्वेज है जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक और दूसरा है गल्फ अरेबिक यानी कि खलीजी। एक है फुशा, जो थोड़ी सी टफ कह सकते हैं, या ट्रेडिशनल ज्यादा सही लफ्ज है, जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं, जो लिखने पढ़ने में, न्यूज में, स्कूल्स में सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और एक है गल्फ अरेबिक यानी कि खलीजी। ये वो लोकल डायलेक्ट है जो लोग अपनी रोजाना की जिंदगी और बातचीत में बोलते हैं, जैसे हमें समझना और आपको समझना आसान भी हो जाता है। और ये वो लैंग्वेज है जिससे मतलब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप अरबी लोगों से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में, क्या आपको करना चाहिए जब आप अरेबिक लैंग्वेज सीख रहे हो। तो देखिए, बेसिक ग्रीटिंग करना आपको जरूर सीखना चाहिए जब आप दूसरे मुल्क में हैं, जैसे कि सलाम करना, सलाम वालेकुम, जिसका मतलब है पीस बी अपॉन यू, मरहबा यानी कि हेलो, शुक्रान यानी कि थैंक यू, और फिर है अफवान यानी कि यू आर वेलकम, या फिर अफवान का और भी तरीका है लेकिन यू आर वेलकम इसका सही मतलब भी है, या फिर सॉरी में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ अरेबिक लैंग्वेज के लफ्ज़ हैं। प्रोनंसिएशन का रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोनंसिएशन की रिस्पेक्ट नहीं करी तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आपको गलत समझा जाएगा कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर आपको गलती हो रही है आपसे, कोई मसला नहीं है, लेकिन सीखने का, सामने से जब कोई सिखाए आपको, कोई बताए, तो उस बात की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो आप ट्राई करेंगे लेकिन परफेक्ट नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी आपके एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ आपको करना चाहिए, फॉर्मल अरेबिक को सीखना, लर्न करना, न्यूज़ रीडिंग करना, न्यूज़ को समझना, अरब कंट्रीज़ को समझना, उनके कल्चर को समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप अरेबिक का इस्तेमाल करना भी सीखें। उसके अलावा डू अंडरस्टैंड डायलेक्ट डिफरेंट एज वेल, जैसे कि कुछ वक्त से हम बता भी रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री में डायलेक्ट भी चेंज हो जाता है। अरेबिक अलग अलग कंट्री में अलग अलग साउंड करती है, जैसे इजिप्शियन अरेबिक अलग है, लेबनीज अलग है, मोरक्कन अरेबिक अलग है। फिलहाल आप कतर में हैं तो कतर की क्या अरेबिक है, किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे आप समझें, पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, है ना। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, है ना, वो ऐसा लगता है कि आप हिटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे उर्दू में अगर हम बात करें, या फिर हिंदी में हम बात करें, कि तमीज़ से रहो। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, कोई सही से आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप उसे हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि तमीज़ से रहो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी हार्ड लैंग्वेज हो गई। वहीं आप अगर उर्दू में ये बात कहना चाहेंगे तो कि आप इस लैंग्वेज में बोलेंगे, आप इस खूबसूरती से बोलेंगे कि वो तमीज़ सीख भी जाएगा, और आप बोलेंगे भी हल्के कि अरे जनाब थोड़ा एहतराम करें, है ना। तो ये देखिए, आपने बात भी बोल दी, आपके लफ्ज़ भी चले गए। तो उर्दू लफ्ज़ में थोड़ा सा एक है भाई तमीज़ भी, हालांकि उर्दू वर्ड है लेकिन तमीज़ और थोड़ा हिटिंग वर्ड है, लेकिन अगर आप एहतराम करिए भाई ये बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ही आपको पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कि मिन फदलक, मिन फदलिक, इसमें इसका मतलब है प्लीज़। फिर है लो समहत यानी कि एक्सक्यूज़ मी, जज़ाकल्ला खैर, मे गॉड रिवॉर्ड यू विद गुडनेस, तो इसका मतलब ये है। ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका इस्तेमाल ज़रूर आपको आना चाहिए, मिन फदलक, मिन फदलिक, या फिर लो समहत, या फिर जज़ाकल्ला खैर, ये कुछ ऐसे आसान लफ्ज़ हैं। फिर राइट टू लेफ्ट राइटिंग, ये खैर ऐसी चीज़ है, आप आमतौर पर अरेबिक नहीं लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है आप लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, बट अरबी में राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। इसकी वैल्यू या कहें इसका भार ज़्यादा है, क्या करना चाहिए ये तो हमने बता दिया, आप करें ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर आपको पता होना चाहिए। डोंट अज्यूम वन अरबिक फिट्स ऑल। डायलेक्ट जो है अलग अलग हो सकते हैं। एक वर्ड कतर में जो इस्तेमाल किया जा रहा है अरबी

का वो यहाँ अलग हो सकता है, लेकिन जो गल्फ में बाकी जगहों पे कुवैत में सऊदी में इस्तेमाल किया जा रहा उसका अलग हो सकता, मायने अलग हो सकते हैं, डायलेक्ट अलग हो सकते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो आप कतर में बात कर रहे हैं वो अरेबिक जब आप सऊदी में जाएं या फिर यूएई में जाएं तो वहाँ पर समझ के साथ बात करें। जेंडर फॉर्म्स का भी इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुक्रान लक टू अ मैन, अगर आप किसी मर्द को कहना चाहते हैं शुक्रान लक, तो एक मर्द को कहना है शुक्रान लकी, तो ये है एक विमेन के लिए। तो ये फर्क भी आपको एक समझ में आना चाहिए कि मेल को आप क्या कह रहे हैं और फीमेल को आप क्या कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना हो कि आपने फीमेल के लिए मेल का वर्जन इस्तेमाल कर लिया और मेल के लिए फीमेल का। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, अगर आप गलती कर रहे हैं उससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखने के लिए जो एफर्ट होता है वो करते रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने कुछ गलत बोल दिया, ऐसे में कोई अगर आपको समझाए तो उस पर हंसने की या उस बात पर हंसने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि अरे अरे मुझे जरूरत नहीं, है ना। आप लगातार सीखते रहेंगे तो ज़्यादा ही खूबसूरत हो जाती है ये अरेबिक लैंग्वेज। एक गोल्डन रूल है कि धीमे बोलें, ध्यान से सुने और रिस्पेक्टफुली उसे सीखें, अरेबिक लैंग्वेज को सीखें। ये एक खूबसूरत बात है। अरेबिक एक लैंग्वेज नहीं है, ये कल्चर, हॉस्पिटैलिटी और आइडेंटिटी को कैरी करती है, इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो दोस्तों ये था कुछ डूज एंड डोंट्स जिस पर हमने बात करी, लेकिन जो कुछ चैलेंजेस हैं जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। अरेबिक लैंग्वेज को आज के टाइम में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज लैंग्वेज मिक्सिंग है, जहां अरेबिक और इंग्लिश स्लैंग एक साथ यूज होती है। इससे प्योर अरेबिक वोकैबुलरी का यूज कम होता जा रहा है, जिससे लफ्ज जो है वो खो रहे हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने शॉर्ट फॉर्म्स और इमोजीज को प्रमोट किया है, जिससे प्रॉपर अरेबिक राइटिंग और स्पीकिंग वीक होती जा रही है। यूथ ट्रेडिशनल अरेबिक एक्सप्रेशन को कम यूज कर रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो डीप कल्चर लैंग्वेज स्किल्स भी इम्पैक्ट हो सकती हैं, जो कि आने वाले वक्त में हमारे और आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी होगा। फ्यूचर क्या है अरेबिक का कतर में, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो बात यह है कि अरेबिक का फ्यूचर कतर में स्ट्रॉन्ग रह सकता है, अगर फैमिलीज, स्कूल और मीडिया इसको एक्टिवली प्रमोट करें तो। और ये बात तो बड़ी वाजे है कि कतर की गवर्नमेंट, कतर के लोकल्स, कतर के रेसिडेंट्स, कतर के जो सिटीजन्स हैं वो बड़ी ही स्ट्रांगली, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, स्कूल्स हैं, ये अच्छा खासा अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चाहे आप कल्चरल इवेंट्स में देखें, चाहे आप दरबलसाई के खूबसूरत प्ले को देखें, चाहे आप फनार में अरेबिक सीखने की बात को देखें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ पर जो पोस्टर होते हैं वो भी अरेबिक में होते हैं। ऑल्दो बाकी लोगों को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है अंग्रेजी या अलग लफ्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये कंट्री सबसे खूबसूरत कंट्रीज में से एक है, सबको बराबर इज्जत मिलती है। लैंग्वेज का सर्वाइवल सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज पर नहीं होता, लेकिन दोस्तों डेली यूजेज पर भी डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स घर में अरेबिक यूज करें और स्कूल्स कल्चर एडुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं तो फ्यूचर जनरेशन अपनी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकती है। और कतर में तो ये हम देख सकते हैं और वाजे भी है कि हम अरेबिक को स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं। मीडिया भी अवेयरनेस क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो कर भी रही है। अरेबिक सिर्फ पास्ट का हिस्सा नहीं बल्कि फ्यूचर आइडेंटिटी का भी स्ट्रॉन्ग पिलर है। प्राइड और कंसिस्टेंट यूज दोनों बेहद जरूरी है। अरेबिक लैंग्वेज कतर की आइडेंटिटी, कल्चर और सोल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट हेरिटेज सिस्टम है जो हिस्ट्री, रिलीजन और वैल्यूज को कनेक्ट करता है। दोस्तों मॉडर्नाइजेशन ने कतर को ग्लोबल कंट्री बना दिया है, जहां इंटरनेशनल पीपल यानी कि इंटरनेशनल लोग और कल्चर्स एक साथ रहते हैं, लेकिन इस डाइवर्सिटी के बीच अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना भी लाजमी जानते हैं। आज के टाइम में इंग्लिश और ग्लोबल कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अरेबिक वीक है। दोनों लैंग्वेज का बैलेंस मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूथ को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए इंग्लिश सीखनी चाहिए, लेकिन साथ ही अरेबिक को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा भी जरूर बनाना चाहिए। आखिर में दोस्तों ये टॉपिक हमें एक बहुत गहरा मैसेज देता है। प्रोग्रेस और आइडेंटिटी साथ साथ चलनी चाहिए। कंट्री इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कर सकती है, लेकिन उसको अपनी कल्चरल फाउंडेशन नहीं भूलनी चाहिए। कतर में अरेबिक लैंग्वेज प्राइड, यूनिटी और बिलोंगिंग का सिंबल है। और कंक्लूजन में कहें तो ये टॉपिक हमें सिखाता है कि अपनी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करो, अपने कल्चर को वैल्यू दो और मॉडर्न लाइफ को

0: समझेंगे। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Hey बच्चों, are you ready? Games, मस्ती, stories और super fun के लिए
3: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं.
4: ये शो कौन सा है?
2: The Super Kid Show.
5: Super Kid Show on FM 107.
3: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक. Only on FM 107, दिल से देसी.
4: I love the Super Kid Show.
3: Super fun.

जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: 107 पर वेक अप
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों

0: लोगों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से RJ तलहा के साथ।
2: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। RJ सर्वर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
4: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी सोचा है कि आपके लिए हेल्थ क्या है? सेहत को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हेल्थ सिर्फ तब होती है जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हो या जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े? या फिर हेल्थ वो लम्हा होता है जब मन हल्का हो, सांसें गहरी आए और जिंदगी थोड़ी मैनेजेबल लगे? सच ये है कि हेल्थ सिर्फ बॉडी का हल नहीं, हेल्थ एक एहसास है, एक इत्मीनान है जब जिस्म, दिमाग और जज्बात एक दूसरे के साथ हार्मोनी में हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज का ना होना नहीं बल्कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का बैलेंस है। और रिसर्च ये भी बताती है कि स्ट्रेस का असर सबसे पहले एनर्जी पर नहीं बल्कि मूड और इमोशंस पर पड़ता है। इसीलिए जब हेल्थ हिलती है सबसे पहले पेशेंस कम होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और, आपका दिमाग बॉडी के सिग्नल सुनता है लेकिन हम अक्सर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पुअर स्लीप फोकस को कम करता है, डिहाइड्रेशन थकान बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्यूनिटी को क्वाइटली वीकेंड करता है। हेल्थ कभी एक दिन में खराब नहीं होती, वो धीरे धीरे खामोशी से स्लिप करती है। इसलिए एक छोटा सा मशवरा, रोज थोड़ा सा पॉज लीजिए, अपने आप से पूछिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा पानी, थोड़ा मूवमेंट और थोड़ी मेहरबानी खुद के लिए। हेल्थ परफेक्शन का गोल नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस का सफर है जहाँ पर छोटा ख्याल आपकी बड़ी सेहत बनाता है।
1: योर हेल्थ मैटर, योर हेल्थ मैटर, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

चल बात करें सिर्फ तू और मैं, सवाल सारे जो गलत फहमी में बदल गए वो दूर करें। मोहल्ल में भी शोर है, हो हाय ये कैसा दौर है, सच बताऊं

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाईलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे इंडियन के मारूफ बल्लेबाज रोहित शर्मा के बारे में। नाम ही काफी है मॉडर्न जनरेशन के लिए। रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, इज अ स्टार, इनके बारे में यू नो एवरीथिंग इज ऑन स्टैट्स। एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो अपनी एलिगेंट बैटिंग और काम लीडरशिप के लिए जाना जाता है। उनका निकनेम हिटमैन पड़ा और ये नाम उन्होंने अपनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स से जस्टिफाई भी किया है। रोहित ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी ओडीआई में खास तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी वैल्यू प्रूव किया है। यह और बात है कि टेस्ट क्रिकेट में अब वो नहीं खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट टीम से वो बेसिकली रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कई ऐसे इनिंग्स है जिसका लोग मिसाल देते हैं कि देखिए इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट। वन ऑफ द वेरी फ्यू मॉडर्न क्रिकेटर्स जिन्होंने हर फॉर्मेट T20, टेस्ट और ODI में बहुत बाखूबी, मैं अगर कहूँ यहाँ पर, उन्होंने एडजस्ट किया है और हर तरह के स्टाइल, हर तरह के शॉट्स उनकी बैटिंग में हमने देखा है, जस्ट लाइक विराट कोहली। और अगर स्टैट्स की बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने 67 मैचेस खेलकर 4301 रन्स बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरीज 18 फिफ्टीज शामिल है। दोस्तों ओडीआई क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड लाजवाब है, 282 मैचेस में 11577 रन्स और उनका हाईएस्ट स्कोर 264 है, 264, जो कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। इसके अलावा उन्होंने 33 सेंचुरीज और 61 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं, एंड दैट मेक्स हिम अ टिपिकल ओडीआई बैट्समैन। T20 इंटरनेशनल में भी रोहित सक्सेसफुल रहे और T20 इंटरनेशनल में अगर स्टैट्स की बात करूं तो 159 मैचेस खेलकर 4231 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 5 सेंचुरीज भी शामिल हैं। दोस्तों उनके बैटिंग का स्टाइल एफर्टलेस लगता है, लेकिन टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन उनको बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है। कैप्टन के तौर पर भी उन्होंने इंडिया को कई इंपॉर्टेंट सीरीज और टूर्नामेंट्स में लीड किया है। तो रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि

कंप्लीट मैच विनर हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: एक बिजी शेड्यूल के बीच में आपको कॉल आती है।
5: हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है, अभी जो OTP आया है प्लीज बता दीजिए, वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा।
4: एक OTP आप बताते हैं और अकाउंट खाली हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड को कहते हैं OTP फ्रॉड। दुनिया का सबसे फास्ट स्कैम माना जाता है। स्कैमर बैंक कुरियर पेमेंट ऐप बन के कॉल करता है, OTP मांगता है और जैसे ही आप अपना OTP शेयर करते हैं, गेम ओवर। याद रखिए, OTP यानी वन टाइम पासवर्ड सिर्फ आपके लिए होता है। बैंक, पुलिस, कुरियर कोई भी OTP नहीं मांगता और ऐसी कॉल में हमेशा वो अर्जेंसी दिखाते हैं। जल्दी बताइए नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, जल्दी बताइए वरना ये प्राइस निकल जाएगा। वो एक अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और हावड़ तावड़ में आप अपना OTP बता देते हैं। यानी अर्जेंसी इज इक्वल टू बिगेस्ट रेड फ्लैग। तो ध्यान रखिए, OTP कभी शेयर मत कीजिए। कॉल आए तो कट करो, खुद ऑफिशियल नंबर पे कॉल करो और अगर OTP दिया तो तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करो। एक OTP, एक सेकंड और जिंदगी भर का रिग्रेट।
3: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: वैल्यूज और वैल्यूज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग जिम्मेदारी और एक मजबूत बच्चे होने की निशानी भी है। देखिए, मजबूत बच्चा फिजिकली भी स्ट्रांग होता है और मेंटली भी स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होता है, इमोशनली भी स्ट्रांग होता है। आज के दौर में जब दुनिया बहुत तेज रफ्तार हो चुकी है, बच्चों की सिर्फ अकेडमिक कामयाबी पर ज्यादातर लोग तवज्जो देने लगते हैं, तो ऐसे में असल जरूरत इस बात की है कि क्या हम उनके वैल्यूज और कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं। एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन इंसानी अखलाक से महरूम हो, जिंदगी के मुश्किल सिचुएशन में कमजोर साबित होता हो, ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि उसके वैल्यूज या उसका कैरेक्टर उस तरह से स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि कंपैशन, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वैल्यूज जो है वो बचपन से ही सिखाना बहुत जरूरी है। देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग अक्सर हमने इस पर बात भी की है और हम करते भी रहते हैं और होनी भी चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग का ना मतलब सिर्फ रूल्स सिखाना नहीं है, बच्चे को डिसिप्लिन लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे रूटीन सेट करना है, उसे ट्रेंड करना नहीं, बल्कि बच्चे को ये समझाना है कि सही और गलत में फर्क कैसे करें। जब हम बच्चों को मेहरबानी, एम्पैथी, कंपैशन, ये सारी चीजें सिखाते हैं, तो उनके अंदर दूसरों के एहसास को समझने की सलाहियत पैदा होती है। ऐसे बच्चे ना सिर्फ अच्छे दोस्त बनाते हैं बल्कि सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। देखिए, ऑनेस्टी यानी सच्चाई, ये किसी भी कैरेक्टर की बुनियाद है। अगर एक बच्चा सच बोलना और अपनी गलतियां तस्लीम करना बचपन से सीख ले, तो वो अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा हिम्मत और यकीन के साथ करता है। पेरेंट्स और टीचर्स का किरदार यहाँ बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर का माहौल सच्चाई पर मबनी हो तो बच्चा भी वही राह इख्तियार करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं ना कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते, आप देते हो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी वैल्यू है जो बच्चे को खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे अपना बैग संभालना, अपना होमवर्क वक्त पर खुद ब खुद कर लेना, ये घर के छोटे काम जो है उनमें किसी की मदद कर देना, ये चीजें बच्चों को डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाती हैं। जब बच्चा ये समझने लगता है कि उसके एक्शंस के नताइज अच्छे हो सकते हैं, तो वो उन पर काम भी करता है और वो जिंदगी में बेहतर फैसले भी लेता है, और वो भी अपने आप ही। रिस्पेक्ट सिखाना भी आज के दौर में बड़ा जरूरी हो गया है, खास करके बुजुर्गों का एहतराम करना, बड़ों से अच्छी तरीके से पेश आना, बात करना और मुख्तलिफ सोच रखने वालों का भी लिहाज करना, ये सब वैल्यूज बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ऐसा बच्चा क्लासरूम, वर्कप्लेस और घर हर जगह इज्जत के साथ पेश आता है। रेजिलियंस पे तो हमने बात की ही थी कि किस तरह से रेजिलियंस जो है बच्चों को मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है। और रेजिलियंस यानी आप जानते ही हैं कि जब टफ सिचुएशन हो उसमें हिम्मत ना हारना, अपने कैरेक्टर, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जब बच्चे को हर बार फेलियर से बचा ही दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, या फिर उसकी गलतियों को छुपाया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो वो कभी नहीं सीखेगा कि किस तरह से उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है। लेकिन जब उसे गलतियों को एक्सेप्ट करने से और फिर वापस अपने आप को रीबिल्ड करने से जोड़ा जाता है, सिखाया जाता है, तो वो मजबूत और पुरउम्मीद इंसान बनता है। बस आखिर में यही कहूंगी कि वैल्यूज और कैरेक्टर दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी बच्चे के लिए, और वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चे की लॉन्ग टर्म वेलबींग और लाइफ सक्सेस की जमीन तैयार करता है।

0: करता है। अगर हम बच्चों को नेक, जिम्मेदार और रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं तो हमें उनके अंदर इंसानी वैल्यूज को पहले दिन से जो है वो इनकल्केट करने की ज़रूरत है। यही असल कामयाबी है और यही एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद भी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया को और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट एफएम 107 कतर। दिल से देसी।
2: आर यू रेडी? फ्राइडे शाम 8 बजे लेकर आ रहे हैं आरजे फजील, वो शो जिसका इंतजार होता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक्स एक ही जगह पर।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 8 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो, जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक

0: बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर न सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो,
2: दिलों की बात हो।
1: तो अपने अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है,
2: बदलने वाला है।
1: पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस।
3: जहाँ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम, आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
1: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
3: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स।
1: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार।
3: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
1: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर।

0: उनका रब इनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे, ये उनको पुकारेंगे मगर वो इनकी मदद को न आएंगे, और हम इनके दरमियान एक ही हलाकत का गढ़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें इसमें गिरना है, और वो उससे बचने के लिए कोई जाए पनाह न पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू वाक़ हुआ है। उनके सामने जब हिदायत आई तो उसे मानने और अपने रब के हुजूर माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो मुंतजर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा और किसी गरज के लिए नहीं भेजते कि वो बशारत और तंबीह की खिदमत अंजाम दे दें, मगर काफिरों का ये हाल है कि वो बातिल के हथियार देकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मेरी आयात को और उन तंबीहात को जो उन्हें की गई मजाक बना लिया है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेर ले और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये रविश इख्तियार की है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते, और उनके कानों में हमने गिरानी पैदा कर दी है। तुम उन्हें हिदायत की तरफ कितना ही बुलाओ वो इस हालत में कभी हिदायत ना पाएंगे। तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। वो इनके करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही आदाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है और उससे बचकर भाग निकलने की ये कोई राह ना पाएंगे। ये आजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, और उनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा था।
1: وَإِذْ